0: आज हिमालय की प्रार्थना को सुनकर कुतूहल के साथ प्रवेश किए। वेदाचार और लोकाचार को यथोचित विधि से करके शिवजी द्वारा दिए गए आभूषणों से शिवा को विभूषित किया। पहले उसे स्नान कराया, फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा सखियों ने उनकी आरती की। दो नए वस्त्रों को उसे पहनाया जिनसे वह सुशोभित हुई। उस समय वह हिमालय की कन्या शंकर की पत्नी शोभित हुई। हिमालय की कन्या थी लेकिन शंकर से उनका विवाह हो रहा था तो वो उससे सुशोभित हुई। वीरराज महाशैल दुहिता शंकर प्रिया कंचुकी परमा दिव्या नाना रत्नान्विता अद्भुता विधृता च तया देव्या विलसन्ति अधिकं मुने सा बभार तदाहारं दिव्य रत्न समन्वितं वलयानि महारानी शुद्ध चामी करानी च स्थिता तत्रैव सुभगा ध्यायन्ति मनसा शिवं सुशुभे अति महाशैल कन्यका त्रिजगत प्रसु। अब कहते हैं कि उस समय उसने अनेक रत्न जटित सुंदर कंचुकी को धारण किया, उससे वह अधिक सुशोभित हुई। उसके बाद उसने दिव्य रत्न जटित हार को धारण किया और बहुमूल्य शुद्ध सोने की चूड़ियों को भी उसने धारण किया। वह सौभाग्यवती गिरिराज पुत्री तीनों लोकों की माता मन से शिव जी का ध्यान करती हुई वहीं बैठी हुई शोभित हो रही थी। उस समय दोनों ओर आनंददायक उत्सव मनाया जा रहा था। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय औरों को भी दान दिया गया। उत्सव के साथ गीत वाद्य भी वहां हो रहा था। फिर मैं यानी ब्रह्मा जी विष्णु आदि देवता तथा मुनिजन सभी प्रसन्न होकर उत्सव मनाने लगे। भक्ति से शिवा को प्रणाम कर और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा पाकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इस बीच वहां ज्योतिष शास्त्र के पंडित गर्ग मुनि ने गिरिराज हिमालय से कहा। अब गर्ग मुनि जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पानी ग्रहण संस्कार के लिए शिव जी को ले आइए। अब सभी उठ गए और वेद मंत्रों के साथ बाजे बजने लगे। प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे, शिव जी को लेने के लिए संभवतः पर्वत आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सब के बड़े भाग्य से पानी ग्रहण का समय आ गया है। और सभी हिमालय के घर पहुंच गए थे। कहते हैं कि काली जो है वो कौन है, पार्वती। पार्वती ही दुर्गा है, पार्वती ही काली है। कहते हैं काली के प्राप्त होने की इच्छा से शंभु अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि हर जन्म में काली किनकी बनती है, भगवान शिव की। और यद्यपि माता पार्वती जब शिव से विलग होती है तो सब कुछ भूल जाती है। जीवात्मा रूप में जब इस संसार में आती हैं तो सब कुछ भूल जाती हैं, सब कुछ नए सिरे से उनका होता है, लेकिन अंदर में परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम भरा हुआ है कि वो प्रेम खत्म नहीं होता। और जिस तरह से बारिश के समय में सूखी हुई दूब हरी हो जाती है, ठीक उसी तरह से भावनाएं समय पा करके हरी हो जाती हैं। कि पार्वती और शिव का पहला साक्षात्कार जब होता है तो पार्वती अपने शिव को कहीं ना कहीं से पहचान लेती हैं और फिर उनके अंदर प्रेम का अंकुरण होता है। चाहे वो जिस किसी भी रूप में आए इस धरती पर, लेकिन अंततः भगवान शिव को वो पहचान ही लेती हैं। यानी जीवात्मा परमात्मा की सहचरी है और जीवात्मा हमेशा परमात्मा को ढूंढती रहती है, और इस ढूंढने के क्रम में जो उत्सुकता जो प्रेम उनके अंदर जागृत होता है वही वैराग्य का भी रूप धारण करता है, क्योंकि परमात्मा को वैराग्य से ही वो पा सकती है। प्रेम में वैराग्य ये होना पार्वती से कोई सीखे। वैराग्य मतलब कि संसार से उन्होंने अपने आप को खींच लिया और जोड़ दिया किससे, भगवान शिव से। संसार को माइनस कर दिया, शिव जी को प्लस कर दिया। शिव का अनुराग जिनके रग रग में बह रहा हो, शिव के प्रति पुलकन है, शिव के प्रति ही उनकी धड़कनें धड़कती हैं, शिव ही जिनकी सांसों में बसे हुए हैं, शिव ही जिनके रोम रोम में हैं,
1: वो है पार्वती, वो है काली, वो है दुर्गा।
0: तो कहते हैं कि दोनों जो है सुंदर सुंदर

0: वस्त्र पहने हुए थे और महोत्सव मन रहा था। ब्रह्मा विष्णु महेश सब आगे चल रहे थे। उस महोत्सव में शंख, भेड़िया, नगारे, बड़े ढोल, गोमुख आदि बार बार बजाए जा रहे थे। गायक मंगल गान गा रहे थे। स्त्रियां अनेक प्रकार से नृत्य कर रही थीं। इन सब के साथ संसार के एकमात्र हितकर्ता परम शक्ति से संपन्न होकर उस समय समस्त देवों द्वारा प्रसन्नता से सेवित तथा फूलों की वर्षा को स्वीकार करते हुए वहां गए। अब देखिए यहाँ दिया है स्त्रियां उस समय नृत्य कर रही थी, यानी कि केवल आज के समय स्त्रियां नृत्य नहीं करती थी, उस समय भी स्त्रियां नृत्य कर रही थी। बीच में ये नृत्य आदि सब खत्म हो चुका था, लेकिन अब सब कुछ हो रहा है कि बारात के साथ साथ स्त्रियां भी जाती थी और अब भी जा रही हैं और नृत्य गान सब जगह होता है। अब कहते हैं कि बड़े सम्मान के साथ शिव जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। बारात के साथ आए, यज्ञ मंडप में उन्होंने प्रवेश किया, वहाँ उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की गई। अब कहते हैं आगे कि विषाद दुतार तारयामास सुमहेशम पर्वतोत्तम निन्यूड गुहांतरम प्रीत्या महोत्सव पुरः सरम हिमालयो अपि संप्राप्तम सा देवगण मिश्वरम प्रणम्य विधिवद भक्त्या नीराजनम अथागरोत। नीराजनम मतलब आरती। कहते हैं कि पर्वत श्रेष्ठों ने उन्हें बैल से उतारा और महान उत्सव तथा प्रेम के साथ उन्हें घर के भीतर ले गए। देवताओं के साथ अपने घर में आए हुए शिव जी को हिमालय ने भक्ति से विधिवत प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। सभी देवताओं मुनि आदि को प्रणाम कर बड़े उत्साह के साथ अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए हिमालय ने उन सब का सम्मान किया। वह हिमालय विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को अर्धपाद्य द्वारा सम्मानित कर अपने घर के भीतर ले गया और उसने ब्रह्मा विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को आंगन में रत्न सिंहासनों पर बैठाया, क्योंकि राजा का घर था भाई, रत्न सिंहासनों की कमी नहीं थी, तो उन रत्न सिंहासनों को उसने विशिष्ट अतिथियों के लिए रखा हुआ था, वो थे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब कहते हैं कि मीना ने, उसकी सखियों ने, ब्राह्मणियों ने तथा सौभाग्यवती स्त्रियों ने प्रसन्नता से उनकी आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने शिव जी के हाथ से मधुपर्क आदि कृत्य विधिवत करवाए। हे मुनि, मैंने पुरोहित को प्रस्ताव के अनुसार मंगल कार्य करने की प्रेरणा दी, उसने भी तदनुसार सब किया। हिमालय ने अत्यंत प्रेम के साथ घर के भीतर प्रवेश कर वहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित वेदी के ऊपर बैठी वह कृशोदरी पार्वती सुशोभित हो रही थी। मेरे और विष्णु के साथ शिव जी को वहाँ ले आए। कन्यादान के योग्य लग्न की प्रतीक्षा करते हुए बृहस्पति आदि देवता वहाँ आनंदित हो रहे थे। खूबसूरत वर्णन है। और देखिए जो विवाह आजकल करवाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि सतयुग में जो शिव पार्वती का विवाह हुआ था वहीं से सब कुछ लिया,
1: वही विधि विधान,
0: वही विधि
1: मंत्रोच्चारण द्वारा,
0: वही मंत्रोच्चारण है, वही सब कुछ है। और उसी के अनुसार दंपति में जो कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ दंपति शिव और पार्वती को ही कहा जाता है। हमेशा वामांगी बन करके पार्वती उनके साथ रहती है, शिव पार्वती को नहीं छोड़ते, पार्वती शिव को नहीं छोड़ती, चाहे जन्म जन्मांतर क्यों नहीं पार्वती के हो जाए, लेकिन पार्वती हमेशा शिव की ही होती है और शिव हमेशा पार्वती को कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालते हैं।
1: और ये भी तो एक बात देखिए लीना जी, कि विवाह के मंत्रोच्चारण के लिए, विधि विधान के लिए, सारे संस्कार के लिए एक विद्वान पंडितों को ही चुना जाता है
0: जी,
1: जिन्हें ये सारे सब कुछ विद्या आती हो। कोई छोटे मोटे या थोड़ी सी उच्च श्रृंखल से विद्या वाले पंडित को विवाह के लिए नहीं चुना जाता। तो ये पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि गर्गाचार्य ऋषि, गर्ग के जैसे महाऋषि जो वहाँ पे मंत्रोच्चारण हो रहा है और उनको पाणि ग्रहण संस्कार करा रहे हैं, तो उसी परंपरा को आज भी ये यहाँ पर चल रही है हमारे समाज में, कि विद्वान ब्राह्मणों को ही चुना जाता है जो विधि विधान से और उचित मंत्रोच्चारण द्वारा पूरे पूरी तरह से विवाह को संपन्न करा सके और उसके पूरे वेदोचित जो है जितने भी मंत्र हैं उनका सही तरह से वहाँ पर पालन हो सके।
0: लेकिन आजकल क्या होता है कि रात्रि में सब कुछ होता है, रात में लोग नाच गा करके थक जाते हैं, थकने के बाद खाना पीना खाया यानी कि वर वधू भी खा लेते हैं, प्राय सब खा पी लेते हैं, उसके बाद आराम करने का समय आता है और उस समय विवाह होता है। विवाह जैसा शुभ कार्य उस समय होता है जिस समय सभी थक करके चूर हो जाते हैं, तो फिर विवाह हुआ कहाँ ठीक से। वेदोच्चारण जहाँ होता है वहाँ उसी समय कान में फूंक देते हैं कोई कि पंडित जी जरा जल्दी जल्दी करवा दो, उतना समय नहीं है। हर चीज़ के लिए समय है, फोटो खिंचाने के लिए समय है, बारात के स्वागत के लिए समय है, खान पान के लिए समय है, सब कुछ के लिए समय है, लेकिन विवाह के लिए समय नहीं होता। जबकि अगर पूर्ण विधि विधान के साथ विवाह कराया जाए तो 2-3 घंटे लग जाते हैं,
1: बड़े आराम से।
0: हाँ,
1: बड़े आराम से लग जाते हैं,
0: लेकिन ऐसा होता नहीं है।
1: लीला जी, आप याद करिए कि अभी भी अभी पिछली पीढ़ी को लेकर चलते हैं, तभी भी 12 बजे के करीब जो है वो शुरू होते थे फेरे मंत्रोच्चारण के साथ में, और सुबह के 4-5 बजे तक जो है खत्म होता था विवाह का मंत्रोच्चारण। लेकिन अब क्या है कि 1 बजे तक, जैसा कि आपने बताया कि वो नाच गाना चलता रहता है, फोटो सेशन चलते रहते हैं, और फिर उसके बाद में 2 बजे के करीब वो फिर शुरू होता है। तो उसमें क्या है कि पुत्र के और पुत्री के जो घर वाले हैं बस वही लगभग वही
0: हो जाते हैं।
1: हाँ, और आप ठीक कह रही हैं कि उनके कान में डाल दिया जाता है कि थोड़ा विवाह भाई जल्दी ख़त्म कर देना। अब 2 बजे वो बैठे हैं दूल्हा दुल्हन, या 2:30 बजे बैठे हैं, और 4 बजे फिर उनको ख़त्म करना पड़ेगा।
0: दुल्हन सो रही है, दूल्हा भी सो रहा है, नींद आती रहती है, प्राय नींद आती रहती है, स्वाभाविक है नींद आएगी। तो इसलिए सवेरे का टाइम जो होता था प्रातः काल का, उस समय जो विवाह होता था वो दैवी विवाह होता है,
1: क्योंकि एक
0: देवताओं का अनुग्रह बरसता है। लेकिन इस समय पिशाच, प्रेत, राक्षस ये सब घूमते रहते हैं
1: ब्रह्म मुहूर्त में जब,
0: तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो विवाह होता था, विवाह कार्य होता था, वो सबसे अच्छा होता था। और ब्रह्म मुहूर्त नहीं
1: हुआ,
0: दिन में फिर भी विवाह करिए वो भी अच्छा है, लेकिन 12 बजे रात के बाद तो भूत प्रेतों का टाइम आनंददायक नहीं रहता, स्थिति आनंददायक नहीं होती है उस समय। हाँ, नींद तोड़ करके लोग आते हैं और कुछ देर बैठते भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ये अरुचिकर होता है। और इस समय वेद मंत्र भी लोगों को कान में मधुर नहीं लगते हैं, तो इसलिए हम लोगों को इस विषय पर विचार करना चाहिए।
1: लीला जी, जैसे आजकल का ब्रह्म मुहूर्त जो है, जैसा कि कहा है, मैंने भी सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से फिर 5 बजे तक का, और उससे ऊपर भी जा सकते हैं, वो सारा ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो उसे अवधि में, उसी काल में जो है विवाह संपन्न होना चाहिए, जैसा कि आप कह रही हैं।
0: लेकिन प्राय सुबह हो ही जाती है, वो तो हो गई, लेकिन रात की जो थकान रहती है वो उस ब्रह्म मुहूर्त को जो है आनंदित नहीं कर पाती। तो इसलिए इस विषय पर हमें विचार करना चाहिए आज के समय में। अब देखिए, जब शिव का विवाह हो रहा था तो सभी दिवस में गए थे और आनंद मग्न थे, उत्सव हो रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी वहाँ पर विराजमान हैं और पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हो रहा है, और जितनी भी नागरिक स्त्रियाँ थीं, नगर की वधुएँ थीं, सब इन दोनों को देख देख करके क्या हो रहे थे, मगन हो रहे थे, विभोर हो रहे थे, आत्मविभोर हो रहे थे। कहते हैं कि जब गर्ग ऋषि जब बोलते हैं कि ये शिव जी को ले आइए, तो सब विभोर होकर के उनको देख रहे हैं। कहते हैं जहाँ घड़ी रखी थी वहीं गर्गाचार्य बैठे हुए थे, जैसे ही घड़ी समाप्त हुई वैसे ही ओम का उच्चारण किया। गर्गाचार्य ने पुण्य वचन कह करके अपने हाथ से पार्वती की अंजलि में अक्षत डाले और उन अक्षतों को उसने शिव जी के ऊपर डाला। वधू ने वर का क्या किया, पूजन किया। दही अक्षत तथा कुशोदक द्वारा उस प्रसन्नचित सुमुखी पार्वती ने शिव जी की पूजा की, जिनको प्राप्त करने के लिए पहले शिवा ने कठोर तप किया था। पूजा के अवसर पर उन शिव जी को देखते हुए अत्यंत सुशोभित हो रही थी। हे मुनि, मैंने गर्ग आदि ऋषियों से कहा, लोक व्यवहार में तत्पर शिव जी शिवा की पूजा करें। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी की पूजा तो शिवा ने कर दी, लेकिन शिव जी शिवा की पूजा करें। देखिए, उस समय भी ये चलन में था कि वर वधू की पूजा करे या वधू वर की पूजा करे, क्योंकि दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित होता है इससे। और अगर हम मन से, तन मन धन से एक दूसरे को सम्मान देते हैं, तभी सम्मान मिलेगा, नहीं तो सम्मान नहीं मिलेगा। आजकल तो एक छत के नीचे रह करके भी पति पत्नी में बातें नहीं होती हैं। कभी कभी तन मन मिलते हैं, आत्मा नहीं। तो तन मन और आत्मा, ये तीनों मिल जाए तभी विकास है, मुक्ति है। अब कहते हैं कि इस प्रकार वे दोनों पार्वती परमेश्वर लौकिक रूप से परस्पर पूजा करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। पार्वती और शिव जी एक दूसरे क्या कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। तीनों लोकों की शोभा से सुशोभित एक दूसरे को देखने वाले उन दोनों की लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने आरती उतारी। उसी प्रकार ब्राह्मणों की स्त्रियों और नागरिक स्त्रियों ने उनकी आरती की और शिव शिवा को देखती हुई बहुत प्रसन्न हुई। शिवांच संभुंश विलोकयंत्यो अपूर्वम मुदम ताहा सकला महोत्सवम, के अपूर्व मोद उन्हें होने लगा, आमोद प्रमोद में दोनों रम गए और इस तरह से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 48वां अध्याय अब शुरू हो रहा है। अभी विवाह जो है पूर्णतः संपन्न नहीं हुआ है, अभी दोनों एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, अब क्या कहते हैं। इसी समय गर्गाचार्य द्वारा प्रेरित हिमालय मेना के साथ कन्यादान करने के लिए तैयार हुए। अब कन्यादान भी हो रहा है, यानी कि जितनी विवाह परंपरा है
1: तभी से
0: वो उसी समय से है। पानी ग्रहण हो रहा है, द्वार पर पूजन हो रहा है वर का, फिर वधू वर वधू दोनों का पूजन एक दूसरे लोग कर रहे हैं। अब पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है, कन्यादान हो रहा है। तो अब कन्यादान में क्या है, कहते हैं सोने का घड़ा लेकर वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित भाग्यवती मेना हिमालय के बाईं ओर आकर खड़ी हो गई। माँ बाप करते हैं कन्यादान, और कन्यादान जो होता है वो थोड़ा सा विव्वल भाव विव्वल कर देने वाला क्षण होता है, क्योंकि माता पिता यही सोचते हैं कि चलो अब तो हम कन्या को दान दे दिए और कन्या पराई हो गई। कन्यादान के पहले पराई नहीं होती है, कन्यादान करने के बाद पराई होती है, क्योंकि कन्यादान को सबसे अधिक शुभ माना गया कि आपने कन्या का दान किया तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल है, कि क्योंकि कन्या बहुत प्रिय होती हैं हर किसी को, हर माँ बाप को। पर सबसे प्रिय वस्तु का दान जिसने कर दिया,
1: सबसे बड़ा दान,
0: ये सबसे बड़ा दान
1: दान कहलाता है।
0: तो अब कहते हैं कि हिमालय के पास मेना आकर के खड़ी हो गई। पाद्यादि भी ततः शैला प्रहिष्ट सपुरोहित तम वरम वर्यामास वस्त्र चंदन भूषणे ततो हिमाद्रिना प्रोक्ता द्विजा तिथ्या कीर्तने प्रयोगो भन्यताम तावद विस्मयम समय आगते। अब कहते हैं कि तब पुरोहित सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद्यादि तथा वस्त्र चंदन आभूषणों से उस वर का वरण किया। तब हिमालय ने ब्राह्मणों से तिथि आदि सहित समय के आने पर कन्यादान संकल्प पढ़ने के लिए कहा। यह सुनते ही उन ज्योतिषी ब्राह्मणों ने निश्चिंत होकर तिथि आदि का उच्चारण किया। शिव जी द्वारा हृदय से प्रेरित हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिव जी से हंसते हुए कहा, हे शिव जी, अपना गोत्र प्रवर कुल नाम वेद तथा शास्त्र कहिए, देर मत कीजिए। क्यों हंस रहे थे हिमालय, क्योंकि वो तो जानते थे कि शिव जी का ना कोई कुल है ना कोई गोत्र है, तो हंसते हुए कहते हैं कि स्वगोत्रम कथ्यताम शंभो प्रवरश्च कुलम तथा नाम वेदम तथा शाखाम माँ कार्षि समयात्ययम। अब ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य वचस्तस्य हिमाद्रे शंकर तदा सुमुखो विमुख सद्यो अपि असोच्य सोच्यताम गतः एवं विध सुरवरैः मुनिः मुनिभिः तदानीं गंधर्व यक्ष गण सिद्ध गणैस्तथैव दृष्टो निरुत्तर मुखो भगवान महेशो अकार्षि सदाय मथ तत्र स नारद तुम। अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हिमालय के इस वचन को सुनकर सुमुख शिव जी उदास हो गए, अशोचनीय होने पर भी चिंतित हो गए। इस प्रकार उस समय देवता मुनि सिद्ध गंधर्व तथा यक्ष गणों ने भगवान शिव जी को चुप हुए देखा तो तुमने हे नारद उनकी सहायता की। हे नारद, ब्रह्म तत्व को जानने वाले तुमने शिव जी से प्रेरित होकर उस समय वीणा बजाई, तब बुद्धिमान गिरिराज ने हठ के साथ तुम्हें रोका और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु देवता मुनि आदि ने भी रोका। शिव जी की इच्छा से जब तुम रुके नहीं तब हिमालय ने तुमसे कहा वीणा मत बजाओ। हे पंडित देवर्षि, जब तुम्हें हठ से उन्होंने रोका तब तुमने शिव जी का स्मरण कर उनसे कहा। अब क्या कहे नारद जी, सुनने लायक बात है। नारद जी ने कहा कि तुम ही मूढ़त्वम आपन्नो न जानासी च किंचन वाच्य महेश विषय अतीव असी तुम बहिर्मुख त्वया पृष्टो हरह साक्षात गोत्र कथनम प्रति समय स्मित ददंत्य उपहास करम वच अस्य गोत्रम कुलम नाम नैव जानन्ति पर्वत विष्णु ब्रह्मा देव अपि परेशाम का कथा स्मृता। अब नारद जी कहते हैं कि तुम महान मूर्ख हो जो उनके कुल और गोत्र को पूछ रहे हो, तुम कुछ भी नहीं जानते। शिव जी के बारे में तुम सर्वथा अनभिज्ञ हो। तुमने शिव जी से पूछा कि तुम्हारा क्या गोत्र है, इस समय तो यह पूछना उपहास करना है। इनके गोत्र कुल नाम को तो हे पर्वत ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं जानते, दूसरों की तो बात ही क्या है। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, उन्हीं शिव जी को आज तुम काली के तपोबल से देख रहे हो। तुम शिव जी को जो साक्षात देख रहे हो वो काली का तपोबल था इसलिए देख रहे हो, बहुत तो सुंदर देख नहीं पाते।
1: बहुत सुंदर विवाह का वर्णन आपने सुनाया लीना जी, हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: दोस्तों, अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं इस एपिसोड को आगे बढ़ाऊं, तो आप कृपया मुझे भी इजाज़त दीजिए और अगली बार पुनः अगले एपिसोड में हम यहीं पर मिलेंगे मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइफ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर नमस्कार, मैं हूं प्रांगा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
3: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
1: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं, उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
3: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो ना हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। माना शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अजर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अर्थात इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
1: बिल्कुल,
3: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते हैं
1: बिन बुलाए मेहमान।
3: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में, तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं उसके, मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में ले तो कहा जाता है के पी स्क्वायर एल एच बी पी अर्थात के फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, पी फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर पी फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, पी फॉर पीस, एल फॉर लव, एच फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर ब्लिस और लास्ट पी पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
1: खुद के मन में क्या है
3: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
1: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है
3: जी, बिल्कुल। उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो ऑफिस से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
1: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला रही
3: है। तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही, तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है तब भी हम स्टेबल रहें, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है। जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का अशांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
4: बिल्कुल, और ये जितनी भी सारी चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
5: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
4: जी।
5: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा, डेफिनेशन, वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है, और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है।

0: होता है और फिर उसको एक्सपर्ट जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे। अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
2: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात

0: इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, मना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ ये है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है, तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाए आइस फैक्ट्री, मुख में लगाए शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है, और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया, अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया, कहाँ खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे। उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी। और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा कि आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया? तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
0: जी
1: आपको बदलना पड़ेगा
0: जी,
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली हैं, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
0: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम्भस्सी, माना अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील मन व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है, वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने, अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए वीडियो मानव रेश 107.8 FM पर। नमस्कार।
2: ज्वाला, समंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
3: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
2: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
3: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
2: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
3: तो फिर एक वादा करो।
2: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
3: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
2: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी. ओम शांति.
1: आज बहुत सारी एवेन्यूज ओपन है विद द वे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बच्चे आज कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स को नहीं पता है, एंड दैट्स अनहेल्दी. इससे ज्यादा ये अच्छा है कि मैं आपको बता कर करूँ, इवन इफ यू नॉट रेडी फॉर इट. लेकिन जहां मुझे बार बार आपसे रेजिस्टेंस मिलेगा, आप नहीं बताएंगे, तो हाउ डिफिकल्ट फॉर मी इज इट टुडे टू लीव द हाउस वेयरिंग अ सलवार कमीज एंड जस्ट चेंज समवेयर एल्स. आपको क्या पता चलेगा? नथिंग. एंड मेजोरिटी चिल्ड्रन आर डूइंग दैट. हाउ डिफिकल्ट इज इट कि बोलो कि मैं स्कूल जा रही हूँ और चले कोई मूवी जा. चिल्ड्रन आर डूइंग दैट.
0: आई थिंक इट्स हैपनिंग एवरी डे.
1: कितनी बार आप मूवी में चले जाओ, आप शॉपिंग मॉल में चले जाओ, बच्चे हैं वहाँ पे. क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे?
0: यूनिफॉर्म्स में है तो साफ दिखता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं. डेफिनेटली.
1: तो जहाँ रेजिस्टेंस मिला, हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया. अब जब हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया, तब तो बहुत कुछ और हो सकता है जो पेरेंट को पता भी नहीं चलेगा. आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं. आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस. एनर्जी ब्लॉकेज थी. अगर हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया होता, तो वो उनको ये पता होता कि हम जो भी कर रहे हैं, वी कैन टेल आर पेरेंट्स. हर पेरेंट आजकल ये पूछता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे बच्चे हमारे को हर बात बता दें. दे वॉन्ट दैट. लेकिन उसके लिए फिर हर बात सुनना की पोटेंशियल तो होनी चाहिए ना. जैसे ही वो अपनी बात शेयर करेगा, बोलोगे यू रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, तो बच्चा बोलेगा ठीक है, देन आई एम नॉट टेलिंग यू. सो अगर मुझे ये पता होगा कि आप मेरी, आई कैन कम एंड टेल यू सबसे अजीब चीज एंड यू विल स्टिल एक्सेप्ट, तो मैं आपके साथ हर बात आकर शेयर करूंगी. लेकिन अगर मुझे पता है कि हर छोटी छोटी बात पर आप बोलोगे ये गलत है, तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कैसी है दुनिया आउटसाइड, तो मुझे पता है दुनिया कैसी है आउटसाइड. आई फाइंड माई वे एंड आई डू इट माई वे. तो ये जो बैरियर होता है, ये बहुत ज्यादा हमने ही क्रिएट किया होता है. क्योंकि बचपन से एक्चुअली एक बच्चे को आदत होती है अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर करने की. तो हमने बचपन में उनकी बातें सुनते गए अगर वो संस्कार इतना स्ट्रांग होता है कि वो बड़े होकर भी शेयर करेंगे. लेकिन वो शेयर करना कब बंद करते हैं? आई हैव टू आस्क माई सेल्फ.
0: यस, वेरी ट्रू.
1: क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं अब बच्चे मेरे से बात नहीं करते हैं, वो हर वाली जो पहले वाली करते हैं, अब बच्चे छुपाते हैं कुछ बातें. आई हैव टू आस्क माई सेल्फ. बहुत ईजी है बोलना कि दे आर रॉन्ग, अब वो छुपाते हैं बातें. क्यों? क्यों जरूरत पड़ी छुपाने की? क्योंकि उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला. बहुत सारे परिवारों में है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि उसका फाउंडेशन यही था, एक्सेप्टेंस. फिर जब वो शेयर करते हैं, तो फिर वो एक बात एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन शेयर करना ही बंद हो जाएगा, तो फिर तो बहुत ज्यादा दूरी आ जाएगी.
0: वंडरफुल. सो लेट बी एक्चुअली अगर हम
1: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपना डिसिप्लिनिंग कर रहे हैं, आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसको एक कंट्रोलर की तरह नहीं, एक गाइड की तरह. एक गाइड गाइड करता है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको साक्षी होना ही पड़ता है. तो औरों की स्क्रिप्ट लिखना बंद करके अपनी स्क्रिप्ट लिखें, और बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें. और अगर कोई हमें बुलाता है इंटरफेयर करने के लिए, यू नो पीपल अपने साथ शेयर करते हैं अपनी सारी बात, तो शेयर करें विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दैट. तो उससे क्या होगा, हम उनको जो वो पूछ रहे हैं वो तो बता देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगेन कंट्रोल नहीं करेंगे. नहीं, फिर आप मैंने जो बताया आप उस अनुसार करें. नहीं, लेट पीपल बी द वे दे वॉन्ट टू बी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेट बी शुड ऑलवेज बी इन माई माइंड कि जहाँ भी मैं किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, स्टॉप, लेट देम बी, दे विल फाइंड देयर वे. यू नो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि हर आत्मा अपनी रास्ता ढूंढ लेती है. हर आत्मा, हम ही सोचते हैं कि नहीं हम जल्दी से उसको उस रास्ते पर ले जाए, वो पॉसिबल नहीं होता. एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है एक्सेप्ट एवरीथिंग. जहाँ रेजिस्टेंस आ जाता है, अगेन इट्स वेरी वेल कनेक्टेड, लेकिन जहाँ रेजिस्टेंस आता है, तो जिसके भी प्रति या जिस सिचुएशन के प्रति मेरे अंदर रेजिस्टेंस होता है, तो मैं एक्चुअली उसको और शक्तिशाली बना देती हूँ. जैसे हम कहते हैं ना, वो और जिद्दी होते जाते हैं.
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल.
1: उनके अंदर वो आदत और कड़क होती जाती है, तो वो रेजिस्टेंस. और फिर यहाँ रेजिस्टेंस हम बहुत बार बाहर से एक्सेप्ट कर लेते हैं कहने के लिए, लेकिन अंदर रेजिस्टेंस है. तो ये रेजिस्टेंस सामने वाले को या सिचुएशन को और भी एम्पावर करता जाता है. तो वी नीड टू रिमूव दैट एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज. क्योंकि हर चीज जो हो रही है वो परफेक्ट
0: फॉर दैट टाइम, फॉर दैट मिनट, फॉर दैट यू नो पूरा पर्सपेक्टिव में वो सही है.
1: तो उस क्षण में उसको एक्सेप्ट करें, अगले क्षण में फिर उसको जिस तरह से चेंज करना है वो कर सकते हैं. तो बी क्वाइट, लेट गो, लेट बी, एक्सेप्ट एवरीथिंग. एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पास ऑन. हमें जो कुछ मिलता है उसको हम पकड़ कर रख लेते हैं. हमें जो कुछ मिला है वो मिला है पास ऑन करने के लिए. जिन लोगों को भी हम सारा दिन में मिलते हैं, शेयर, शेयर विद देम एवरीथिंग, अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स, अपनी क्वालिटीज, हर चीज शेयर करें.
0: क्वालिटीज वो जो हम सचमुच में समझ चुके हैं अपनी, जो कि हर दूसरी आत्मा में भी है.
1: अब तो क्वालिटीज तो बहुत सेकेंडरी बात हो जाती है. इवन नॉलेज एंड स्किल्स शेयर करने में हमें थोड़ा सा, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में चलते हैं, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि जो हमारे पास है अगर हम उसको पास ऑन नहीं करेंगे तो हमारे पास नया कहाँ से आएगा. हम बस उतने को ही लेकर पकड़ कर रख लेते हैं. जैसे एक नदी को हम देखते जो ऊपर से बहती हुई जाकर नीचे सागर में जाकर मिल जाती है. यू जस्ट हैव टू सी द जर्नी ऑफ द रिवर, क्योंकि माय लाइफ इज लाइक दैट जर्नी.
0: लेट इट फ्लो, एक्चुअली यू नो एवरीथिंग हैज टू फ्लो,
1: एवरीथिंग हैज टू फ्लो. अब वो रिवर क्या करता है, जब वो नीचे फ्लो कर रहा है, एक तो वो अपनी यात्रा अपने आप कर रहा है. इट फाइंड्स इट्स वे. बीच में कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो अपना रास्ता ढूंढता जाता है. वो जो नदी है, जो वो पानी की लहर जो फ्लो कर रही है, वो कितने सारे क्रीचर्स के लिए घर भी बन जाती है, कितने सारे उसके अंदर रहते हैं. लेकिन उस रिवर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस है वो क्या,
0: जीवन.
1: किसको?
0: जीवन दायिनी, मनुष्य को देना.
1: आपसे देख ली, सिर्फ मनुष्य को नहीं, उसके यात्रा में जो कुछ आता है
0: उसको जीवन देते.
1: एक फूल, एक पत्ता, एक टहली, एक जानवर, एक पशु, एक पक्षी, एंड ह्यूमन बीइंग. उसकी ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी यात्रा में एवरीथिंग, एवरी लिविंग बीइंग जो आता है, इट नरिशेस दैट लिविंग बीइंग. दैट्स द जर्नी ऑफ द रिवर.
0: वाओ, ब्यूटीफुल, दैट्स नाइस.
1: दैट्स माय जर्नी. मैं भी तो उसी तरह हूँ. आई एम फाइंडिंग माय वे. इट्स ओके, देयर आर ऑब्स्टिकल्स. आई एम फाइंडिंग माय वे. आई हैव गिवन शेल्टर टू अ फ्यू क्रिएचर्स, दैट्स आल्सो ओके. बट व्हाट इज माय मेन पर्पस इन लाइफ? बिकॉज What's my purpose in life? ये बहुत लोगों का question है. मेरे जीवन का लक्ष्य क्या? और वो समझते हैं कि कोई और उनको बता पाएगा कि what's my purpose in life? Purpose in life is कि you're flowing, stagnant water नहीं बन जाओ जो एक जगह रुक जाता है. Flow करो, और आपके flow होने में, आपके contact में जो भी आता है
0: उन्हें
1: nourish. और nourish करना अर्थात जो मेरे पास है वो सबको, क्योंकि जैसे ही उनके साथ शेयर किया उनको भी एम्पावरमेंट मिल जाते हैं. इमेजिन गोइंग टुमारो मॉर्निंग टू वर्क विद दिस फीलिंग, देन वर्क इज नो लॉन्गर वर्क. एक है मुझे काम करने जाना है, पैसे कमाना है, घर आना,
0: और वहाँ सफोकेट होना है, वहाँ पता नहीं क्या क्या होगा क्या नहीं होगा.
1: एक है मुझे कल जाना है अपने जीवन के पर्पस को पूरा करने के लिए, और वो ये है कि कल सारा दिन में जितने लोग मुझे मिलेंगे उनको नरिश करना,
0: and give them happiness, you know?
1: ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इमेजिन हाउ द डे विल पास, एंड देन आई एम शेयरिंग एंड गिविंग विदाउट एक्सपेक्टिंग. एट द एंड ऑफ द डे मुझे कैसा लगेगा? Do I have to think is satisfaction क्या होती है, contentment क्या होती है,
0: stress management क्या होती है? I think stress has gone somewhere up, you know. It's like in this whole conversation, I think मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी जरूर इस बात को अनुभव कर पा रहे होंगे कि इस पूरी बातचीत में स्ट्रेस कहीं दिखा ही नहीं, कहीं था ही.
1: स्ट्रेस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बात करनी थी. स्ट्रेस दिस इज मोर द सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल गो टू वर्क वेरी अनविलिंगली. आई हैव टू गो टू वर्क.
0: वर्क इज अ स्ट्रेस. इतनी बार ये कहा जाता है कि माय वर्क एरिया इज अ स्ट्रेस एरिया. द मोस्ट स्ट्रेसिंग पार्ट ऑफ माय लाइफ इज माय वर्क.
1: तो हमारे जीवन का लक्ष्य, हर एक के जीवन का लक्ष्य ये है, एनर्जी एक्सचेंज विद एवरीबॉडी आई मीट. अब मेरा ये लक्ष्य होना चाहिए कि ये एनर्जी एक्सचेंज बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए. अब उसमें कई लोग बोलते हैं मैं तो देता हूँ अच्छी वाली, लेकिन औरों से मुझे नेगेटिव मिलता है. स्टॉप, माय रोल इज ओनली टू.
0: वंडरफुल, यू नो वी कैन ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी वांट कि हमें मिलना चाहिए. वी कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस. ये उदाहरण एग्जांपल को अगर हम याद कर लें, आई एम लाइक अ रिवर,
1: you know, flow,
0: I am nourishing.
1: Flow, and just flow and pass on. क्योंकि आप flow करते करते कितनी चीजों को pass on करते जाएंगे, और वो अपने आप nourish होते जाएंगे.
0: You know, we, at times we stay.
1: रुका हुआ पानी, रुका हुआ पानी कैसे हो जाता है?
0: कई बार अपने साथ लोगों को कईयों को ले चलते हैं, दे कैन बी पार्ट ऑफ योर फ्लो,
1: तो वो आपकी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन हर एक को नरिश करें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको अगर हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारे जीवन बहुत सुंदर हो जाती है, क्योंकि हर एक को नरिश करते करते वो नरिशमेंट तो
0: हमसे होगी।
1: आई फील ब्यूटिफुल
0: एंड यू नो दैट रिवर इज हेल्दी रिवर व्हेन इट इज नरिशिंग एंड इट्स नॉट डाइंग, इट्स फ्लोइंग,
1: हीलिंग हो जाएगी उससे, कितनी हीलिंग। और थोड़ी देर के बाद साइलेंस में जब हम बैठते तो अपनी इस अंदर की आवाज को जरूर सुने। कई बार हमें कुछ कर्म करने से पहले ऐसे लगता है कि आई थिंक समथिंग इज टेलिंग मी दिस इज रॉन्ग, लेकिन मैं कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं उस आवाज़ को सुनती हूँ तो वो मुझे उस टेम्प्ररी चीज़ों से जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो कोई डिपेंडेंसी है, चाहे वो कोई अटैचमेंट है, चाहे वो कोई एडिक्शन है, वो मुझे उससे दूर लेकर जा रही है, मुझे अंदर पता होता है कि लेकिन उस आवाज़ को सुनना मतलब इस टेम्प्ररी जो हैप्पीनेस की जो हमने चीज़ें ढूंढी हुई हैं इनसे दूर जाना, हम मैं इसको आवाज़ को अनसुना कर देती हूँ और उस तरफ चले जाते हूँ। ये जो बार बार अपने अंदर की जो ये आवाज़ आती है, क्योंकि विजडम इज ऑल इनसाइड, तो ये जब अंदर की आवाज़ आती है और हम इसको इग्नोर करते रहते हैं तो ये भी एक दिन
0: बात करना बंद कर देते हैं।
1: तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि साइलेंस में बैठकर वही लाइब्रेरी वाला सीन वापस क्रिएट करके, एक्सटर्नल नॉइज को ख़त्म करके, जो भी अपने पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, जैसे हम दूसरों को पूछने जाते हैं वैसे अपने आप के लिए वो क्वेश्चन छोड़ दो। तुरंत आंसर नहीं एक्सपेक्ट करो, बट दैट शुड बी इन साइलेंस। साइलेंस में जाके क्वेश्चन वहाँ छोड़ दो, आंसर विल बी देयर बिकॉज द आंसर इज ऑलरेडी हियर। तो इसको हम कहते हैं लिसनिंग इनसाइड। कीप लिसनिंग टू द ट्यूटर इनसाइड इन ट्यूशन। अब हमें समझना चाहिए कि मेरी आंतरिक जो अंदर का विवेक है उसने वो आंसर दिया है वो मुझे, दैट्स गुड फॉर मी एंड आई शुड फॉलो दैट। तो बी क्वाइट, लेट गो, लेट बी, एक्सेप्ट एवरीथिंग, पास ऑन टू एवरीवन एज दे कम एंड लिसन इनसाइड। सिंपल सिंपल थिंग्स। सुनने में इमीडिएटली लग रहा होगा नहीं सिंपल, नहीं बहुत डिफिकल्ट, तो नहीं सिंपल सिंपल।
0: हाँ, और हर बार की तरह
1: स्टार्ट डूइंग दैट,
0: हर बार की तरह वो एक्सपेरिमेंटेशन करके अपने अनुभव के आधार पर फिर हम इसको देखें कि कहाँ तक हम वहाँ पहुँच पाते हैं। बट यस, अपना अनुभव मुझे फिर यही कह रहा है कि ये बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस स्ट्रेस से हम जिंदगी को भरा हुआ है वो कहीं उड़ जाएगा। इन दिनों हम बात कर रहे हैं एंगर की, वो गुस्सा जिसे हम जायज़ मान लेते थे, लगता था कि हमें कहीं ना कहीं शक्ति दे रहा है, अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारे काम नहीं निकलेंगे। लेकिन इस पूरी बातचीत में ये बात सामने आती है कि गुस्सा एक वो डिस्टर्बेंस है, एक वो इमोशन है जो कहीं ना कहीं हमें खुशी नहीं देता है, और उसका एटीट्यूड या वो फीलिंग जो उसको कम कर सकती है, उसको दूर कर सकती है, वो है पीस, शांति। लेकिन क्या है शांति? क्या जिसे हम शांति मानते हैं कहीं हम उससे बहुत इतने शांत तो नहीं हो जाएंगे कि हमारा एनर्जी लेवल ही कम हो जाएगा? ऐसी कई बातें अभी भी आपके मन में होंगी, मेरे पास भी ऐसे कई सवाल हैं। तो आज एक बार फिर ये सफ़र शुरू करते हैं, और हर बार की तरह इस सफ़र की हम सफ़र हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, पिछले दिनों हमने खूब गुस्से को खंगाला है, खूब अच्छी तरह से देखा है कि क्या क्या वो बातें हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो गुस्से को जनरेट करती हैं, और क्या कुछ हमारे अंदर होता है। लेकिन एक बार फिर हर बार की तरह एक रिकैप करते हैं और गुस्से के उन स्टेप्स किससे दोबारा गुजर लेते हैं जो जब शुरू होता है पूरा प्रोसेस और कहाँ तक पहुँचता है।
1: सबसे पहले तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि गुस्सा है क्या। गुस्सा एक इमोशनल डिस्टर्बेंस है हमारी कॉन्शियसनेस में, जो क्रिएट तब होता जब वो नहीं होता जो हमें चाहिए, या वो हो जाता जो हमें नहीं चाहिए, मतलब परिस्थितियाँ और लोग जब हमारे कंट्रोल से बाहर और हमारे कहे अनुसार नहीं चलते तो वो डिस्टर्बेंस हमारे अंदर क्रिएट होता। और जनरली क्योंकि हम परिस्थितियों और लोगों को उसका जिम्मेवार ठहरा देते हैं तो वी आर एबल टू जस्टिफाई आर एंगर कि वो गलत थे तो मुझे गुस्सा आया। तो आज दिन तक हमने अपने गुस्से को जस्टिफाई करते गए और इसीलिए परिवर्तन करने की आवश्यकता भी नहीं समझी कि ये सही है, दूसरे लोग बिगड़ जाएंगे अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे, और उनकी है ही गलती तो मेरा गुस्सा करना जायज है। बट वॉट वी डिडंट रियलाइज इज दैट एवरी टाइम वी आर इन्फ्लिक्टिंग सो मच ऑफ पेन ऑन आवरसेल्व्स। तो गुस्सा बार बार करना या कहीं एक बार भी करना सारे दिन में, तो ये अपना ही नुकसान है। दूसरे का कम लेकिन अपना बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि यहाँ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होते वो यहाँ पर भी उसका प्रभाव पड़ता और फिर पूरे शरीर पर भी पड़ता। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये रियलाइज़ करना कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैंने जनरेट किया और इसको मैं फिनिश कर सकती हूँ। तो उसको सबसे पहले उसको ओवरकम करने के लिए हम एक अवेयरनेस में चलते हैं कि जब थोड़ा सा भी अंदर चिड़चिड़ापन की फीलिंग आए, थोड़ा सा भी कहीं कुछ मेरे कहे अनुसार नहीं चल रहा, एंड आई कैन सी ओके आई एम नॉट लाइकिंग इट, यू नो मी नॉट लाइकिंग

0: इज माय फर्स्ट स्टेज ऑफ इरिटेशन. इरिटेशन थोड़ा सा अंदर आना शुरू हो गया तो उसी टाइम वो फर्स्ट स्टेज है अवेयरनेस, जागृता कि मेरे अंदर क्या क्रिएट हो रहा है. तो अपनी क्रिएशन की शुरुआत में ही उसकी अवेयरनेस होती है. और दूसरा एक्नॉलेज करना कि यस आई एम क्रिएटिंग दिस, आपकी वजह से नहीं ये हो रहा है, आप भले जो बोल रहे हैं लेकिन ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैं क्रिएट कर रही हूँ. और ये इसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे आ रहा है, उसके साथ युद्ध नहीं करना कि क्यों आ रहा है. आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट क्योंकि मुझे अब उसको फिनिश करना है. तो एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है और ये मेरी अपनी क्रिएशन है लेकिन ये मेरे अपने हाथ में है. तो अवेयरनेस क्रिएट की, एक्नॉलेज किया कि हाँ ये आ रहा है, एक्सेप्ट किया कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है और फिर उससे डिटैच हो जाए. अपने आप उस गुस्से के थॉट्स को देखना शुरू करते हैं,
1: वॉचिंग इट एंड सी इट.
0: तो व्हाट हैपेंस कि एक है कि जैसे ही हम अपनी कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है उसको वहां से हटा देते हैं और वहां से हटाकर उस थॉट्स को देखना शुरू करते हैं, तो जैसे ही हम वो एनर्जी को हटाते हैं वो जो इमोशन है वो फिनिश हो जाती है. अभी क्या है, हम उस इमोशन को एनर्जी देते हैं,
1: फ्यूल करते रहते हैं ना. वी ऑलवेज से दैट उसने हमारे एंगर को फ्यूल किया, बट आई थिंक इट्स आवर एनर्जी.
0: खुद जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर आप वो मस्ती कर रहे हो और आप भी उसके साथ मस्ती करो तो दोनों मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दूर से खड़े होकर उसको देखना शुरू कर दो तो वो कॉन्शियस हो जाता है और वो जो कर रहा था वो उसको छोड़ देता है. तो कॉन्शियसनेस की एनर्जी को उस थॉट से हटा के देखना शुरू करते हैं, वो इमोशन फिनिश हो जाती है. अभी हम क्या करते थे, उसको एनर्जी देते, क्यों बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अगली बार मैं ये देखूंगी. सो वी आर गिविंग एनर्जी टू दैट इमोशन, इट बिल्ड्स अप मोर एंड मोर एंड इट कैन स्टे विद मी टिल अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. तो उससे डिटैच हो जाएंगे एंड देन कम बैक टू माई स्टेज, द सेंटर, कि मैं कौन. ओम शांति, ये भी अगर याद रहे तो इट मीन्स मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ. तो आई कम बैक टू माई स्टेज दैट आई एम अ पीसफुल बींग. तो अवेयरनेस, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट के हाँ आ रहा है, फिर उससे डिटैच हो जाए और देन कम बैक टू माई ओरिजिनल स्टेज. तो कभी भी दिन में ये चिड़चिड़ापन, गुस्सा अगर आए तो लेट्स गो थ्रू दिस 4-5 स्टेजेस. और अगर उस टाइम नहीं कर पाते तो गुस्सा करने के बाद भी भले कर लीजिए कि आज मुझे गुस्सा आया था, क्या हुआ था. तो क्या होगा, एक दो बार गुस्सा करने के बाद करेंगे तो अगली बार
1: गुस्से के दौरान भी करेंगे.
0: वो अवेयरनेस, बेसिकली वो अवेयरनेस रहना बहुत इम्पोर्टेंट है. अवेयरनेस रहती है तो बाकी स्टेप्स करना बहुत इजी हो जाता है.
1: दैट्स वंडरफुल एक्चुअली सिस्टर शिवानी, बिकॉज अभी तक क्या होता आ रहा था कि हमें गुस्सा इतनी आदत में घुल चुका था कि हमें एहसास ही नहीं होता था कि हमने गुस्सा किया है. और अब क्योंकि जब पता है कि इतनी बात गुस्से की सुन चुके हैं, हम दूसरों को कहते थे मैं तो गुस्सा नहीं करता या मुझे तो गुस्सा नहीं आता, नो आई एम वेरी पीसफुल पर्सन, बट वो जो अंदर का चिड़चिड़ापन है, जो इंटरनलाइज एंगर जिसकी हमने पहले बात की थी, सो दिस ऑल स्टेज विद अस. सो अगेन इट मे नॉट गो कम्प्लीटली इन वन डे, बट द मोमेंट वी स्टार्ट वॉचिंग एंड गोइंग थ्रू दीज 5 स्टेप्स, I think gradually we should be able.
0: It is not going to go in one day. See, because why it will not go in one day? क्योंकि वो belief systems एक दिन में नहीं जाते. अगर belief सारे एक दिन में टूटते हैं कि गुस्से के बिना काम हो सकता है, गुस्से से कोई result, तो एक दिन में चला जाएगा. लेकिन वो एक एक belief को finish करने में थोड़ा सा time लगता है. लेकिन the journey is very simple. You know, don't give up on yourself. चाहे आपका कितना भी कड़क संस्कार हो क्रोध का, it can go. और वो पूरी तरह से जाएगा. क्योंकि अवेयरनेस चाहिएगी, यू नो अवेयरनेस चाहिए, बस गुस्सा आ रहा है एंड देन इट विल गो. एंड ये जस्टिफिकेशन खत्म करनी है कि दूसरों की वजह से. जब तक वो बिलीफ सिस्टम सबसे स्ट्रांग है कि औरों की वजह से गुस्सा, देन आई विल नॉट चेंज, देन आई विल कीप वेटिंग फॉर यू टू चेंज.
1: यस, यू नो वी हैव ऑलवेज बीन सेइंग इट्स जस्ट अ यू नो थॉट वे. सो अगेन द थॉट दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल, ये एक संकल्प, ये एक सोच कि मैं जिम्मेदार हूँ. इवन इफ उसके लिए अपने आप को दोषी ना ठहरा के कि ठीक है गुस्सा है भी तो कोई बात नहीं, होता ये कि हम इतने गिल्ट और रैंक, मतलब अपने आप से गुस्से में चले जाते हैं कि मैंने क्यों किया.
0: नुकसान हो जाता है, पहले गुस्सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, अब गिल्ट क्रिएट हो जाता है, फिर शेम हो जाती है एंड फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको छुपाने के लिए औरों से और गुस्सा कर यू नो मतलब पहले गुस्सा कर देंगे, अंदर लगेगा कि मुझे करना नहीं चाहिए था, फिर और जोर से बोलेंगे क्यों नहीं करना चाहिए था, मुझे तो करना चाहिए था आपने, यू नो. सो इट इज जस्ट बिकम्स अ वेरी cycle process and it just doesn't break anywhere.
1: And definitely, Sister Shivani, ये हम इस पे कितनी बातचीत कर चुके हैं और इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि it can change. लेकिन अब हम आते हैं कि हमने बात की थी इमोशन और फीलिंग के, यू नो, कि हर एक इमोशन, क्योंकि इमोशन कहीं ना कहीं हम अभी तक उसे अपनी ताकत मानते थे और हम कहते थे पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन, इमोशन एक्चुअली इज यू नो ऑल दैट डिस्टर्बेंस जो यहाँ क्रिएट होती है, तो उसका एंटीडोट या उसका जो एक फीलिंग है जो उसके एवज में कन्वर्ट होती है या आती है वो पीस जुड़ता है उसके साथ. लेकिन पीस से जुड़ी हुई भी बहुत भ्रांतियाँ हैं. बहुत सी ऐसे बिलीव्स कह सकते हैं हम या बहुत से ऐसे मान्यताएं कह सकते हैं कि पीस जो है वो बहुत एनर्जी लेस हो जाता है. तो एक्चुअली बहुत सी बातें हम जानेंगे कि क्या मान्यताएं जुड़ी हैं. मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या है, व्हाट इज रियली मेंट बाय शांति या पीस.
0: पीस इज अ वर्ड व्हिच वी यूज वेरी ऑफन बट रेयरली अंडरस्टूड. यू नो वी आर ऑल लुकिंग फॉर पीस. हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए, बट वी आर नॉट अवेयर कि व्हाट आर वी लुकिंग फॉर. तो क्या होगा, वो होगी भी तो पता नहीं चलेगा कि वो है. एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम लोग सब शांति अनुभव करते हैं सारा दिन में, लेकिन वो एक नेचुरल स्थिति है. लेकिन उसको हम तब रियलाइज नहीं कर पाते. हम रियलाइज किसको करते हैं, जब हम स्ट्रेस में या टेंशन में होते हैं, क्योंकि वो अननेचुरल है, यू नो. एंड एट दैट टाइम वी से आई वॉन्ट पीस. पीस इज बेसिकली अ स्टेट ऑफ द बींग. ये सिर्फ एक स्थिति है, मुझ आत्मा की एक स्थिति है, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि जो मेरी थॉट्स होंगे वो बहुत पॉजिटिव और फोकस्ड होंगे. अंदर एक साइलेंस होगा. एक है साइलेंस, एक है नॉइज, यू नो. तो पीस डजंट मीन कि कोई बोले नहीं, कुछ करे नहीं. बाहर से हो सकता है कि बहुत पीसफुल है, अंदर बहुत नॉइज है. और नॉइज क्या है, ये सब डिस्टर्बेंसेस. ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था. सो पीस इज बेसिकली साइलेंस ऑफ द माइंड. साइलेंस ऑफ द माइंड में ये मतलब नहीं है कि जीरो थॉट्स. सम पीपल थिंक पीस साइलेंस मतलब नो थॉट्स. नो, थॉट्स फोकस्ड. आपको जिस चीज के बारे में जिस क्षण सोचना है और जितना सोचना है और जिस रूप से सोचना है बस उतना ही करना है. हमें ये प्रोग्राम अभी करना है. वन थॉट, होगा नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो ना हो जाए.
1: तो ये पॉजिटिविटी के साथ, यू नो, जो फोकस जो थॉट्स की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रहे.
0: पॉजिटिव, दे विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो बहुत फास्ट चलते हैं एंड दे विल बी मोर टुवर्ड्स वरी, एंग्जाइटी, टेंशन, फियर. तो पॉजिटिव थॉट्स बहुत फोकस्ड होंगे और उसका रिजल्ट आपके एटीट्यूड में आएगा, आपके बिहेवियर में आएगा. अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल में भी हम देखें तो पीस इज एक्चुअली एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेना. अभी जो चीज जैसी है वैसी बिल्कुल ठीक है, बट विद द वर्किंग इसको आगे और ठीक किया जा सकता है. तो अभी क्या होगा, पीस शांति मेरे मन में तब होगी जब मैं एक्सेप्ट कर लूं कि आप अभी जो हैं जैसे हैं बिल्कुल ठीक. तो ये क्षण शांति, और फिर मैं आपको अगले क्षण के लिए आपके साथ ये डिस्कस भी कर सकती हूँ कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं. लेकिन अगर मेरे अंदर ये चल रहा है, नहीं इनको ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या पहना हुआ है, ये नहीं पहनना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, दिस इज पीसलेसनेस. आई एम नॉट एक्सेप्टिंग यू एज यू आर. तो पीस इज के सिचुएशन जैसी है एक्सेप्ट करना, लेकिन साथ में भविष्य के लिए उसको चेंज भी करना. पीस मतलब आप जो हैं जैसे हैं आपको स्वीकार करना, इवन अगर आपका ओपिनियन
1: आप सही हैं अभी जैसी हैं अपने परिपेक्ष में, अपने लिए या मेरे लिए भी सही है.
0: आप अपने परिपेक्ष में, अपने दृष्टिकोण से आप जिस सिचुएशन में अभी हैं आप बिल्कुल ठीक है
1: उसके लिए.
0: एब्सोल्युट
1: है ना. लेकिन मेरे अगर मेरे पास अगर कॉन्फ्लिक्ट है या मेरे विचार या मेरा परसेप्शन डिफरेंट है तो वो मेरा है, मैं एक्सेप्ट उसको भी करती हूँ. क्या यहाँ ये आ जाता है कि देन गिव इन हो गया?
0: नहीं, गिव इन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये भी एक्सेप्ट किया कि आप जो है वैसे भी ठीक है. मैंने ये भी पहले तो अब देखो औरों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को.
1: आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. पूरे कॉन्फिडेंस से अपने कह सकते हैं
0: ओम शांति.

मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासी और ढेर सारी बातों के साथ मैं यानी कि आरजे साक्षी आज आती हूँ आपके पास लेके अपने प्रोग्राम जिसमें बहुत सारी बातें करती हूँ और खूबसूरत गाने भी लेकर के आती हूँ। आज जो है संडे का दिन, संडे वाले दिन ना हमारा बस मन करता है कि बस कहीं या तो घूमने चले जाए या फिर घर पे है तो बस घर पर हम सोते रहे, आराम करते रहे, रेस्ट करते रहे। लेकिन घर पे इतने सारे काम होते हैं कि उन कामों को छोड़ के मतलब कहाँ ही जाएंगे हम। और फिर वो पेंडिंग काम करते करते करते करते घर की सफाई करते करते करते करते दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और फिर जब टाइम रात का आता है तो हमें लगता है अरे अगले दिन तो अब मंडे, फिर वही सेम ऑफिस का काम, ढेर सारी चीज़ें, वही पूरा हफ्ता कैसे कटेगा। और उसके बाद कहीं घूमने जाने का अगर प्लान हो भी तो फिर हम मन मार के कहते हैं कोई बात नहीं, खाना बाहर से मंगा लेते हैं और आज घर पर ही खा लेते हैं। और ऐसे में हर हफ्ते सेम लूप में आप बने रहते हैं, जिसकी वजह से पता है जब आप लूप चेंज नहीं कर पाते ना, जब आप इस चीज़ को छोड़ नहीं पाते हैं ना, जब आप बहुत ज़्यादा मोनोटनस आपकी लाइफ हो जाती है, आपको हर चीज़ ना बोरिंग लगने लगती है, आपका ध्यान किसी चीज़ पर नहीं रहता है क्योंकि आपकी लाइफ में ना हर चीज़ बहुत ही सिमिलर उस पर चल रही है, लूप पर चल रही है। हर दिन आपको उठना है, अपना खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, लंच बनाना है, उसके बाद आप शाम को घर आए, फिर वही रूटीन, रात में सोना, सेम सेम सेम सेम सेम। और उसके बाद जब हम थक जाते हैं तब हम छुट्टी जब लेते हैं तो देखिए हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें लगता है कि थकान जो है वो हो रही है, मन जो है वो क्योंकि थका हुआ है, क्योंकि एकदम से जब आप कहीं घूमने जाते हैं ना तब हम उस जगह को इतना ज़्यादा दे नहीं पाते हैं, हमें लगता है कि बस ये तो 4 दिन की क्या छुट्टी थी लेकिन मज़ा नहीं आया उतना क्योंकि अभी भी थकान हो ही रही है। आपके साथ भी अगर ऐसे ही हो रहा है ना तो अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको अपने जो रूटीन है ना इसे चेंज करने की ज़रूरत है, इसमें थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है। आप कहीं देखिए शाम के टाइम आप अपना काम जो है जब आप टाइम मैनेज कर पाएंगे ना, जैसे ही टाइम मैनेज होगा अपने आप आपके लिए वक्त निकलने लग जाएगा। जब वक्त निकले सारे काम छोड़ के निकल जाइए घूमने के लिए, निकल जाइए अपने आप को टाइम देने के लिए, निकल जाइए आप सेल्फ केयर रूटीन को फॉलो करने के लिए। जब आप ये सब करेंगे अपने लिए आपको अच्छा लगेगा, फोकस पार बढ़ेगा। और फिर जब आप कहीं घूमने का प्लान करेंगे ना तब आप वहाँ पर अपना 100% देके घूम के आएंगे। तो चलिए ये बहुत सारी आज बातें होने वाली हैं, संडे का दिन है, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं ज़रूर मैसेज कीजिए, नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मारे रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। आज है संडे का दिन और मेरे साथ देखिए आज ना देखिए कुछ खास चीज़ें जो हैं आपके लिए, बातें जो हैं वो लेकर के आई हूँ। और मेरे साथ ये प्रोग्राम ये जर्नी में आज आप हैं और हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बड़े खूबसूरत गाने आपके लिए लेकर के आई हूँ। अच्छा उससे पहले आपको बता दूँ, मार्केट में ना आसानी से मिलने वाले ये जो बनाना होते हैं ना, ये जो पीले येलो वाले बनाना है, इसकी तुलना में आपने अगर नोटिस किया हो लाल वाले जो हैं, एक लाल केले जो हैं वो भी आते हैं और इसमें पोषण का जो है वो खजाना माना जाता है। अब क्या सच में ऐसा है? क्योंकि लाल छिलके और हल्के जो गुलाबी जो गूदे वाले जो ये केले होते हैं स्वाद में मीठे होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी हैं। अब कई सारे लोगों का ये सवाल आता है कि साक्षी हम तो इतने सालों से यही पीले केले खा रहे हैं, येलो वाले बनाना जो है वो खा रहे हैं, अब ये लाल केले ये क्या है, क्या इसमें वही पोषक तत्व मिलेगा? ये आज तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मन जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, feel good, feel life.

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। केले की हम बात कर रहे हैं और ये जो लाल वाले केले आजकल मार्केट में हम देख पा रहे हैं ना, ये कितने ज़्यादा फायदेमंद है ये बताती हूँ, क्योंकि इनमें जो है लाल केले जो इसमें आयरन, पोटेशियम, फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और इतना ही नहीं, लाल केले जो है इम्यूनिटी बढ़ाने में, पाचन सुधारने में और खून की कमी को दूर करने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा, और दिल की सेहत को मजबूत रखने में भी काफ़ी मदद करते हैं। आमतौर पर मार्केट में दिखने वाले जो पीले केले हैं, अब देखिए इसके अलावा जो लाल केले भी सेहत के लिहाज से देखा जाए तो ये सुपर फूड माने जाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि भले ये दिखने में थोड़े से अलग हैं, थोड़े से महंगे हो सकते हैं आपके जेब के प्रति, लेकिन इनमें पोषक तत्व इन्हें जो है वो सामान्य केलों से कहीं ज़्यादा खास बनाता है। इनफैक्ट अगर दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो कुछ खास ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये केले जो हैं वो धीरे धीरे पूरे देश में अब लोकप्रिय हो रहे हैं। और आप देखिए कि हर जगह आपको मार्केट में लाल वाले केले जो हैं मिल जाएंगे। खास तौर पर आपको जो है, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं उनके बीच तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और अगर आप भी हेल्थ कॉन्शियस हैं तो ये आज आपके लिए ना मैं खास जानकारी लेकर के आई हूँ, क्योंकि ये जो लाल केले हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अब क्या है ये लाल केले, इनके बारे में थोड़ी और बातचीत करूंगी, लेकिन उससे पहले लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। मैं बात कर रही हूं लाल केलों के बारे में। अब ये जो लाल केले हैं ना, इसका छिलका रेड या पर्पल कलर का ये होता है, हल्का कलर का होता है, और अंदर का जो गूदा है वो हल्का पिंक या क्रीमी कलर का होगा। स्वाद की बात करें नॉर्मल केले की तुलना में ज़्यादा मीठा होता है, और बल्कि बेरी जैसी इसमें खुशबू जो है वो हल्की सी आपको लगेगी। आयुर्वेद और जो अगर हम जो पारंपरिक चिकित्सा की अगर बात करें, आयुर्वेद की हम बात करें, तो लाल केलों को ताकत बढ़ाने वाला फल माना जाता है। अब इससे बढ़ती है हमारी ताकत। अब ये जो लाल केले हैं, पोषक तत्वों का इसे पावर हाउस माना जाता है। अब क्यों माना जाता है वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन कुछ ही देर में फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। लाल केलों की मैं बात करी हूँ, लाल जो केले हैं ना, इसमें वाइटमिन सी, वाइटमिन B6, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, इन सभी से ये भरपूर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। और इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाते हैं जो टाइम से पहले बुढ़ापे और कई सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। तो सामान्य ये जो पीले केले की तुलना में लाल केले जो है ये ज़्यादा अच्छे हैं, इनमें आयरन और बीटा कैरेटिन जो है इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसके लिए ये जो लाल केले हैं ये मैं कहूँगी कि अच्छे हैं। हो सकता है कि आपको एग्जॉटिक जो फ्रूट्स हैं उसमें आपको ये मिले, थोड़े से महंगे मिले, लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। भाई कुछ लोग हैं, कोई जैसे होते हैं ना कि दवाई खाना उनको बेशक मंजूर है लेकिन वो ऐसी चीज़ें नहीं खा सकते। तो मैं कहूँगी

दवाई अगर आपकी इतनी महंगी, तो दवाई से अच्छा तो ये केले हैं, हिलाल केले, ये आपके लिए अच्छे हैं बहुत ही ज़्यादा। और लाल केले में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। और ये जो बदलता मौसम है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, ये जो इन्फेक्शन से बचाव के लिए भी जो लाल केले हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप इसे ज़रूर खाइए। अच्छा, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि अगर वो केले खाएंगे तो सिर्फ वज़न उनका बढ़ता रहेगा, बल्कि ऐसा नहीं है, एनर्जी भी। आपको अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, आप केला खाइए, ये बहुत ही अच्छा एक सुपर फूड है और इससे बेहतर और कुछ नहीं है। इनफैक्ट कई सारे जो लोग जिम जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि एक आपको मैं प्री जो वर्कआउट करने का जो डाइट है, जो लोग प्री वर्कआउट डाइट लेते हैं, उनके लिए केला, दूध और साथ में अगर आप दो रोटी ले लेते हैं, दो केले ले लीजिए और एक कप दूध ले लीजिए और ये आप खाइए। हालांकि सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, जब दूध रोटी जैसे खाते हैं, बस उसमें एक फ्लेवर के लिए आप उसमें केला डाल लीजिए और ये जो है आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा, कैलोरीज इसकी जो है वो भी आपको मिलेगी अच्छी, जिसको आप जो है वो बर्न आउट कर सकते हैं। और साथ ही ये एक बहुत अच्छा प्री वर्कआउट है। जो लोग पाउडर लेना प्रेफर करते हैं, उनके लिए मैं कहूँगी उस सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें लीजिए जो नेचुरली रूप से आपको मदद करे आपकी एनर्जी को बूस्ट करने में। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। अच्छा, मैं बात कर रही हूं एक बहुत ही खास, देखिए फ्रूट के बारे में हम बात कर रहे हैं और ये है रेड बनाना, यानी कि लाल केले की हम बात कर रहे हैं। इसके खजाने की जो कि इसके अंदर है ना, उसकी बात मैं कर रही हूं। और खजाना इसलिए कहूंगी क्योंकि इसमें इतने सारे पोषक तत्व हैं जो कि आपकी बॉडी में जाएंगे तो भाई आपके लिए तो भाई मजा ही आ जाएगा। इतने सारे आपको विटामिन्स मिल रहा है, मैग्नीशियम मिल रहा है, इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो पावर हाउस जो है ये तो है, सुपर फूड है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इम्यूनिटी बूस्टर भी है, केला जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इनफैक्ट पोटेशियम से भरपूर होने की वजह से लाल केले जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं और ये आर्टरीज को हेल्दी रखने में, हार्ट डिजीज के खतरे को कम करने में भी सहायक है। इनफैक्ट डाइट्री फाइबर से भरपूर होने की वजह से पाचन तंत्र को दुरुस्त ये रखते हैं और कॉन्स्टिपेशन से भी राहत दिलाते हैं। और फाइबर जो पेट को लंबे समय तक भरा रख कर आपको एक फुलनेस, आपको ऐसा लगे जैसे बस तृप्ति हो गई इसे खा के, तो ऐसा आपको एहसास होगा, आपका पेट भरा हुआ आपको महसूस होगा, जिससे आपका वजन कंट्रोल में रहेगा। और आयरन की भी अच्छी मात्रा जो है वो पाई जाती है, तो अनीमिया से जो लोग जूझ रहे हैं उनके लिए अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो लाल केला जो है, केले को आप सीधे फल के रूप में खा सकते हैं या इसकी स्मूदी, शेक, फ्रूट सैलड जो है इसको बना के आप शामिल कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे खाना इसे पसंद कर रहे हैं, तो आप जैसा पसंद करें वैसा इसे बना के खाइए। चाहे आप इसे दूध, रोटी और साथ ही केला जो लाल केला है वो डाल सके खा सकते हैं, या फिर चाहते हैं तो आप इसे जो है इसकी स्मूदी बना लीजिए, बनाना स्मूदी बना लीजिए, जैसा भी आप प्रेफर करें वैसा खाइए, लेकिन खाइए जरूर क्योंकि ये है सेहत का खजाना, सुपर फूड। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ देखिए बातें तो मैं लेकर के आ जाती हूँ आपके पास और खास जानकारी भी लेकर के आती हूँ। अच्छा आज ना हमारी बातें काफ़ी सारी चल रही है, संडे का आज दिन है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप फरीदाबाद से दूर जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे आप फरीदाबाद के इस कम्युनिटी रेडियो, हमारे फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो और रेडियो मैनव रचना के साथ आप जुड़ सकते हैं, तो बस आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपना एंड्रॉयड या मोबाइल फ़ोन लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाना है और सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मैनव रचना, जिसके बाद आपके पास सामने की ऐप आएगी, आपको करना है डाउनलोड। डाउनलोड करते ही ढेर सारे पॉडकास्ट, एक्सपर्ट की एडवाइस और बहुत ही कमाल के सुपर डुपर हिट गाने सुन सकते हैं वर्ल्ड में कभी भी कहीं से भी। तो बस देरी किस बात की, डाउनलोड कीजिए ऐप और सुनिए और जुड़े रहिए रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम के साथ। मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, प्रोग्राम चल रहा है रिचार्ज मॉर्निंग। फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। इसी के साथ देखिए मैं अब बात करती हूँ, एक खास चीज़ आपको बताती हूँ। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि आजकल बच्चे जो हैं बाहर से ज़्यादा, जितना बच्चे बाहर खेल कूद करते थे जैसे पहले होता था, अब बच्चे घर पर रहते हैं। हमेशा से बच्चों के लिए इंडोर से ज्यादा आउटडोर गेम्स खेलने पर हमेशा से जोर दिया जाता है। डॉक्टर्स और कई सारे जो देखिए रिसर्चर्स हैं, ये दावा वो करते हैं कि दिमाग जो है वो तेजी से जो है वो विकसित होता है, और इंडोर गेम्स अगर खेलते हैं तो वो नहीं होता, लेकिन अगर आउटडोर खेलते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से विकसित होता है। और मैं आपको बता दूं, देखिए कोविड के बाद से बच्चे जो है बाहर निकलना बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं खेलते हैं। पहले होता था बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर खेलते थे, पहले के टाइम में यही होता था, मोबाइल फ़ोन का इतना इस्तेमाल नहीं होता था। और मोबाइल फ़ोन तो ये बहुत बाद में ये चीज़ें जो है अब इतनी ज़्यादा बच्चों को अब दी जाती हैं, और इसी पर पढ़ाई है, गेम्स इसी पर, सब कुछ इसी पर, घर में रहना है। और ऐसे में बच्चा अंदर ही अंदर जो डरा सहमा जो है वो रहता है, बाहर नहीं निकलता है, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी होती है। अब ऐसे में देखिए मैं आपको बता दूं कि जितना वो स्पोर्ट बाहर निकल के खेल रहे हैं या बच्चों की मेंटल हेल्थ पे उतना अच्छा असर पड़ता है। जितना भी साहसी खेल है जो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, क्रिकेट है या फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, जितना वो फिजिकली जितना बच्चों की बॉडी एक्टिव रहेगी उतना ज़्यादा बच्चे जो हैं खुश भी रहेंगे, और उनका जो स्वास्थ्य है चाहे वो फिजिकल हम हेल्थ की बात करें, मेंटल हेल्थ की बात करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हम क्या करते हैं ना, हम बच्चों को बोलते हैं कि देखिए आपको जो है पढ़ाई करनी है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। देखिए इस पढ़ाई के चक्कर में, सर्टिफिकेट की रेस में ऐसा ना हो जाए कि आपका बच्चा जो है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाए, बाहर ना जाए, बहुत ज़्यादा डरा सहमा रहा है, या फिर उसकी कॉन्फिडेंस जो है उसमें कमी आए। तो अगर आप भी नहीं चाहते हैं ना, तो बच्चों को मैं ज़रूर कहूँगी कि आप बाहर जाके खेलें, बच्चों को इतना मोबाइल फ़ोन मत दीजिए। कई बार ये भी देखा गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं देखिए जो खाना नहीं खा रहे हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं मोबाइल दे देते हैं। अच्छा, पेरेंट्स ना ये भी बहुत बार देखा गया है कि अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो जो पेरेंट्स अपने कामों में लगे हुए हैं, ऑफिस का काम है, और बच्चा जो है पहले वो देखता है मम्मी की तरफ, फिर देखता है पापा की तरफ, देखता है कि कोई उसको अटेंशन नहीं दे रहा, या तो वो अटेंशन सीख करने की कोशिश करता है अपने आप को हार्म पहुंचा के, या फिर वो धीरे धीरे पेरेंट्स से दूर होने लगता है, अपने आप को कमरे में बंद करने लगता है और अपने आप में रहता है, जिसकी वजह से एक अलग पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। और ऐसे में बच्चा किसी से बात करना नहीं चाहता क्योंकि बच्चा कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। तो देखिए ये जो फैसला है अब पेरेंट्स का है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए सही है बच्चों के लिए, तो ज़रा इस पर गौर फरमाए, इस पर ध्यान दे। बच्चा जो क्या अगर मोबाइल फ़ोन में जो देख रहा है, अगर वो बच्चा छोटा है क्या देख रहा है और क्या लिमिट जो है वो होनी चाहिए वो आप तय कर सकते हैं, तो वो आप कीजिए। साथ ही बहुत ज़्यादा कार्टून भी बच्चे के लिए सही नहीं है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, देखिए बहुत ही कम कार्टून ऐसे होते हैं जो कि अवेयर कर रहे होते हैं बच्चों किसी चीज़ के लिए, नहीं तो ज़्यादातर शैतानी की ओर जो है उनको बढ़ावा देते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि थोड़े कम मात्रा में, और कोशिश ये करें कि ज़्यादातर बच्चा जो है बाहर खेलकूद करे। बाहर खेलकूद करके बच्चा जब आएगा थक जाएगा और आके खाना खा के सो जाएगा या अपनी पढ़ाई करेगा, दिमाग भी जो है ज़्यादा फोकस जो है हो पाता है। बच्चा जो है वो अगर मोबाइल फ़ोन में रहेगा तो धीरे धीरे आदत ऐसी बना लेगा कि वो किसी से बात करना, सोशलाइज करना नहीं चाहेगा। तो ध्यान देना अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, ये फैसला आपका है, तो ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। चलिए इसी के साथ अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, होंगी बहुत सारी बातें, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। अच्छा, एक सवाल हमारे पास आया है और ये सवाल है हमारी एक लिसनर की ओर से, जिनका नाम है नताशा। नताशा जी ने लिखा है कि बच्चों के साथ कैसे जो है पेरेंटिंग टिप्स जो है आप दीजिए कि कैसे हमें जो है रहना चाहिए। अगर बच्चे को ज़्यादा डांट दें तो बच्चा गुस्सा हो जाता है, और अगर ना डांटे तो डिसिप्लिन कैसे आएगा। देखिए, ये बहुत ही बड़ा सवाल है ये बात, बिल्कुल, क्योंकि हमने देखिए बचपन से ना अपने मम्मी पापा की ना हमने हमेशा डांट सही है, हमें हमेशा डांटा गया है कि ये करना है ये नहीं करना, हमेशा डांट। लेकिन अब जो बच्चे हैं, अगर आप इन्हें डांट देते हैं तो बच्चा सहम जाता है। अब पेरेंटिंग जो है वो अलग तरीके से की जाती है। हम सभी ने बचपन में कभी ना कभी अपने माता पिता से डांट जरूर खाई होगी। बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए अक्सर कई सारे पेरेंट्स उनके साथ सख्ती से पेश आते हैं। दरअसल कई सारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो उनका ऐसा मानना है कि बच्चों के सही परवरिश के लिए, उन्हें जिम्मेदार बनाने के लिए सख्त, यानी कि उनके लिए एक नियमित जो चीज़ें हैं, रूल्स जो हैं होने चाहिए, अनुशासन जो है वो होना चाहिए। हालांकि ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप सख्ती बरतते हैं, अनुशासन लेकर के आते हैं, तो हर बात पर जब आप डांटने लगते हैं तो बच्चे की मेंटल हेल्थ पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से ही दूर होने लगता है। और ऐसे में देखिए, आपको बच्चे पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पेरेंट्स जो है, देखिए पेरेंटिंग स्टाइल जो है पूरी तरह से इस पर ही निर्भर करता है कि बच्चे की मेंटल हेल्थ पर कितना असर जो है वो पड़ेगा। तो भरोसे की अगर कमी होती है तो उसमें भी बच्चा जो है, अगर आप बच्चे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा डरा सहमा हमेशा रहेगा, हर चीज़ को करने में वो अंडर कॉन्फिडेंट रहेगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स ही अगर उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो वो हर चीज़ में अंडर कॉन्फिडेंट रहेगा। तो इसीलिए भरोसे की कमी नहीं होनी चाहिए, उन पर भरोसा दिखाएं ताकि वो कॉन्फिडेंटली अपना काम कर सके। साथ ही साथ देखिए, कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो चीज़ें वो अच्छे से बिना डरे कर सकते हैं। और नई चीज़ें अपनाने से वो नहीं डरेंगे। कई सारे बच्चे जो हैं वो नई चीज़ इसलिए नहीं अपनाते हैं, एक्सप्लोर नहीं करते, उन्हें लगता है कि पेरेंट्स डांटेंगे और अगर पापा या मम्मी को पता चलेगा तो वो हमें डांटेंगे और हमें हमारे साथ सख्ती से पेश आएंगे। कई सारे बच्चे जो हैं इस वजह से भी ट्रॉमा में चले जाते हैं कि अगर पढ़ाई की में अगर उनके कम मार्क्स आ गए, अगर ये बात उन्हें पेरेंट्स को पता चल गई तो हमें आज डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, जिसकी वजह से बच्चा अंदर ही अंदर घुटता रहता है और गलत स्टेप लेने के लिए वो जो है आतुर हो जाता है। इसीलिए ये जो आपको तरीका है अपनी पेरेंटिंग का, उसे चेंज करना होगा। उनकी तरह आप दोस्त बनकर आप उनसे बात करें, उनसे चीज़ें जो है वो जान सकते हैं, और जब आप ऐसे करेंगे बच्चा अपने आप बोलना शुरू करेगा। और देखेंगे आप, जब आप उन्हें मोटिवेट करेंगे ना, जब आप उनकी जो खामियां हैं ना उनको एक्सेप्ट करके उनको खुद भी कहेंगे कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, देखिएगा वो बहुत चेंज आएगा और पॉजिटिव चेंज आएगा। हो सकता है अगली बार कि वो पूरी मेहनत से, क्योंकि उनके पेरेंट्स का भरोसा उनके साथ है, पूरी मेहनत से वो अपना जो है 100% दे और उनके मार्क्स अच्छे आएँ। और ऐसा भी नहीं कि अगर मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो आप उन्हें सपोर्ट ना करें। देखिए, कभी कभी होता है ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, और अगर आपका बच्चा जो है देखिए पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो हो सकता है कोई ना कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर, देखिए हर किसी के अंदर एक टैलेंट होता है, हो सकता है कि उनका जो मेन जो दिमाग है वो किसी स्पोर्ट में है, हो सकता है कोई और उनके अंदर खूबी है। तो पढ़ाई करनी ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको फर्स्ट ही आना है। देखिए, पढ़ाई ज़रूरी है, सीख लेनी ज़रूरी है, और साथ ही ज़रूरी है पेरेंट्स के साथ रहना। पेरेंट्स को जो है ये इंश्योर करना होगा कि उनका बच्चा जो है किसी प्रॉब्लम से ग्रसित ना हो, तो इस पर ध्यान दीजिए। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मजा आइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत, कल होगी आपसे मुलाकात होंगी बहुत सारी बातें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मैंने रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइव।

0: योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम।
1: जी नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग सुन रहे रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम, फील गुड फील लाइव। शो को अपने हम स्टार्ट करेंगे ये बताते हुए कि भैया ये एक एजुकेशनल शो है आपके लिए। आपको हर एक एपिसोड में एक केस स्टडी जानने को मिलती है। इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी कैसे स्टार्ट हुई, इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कंपनी के फाउंडर्स कौन हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, तमाम चीज़ें आपको बताते हैं। वी मेक श्योर कि आप जब ये शो जब तक ये शो खत्म हो आप एक कंपनी को एक इंडस्ट्री को अच्छे से काफ़ी करीब से समझ चुके हो। आज वापस से सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करने वाले हैं, बट ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो अभी मेरा सलाम कबूल करिए, लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक। आई होप आपको गाने पसंद आए। नाउ दिस नोट अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। मैं आरजे सागर, शो का नाम है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। दोस्तों आज के शो में जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसकी इंडस्ट्री को समझते हैं। सो दिस कंपनी डील्स इन फैशन टेक। फैशन टेक फैशन और टेक्नोलॉजी को मिलाकर बनी हुई एक इंडस्ट्री है, एक बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो करता हुआ सेक्टर। और इंडिया में हमें जो देखने को मिलता है फैशन और टेक्नोलॉजी का ब्लेंड, उसने लिटरली मतलब इस इंडस्ट्री को एक नई शेप दी है, एक नई उड़ान दी है, एक नई ग्रोथ दी है, जहां पर आपको बहुत सारे इनोवेटिव डिजाइन देखने को मिलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलिंग, इवन कस्टमर एक्सपीरियंस, सब कुछ काफी एनहेंस हुआ है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, IoT, ब्लॉकचेन, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। तो टेक ये जो है, जब से इस फैशन इंडस्ट्री में आया है तब से इसमें बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली हैं। तो आज हम इस मार्केट को समझेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम आज की कंपनी को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं फैशन टेक मार्केट इंडिया में क्या है। देखिए, आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, डिजिटल मार्केट प्लेसेस देखने को मिलती हैं, तो ये सब कुछ हो पाता है इस एक इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद से, जहां पर डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक, सप्लाई चेन से लेकर मैनेजमेंट तक, रिटेल से लेकर कस्टमर एंगेजमेंट तक, सब कुछ शामिल होता है। स्मार्ट टेक्सटाइल्स, वियरेबल टेक्नोलॉजी लाइक स्मार्ट क्लोदिंग, जिसमें हेल्थ को मॉनिटर किया जाता है। अब फैशन के साथ हमारी हेल्थ को मॉनिटर किया जा रहा है, हमारे हार्ट रेट को मॉनिटर किया जा रहा है, इट्स अ ग्रेट थिंग। AR/VR सॉल्यूशंस, जिसकी वजह से आप वर्चुअली ट्राई कर सकते हो कौन सा कपड़ा आपके ऊपर सूट करेगा और कौन सा नहीं करेगा, जो आपके ओवरऑल शॉपिंग एक्सपीरियंस को काफी बेहतर बनाता है। AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स, जो आपके हिसाब के स्टाइल आपको दिखाते हैं, आपके हिसाब से आपको फैशन जो है वो रेकमेंड करते हैं, और जैसी भी आपकी डिमांड होती है उस तरीके से आपके लिए कुछ क्रिएट करके देते हैं। देन इसके बाद सस्टेनेबल फैशन इनोवेशन, जो टेक्नोलॉजी की वजह से हो पा रहा है, जिसमें हम वेस्ट को रिड्यूस करते हैं और प्रमोट करते हैं एथिकल प्रैक्टिसेस को। सो दिस इज फैशन टेक इंडस्ट्री इन इंडिया। अब ये मैंने आपको मेजर पिलर्स बताए कि किन किन वर्टिकल्स के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद हम ये समझेंगे कि फैशन टेक मार्केट इवॉल्व कैसे हो रही है इंडिया में। बट इन द मीन टाइम, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

उम्मीद है कि आपको गाने पसंद आए। नाउ विद दिस नोट अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। मैं हूं आरजे सागर, शो का नाम है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और दोस्तों, आज की जो इंडस्ट्री है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सब कुछ आपको समझाने की यहां पर कोशिश की जाएगी। इंडस्ट्री का नाम है फैशन टेक। फैशन और टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक शब्द बना है फैशन टेक, जिसकी वजह से हमारी फैशन इंडस्ट्री इंडिया में बहुत रैपिडली इवॉल्व हुई है और अभी भी होती जा रही है। और देखिए, फैशन बहुत पहले से है, लिटरली ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है हमारे बीच में हमेशा से। तो अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, फैशन चेंज होगा, लेकिन फैशन इस टर्म को हम सीधा लेकर जाएंगे बैक इन 100 years ago, 200 years ago, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। आप जहां तक जा सकते हैं वहां तक इसको लेकर जाइए, क्योंकि उस टाइम पर भी जब कपड़े नहीं थे हमारे पास, टेक्सटाइल नहीं हुआ करता था, लोग बनाया करते थे, अपने हिसाब से कपड़े बनाते थे, अपने हिसाब से ज्वेलरी बनाते थे। सो फैशन वॉज स्टिल देयर। अब यहां पर समझेंगे कि इंडिया में फैशन टेक कैसे इवॉल्व हुई है। सबसे पहला पॉइंट आता है शिफ्ट टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। पैंडेमिक के बाद से बहुत कुछ बदला है, हमारा ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा होता गया है और लोग भी ऑनलाइन प्रेफर करने लगे हैं, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो हुई है। क्योंकि फैशन के साथ एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं टेक, दैट मींस टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा है पैंडेमिक के बाद, जो लोगों का टेस्ट चेंज हुआ है ऑनलाइन की तरफ, जो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। देन इसके बाद इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ी है टेक्नोलॉजी में, लोग अब इन्वेस्ट करने लगे हैं। वर्चुअल ट्राई ऑन्स, AI बेस्ड पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन एंड चैटबॉट बेस्ड कस्टमर सर्विस, ये सब चीजें अब कंपनीज ऑफर करने लगी हैं, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री तेजी से ग्रो हो रही है। राइज इन D2C ब्रांड्स। देखिए, बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं फैशन के जो आपको D2C मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर, सीधा कस्टमर तक जो उस सामान को डिलीवर करते हैं आपको दिखाते हैं, आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, नो मिडलमैन रिक्वायर्ड। सिंपली वहां पर जिसने लिस्ट किया हुआ है प्रोडक्ट को, उसके थ्रू आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और प्रोडक्ट आपके घर पे। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है। नाउ दिस इज द न्यू फैशन, मानिए इस बात को। लोग अब पूछने लगे हैं, भैया इको फ्रेंडली है क्या आपका जो कपड़ा है, क्या आप उसमें क्या किस तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, आप जिस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं आपने इस फैब्रिक को, इस टेक्सटाइल को, या जिस तरीके से आप ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कहीं आप मदर नेचर को नुकसान तो नहीं पहुंचाते हैं। या सिमिलर टू कार्स, जैसे कार्स में अब सेफ्टी पूछी जाने लगी है, वो एक नया फैशन बन चुका है। सो हाँ, फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। एंड देन इसके बाद अगला पॉइंट आता है जो सबसे क्रूशियल है, दैट इज पर्सनलाइज्ड कस्टमर इंगेजमेंट। देखिए, आपको पर्सनलाइज करके दिखाया जाएगा कपड़ा। मानकर चलिए आपने व्हाइट टी शर्ट देखी जो आपको थोड़ी रेट्रो वाइब देगी, तो आपको रेट्रो वाइब की ही जीन्स दिखाई जाएगी, वैसे ही शूज दिखाई जाएंगे, और जो एल्गोरिदम है वो आपके टेस्ट को समझेगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप उस प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो आपको वैसे ही वो इंगेज करके रखेगा, क्योंकि वैसे से ही ऑप्शन आपको दिखाए जाएंगे। दैट्स हाउ ये जो इंडस्ट्री है वो इवॉल्व होती जा रही है और हमेशा से होती आई है, आगे भी होती रहेगी। बट ये आप समझ सकते हैं कि मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है। नाउ विद दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक। उम्मीद कर रहा हूं जितना अभी तक आपको समझाया गया है उतना आप समझ पाए हैं फैशन टेक को। आगे बात करेंगे फैशन टेक मार्केट के हाइलाइट्स के बारे में, बट फिलहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं हूं आरजे सागर, शो का नाम है आत्मनिर्भर भारत, पेश है यहां पर ये गाने आपके लिए, फील गुड फील लाइव।

फील गुड फील लाइव। दोस्तों मेरा नाम सागर शोकनाम, आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की, और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 FM। तो आज की जो कंपनी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसकी केस स्टडी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, वो जिस इंडस्ट्री में डील करती है उस इंडस्ट्री का नाम है फैशन टेक। आइए थोड़े सा इसके हाईलाइट समझते हैं। पहला आता है इंटीग्रेशन ऑफ AI एंड ML, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये लिटरली मतलब बहुत तेजी से यहाँ पर जो है हमें देखने को मिला है कि हर एक कंपनी जो है इन टूल्स का सहारा ले रही है, जिसकी वजह से इनकी डिमांड बढ़ी है, नए नए ट्रेंड्स आते जा रहे हैं, कस्टमर बिहेवियर को प्रिडिक्ट किया जा रहा है, सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं फैशन टेक मार्केट जो इंडिया में डील करती है उसका वन ऑफ द मेजर हाईलाइट्स है इंटीग्रेशन ऑफ AI एंड ML। देन उसके बाद है AR VR फॉर वर्चुअल शॉपिंग एक्सपीरियंस। मानकर चलिए आपको कोई कपड़ा ऑर्डर करना है, कोई गूगल्स आपको ऑर्डर करनी है, वॉच आपको ऑर्डर करनी है, आप उसको पहले अपने घर पर चेक कर सकते हैं। आपके पास AR VR का ऑप्शन है अच्छा खासा। बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं इसमें जो लिटरली मतलब चीजों को टॉप नॉच रखना चाहते हैं और अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी समझते हैं। वहां पर आप घर से चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर वो कलर सूट करेगा, और वो कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है उतना एक्यूरेसी के साथ आपको रिजल्ट्स दे पाए। उसके बाद थर्ड मेजर हाईलाइट है 3D प्रिंटिंग एंड डिजिटल फैशन। ऐसे भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो आपको मौका देते हैं एक्सप्लोर करने का 3D प्रिंटिंग, जहां पर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड एक्सेसरीज, कस्टमाइज्ड अपेरल्स जो है वो बनवा सकते हैं। आप कमांड देंगे, आपको लगेगा यू आर द ओनर जिसने ये सब कुछ सेलेक्ट किया है। और एक नया बिजनेस भी स्टार्ट हुआ है इसमें, POD प्रिंट ऑन डिमांड। वह लिटरली लोग इन टूल्स की हेल्प से एक साइड बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और अच्छा खासा पैसा कमा पा रहे हैं। सो या दिस इज वन ऑफ द मेजर हाईलाइट्स इन फैशन टेक मार्केट इन इंडिया, 3D प्रिंटिंग एंड डिजिटल सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जो मेजर हाईलाइट है, दैट इज स्मार्ट वेयरेबल्स एंड टेक्सटाइल्स। देखिए मेजर हाईलाइट है, लेकिन आप सब लोग फेमिलियर हैं इस एक टर्म से, स्मार्ट वेयरेबल्स से, कि किस तरीके से हम जो है स्मार्ट बैंड्स पहनते हैं, स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, स्मार्ट क्लोथिंग आ गई है जो हमारी ओवरऑल हेल्थ को मेजर भी करती है और साथ साथ हमें काफी ट्रेंडिंग लुक भी देती है। सो या वन ऑफ द मेजर हाईलाइट्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत कुछ बदला है। देन उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है ये सस्टेनेबिलिटी, एंड ये चीज अगेन हर एक सेगमेंट में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी की वजह से लिटरली मतलब बहुत कुछ चेंज हुआ है, लोग अब जागरूक हो गए हैं। चाहे आप बात करें Tier 1 की, चाहे आप बात करें Tier 2 की, चाहे आप बात करें Tier 3 की, किसी भी पर्टिकुलर आप क्राइटेरिया को यहाँ पर पिक करें, आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात की जाने लगी है। क्योंकि सिटीजन्स को अभी समझ आ गया है कि मदर नेचर को बचाना है हमें, और ये सब कुछ हमें करना होगा बाय जस्ट सिंपली शिफ्टिंग आवर चॉइसेस। तो इसलिए शायद कंपनीज भी अभी से एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर बहुत फोकस कर रही है। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पाए हैं कि क्या क्या हाईलाइट्स है फैशन टेक मार्केट के इंडिया में। अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे ड्राइविंग फैक्टर्स की, कि कौन कौन से वो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जो इंडिया में इस एक इंडस्ट्री को ड्राइव करते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर ये इंडस्ट्री ग्रो हो पा रही है, मतलब टूल्स की बात करेंगे। पर फिलहाल मजा लीजिए इन गानों का, क्योंकि अभी वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइव।

फील गुड फील लाइव। नाउ दिस नोट अपने शो को आगे लेकर चलेंगे दोस्तों। मैं आरजे सागर, शो का नाम है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और आज यहां पर हम जिस कंपनी की स्टडी आपके लिए लेकर आए हैं, द डील्स इन फैशन टेक इंडस्ट्री, और यहां पर हम फैशन टेक को अच्छे से समझ रहे हैं फिलहाल। अब हम बात करने वाले हैं जहां पर ना यहां पर ड्राइविंग फैक्टर्स की। पहला ड्राइविंग फैक्टर, ग्रोइंग ई कॉमर्स पेनिट्रेशन। देखिए, जितना ज्यादा ई कॉमर्स बढ़ता जा रहा है, जितनी ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, उतनी ही ज्यादा फैशन टेक मार्केट ग्रो होती जा रही है। रीजन, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड हैं। अब जब लोग अपने फोन को इतना यूज कर रहे हैं, सब कुछ फोन पे दिख जाता है, फोन पर मल्टीपल ऑप्शंस दिख जाते हैं, इतने सारे पोर्टल्स हैं, इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, और सब आपको सारी फैसिलिटीज फोन पर ही प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, उस एक पर्टिकुलर ग्रोथ को फ्यूल मिलेगा। सेकेंड फैक्टर, राइजिंग इंटरनेट एंड स्मार्टफोन यूसेज। अब काफी अफोर्डेबल प्राइस पर आपको स्मार्टफोन मिल जाता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी गांव गांव तक पहुंच गई है। तो इन सब चीजों की वजह से अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है, स्मार्टफोन मिल गया है, ऑनलाइन फैशन शॉपिंग जो है वो एक मेन स्ट्रीम चीज बन गई है। स्पेशली अगर हम बात करें टीयर टू एंड टीयर थ्री सिटीज की, जहां पर लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, बहुत बड़े बड़े मॉल्स नहीं होते हैं, बट स्टिल दे कैन चूज, और दुनिया के जो भी बेस्ट फैशन प्रोवाइडर्स हैं उन सब में से वो सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी तरह की चीजें जो है मॉडिफाई करा सकते हैं, अपनी पसंदीदा चीजों को एक पर्सनलाइज टच वो दे सकते हैं। थर्ड जो ड्राइविंग फैक्टर है, दैट इज टेक सेवी मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी। देखिए, यंगस्टर्स हमारी जो कंट्री है उसमें बहुत ज्यादा है, बहुत पॉपुलेशन है, 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में यंगस्टर्स की है। और यंगस्टर्स क्योंकि वो काफी इनोवेटिव माइंडसेट वाले होते हैं और उन्हें पर्सनलाइज्ड फैशन एक्सपीरियंस चाहिए, टेक सेवी भी होते हैं, और कंपनीज इन सारे क्राइटेरियाज पे खरी उतर पा रही है, तो इसकी वजह से भी ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। फोर्थ पॉइंट, अगेन बोलूंगा, सस्टेनेबिलिटी फोकस किया जा रहा है। अब जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी उतना ही ज्यादा वो यूएसपी बनती चली जाएगी। जो कंपनी जितना ज्यादा सस्टेनेबल मॉडल लेकर आएगी उतना ही तरक्की करने वाली है लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो, क्योंकि लोग अब पूछने लगे हैं लिटरली। देन उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है सरकार का सपोर्ट एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स। देखिए, सरकार के बिना कुछ नहीं हो पाता है। अगर कोई भी इंडस्ट्री ग्रो कर पाती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सरकार का होता है, सरकार मुहिम चलाती है। जैसे ब्रॉडर व्यू से अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए सरकार के द्वारा, लाइक डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन सब ने मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार किया जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स हुए, यहाँ पर स्टार्ट हुए, लोगों ने भी उनको एक्सेप्ट किया, अपने दिलों में जगह दी और डिमांड बढ़ती चली गई। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिनकी वजह से ये इंडस्ट्रीज ग्रो होती हैं, और फैशन टेक भी उसी का एक रिजल्ट है कि यहाँ पर इतना तेजी से ग्रो हो रही है। उम्मीद कर रहा हूं यू गॉट द पॉइंट। तो हमने आपको अभी पांच ऐसे ड्राइविंग फैक्टर्स के बारे में बताया, ग्रोइंग ई कॉमर्स पेनिट्रेशन, राइजिंग इंटरनेट एंड स्मार्टफोन यूजेज, टेक सेवी मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी, फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नमेंट सपोर्ट एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स। नाउ विद दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे और बताएंगे आपको कुछ चीजें जो जुड़ी हुई हैं फैशन टेक से। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपके गाने पसंद आए और हमारे शो को आप पसंद कर रहे हैं, और ये भी उम्मीद कर रहा हूँ साथ साथ कि आज की जो इंडस्ट्री हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर फैशन टेक, जिसमें हमारी आज की कंपनी डील करती है, उसको आप समझ पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है उतना फेमिलियर आपको करा दें इस एक इंडस्ट्री से। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, अगर कोई नया प्लेयर आना चाहता है इस मार्केट में तो कैसे आ सकता है? मतलब देखिए, वो टोटली आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस होने वाला है, बट स्टिल जितना हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, जितनी रिसर्चेज हम कर पाते हैं, उनके आधार पर कुछ पर्टिकुलर ऐसी स्ट्रेटजीज हम आपको बता सकते हैं जिस हिसाब से आप चल सकते हैं, मतलब एक बार देखा जा सकता है। पहली रहेगी, अपनी नीश आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। ऑल्दो फैशन टेक बहुत एक ब्रॉड कैटेगरी है, उसमें भी आपको पर्टिकुलर एक नीश सेट करनी होगी कि किस तरह का फैशन आप ऑफर करना चाहते हैं और कौन आपका टारगेट कस्टमर रहेगा। सेकंड जो स्ट्रेटजी हो सकती है, दैट इज लेवरेज टेक्नोलॉजी, क्योंकि ऑलरेडी हमें डिस्कस कर रहे हैं कि टेक बेस्ड इंडस्ट्री है और उसमें सारी कंपनीज कोशिश कर रही हैं जितना हो सकता है उतना अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस बना पाए। लाइक AI में इन्वेस्ट करते हैं, AR में इन्वेस्ट करते हैं, VR में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे एक यूनिक सर्विस, एक यूनिक प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक पहुंचा पाए, डिलीवर कर पाए और कस्टमर को कन्विंस कर पाए कि आप यहां से

उनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू कैन जस्ट एंटर अ मार्केट जो ऑलरेडी काफी ग्रो कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी हो सकती है बिल्ड एन ओमनी चैनल प्रेजेंस, मतलब एक ऐसी आपको प्रेजेंस अपनी बनानी होगी जहां पर आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही चैनल्स पर केटर कर पाए अपने कस्टमर्स को। अगर ऑनलाइन कोई आना चाहता है उसके लिए भी आपके पास अच्छी सर्विस हो, ऑफलाइन भी आपको बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होंगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है लेंसकार्ट, स्टोर्स भी काफी अच्छे हैं और आप ऑनलाइन अगर जाते हैं तो आपको उनके पोर्टल पे भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो सबसे ट्रेंडिंग अभी है, जो आज हम लगभग हर एक सेगमेंट में देख पा रहे हैं, दैट इज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ये आपको फॉलो करना होगा क्योंकि अल्टीमेटली जो एनवायरमेंटल कॉन्शियस कंज्यूमर्स हैं वो आपकी तरफ जरूर आएंगे और वो काफी लॉयल रहने वाले हैं आपके साथ अगर आप ये वाली प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। देन इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, उसमें आपको खुद को एंगेज करना होगा, लाइक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया कंटेंट आपको बनाना होगा ताकि आप एक ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंच पाए। देन उसके बाद अंडरस्टैंड लोकल प्रेफरेंसेस, आपको ये भी समझना होगा कि इंडिया में भी बहुत सारे रीजन्स हैं और हर रीजन में किस तरह का टेस्ट लोग पसंद करते हैं। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फेस्टिवल्स, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बहुत ही जनरलाइज कर देते हैं चीज़ों को, लाइक नॉर्थ इंडिया का कपड़ों पहनने का तरीका अलग होता है ट्रेडिशनल क्लोथ्स की अगर बात करें, और वहीं पर साउथ इंडिया का बिल्कुल अलग होगा। तो इस तरीके से हमें समझना होगा कि किस एरिया में किस चीज़ की प्रेफरेंस है और रूट्स क्या बोलती हैं, कैसे हम उनके ट्रेडिशनल फैशन को आज के जो हमारा फैब्रिक है, आज का जो हमारा फैशन है, उसके साथ अलाइन करके उन्हें दिखा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो अगर आप फॉलो करते हैं, कोई भी ऐसा नया प्लेयर फॉलो करता है तो उसकी काफ़ी हेल्प होने वाली है इस एक मार्केट में खुद को एस्टेब्लिश करने में, आप ट्राई कर सकते हैं। नाउ विद दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे आज की कंपनी की।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक आप इंडस्ट्री को समझ पाए हैं, उम्मीद कर रहा हूँ आपको म्यूजिकल वाइब पसंद आ रही है। चलिए बिना किसी देरी के शो को आगे बढ़ाते हैं, फाइनली बात करते हैं आज की कंपनी की। इस कंपनी का नाम है ज़ूक, काफी यूनिक नाम है। ज़ूक का मतलब होता है, ज़ूक रेफर्स टू वाइब्रेंट हाई एनर्जी डांस फॉर्म, और जो फाउंडर्स हैं उन्होंने इसको कनेक्ट किया सूक से भी, SOUK। सूक का मतलब होता है एक मार्केट प्लेस या बाजार। आइडिया बहुत सिंपल था कि एनर्जी और वाइब्रेंसी दोनों को जो है कैप्चर किया जा सके, और वो बहुत अच्छे से इस कंपनी ने करके दिखाया। सो आज की हमारी जो कंपनी है वो है ज़ूक। ज़ूक का अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं, ज़ूक एक इंडियन D2C फैशन एंड लाइफस्टाइल ब्रांड है दैट टुक समथिंग वेरी ट्रेडिशनल इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल डिजाइन और उसको एक मॉडर्न फंक्शनल प्रोडक्ट में जो है कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि हैंडबैग हो गया, लैपटॉप बैग हो गया, वॉलेट्स हो गए, लगेज हो गया। एंड इसी वजह से ये अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर बन जाता है इस कंपनी का, जो कि है ज़ूक, जिसके बारे में हम ये पूरी कहानी आपको सुना रहे हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो अच्छे से कि प्राउडली इंडिया का डिज़ाइन है, वीगन है, हैंडक्राफ्टेड है, और ये डिज़ाइन जो है हमारी हर रोज़ की रिक्वायरमेंट को पूरा भी करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब आपको ये समझनी पड़ेगी कि ये हमारे लोकल आर्टिसंस बहुत काम करते हैं। हर एक जगह का यूनिक आपको चीज दिखाई देगी। एग्जाम्पल के तौर पर, इफ यू गो टू मनाली एंड इफ यू आर विजिटिंग अ नाइकी स्टोर, सो यू विल गेट ऑल द प्रोडक्ट्स जो आपको मुंबई में, बेंगलोर में या अमेरिका में या दुनिया के बाकी और जगहों पर मिलेंगे, सेम प्रोडक्ट्स आपको वहां पर मिलेंगे। बट इफ यू आर विजिटिंग मनाली एंड यू आर बाइंग समथिंग फ्रॉम अ लोकल आर्टिसन, सो यू विल गेट अ डिफरेंट थिंग। दिल्ली में अलग मिलेगा, जयपुर में अलग मिलेगा, उदयपुर में अलग मिलेगा, महाराष्ट्र में अलग मिलेगा, गुजरात में अलग मिलेगा। जैसे कोल्हापुरी चप्पल है, हाथ से बनाई जाती है, दैट्स वाई वो एक जैसी दो चप्पलें कभी नहीं होती, क्योंकि मशीन से नहीं बनाई, वो हाथ से बनाई हुई चीज़ें, वो उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी होती है। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ आर टूडेज कंपनी विच इज़ ज़ूक। एक मुंबई बेस्ड मॉडर्न इंडियन लाइफस्टाइल ब्रांड है जो ऑपरेट करता है अंडर सी टर्टल प्राइवेट लिमिटेड, और इसका सिंपल सा मिशन है भैया कि क्रिएट स्टाइलिश एंड फंक्शनल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो इंडिया का एसेंस कैरी करते हो अपने साथ। तो ये है हमारी आज की कंपनी। फिलहाल लेंगे म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, पता तो उस वक्त मैं कहां था, पता तो उस वक्त तू कहां थी।

All right, welcome back. अपने शो को कंटिन्यू करके मैं हूँ सागर. शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की. आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं. और इंटरेस्टिंग चीज है कि ओरिजिन कैसे हुआ ज़ूक का. आप ये लगा लीजिए कि ज़ूक एक एक्सपेरिमेंट था. एक्सपेरिमेंट से एक कंपनी बनी है. बिल्कुल सही सुना आपने. आप ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने इमीडिएटली ना तो पैसे रेज किए, ना बहुत बड़ी टीम हायर करी, ना कुछ ई कॉमर्स पे बहुत मेगा लॉन्च किया. सिंपल प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया गया. तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली 20 लैपटॉप बैग्स जो है वो बनवाए पहले. ओके, जिसमें इंडियन टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट जो है उसको एस्थेटिक वे में मॉडर्न बैग कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की उन्होंने. उसके बाद फिर ये फ्ली मार्केट इवेंट था एक मुंबई में, वहां पर उसको लेकर के गए. एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 5 आवर्स, मात्र 5 घंटों में वो 20 के 20 पीस जो है बिक चुके थे. एंड ये मोर देन इनफ होता है समझने के लिए कि मार्केट क्या उस प्रोडक्ट के लिए रेडी है, क्या उसको रिकॉग्निशन मिलेगी उस मार्केट में. एंड ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज बन जाता है. तो ये है वो कंपनी ज़ूक जिसने एक एक्सपेरिमेंट की तरह शुरू किया. मतलब ऑब्वियसली इनका प्लान था कंपनी लॉन्च करने का, बट दे वांटेड टू एक्सपेरिमेंट इट फर्स्ट. सो ये खुद को डेलिबरेटली ऐसे ही बिल्ड करते हैं अराउंड 4 आइडियाज. फर्स्ट इज प्राउडली इंडियन, सेकेंड मॉडर्न एंड फंक्शनल, थर्ड वीगन और क्रुएल्टी फ्री, फोर्थ हैंडक्राफ्टेड. लेट सेल इंडियन हैंडक्राफ्ट ऑनलाइन. ये ऐसा बिल्कुल नहीं कहते क्योंकि बाकी ब्रांड्स का एक स्लोगन जब ऐसे होता है सिंपल ऐसे होता है. ये कंपनी इसको इसी सेम बात को अलग तरीके से कहती है. वाई कांट इंडियन कल्चर एस्थेटिक्स बिकम पार्ट ऑफ एवरीडे कंटेम्प्रेरी फैशन. सही बात है, क्योंकि एक तरफ आप बोल रहे हो कि हमें बेचना है, दूसरी तरफ चीज का मायना चेंज हो जाता है. आप ये बोलते हो कि यार कि फैशन क्यों नहीं बन सकता, एस्थेटिक क्यों नहीं बन सकता. ये जब हमारे हाथों से बनी हुई चीज़ें होते हैं ना, शॉल होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कल्चरल चीज़ें. अगर आप निकलेंगे लोकल मार्केट में या लोकल जो आर्टिसंसों से आप मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली कितनी यूनिक चीज़ें हैं, यूनिक फ्लेवर्स हैं. सो दैट्स हाउ ज़ूक स्टार्टेड. दैट्स हाउ दे बिल्ट दिस कंपनी अराउंड 4 आइडियाज, 4 मेजर आइडियाज, प्राउडली इंडियन, मॉडर्न एंड फंक्शनल, वीगन और क्रुएल्टी फ्री एंड हैंडक्राफ्टेड. And they didn't say, let's sell Indian handicrafts online. They simply said, why can't Indian cultural aesthetics become part of everyday contemporary fashion? Point blank. Simple. फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फाउंडर की बात करेंगे. Stay tuned with us. Feel good, feel life.

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: करिश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कोड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

वेलकम बैक, मैं सागर शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की आप लोग सुन रहे रेडियो 107.8 FM। अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। ज़ूक हमारी आज की कंपनी है और ज़ूक क्या करती है हम आपको बता चुके हैं। एक्सपेरिमेंट के तौर पर स्टार्ट हुआ एंड इट इज डूइंग वेल ऑनेस्टली। तो अभी फाउंडर की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दिशा है हालांकि इस कंपनी के फाउंडर, दिशा सिंह, बट ये डायरेक्ट जो है कंपनी के फाउंडर नहीं बनी, ठीक है। दिशा हरसेल्फ हैज सेड कि इनिशियली शी रियलाइज्ड कि मेकिंग अ प्रोडक्ट एंड बिल्डिंग अ कंपनी वर टू डिफरेंट थिंग्स। इसलिए इन्होंने ज्यादा जो टाइम अपना बिताया वो ज़ूक के लिए एक्सपेरिमेंट जो है वो करने में व्यतीत किया। उनका बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग का, एमबीए किया है या अहमदाबाद से, एनर्जी सेक्टर से आती हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस है, बैंकिंग एक्सपोजर है, हेल्थ केयर, हेल्थ टेक एक्सपोजर है, फैशन एक्सपोजर है। ज़ूक का जो अपना फाउंडर प्रोफाइल है वो इनको बताता है एज फैशन, हेल्थ केयर एंड बैंकिंग एंड एनर्जी। ओके, तो इनिशियली इन्होंने वो नहीं किया, बट इनिशियली जो कंपनी के फाउंडर रहे जिनका नाम लिस्टेड है वो है प्रदीप कृष्णा कुमार नाम से। प्रदीप बेसिकली दिशा के हस्बैंड है और IIM अहमदाबाद के बैचमेट है। उनका बैकग्राउंड रहा है बिजनेस प्लस ऑपरेशन प्लस टेक एंड स्ट्रेटजी में। IIT मद्रास से इंजीनियरिंग की है, IIM अहमदाबाद से MBA किया है। इनके प्रीवियस अगर एक्सपीरियंसेस की बात करें तो ड्यूशे बैंक, मैकिन्जी एंड कंपनी, गिल्ड कैपिटल, ब्राउजर स्टैक, ठीक है। इनका रोल जो ज़ूक में रहा है वो बहुत अच्छा खासा रहा है, ऑपरेशन, सप्लाई चेन, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेंशन, रिटेल। देन अगर दिशा की बात करें तो दिशा के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि इन्होंने IIM अहमदाबाद से MBA किया है, साथ साथ इंजीनियरिंग की डिग्री इन्होंने की है फ्रॉम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर एज पर हर पब्लिक प्रोफाइल। ओके, बिफोर ज़ूक उन्होंने जो काम की एक्सपोजर जो उनको मिला वो मैं आपको बता चुका हूँ। ज़ूक में इनका काम है प्रोडक्ट डिजाइन का, ब्रांड बिल्डिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का, प्रोडक्शन का, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग का, ओवरऑल कंपनी स्ट्रेटजी का। एंड दैट्स हाउ ये हस्बैंड वाइफ ने मिलकर के कंपनी बनाई। बट मैं वापस से याद करना चाहूंगा आपको कि ये दोनों ही मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे मार्केट कैसे काम करती है। इसलिए दिशा ने अपफ्रंटली जो है अपना नाम आगे नहीं किया एंड सिंपली अपने हस्बैंड को एज अ फाउंडर इंट्रोड्यूस किया और खुद सारा टाइम जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने में और चीजों को और रिफाइन करने में बिताया। दैट इज ज़ूक फॉर यू। फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं सागर। शो आत्मनिर्भर भारत कहानी है कामयाबी की। ज़ूक हमारी आज की कंपनी है। लेट्स टॉक अबाउट द यूएसपीज ऑफ ज़ूक। ओके, इसको चार लेयर में समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि कोई एक यूएसपी नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं एक यूएसपी बता के यहाँ पर शांत हो सकता हूँ, बिकॉज लिटरली हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि इंडियन डिजाइन लैंग्वेज, मोस्टली जो मेन स्ट्रीम हैंडबैग्स आपको दिखाई देते हैं, हिस्टोरिकली भी अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा ज्यादा दिखाया गया है वहां पर, वेस्टर्न डिजाइन वोकैबुलरी वहां पर आपको दिखाई देती है। बट ज़ूक जो कंपनी है, ये डेलिब्रेटली रिकॉग्नाइजेबल इंडियन डिजाइन आइडेंटिटी वहां पर कोशिश कर रही है कि दुनिया रिकॉग्नाइज कर पाए। उन्हीं को ये बिल्ड कर रहे हैं, उन्हीं को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इंडियन प्रिंट्स एंड मोटिव्स, टेक्सटाइल्स, क्राफ्ट, ये सब कुछ इंडियन जो चीजें हैं, इंडियन जो एलिमेंट्स हैं, वो आपको इस कंपनी के जो भी एक्सेसरीज दिखाई देंगी वहां पर आपको दिखाई देते हैं क्लियरली। सेकेंड इज फंक्शनैलिटी। नाउ दिस इज क्रिटिकल। The founders of this company didn't just want to make handicrafts that looked beautiful, but हमारी शेल्फ पे बैठे रहे, मतलब फंक्शनल होना चाहिए। बहुत सिंपल है यार कि ब्यूटीफुल चीज़ आप लेकर के आ गए लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट के जो डिज़ाइंस हैं वो ऐसे बनाए जो कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। लैपटॉप, फोन, वर्क, कॉलेज, ट्रैवल, एवरीडे कैरिंग, ऑर्गेनाइजेशंस, सबके लिए इन्होंने स्टाइलिश एंड फंक्शनल प्रोडक्ट्स बनाए विद इंडियन एसेंस। सेकंड बिगेस्ट यूएसपी। थर्ड इज वीगन। अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि कंपनी अपने आप को आइडेंटिफाई ऐसे करती है एज अ ब्रांड कि भैया हम, बाकी सब चीजें सेकेंडरी है, फर्स्ट नॉन नेगोशिएबल थिंग इज प्रोडक्ट्स विल बी क्रुएल्टी फ्री एंड वीगन। एंड इट शोज दैट देयर इज सो मच ऑफ एम्पैथी विद इन द प्रोडक्ट्स जो आप देख रहे होंगे वहां पर। एंड लास्ट पॉइंट आता है पर इंडियन क्राफ्टमैनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि सेम स्लोगन मैं बोलना चाहूंगा, वोकल फॉर लोकल। और ये करना बहुत जरूरी भी है हमारे लिए कि अपने लोकल लोगों को पहले हम प्रायोरिटाइज करें, उनको पहली प्रायोरिटी दें ताकि उनकी आवाज उठ के सामने आ पाए। तो यहाँ पर इन्होंने जो लोकल आर्टिसंस हैं उनको अपने साथ ऑनबोर्ड किया, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका इस्तेमाल किया अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। एंड एक इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन्होंने बनाया मुंबई में, और वहीं से सारी चीजें शुरू हुई। हंड्रेड्स ऑफ आर्टिसंस वर इन्वॉल्व्ड व्हेन द कंपनी स्टार्टेड। ओके, तो इनकी यूएसपी बन जाती है इंडियन आइडेंटिटी प्लस मॉडर्न यूटिलिटी प्लस वीगन मटेरियल प्लस क्राफ्टमैनशिप। और ये चार चीजों की लेयर मिला करके बनाती है इस कंपनी को स्पेशल, विच इज ज़ूक। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मजा आ रहा है। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों मैं हूँ सागर, शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवश्रम मंदिर 7.8 FM के साथ, फील गुड फील लाइव। अपने शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का वक्त है। तो आज हमने बात करी कि ऐसी कंपनी की जो इंडियन क्राफ्टमैनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, इंडियन डिज़ाइन, इंडियन नुआंसेस, इंडियन एसेंस को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्ट हुई और बखूबी इस कंपनी ने अपने मोटिव को फुलफिल किया। ज़ूक की आज हमने बात करी। उम्मीद कर रहा हूँ आज की स्टडी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आपके पास कोई पॉइंट है जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ हमें बताइए 8010781078 पर। फिलहाल इसी नोट पर मेरा वक्त है शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का। फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर रिकॉर्ड शो। लेकिन तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खैरियत से रहें। दिस इज आरजे सागर साइनिंग।

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ और एक बार फिर से लेकर आ गए हैं प्रोग्राम जिसका नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। और आज जिस हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत सारी रील्स आपने देखी होंगी, बहुत सारे डॉक्टर्स के इंटरव्यूज भी आपने देखे होंगे, बहुत सारे नुस्खे भी आपने देखे होंगे, कुछ लोग आजमा भी रहे होंगे। लेकिन एक्चुअल यानी रियल सिचुएशन क्या है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ये जानना भी जरूरी है एक्सपर्ट के द्वारा। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हम सबकी लाइफ को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, फैटी लिवर। जी हाँ, लिवर एक ऐसा ऑर्गन जो हर किसी के लिए बेहद ज़रूरी है शरीर को सही तरीके से चलाने के लिए, लेकिन आजकल बढ़ते हुए पोल्यूशन या फिर लाइफस्टाइल कह लीजिए, कहीं ना कहीं फैटी लिवर की समस्या हर दूसरे व्यक्ति दूसरे घर में देखी जा रही है। पर ये फैटी लिवर आखिर है क्या? अगर आपको नहीं हुआ है तो आप बहुत खुशनसीब हैं और इसको ऐसे ही यहीं पर रोक सकते हैं। लेकिन फैटी लिवर आखिर है क्या, कैसे इससे बचा जाए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर पवन कुमार चौबे जी, जो कि कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। सो डॉक्टर पवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
3: थैंक यू रेडियो मानव रचना मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए।
2: सो डॉक्टर पवन, सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, फैटी लिवर के बारे में हम बात करें लेकिन लोगों को अभी भी बहुत कम आइडिया है कि फैटी लिवर क्या होता है और इसे साइलेंट डिजीज क्यों कहा जाता है?
3: मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेडिकल टर्म में हम लोग बात करते हैं तो फैटी लीवर तब बोलते हैं जब 5% ऑफ द लीवर सेल में फैट का डिपोजिशन होने लगता है। नाउ मोस्टली इसे टेक्निकली अगर हम लोग अवॉइड करें तो मोस्टली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको कोई सिम्टम होते नहीं है। मोस्टली क्या आते हैं, हमें बोलते हैं कि दे जस्ट हैव अंडरगोइंग एन अल्ट्रासाउंड। वो कोई भी सिम्टम्स हुआ अगर उनको एक रूटीन अल्ट्रासाउंड में, वो बोलते हैं हमें फैटी लीवर हो गया, कोई बोलता है हमें Grade 1 या Grade 2 फैटी लीवर हो जाता है विदाउट एनी सिम्टम। उनके लीवर एंजाइम्स नॉर्मल रहते हैं, उन्हें कोई भी भूख में दिक्कत होना या पेट दर्द होना कोई ऐसे सिम्टम्स होते नहीं है, तो फिर इसलिए हम लोग इसे साइलेंट डिसीज या फिर ये बोलते हैं।
2: Okay. यानी सिर्फ 5% अगर लिवर में फैट डिपॉजिट है तो वो फैटी लिवर की कैटेगरी में आ जाता है।
3: जी बिल्कुल,
2: यानी सिर्फ और सिर्फ 5% आपकी प्रॉब्लम को और भी बढ़ा सकते हैं। बट कोशिश ये करनी चाहिए कि ये सिचुएशन आए ही ना। ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे आप अपने लिवर का ख्याल रख सकते हैं, या फिर अगर फैटी लिवर हो जाए तो सोल्यूशन क्या है और कैसे पता लगेगा कि लिवर फैटी हो चुका है? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं आज। अगर आपके मन में भी कुछ प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, नंबर बहुत आसान है 8010781078। फिलहाल वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूं दीक्षा आपके साथ।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

नौजवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप।

थका प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उस पर रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छत पताती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: साधु नेता।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं? मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: लगता तेज जैन अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
2: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम है ऑल इज वेल, जिसमें हमारे नॉलेज पार्टनर हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी बातें फैटी लिवर के बारे में आज चल रही हैं, क्योंकि बहुत सारी किताबों में आपने पढ़ा है, अखबारों में पढ़ते हैं, एक्सपर्ट्स की रील देखी होगी, जहां पर फैटी लिवर आजकल सबसे बड़ी समस्या बनता चला जा रहा है और बहुत सारे पेशेंट्स इससे परेशान हो रहे हैं। पर ये फैटी लिवर क्या होता है ये तो आपको हमारे एक्सपर्ट ने बता दिया, बट एक्चुअली में फैटी लिवर की पहचान कैसे करें ये भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई शरीर में प्रॉब्लम बढ़ रही है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पहचाना जाए, ये बातें जानेंगे हमारे आज के खास मेहमान, हमारे खास एक्सपर्ट डॉक्टर पवन कुमार चौबे जी से, जो कि कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। सो डॉक्टर पवन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि फैटी लिवर क्या होता है, वो तो आपने बता दिया, कैसे ये साइलेंटली लोगों को परेशान कर सकता है ये भी आपने बता दिया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हम जब लिवर प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो जनरली देखा जाता है कि जो लोग बहुत अल्कोहलिक होते हैं, बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, बट अभी कुछ सालों से हमने देखा है कि जो लोग नहीं भी पीते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर क्या होता है?
3: एक्चुअली मैम, इनिशियली हम लोग क्या देखते थे कि किसी को भी, अगर हमारे सोसाइटी में किसी को भी लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो हम लोग दो या तीन कारणों पे ही फोकस करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोलते थे कि अल्कोहल का इंटेक हो रहा है, या फिर वायरल हेपेटाइटिस, स्पेशली हेपेटाइटिस बी और सी रिलेटेड चीज़ों को हम लोग ये करते थे। नाउ साइलेंट डिसीज या कहने का सबसे बड़ा रीज़न फैटी लिवर का इसलिए क्योंकि इससे जो रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है वो हम लोग लेटर हाफ ऑफ द एजेस में देखते हैं, स्पेशली आफ्टर 55 और आफ्टर 60। अल्कोहल रिलेटेड आपको इजीली दिख जाएंगे पर्सन अराउंड इन देयर लेट 30s और 40s हैविंग सिम्टम ऑफ द अल्कोहल, लाइक उनको जॉन्डिस होने लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगी, या फिर अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स आएंगे। बट फैटी लिवर इज जस्ट काइंड ऑफ ऐसा साइलेंट डिसीज है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अल्ट्रासाउंड में ग्रेड 1 या ग्रेड 2 फैटी लिवर मिल सकता है, आपको लिवर एंजाइम में SGOT SGPT का बढ़ना मिल सकता है, उसके अलावा आपको कोई सिम्टम्स नहीं होगी। तो फिर मोस्टली हम लोग को सिम्टम्स जो है लेटर हाफ यानी 55 या 60 के बाद ये चीज़ें डेवलप करती हैं, इसलिए फैटी लिवर को बहुत ज़रूरी है कि टाइमली इंटरवेन करके इसको ट्रीट करना है, बिकॉज फैटी लिवर एक ऐसी डिसीज है जिसको कि हम लोग लाइफस्टाइल से एसोसिएटेड मानते हैं,
2: यानी हमारा लाइफस्टाइल खराब है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके कोई सिम्टम्स हमें शुरुआत में नजर नहीं आते?
3: शुरुआत में इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, अगर कुछ प्रतिशत पेशेंट में हम लोग बोलते हैं 1/3 ऑफ पेशेंट में अगर सिम्टम आता भी है तो जस्ट लाइक, चूंकि लीवर का फैट पे डिपोजिशन जब होता है तो लीवर का थोड़ा सूजन होती है, तो हम लोग बोलेंगे डीप ब्रीथिंग हो रहा है, या फिर अगर एक्सेसिव हमें करेंगे तो राइट साइड में, राइट हाइपोकॉन्ड्रियन यानी कि पसलियों के नीचे राइट तरफ में हमें थोड़ा थोड़ा पेन महसूस होगा, यही एक सिम्टम्स आते हैं, अदरवाइज इसको सिर्फ हम लोग अल्ट्रासाउंड या LFT में चेंजेस से जानते हैं।
2: जी जी, और अगर LFT ठीक आ रहा है तो सब कुछ ठीक है?
3: नहीं, ऐसा नहीं है, कई पेशेंट होते हैं जिसमें अर्ली स्टेज ऑफ फैटी लिवर है, उसमें LFT भी नॉर्मल आ सकते हैं, तो इसके लिए और भी टेस्ट होते हैं जिनको हम लोग करवाते हैं, जैसे कि अगर कोई भी अगर हमारे पास आ रहा है और उसके अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर आ रहा है तो हम लोग उसके बाद सबसे पहला जो टेस्ट उसको करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं FIB-4 टेस्ट। FIB-4 टेस्ट बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है जिसमें हम लोग नॉर्मली पेशेंट का एज, उसके LFT यानी SGOT SGPT और प्लेटलेट से डिसाइड कर सकते हैं कि उसका फैटी लिवर किस स्टेज में, क्योंकि फैटी लिवर जो होता है वो नॉर्मली इनिशियली फैटी लिवर होता है बट वो कन्वर्ट हो सकता है फाइब्रोसिस में, जो लेटर में सिरोसिस या फिर लीवर फेलियर जैसे सिचुएशन को ला सकता है।
2: ओके, यानी ये 5% का जो फैट है ये धीरे धीरे इतनी बड़ी समस्या ला सकता है अगर आप समय पर इसको नहीं ढूंढते हैं, नहीं पकड़ते हैं। डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल की आपने बात करी कि एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है और बहुत लोगों को सिर्फ लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से हो रही है, सो बेसिकली क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से फैटी लिवर बढ़ रहा है? लाइफस्टाइल में खाना अगर ऑयली ज़्यादा खा रहे हैं या शुगर ज़्यादा खा रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं?
3: सबसे पहली चीज़ है जिसमें जो बोलते हैं हम लोग का सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अगर हम लोग फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस होती है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ों का डिपोजिशन होता है। रिस्क फैक्टर्स लाइक स्पेशली डायबिटीज, मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि मेरी डाइट तो बहुत अच्छी है, एकदम प्रॉपर है, मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, मुझे डायबिटीज़ या थायराइड है। सो डायबिटीज़ थायराइड इट्स अ रिस्क फैक्टर, ये क्लियर कट हम बोलते हैं कि अगर आपकी डाइट कंट्रोल है इट्स सेल्फ, लेकिन डायबिटीज़ और थायराइड्स में फ्री फैटी एसिड या फ्री शुगर जो होता है वो लेटर ऑन डिपोजिशन होता है।
2: ओके,
3: थर्ड जैसा कि आपने बताया ऑयली चीजें।

0: ना तो लीवर पे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, बल्कि उसमें एक्सेसिव फैट या एक्सेसिव शुगर का डिपोजिशन करता है. और लाइफस्टाइल में अगर चेंजेस हो तो दोनों मिलके साथ में फैटी लीवर को फॉर्मेशन कर सकते हैं. बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इसीलिए हम लोग बोलते हैं देयर आर लॉट ऑफ डिटॉक्स ड्रिंक्स ऑल्सो, लाइक लेमन वाटर यू कैन टेक, प्लेन वाटर भी आप ले सकते हैं, ग्रीन ट्री भी ले सकते हैं. बट अगर मुझसे पूछें तो ओनली प्रूवन जो रिकमेंडेड ड्रिंक है इस इंटेक ऑफ कॉफ़ी. आप ब्लैक कॉफ़ी डेली एटलीस्ट 2-3 टाइम्स ऑफ डे ले सकते हैं. इट हैज़ प्रूवन रोल, ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस काइंड ऑफ ड्रिंक्स.
1: यानी दवाई के तौर पर भी अगर आप ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हैं दिन में 2 बार, तो भी आपका लिवर जो है वो डिटॉक्स हो सकता है, बेटर हो सकता है. बहुत सारे लोगों को डॉक्टर साहब हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है और वो कॉफ़ी अवॉइड करते हैं, सो क्या वो कॉफ़ी ले सकते हैं? ब्लैक कॉफ़ी से कोई नुकसान तो नहीं होगा?
0: अगर ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल है आफ्टर द मेडिकेशन तो वो बिल्कुल ले सकते हैं.
1: ओके.
0: सिर्फ कुछ कार्डियक डिसीजेज होती हैं जिसमें कि स्पेशली हमें टैकीकार्डिया यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें कैटेकोलामाइन का रिलीज होता है जिससे कि हार्ट रेट रेज होते हैं, उनमें हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि उसमें कॉफ़ी को इनटेक को रिड्यूस क्वांटिटी में करने का. बाकी हर कोई इसको कंटिन्यू कर सकता है.
1: जी, यानी अगर फैटी लिवर से बचना है तो सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल ठीक करें. सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बहुत ऑयली खाना, बहुत हाई शुगर वाले ड्रिंक्स लेना, एनर्जी ड्रिंक्स लेना, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. और एक्सरसाइज बिल्कुल ना करना, ये तो मुझे लगता है कि हर एक बीमारी को आपकी बॉडी तक ले आता है. तो बहुत सारी बातें और भी जानेंगे फैटी लिवर के बारे में. और अगर आपको ये बातचीत अच्छी लग रही है और आप किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करना चाहते हैं जिसकी हेल्थ को आप ठीक रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं. हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, इंटरनेट रेडियो मानव रचना, और पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आरजे दीक्षा के फोल्डर में आप जाएंगे तो डॉक्टर पवन कुमार चौबे के साथ हुई ये सारी बातचीत फैटी लिवर से जुड़ी हुई आपको मिल जाएगी, जिसको आप कभी भी कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में शेयर कर सकते हैं. फिलहाल वक्त है दोस्तों एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का.

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम है ऑल इज वेल, जिसे सपोर्ट किया है एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने। और आज हमारे साथ हमारे खास एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पवन कुमार चौबे, कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। टॉपिक है आज का फैटी लिवर, क्योंकि एक ऐसी समस्या है जो बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही है, यंगस्टर्स को बहुत परेशान करने लगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार वो खुद हैं अपने खराब लाइफस्टाइल की वजह से। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने कहा, लाइफस्टाइल सुधारिए, फैटी लिवर की प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो आपकी पूरी बॉडी के पूरे सिस्टम को मेंटेन करने का बहुत बड़ा काम भी करता है, और साथ ही ये एक ऐसा ऑर्गन है जो खुद ब खुद ग्रो भी हो जाता है। इस ऑर्गन के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आज हमारे खराब लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा खामियाजा भी भुगत रहा है। डॉक्टर पवन से जानते हैं, आइए बहुत सारी और भी बातें फैटी लिवर से जुड़ी हुई। डॉक्टर पवन, फैटी लिवर की जब हम बात करते हैं, तो अभी आपने कहा कि अल्कोहल लेना ये बहुत बड़ा एक रीजन होता है, लेकिन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी एक बहुत बड़ा रीजन है, जो कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। बट इसके अलावा फैटी लिवर मोटापे में ज्यादा देखा जाता है लोगों में, या पतले लोगों में भी होता है?
1: मैम, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रेज किया है, बिकॉज आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनका कि बीएमआई या फिर लीन बॉडी वेट नॉर्मल रहता है, बट इटसेल्फ उनके अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर आता है ग्रेड वन या ग्रेड टू। तो उनका यही क्वेश्चन हमेशा रहता है कि मेरी तो डाइट हमेशा प्रॉपर है, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं, तो व्हाई आई एम हैविंग द फैटी लिवर। सो नाउ बहुत ही अच्छा टर्म है, और इस पहले मैं स्टार्ट करूंगा लीन नैश। इसको हम लोग लीन फैटी लिवर या लीन नैश कहते हैं। ये मोस्टली ऐसे पेशेंट्स में होता है जो कि स्पेशली इसमें, जैसे हमने बताया कि दो फैक्टर हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ फैटी लिवर। फर्स्ट इज अबाउट डाइटरी, जिसमें हम लोग ज्यादा ऑयली या ज्यादा फ्री शुगर। सेकंड इज अबाउट दैट एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल पार्ट। सो स्पेशली हम लोग बोलते हैं कि स्पेशली जो लोग का लाइफस्टाइल पार्ट प्रॉपर नहीं होता है, वेट मान लीजिए आपकी हाइट अच्छी है, आपका वेट अराउंड 65 kg है, आपका बीएमआई नॉर्मल है अराउंड 22 है, बट अगर आपका लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, सेडेंटरी है, आप लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं, तो फिर इट कैन कॉज द फैटी लिवर। ऐसे पेशेंट में फिर दे कॉज द ट्रीटमेंट कि फिर मेरा तो वेट सही है तो मैं वेट लॉस करूंगा, तो और वेट लॉस होगा तो व्हाट शुड बी ट्रीटमेंट फॉर दोज पेशेंट। वी आस्क अबाउट की ओनली ट्रीटमेंट इज फॉर रेगुलर एक्सरसाइजेस, इवन ऑल काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस। मैम, पीपल आस्क स्पेशली एरोबिक एक्सरसाइज, इवन हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। ये सारे एक्सरसाइजेस प्रूवन है 20-30% ऑफ जो लीवर के अंदर इंट्राहेपेटिक फैट का रिडक्शन करते हैं। तो लीन नैश के जो पेशेंट है उनको मैं यही बोलूंगा कि अगर आपकी डाइटरी कंट्रोल है तो वरी नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने शेड्यूल में एक्सरसाइज को ऐड करना है। एरोबिक एक्सरसाइजेस अगर फॉलो कर सकते हैं, तो वो जो नॉर्मल हम लोग फॉलो करते हैं एटलीस्ट 30 minutes पर डे ऑफ अराउंड 150 minutes ऑफ पर
0: वॉकिंग भी अगर हम
1: वॉकिंग
0: करते हैं,
1: ब्रिस्क वॉकिंग इट शुड बी द वर्ड वी यूज मैम, ब्रिस्क वॉकिंग, बिकॉज एटलीस्ट आप एक ऐसी पेस पे वॉक करना है वेयर यू कैन टॉक, यू कांट टॉक ऑन द फोन, और यू कैन टेक अ डीप ब्रेथ। सो दैट्स काइंड ऑफ ब्रिस्क एक्सरसाइज स्पेशली हेल्प अस इन दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग एंड अदर हेल्प फॉर द लीन नैश। एंड फॉर द ओबीस पेशेंट, एक इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट मैम बताऊंगा, इंडिया में अराउंड प्रिवेलेंस इज अबाउट 1/3 इन द एडल्ट, अराउंड 33-36% ऑफ एडल्ट इज हैविंग द फैटी लिवर, बट ओबीस चिल्ड्रन, इन ओबीस चिल्ड्रन इट्स अबाउट 2/3 ऑफ देम, अराउंड 66-67% ऑफ द ओबीस चिल्ड्रन आर हैविंग फैटी लिवर।
0: फैटी लिवर, और ये क्या उम्र होती है उन बच्चों की, 8 से 10 साल?
1: 14-15-12 years वी हैव सीन।
0: Okay.
1: And the main problem is that it's not the risk factor only for the fatty liver. ये later on diabetes, cardiac diseases, सबके risk factors होते हैं।
0: Of course, मोटापा तो हर एक चीज को invite करता है।
1: जी, बिल्कुल। इसलिए जो भी ये होते हैं, मैं इनको सबको बोलता हूँ कि it's early time, so start running, start losing weight, start control on your diet. Because of few times देंगे, आप एक बार इन चीजों पे control होंगे, you will automatically start seeing the result. Because as initially हम लोगों ने discuss किया, it's a silent disease. मैं एक interesting case बताऊँगा। हम लोग के पास आई थी इमरजेंसी में ब्लड वॉमिट, वो बोली थी कि उनको वॉमिटिंग हुई थी ब्लड की ऑलमोस्ट 2-3 episodes, तो वी जस्ट हैड एडमिटेड इन द आईसीयू, स्टेबलाइज्ड है, आफ्टर 2 days वी हैव अंडरगो द इंडोस्कोपी एंड इट शोज द लार्ज वेरिसेस, मतलब बड़े बड़े उनके खाने के नली में नसें फूले हुए थे। उनके ब्लड, उनके रिपोर्ट्स देखे तो ओनली देयर वाज रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन बिकॉज ऑफ द ब्लड लॉस, रेस्ट उनका पूरा रिपोर्ट नॉर्मल था। प्लेटलेट वाज स्लाइटली लोअर, दैट इज 1.2 lakh, होल एलएफटी, होल आरएफटी, एवरीथिंग वाज नॉर्मल,
0: सब कुछ ठीक।
1: वी अंडरगो स्कैन्स और इट शो शी वाज हैविंग क्रोनिक लिवर डिजीज। अब उनके अटेंडेंट बोले, अम्मा तो अल्कोहल नहीं लेती, शी इज नॉट हैविंग हेपेटाइटिस बी एंड सी, तो कैसे उनको हो गया ये? देन आई हैव अंडरगो, वी हैव अंडरगो द अदर टेस्ट आल्सो, द व्हिच एंड शी हैव हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज। विच वॉज कंट्रोल एट दैट टाइम. देन वी हैव एक्सप्लेन कि मैम स्पेशली अगर आपको फैटी लीवर होता है तो इट्स नेवर कम विथ एनी काइंड ऑफ वार्निंग सिम्टम्स. इट कैन साइलेंटली डायरेक्टली गो टू द क्रोनिक लीवर डिसीज फेज. सो बेटर इन द अर्ली हाफ इट शुड बी कंट्रोल.
0: जी जी जी. यानी अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, डायबिटीज है या फिर थायराइड है, तो लिवर का जो ख्याल है वो आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा.
1: जी बिल्कुल.
0: डॉक्टर साहब, बहुत सारे बच्चों को या बड़ों को डायबिटीज़ काफ़ी समय से होती है. बच्चों में टाइप 1 होती है, बड़ों में टाइप 2 नॉर्मली हो जाती है. कंट्रोल में भी है कि आपकी 200-250 के अंदर ही रह रही है. कुछ इंसुलिन लगा रहे हैं, कुछ दवाइयाँ खा रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज करें, फिर भी क्या टाइप 1 वाले, क्योंकि वो बच्चे होते हैं, मैं ये जानना आपसे ज़रूर चाहूँगी कि उनको भी फैटी लिवर हो सकता है?
1: टाइप 1 में मैं मोस्टली जो हम लोग बच्चे रहते हैं वो दे आर थिन लीन होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऑफ पैथोलॉजी. सो उनमें फैटी लीवर के चांसेस जस्ट फॉर डाइटरी और डिपोजिशन आर क्वाइट लेस. बट इफ़ द सेकेंड पार्ट लाइक डाइटरी एंड सेकेंड वन इज लाइफ स्टाइल, इफ द लाइफ स्टाइल पार्ट हैज बीन अफेक्टेड देन लीन नैश कैन बी सीन इन दैम.
0: यानी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. LFT KFT रेगुलरली कराते रहना.
1: बिल्कुल.
0: तो साल में एक बार ऐसे टेस्ट कराने से आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं. ज़रा सा आपको कहीं कोई दर्द महसूस हो रहा है अगर अपनी बॉडी में, पेट के ऊपर की तरफ, तो डेफिनेटली आपको ज़रूर डॉक्टर से भी बार बार कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये कुछ शुरुआती सिम्टम्स हैं जो बहुत कॉमनली पकड़े भी जा सकते हैं, देखे भी जा सकते हैं, और फैटी लिवर की पहचान इन्हीं से होती है. आगे और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि फैटी लिवर को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ दवाइयां हैं, या फैटी लिवर आगे बढ़कर और कितना नुकसान पहुंचा सकता है, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, और क्या कोई वैक्सीन है हेपेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए. करेंगे ऐसी बातें लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद.

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम. मैं हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम है ऑल इज वेल, जिसे सपोर्ट किया है एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने. और बातें चल रही हैं बहुत सारी आप ही की हेल्थ के बारे में, और आज का विषय है फैटी लिवर. डॉक्टर पवन कुमार चौबे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फैटी लिवर आखिर होता क्या है, कैसे इस प्रॉब्लम से बचा जाए और कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए. सो डॉक्टर पवन, बहुत सारी बातें आपसे कर ली हैं, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, फैटी लिवर क्या इस सिचुएशन को रिवर्स किया जा सकता है, क्या ये रिवर्सिबल है, और अगर नहीं है, अगर नहीं हो रहा है रिवर्स, किसी का बढ़ता ही जा रहा है, तो ये किस लेवल पर पहुंच सकता है और कितने समय में ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है.
1: मैम, ये फैटी लीवर के रिलेटेड ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बिकॉज हम लोग देखते हैं कि सारे फैटी लीवर के पेशेंट्स लीवर फेलियर या सिरोसिस तक नहीं जाते. हम लोग बोलते हैं कि अराउंड अगर किसी को भी फैटी लीवर होता है तो 80% ऑफ पेशेंट का फैटी लीवर उसी स्टेज तक ही रहता है. इट डजंट प्रोग्रेस इनटू द फाइब्रोसिस और सिरोसिस और फर्दर ऑन, बट द अर्ली ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग जो पेशेंट अर्ली फैटी लीवर है, उनको सबको डाइटरी एंड लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए बोलते हैं, वेट लॉस के लिए बोलते हैं और एक्सरसाइजेस के लिए, और उस पर सोचते हैं कंट्रोल होने को. वंस दीज इंटरवेंशन फेल, देन ओनली वी अंडर गो फॉर द फार्माकोथेरेपी और ड्रग्स.
0: ओके,
1: ड्रग्स का मैं फिर बोलता हूँ, फैटी लीवर का ट्रीटमेंट जो है हर किसी को खुद मालूम है, बहुत एक्स्ट्रा कोई एफर्ट लेने की जरूरत है, वी कैन ईजली डू ऑन इट्स ओन. द ओनली चेंजेस विच वी हैव टू डू, अगर आपके डाइटरी लाइफस्टाइल से फैटी लीवर नहीं कंट्रोल हो रहा है, या फिर आप उसको जब हम लोग फर्दर टेस्ट करते हैं लाइक फाइब्रोस्कैन टेस्ट या फिपो टेस्ट, उसमें अगर फैटी लीवर जो फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो चुका है, तो फिर बहुत सारी न्यूअर मेडिकेशन है जिनको हम लोग यूज करते हैं टू अर्ली स्टेज टू रिवर्स दोट फाइब्रोसिस. बट वंस दोज फाइब्रोसिस प्रोग्रेस इनटू सिरोसिस, फिर आपको मेडिकेशन ऑफ सिरोसिस की या फिर हम लोग फर्दर लीवर ट्रांसप्लांटेशन विल बी द ओनली ऑप्शन.
0: वो काफी मेजर प्रॉब्लम,
1: वो मेजर प्रॉब्लम है. तो फैटी लीवर के बेस्ट पार्ट क्या है एज कम्पेयर टू एल्कोहलिक लीवर डिजीज, दैट इट गिव्स अ लॉन्ग विंडो पीरियड. एल्कोहल क्या है कि अगर हम लोग कंटिन्यूअसली ले रहे हैं तो 1-5 ईयर में इट कैन ईजली वी सी द रिजल्ट ऑफ दिट रिजल्टिंग इन द लीवर की फाइब्रोसिस. बट फैटी लीवर के पेशेंट में हमें लंबा विंडो पीरियड मिलता है, हमें 5-10 ईयर तक का टाइम मिलता है जब वो फैटी लीवर अभी उसी स्टेज में और वो स्लोली स्लोली फाइब्रोसिस की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है.
0: और इसमें डॉक्टर साहब, फैटी लीवर वापस नॉर्मल लीवर में कन्वर्ट हो सकता है?
1: डेफिनेटली हो सकता है.
0: ओके,
1: डेफिनेटली हो सकता
0: है, यानी रिवर्सिबल.
1: एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. अर्ली द स्टेजेस, इवन अर्ली ऑफ द फाइब्रोसिस टेक आल्सो, इट इज टोटली रिवर्सिबल. देयर आर लॉट्स ऑफ पेशेंट विदाउट इवन एनी मेडिकेशन, दे हैव कंट्रोल्ड इट.
0: ओके, ये तो बात हो गई रिवर्सिबल की, लेकिन आगे मैं आपसे जानना चाहती हूँ कुछ ऐसी चीजें खाने से जिससे लिवर प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, क्या चीज़ें हैं वो जो अवॉइड करनी चाहिए. जैसे हमने अक्सर देखा है कि लोग कहते हैं कि अल्कोहल मत पिए, वो तो एक, मुझे लगता है कि वो तो यूनिवर्सल एक प्रॉब्लम को बढ़ावा देने वाली चीज़ है, तो उसको तो अवॉइड करना ही चाहिए. इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बिल्कुल आपको छोड़ देना चाहिए?
1: बेसिक हम लोग अपने वर्ड्स में बोले तो हाई फैटी फूड्स, स्पेशली ऑयली फैटी फूड्स, फ्राइड आइटम्स, इट शुड बी अवॉइडेड. हाई शुगरी कंटेंट्स फूड लाइक मेनली जूसेस. व्हाट आई ऑलवेज टेल कि आप अगर जूसेस ले रहे हो तो इंस्टेड ऑफ दिस काइंड ऑफ, यू शुड गो फॉर फ्रेश फ्रेश जूस आप ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स आप इनटेक कर सकते हैं, गुड सोर्स ऑफ फाइबर भी है. इंस्टेड ऑफ दिस फ्राइड आइटम्स अवॉइड टोटली कट ऑफ आपको डाइट में करना है. लेमन वाटर आप इनटेक कीजिए, आप अर्ली मॉर्निंग में आप ग्रीन टी लीजिए, कॉफी इज अ बिगेस्ट सोर्स, आप इसको इनटेक करना होगा. यू हैव टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स.
0: यानी चीजें काफी सारी हैं जो अवॉइड करें. शुगर कॉन्टेंट, जैसे आजकल बहुत सारे लोग शुगर की जगह सब्स्टिट्यूट्स लेने लग गए हैं, स्टीविया लेने लग गए हैं, खंड लेने लग गए हैं, ऐसी चीजें ले रहे हैं, क्या वो ले सकते हैं?
1: डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट फॉर शुगर, वेरी गुड सब्स्टिट्यूट, बिकॉज ये जितने हम लोग के शुगर जो स्पेशली मिलते हैं वो मोस्टली दीज आर एसोसिएटेड विद द अदर साइड इफेक्ट्स ऑल्सो, नॉट ओनली रिजल्टिंग इन द फैटी लीवर बट ऑल्सो समटाइम्स दीज आर रिजल्टिंग इन द अदर ऑल्सो ओबेसिटीज एंड अदर थिंग्स, सो वी हैव टू अवॉइड दिस.
0: कितना ज़्यादा नुकसानदायक है पैकेज्ड फूड खाना, या जिसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं, और हर चिप्स के पैकेट में, हर आइसक्रीम में, हर कोल्ड ड्रिंक में, हर चीज़ जो बच्चे खा रहे हैं आज की तारीख में, बड़े भी खा रहे हैं फॉर दैट मैटर, कितना नुकसानदायक है?
1: तो पैकेज फूड मोस्टली मैम हम लोग स्पेशली उसमें शुगर कंटेंट हाई होता है, सॉल्ट कंटेंट हाई होता है, एंड वी दे यूज सेवरल काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव्स विच कैन बी, फ्यू ऑफ हैव बीन लाइक अजीमोमोटो लाइट ड्रग्स, फ्यू हैव बीन प्रूवन फॉर द मैलिग्नेंसी रिस्क ऑल्सो, कलरिंग डाइज, दीज हैव ऑल्सो इफेक्ट्स. तो दीज आर नॉट ओनली हार्मफुल फॉर द लिवर बट उसके अलावा बॉडी के और पार्ट में भी काफी
0: नुकसान पहुंचे.
1: एग्जैक्टली,
0: बिल्कुल. यानी आप जो कुछ खा रहे हैं उसका सीधा असर बॉडी पर हो रहा है, और लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो सेंसिटिव है, लेकिन अगर इसमें कहीं कुछ ज़रा सा भी फैट डिपॉजिट हो जाता है तो उसको आप अपने लाइफस्टाइल से ही ठीक कर सकते हैं. बट अगर ये प्रॉब्लम ना देखी जाए, ना समझी जाए और ना ट्रीट की जाए, ना इस पर काम किया जाए, तो ये आगे जाकर लिवर ट्रांसप्लांट जैसी सिचुएशन पर भी पहुंच सकता है। तो बहुत सारी बातें और भी जानना चाहेंगे आज कल के समय में, यानी बरसात हो या फिर गर्मी हो, तो ऐसे में क्या लिवर से होने वाली बीमारियों से बचने का तरीका है, ये भी जानेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम प्रोग्राम है ऑल इज वेल, जहां हो रही है बातें आपकी हेल्थ के बारे में। मैं हूं दीक्षा आपके साथ और इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया है एसएसपी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने। डॉक्टर पवन कुमार चौबे हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट, और इनसे हम जानने की कोशिश करें हैं फैटी लिवर के बारे में काफी कुछ। डॉक्टर साहब, फैटी लिवर के बारे में तो आपने काफी कुछ बता दिया, लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मौसम जैसे ही बदलता है बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी आ जाती हैं जिसमें बच्चे बहुत बीमार होते हैं, बड़े बहुत बीमार होते हैं, डायरिया जैसी सिचुएशन हो जाती है, और खास तौर पर से रेनी सीजन की अगर हम बात करें तो ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो जाती है, इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि कई बार ये सिचुएशन जानलेवा भी साबित हो जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ लिवर से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम इस सीजन में आ सकती है और ये कितनी खतरनाक है।
1: ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैम आपने रेस किया, बिकॉज जैसे ही बारिश आती है हम सब एक कॉमन पैटर्न नोटिस करते हैं हमारे ओपीडी में। बच्चे आते हैं, पेरेंट्स साथ में आते हैं, वो बोलते हैं कि इसको 2-3 दिनों से फीवर हो रहा है, कई बार उसके बाद उल्टियां हो रही हैं और अभी ये कुछ खा नहीं पा रहा है, और धीरे धीरे बोलते हैं कि उसका यूरिन जो है येलो कलर हो रहा है या फिर आंखें पीली हो रही हैं। तो जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो हम लोग बहुत इसमें प्रिकॉशन होने की ज़रूरत है, बिकॉज ये वायरल हेपेटाइटिस का पैटर्न है। वायरल हेपेटाइटिस मोस्टली हमारे इंडिया में हेपेटाइटिस ए एंड ई से एसोसिएटेड होते हैं, और भी कॉजेज है लेकिन वो थोड़े कम पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स इसमें जो होता है वो होता है वाटर, कंटामिनेटेड वाटर इन कंटामिनेटेड फूड। रेनी सीजन होते हैं, वो वाटर कहाँ से फ्लो होके आ रहा है, कितने कंटामिनेशन ला रहा है, हु नोस। तो उससे क्या होता है कि फिर वो चीज़ें इफेक्ट करती हैं। स्ट्रीट साइड फूड्स को स्पेशली अवॉइड करना चाहिए, प्रॉपर जो है हैंड वॉश की हैबिट डेवलप करनी चाहिए। जैसे रेनी सीजन आए मैं सीधे बोलता हूँ कि बाहर के खाने आपको स्टॉप कर देना चाहिए, बिकॉज हेपेटाइटिस ए और ई रिलेटेड जो होते हैं वायरल हेपेटाइटिस, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स गेट इम्प्रूव विद इन 2-3 वीक्स। जॉन्डिस थोड़ा टाइम लेता है बट वो भी इम्प्रूव हो जाता है एक बार ओरल इंटेक अच्छा हो, बट फ्यू ऑफ द पेशेंट डेवलप्स द लीवर फेलियर। कुछ पेशेंट जो है एक्यूट लीवर फेलियर में जाते हैं, कुछ रिकवर, कुछ को इवन अल्टीमेटली ट्रांसप्लांट रिक्वायर्ड होता है। और स्पेशली इन दिस एज, स्पेशली 12-20 ईयर ऑफ दिस चाइल्ड एज में ये चीज़ें थोड़ी सी वरीसम होती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि रेनी सीजन आए, बाहर की चीज़ें आपको खाने पे कंट्रोल करना चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब, वैक्सीन की बात अगर मैं जानना चाहूँ आपसे, क्या हेपेटाइटिस को कंट्रोल करने के लिए कुछ वैक्सीन्स हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस बी के बारे में तो हमने सुना है, क्या इनको वैक्सीन्स के थ्रू लिवर की प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है?
1: बिल्कुल किया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम में इंक्लूडेड है, 016 की डोजिंग है। हम लोग बाय बर्थ जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके बाद उनको बी की वैक्सीनेशन कराते हैं नॉर्मल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। करेंटली हेपेटाइटिस ए भी अवेलेबल हो गई है प्रोग्राम्स में, हेपेटाइटिस ए की भी वैक्सीनेशन, और रिसेंटली हेपेटाइटिस ई भी हम लोगों के पास कमर्शियली अवेलेबल है, हेपेटाइटिस ई की भी वैक्सीनेशन हम लोग करते हैं। तो हेपेटाइटिस बी ए एंड ई, दिस 3 मेजर जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि सीजनल हेपेटाइटिस होती हैं और हेपेटाइटिस बी, इन दोनों का टोटली क्योर हम लोग के पास अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन। वैक्सीनेशन के बाद से अराउंड 98-99% ऑफ द चांसेस जो होती हैं रिड्यूस हो जाती हैं, और ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। तो मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि स्पेशली एडोलसेंट ग्रुप के बच्चों को बिफोर दिस रेनी सीजन एंड ऑल, आप उनको डेफिनेटली हेपेटाइटिस ए और ई की वैक्सीन लगाएं और इससे बचें।
0: जी, जिस तरीके से हम फ्लू की वैक्सीन लगाते हैं उस तरीके से हेपेटाइटिस ए और ई की वैक्सीन भी अवेलेबल है। क्या ये हर बार लगवानी पड़ती हैं या एक ही वैक्सीन से काम चल सकता है?
1: सिंगल वैक्सीन एनफ है, 3 डोजिंग में आती है मैम, 016 की डोजिंग है, स्पेशली इन द एडल्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ऑल्सो भी अवेलेबल है, और स्पेशली जो जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है, जैसे हमने कोरोना के टाइम में देखा था इम्यून सिस्टम वीक पीपल पे थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। तो इसीलिए जिनका इम्यून थोड़ा वीक है, इवन हम लोग के लीवर सिरोसिस के भी पेशेंट को हम लोग सजेस्ट करते हैं कि वैक्सीन लगाने की, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए।
0: जी बिल्कुल, यानी वैक्सीन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और अगर आपके बच्चों ने अभी तक ये वैक्सीन नहीं लगाई हैं तो ज़रूर लगवाइएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इन वैक्सीन के थ्रू दूर किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, कोई डिटॉक्स वाटर या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कुछ हद तक हम अपने आप को डिटॉक्स कर सकें बॉडी को, क्योंकि आजकल रील्स जब लोग देखते हैं तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं वो रील्स के, आप इसमें ये सीड डालिए, इसमें खीरा डालिए या इसमें कोई चीज़ डालिए, क्या इनका एक्चुअली में असर होता है?
1: हम सबने देखा है इस तरह की रील को, मैं भी काफ़ी देखता रहता हूँ, बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, हम देखते हैं चिया सीड्स है, सब्जा सीड्स है, बहुत सारी चीज़ें। मैं अगेन बोलूँगा, अगर मेडिकल टर्म में बात करें हम लोग, तो ओनली प्रूवन इज जस्ट इज दैट्स ब्लैक कॉफी ओनली प्रूवन. वी कैन टेक, स्पेशली वी हैव टू टेक दिस काइंड ऑफ लेमन वाटर और ग्रीन टी और दिस चिया सीड्स, दीज आर वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट, दीज हैव वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर्स. तो ये हमारे गट को, गट माइक्रोबायोटा को मेंटेन करने में बहुत अच्छा हेल्प करते हैं. दीज आर वेरी गुड फॉर आवर बॉडी एंड दे मे हैव स्लाइड बेनिफिट फॉर दिस फैटी लीवर ऑल्सो, बिकॉज फैटी लीवर इज ऑल्सो जुड़ी हुई है हमारे गट माइक्रो बैक्टीरिया से. बट स्टिल देर इज नो प्रूवन रोल कि हम लोग इनटेक करेंगे इतने ग्राम इतने वीक हम लेंगे तो उससे हम लोग का फैटी लीवर जो होता है वो इम्प्रूव होता है. वो सिर्फ और सिर्फ अभी भी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैं सबको बोलूंगा डाइट्री एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस ही है. फार्मेकोथेरेपी तभी यूज करनी है जब हम उसको नहीं यूज कर पाए, बिकॉज इट्स वेरी टफ. हम अगर किसी से बोलेंगे कि आपको 10% ऑफ आपका वेट लॉस करना है फैटी लीवर के रिस्पॉन्स को देखने के लिए, 90 kg हम बोलेंगे 9 kg, तो हार्डली 50% ऑफ पीपल कर पाएंगे. तो जो रिमेनिंग 50 नहीं कर पाते उनको हम सजेस्ट करते हैं फिर फॉर द दिस फार्मेकोथेरेपी.
0: डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग पतले होने के लिए भी आजकल दवाइयां लेते हैं, क्या वो उल्टा नुकसान करने के चांसेस उसके ज्यादा रहते हैं?
1: पहली चीज तो ये कि बहुत सारी अवेलेबल है इंजेक्शंस के फॉर्म में. कुछ फेमस इंजेक्शन जो है 1 year back आई थी, अभी काफ़ी सारी कंपनीज के थ्रू ये इंजेक्टेबल आ चुकी हैं वेट लॉस ड्रग्स में, अदर फॉर्म्स, अदर अदर ब्रांड के नेम्स में. मैं अगेन बोलूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनको तभी लेना चाहिए जब आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करें, बिकॉज देर इज अ सर्टेन इंडिकेशन फॉर दीज. हम लोग एक प्रॉपर BMI देखते हैं, एक मॉर्बिड ओबेसिटी देखते हैं और फ्यू रिस्क फैक्टर्स देखते हैं, तभी इनको एडवाइस करना है. आप कॉस्मेटिकली या फिर आपको लगा है कि मुझे मेरा वेट सही नहीं हो रहा है तो मुझे लो, तो फिर ये नहीं सही है, क्योंकि इसके ऑब्वियसली साइड इफेक्ट्स हैं. अगर आप प्रॉपरली नहीं लेंगे, हाइड्रेशन नहीं लेंगे, प्रॉपर प्रोटीन इंटेक नहीं लेंगे, तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं. दे हैव क्लियर कट रिटेन दिस साइड इफेक्ट्स ऑन दोस. सो आप ले सकते हैं, बट ओनली आफ्टर एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर्स, बिकॉज देर इज अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल जिनके लिए ही ये एडवाइज है, जिनके लिए ये इसको लोग प्रिस्क्राइब करते हैं.
0: जी बिल्कुल. सो अपने आप से दवाइयाँ खुद ना लें, वैक्सीन समय पर लगवाएं, लाइफस्टाइल को ठीक रखें, दिन में 2 cup ब्लैक कॉफ़ी पीते रहें, डॉक्टर की एडवाइस से अगर आपको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है तो उसकी रेगुलर दवाइयाँ लेते रहें, LFT कराते रहें, और कभी दिक्कत हो तो अल्ट्रासाउंड भी ज़रूर कराएं. यानी फैटी लिवर से बचने के कुछ तरीके जो आज हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताए हैं उनको फॉलो करेंगे तो फैटी लिवर जैसी समस्या जो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी. डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में, और thank बहुत you. सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर करी. थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू मैम.
0: तो फिलहाल प्रोग्राम ऑल इज वेल में इतना ही. अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात एक नए एक्सपर्ट के साथ, एक नई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में होगी चर्चा. अभी वक्त है आपसे इजाजत लेने का. मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हेलो एवरीवन, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूँ गौरी मल्होत्रा, आपकी अपनी कम्युनिटी मेंबर, और मेरे शो क्रिएटिव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर हर हफ्ते मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में महारत हासिल की होती है। और ये पंजाबी फोक अभी मैंने इसलिए गाया है क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान है वो भी एक पंजाबी अमेजिंग सिंगर है। तो दोस्तों, आज क्रिएटिव मंच के प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे आर्टिस्ट जिनकी आवाज में रूहानियत भी है और मॉडर्न सोल भी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मिस्टर सौरभ जॉली जी की। ये एक प्रोफेशनल सिंगर और लाइव परफॉर्मर है जिनका म्यूजिकल सफर गुरुद्वारे के पवित्र सुरों से शब्द गुरबानी से शुरू हुआ है। म्यूजिक उनके लिए सिर्फ एक कला नहीं बल्कि एक साधना रही है। अपनी मॉम से मिली संगीत की पहली सीख और इंस्पिरेशन के साथ उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है, चाहे वो कॉलेज कॉम्पिटिशन्स हो या बड़े इंटरनेशनल स्टेजेस। दिल्ली यूनिवर्सिटी के खालसा कॉलेज से उनका ये सफर एक परफॉर्मर के रूप में निखरा, जहां उनकी सोलफुल रेंडिशन ऑफ इबादत, एक कवर सॉन्ग, उनकी सिग्नेचर बन गई। रेडियो से लेकर इंटरनेशनल टूर्स तक बैंड जिक्र के साथ उन्होंने इंडिया के साथ साथ यूएई, थाईलैंड, मलेशिया, नेपाल जैसे कई बड़े देशों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। आज वो अपने आर्टिस्टिक सफर के एक नए मोड़ पर हैं। अपनी डेब्यूट एल्बम द फर्स्ट चैप्टर के साथ जहां वो अपनी कहानी अपनी ओरिजिनल म्यूजिक के जरिए दुनिया के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज क्रिएटिव मंच पर स्वागत करते हैं मिस्टर सौरभ जॉली जी का। तो जॉली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे शो क्रिएटिव मंच में।
1: थैंक यू सो मच जी।
0: तो जॉली जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और आज हमारे लिसनर्स डेफिनेटली आपकी आवाज से मंत्रमुग्ध होने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है,
1: क्योंकि आपने बुलाया हमें यहाँ पे।
0: जी जी जरूर,
1: बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज का।
0: तो जॉली जी, आपके संगीत के सफर की शुरुआत किस तरीके से शुरू हुई और किस उम्र में आपने संगीत को अपना मान लिया, इसके बारे में हमें बताइए।
1: मैम, मेरी शुरुआत जो है वो बेसिकली मेरी माता जी जो गाते हैं
0: जी,
1: तो उन्हीं की वजह से शुरू हुई है। और जो शुरुआती दौर था वो गुरुद्वारे से शुरू हुआ
0: जी।
1: जब मेरी माता जी और मैं जाते होते थे और वहाँ पे आपको पता ही है रागी वहाँ पे जो गाते हैं
0: जी, जी,
1: तो उन्हीं से हम पहले तालीम लेते थे पहले वहाँ से। और जो प्रोफेशनल जर्नी वाला जो हिसाब है वो मेरा शुरू हुआ था कॉलेज के बाद।
0: बट
1: उसके दौरान, कॉलेज के दौरान, बड़ी बड़ी एक फनी कहानी भी है क्योंकि मोस्टली मैं पंजाबी गाता होता था उस टाइम पे
0: जी।
1: तो पंजाबी गाता था, तो फर्स्ट ईयर में आया मैं तो मैंने ऑडिशंस दिए म्यूजिक सोसाइटी के
0: जी।
1: और उस टाइम पे अरिजीत के गाने बहुत चलते होते थे, तो मुझे मना कर दिया कि यार आप पंजाबी गाने तो गा नहीं सकते हो। तो मैंने अरिजीत का कोई गाना गाया था मैंने उस टाइम पे, तो मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा अभी। तो वो अब क्योंकि मेरा पंजाबी टच है ज्यादा मोस्टली, क्योंकि मैंने गाने वो चीज सुने हुए हैं, तो वो मेरी पंजाबी झलक गई उसके अंदर अरिजीत वाली आवाज में
0: जी।
1: तो सब ने बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया मेरा, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया, और निराश होकर वहां से चला गया मैं, कोई दिक्कत नहीं थी। पर मुझे लगता है कि रिजेक्शंस जो है जिंदगी में होने बड़े जरूरी हैं, तभी जाके असलियत पता चलती है अपने अंदर की। तो सेकंड ईयर में आया मैं, सेकंड ईयर में फिर मैं पूरा प्रिपेयर करके आया हुआ था कि चलो कोई हिंदी गाना करेंगे अब
0: जी।
1: हालांकि उस टाइम तक भी कोई प्रॉपर तालीम हासिल नहीं थी मुझे, बट तब भी सेकंड ईयर में आया तो मैंने कोई गाना गाया, उस टाइम पे हिंदी गाना ही था। और उसके बाद बोला कुछ अपना कुछ आप सुनाओ, कोई जो आपका मतलब आप जिसमें कॉन्फिडेंट हो बहुत ज़्यादा
0: जी।
1: तो मैंने बोला भाई मैं पंजाबी सुनाता हूँ, तो सारे जो बच्चे बैठे हुए थे, तो मैंने पूरी अपनी जो मैं दहाड़ के गाता हूँ जो भगवान ने ऊपर से बख्शा हुआ मुझे, तो वो चीज़ गाई मैंने और कहीं ना कहीं म्यूज़िक सोसाइटी में भी सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद आप मानेंगे नहीं, उस साल में सेकंड ईयर में भी मेरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा प्राइजेस थे म्यूज़िक सोसाइटी में।
0: वाओ,
1: इवन कॉयर से ज़्यादा थे
0: जी,
1: जो हमारे कॉयर परफॉर्म करते हैं। और थर्ड ईयर में आके मेरे प्राइजेस डबल हो गए उससे।
0: वाओ,
1: और उसके बाद कहीं ना कहीं मेरे को ये ज़रूर लगा कि ऊपर वाला मुझे कुछ साइन दे रहा है मुझे कहीं ना कहीं कि आगे बढ़ने का साइन है कुछ, शायद मेरे को म्यूज़िक में ही जाना चाहिए। पर ऐसा दौर बना कि कॉलेज के बाद फिर प्रोफेशनली अब कमाना भी है कहीं ना कहीं, आमदन भी बहुत ज़रूरी है, तो मम्मी जी ने बोला कि बेटा कुछ और कर, तो SSC की कोचिंग शुरू कर दी थी मैंने।
0: अच्छा।
1: उस टाइम तक कुछ 2-3 महीने गया तो, पर मन तो लग नहीं रहा था। मेरा एक दोस्त ही था म्यूजिक सोसाइटी का कॉलेज की, उसने बोला कि यार भाई म्यूजिक करते हैं यार। मैंने बोला भाई ठीक है म्यूजिक करते हैं। तो 2 महीने हमने काफ़ी प्रैक्टिस करी और एक शो मेरा सबसे पहला मुझे अच्छे से याद है, एक सूफियाना रेस्टोरेंट होता था रजौरी गार्डन में
0: जी।
1: तो पहला शो मैंने वहीं पे करा था और उसके बाद जो मेरी प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत हुई थी उसमें सबसे बड़ा हाथ मैं एक अपने माँ बाप को तो दूंगा ही दूंगा, पर एक और शख्स का हाथ है उसमें, श्रुति मिश्रा
0: जी,
1: मेरी बहन ही है वो, और उनके पापा भी बड़े बहुत बड़े गजल गायक हैं। मतलब उसने एक स्टोरी डाल दी, हम ऐसी जैम कर रहे थे घर पे बैठ के, उसने स्टोरी डाल दी थी और वहीं से मुझे कॉन्टैक्ट करा गया जिक्र के थ्रू कि एक बार आइए आप, हम आपको सुनते हैं ज़रा और देखते हैं कुछ सबब बनता है तो
0: जी।
1: तो फिर ऊपर वाले ने कुछ ऐसा सबब बनाया कि तब से लेकर अब तक अभी उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ हूँ और बहुत चीज़ें सीखने को मिली हैं, लिटरली बहुत सारी चीज़ें
0: जी, सीखने को मिली
1: और अभी भी सफ़र चल रहा है।
0: वाओ, बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग स्टोरी लग रही है मुझे आपकी। सो मतलब जैसे कई लोग होते हैं बचपन से सीख रहे हैं 5-6 साल की एज से सीख रहे, बट आपकी लाइफ में वैसा कुछ भी नहीं हुआ।
1: नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था सच बताऊं तो। आपके जो YouTube पे भी अभी आपने डाला था, जो मेरे सर हैं बेसिकली मैं उनसे सीखता हूँ, जतेंद्र सिंह सिद्धू, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है।
0: जी जी जी जी,
1: बहुत बड़ा हाथ मैं बताना चाहूँगा क्योंकि मेरे को सच बताऊँ तो नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी
0: जी।
1: उस चीज़ की, म्यूजिक की बेसिकली, तो टेक्निकल चीज़ें उनसे सीखने को मिली है मुझे और अभी भी मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ उनसे।
0: वाओ,
1: क्योंकि ये म्यूजिक तो कभी एंड हो नहीं सकता।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये सागर ही है, जितना डूबते जाओ उतना गहरा है।
0: जी जी,
1: म्यूजिकल जर्नी अभी भी चालू है और
0: नहीं, और
1: किसी मुकाम पे पहुंचना है जरूर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपको वो चालू रखनी ही चाहिए, हमें भी यही लगता है बिल्कुल। और जिनसे आप तालीम ले रहे हैं बहुत ही, वो खुद अपने आप में बहुत अच्छे सिंगर हैं। तो ठीक है, तो जो आपने बताया जैसे कॉलेज टाइम में, मतलब आप जिस तरीके से हमें बता रहे हैं कि पहले आपको रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा और उसके बाद आपके पास इतने प्राइज थे कि वो क्वायर ग्रुप से भी ज्यादा, आप सोलो गाते थे फिर उस टाइम पे?
1: मैं सोलो गाता हूँ, मतलब आप मानेंगे नहीं, मतलब उस टाइम पे भी, मतलब देखा जाए तो मैं पहले स्टेज पे जब पहुंचता था कॉलेज में भी आर्टिफिशियली बिहेव करता था मैं।
0: ओके।
1: अपने डर को निकालने के
0: जी, जी, जी।
1: पर वो जब धीरे धीरे करके ना डर अपने आप ही निकल गया, वो आर्टिफिशियल बिहेव करना अपने आप कैसे कन्वर्ट हो गया कि भाई मैं यही एक पर्सनालिटी हूँ,
0: बिल्कुल
1: आर्टिफिशियल नहीं हूँ, धीरे धीरे करके अपने आप को उस चीज़ में ढाल लिया कि ये चीज़ें करनी पड़ती है एज अ परफॉर्मर, आपको लोगों को लुभाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ जाती हैं
0: जी। कहीं ना कहीं
1: सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जब आप स्टेज पे होते हैं उसका रियाज अलग है
0: जी,
1: और जो घर बैठे हैं गाने का रियाज वो चीज़ अलग है।
0: बिल्कुल,
1: मैं ये मानता हूँ।
0: मतलब आपका कहना क्या है कि जैसे अगर हम स्टेज पर जाते हैं कुछ कुछ चीज़ें हमें थोड़ा सा फेक प्रिटेंड करना पड़ता है ऑडियंस के लिए?
1: पहले तो मुझे लगता है कि अपने आप को जानना बड़ा जरूरी है
0: जी।
1: जब तक आप अपने आप को जानेंगे नहीं तब तक आप आर्टिफिशियली बिहेव करते रहेंगे। तो वो एक फेज जरूर आया मेरी लाइफ में कि मेरे को अपने आप को जानना जरूर पड़ा
0: जी।
1: नहीं तो मैं कुछ टाइम तक मैंने आर्टिफिशियली बिहेव करके काम चलाया, पर एक टाइम पे आके मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मेरे को पहली बात तो अपने आप को जानना पड़ेगा। अगर मैं किसी को कॉपी कर रहा हूँ, किसी आर्टिस्ट को सुन के कॉपी कर रहा हूँ तो वो सही नहीं है। मेरी अलग क्या पहचान है वो मैं अपने आप को जाना पहली बात तो, कि मैं रियल लाइफ में किस तरीके से बिहेव करता हूँ।
0: बिल्कुल,
1: वो अगर स्टेज पे आपका निकल गया है तो मुझे लगता है कि फिर आपकी ग्रोथ बहुत बहुत दूर तक है
0: जी।
1: मुझे ये चीज़ लगती है।
0: और जॉली, जहाँ हमने स्टेज की बात की तो क्या डर कहीं ना कहीं जरूरी है मन में?
1: मैम, हर आर्टिस्ट, हर एक ट्रू आर्टिस्ट को डर होता है
0: जी।
1: स्टेज पे जाने से पहले हर एक ट्रू आर्टिस्ट को डर है। जब तक आर्टिस्ट गिरी जिंदा है वो इसी की वजह से है, जब तक डर है।
0: डर होना बहुत
1: बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: इतनी ऑडियंस के सामने गाना आसान बात नहीं है
0: जी, जी, जी।
1: लोगों को लगता है गा रहा है, अरे क्या है, गा ही तो रहा है और क्या नहीं, बट बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत चीजों से गुजर के आना पड़ता है आपको वहां तक
0: जी।
1: बहुत सारी चीजें रही हैं, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, क्रिटिसिज्म का भी बहुत सामना करना पड़ा है मुझे, पर कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव वे में लेकर वापस से बाउंस बैक करना वो मैटर करता है जिंदगी में, मुझे ऐसा लगता है।
0: सो जॉली जी, आपने काफ़ी अच्छी बातें अभी हमें समझाई कि स्टेज फेयर होना चाहिए और ज़रूरी भी है वो कहीं ना कहीं। तो आप अब अपनी आवाज़ में हमें कौन सा ऐसा गाना सुनाएंगे जो या तो कह लीजिए आपका पहली स्टेज परफॉर्मेंस ही, या फिर आपका कोई भी पहला गीत जो आपके दिल के बहुत ही करीब हो?
1: मैम, मेरी जो शुरुआत थी ज़िंदगी की, जिस गाने ने मुझे मतलब पहचान दी है और जिस गाने की वजह से मैं शायद यहाँ तक पहुँचा हूँ
0: जी,
1: तो वो गाना इबादत है सरताज साहब का। मैं बहुत बड़ा मुरीद हूँ सरताज साहब का, उनकी लिखावट का।

0: वाओ, अमेजिंग जॉली जी, अमेजिंग. इतना खूबसूरत आपने जो अभी सुर लगाए, माय गॉड, मतलब लिटरली गूज बम्स आ गए. और आज तो लगता है हमारी ऑडियंस के भी बहुत चांदी होने वाली है, इतने अच्छे अच्छे गाने आप अपनी आवाज़ में हमें सुनाएंगे. सो गाना है ये इबादत, और सिंगर का नेम आपने सरताज साहब जी का नाम लिया.
1: मैम कवर सॉन्ग निकाला तो नहीं, आप ये बोल सकते हैं कि मैंने जो गाना शुरू करा था
0: जी
1: कॉलेज कॉम्पिटिशन में, वो यही गाना शुरू करा था.
0: ओके.
1: और उस इस गाने की वजह से मेरी पहचान बनी थी. मेरे को अच्छे से याद है कि बड़े धुरंधर आया करते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, बहुत क्लासिकल गायक जो ताने मार रहे हैं, जो अलाप ले रहे हैं इतने बड़े बड़े, और उनके सामने मतलब मैं गा के आया था. और मुझे पूरा विश्वास होता था कि मैं जीतूंगा नहीं, मुझे पता है
0: जी.
1: कोई कॉम्पिटिशन मुझे नहीं जीता ना, और भगवान की दया से मुझे नहीं पता क्या उसके अंदर आवाज़ के अंदर या ऊपर वाले ने क्या बख्शा है या सरताज साहब की बख्शिश हुई है कहीं ना कहीं उस गाने के थ्रू. तो बहुत ब्लेसिंग मिली है, और कहीं ना कहीं मेरे को बहुत सारे इस गाने की वजह से फर्स्ट प्राइज मिले हैं उन धुरंधरों के सामने, जो कि मतलब बहुत बड़े आजकल के टाइम में भी दिग्गज हैं.
0: जी जी जी.
1: हाँ जी.
0: नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. तो आपने ये गाना आप सुनते थे, आपको पसंद था, तभी आपने स्टेज पर गाया, या ऐसे कुछ और भी गाने हैं जो आप गाते थे, गुनगुनाते थे?
1: गाने तो मैं गुनगुनाता तो जरूर था.
0: जी जी जी.
1: हालांकि हाँ, मैं जैसे बोला मेरे को उस टाइम पे तालीम हासिल नहीं थी
0: जी,
1: बट गाने जैसे मेरे पास अपना कंप्यूटर होता था और स्पीकर होते थे, तो उस पर मैं गाने बजा के जोर जोर से गाया करता था. क्योंकि पंजाब में आप देखेंगे तो पंजाब में खेतों में लोग जोर जोर से ऊंची ऊंची गाते हैं.
0: जी जी जी.
1: वो माहौल है, तभी उनकी आवाज भी इतनी खुली वाली चीजें हैं. तो वो कहीं ना कहीं बचपन से ही कह सकते हो आप कि अंदर रमा हुआ था मेरे, जो सुन सुन के सीखा, जो मम्मी से सीखा, जो ऊपर वाले की बख्शिश है. तो सारी चीजों की ब्लेसिंग है मेरे को लगता है कि ऊपर वाले की.
0: बिल्कुल.
1: आप हाँ क्या पूछ रहे थे, मैं तो शायद ऑफ ट्रैक चला गया.
0: नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है आप जो इतना मतलब क्लियरली अपनी चीजें बता रहे हैं, हमसे शेयर कर रहे हैं. डेफिनेटली हमारे लिसनर्स भी काफी इंस्पायर हो रहे होंगे. सो जॉली, जैसे आप कहते हैं कि म्यूजिक सिर्फ एक आर्ट नहीं है बल्कि एक साधना है, राइट? तो इस साधना का सबसे बड़ा लेसन आपने अपनी जर्नी में क्या सीखा है?
1: मैम ये जिंदगी भर का रियाज है
0: जी.
1: ये आप 2 महीने करके, 3 महीने करके, 4 महीने करके, 1 साल 2 साल करके आप ये समझ लें कि अगर आप बहुत बड़े सिंगर बन गए, बहुत बड़े म्यूजिशियन बन गए, ऐसा तो नहीं हो सकता
0: जी.
1: मरते दम तक आपको सीखना ही पड़ेगा. और बहुत सारे जॉनर, जैसे सिर्फ एक जॉनर ही नहीं है, बहुत सारे जॉनर्स को एक्सप्लोर करने के लिए भी आपको ना बहुत लोगों से क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ेगा. जैसे आप वो कौन सी, एक मेरे को याद नहीं आ रहा, वो एक सीरीज आई थी म्यूजिक के ऊपर, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका,
0: बंदिश
1: बैंडिट्स. उसके अंदर वो बंदा क्लासिकल गा रहा होता है मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है, मैंने बिल्कुल देखी है, वो क्लासिकल गा रहा होता है. उसको फिर बॉलीवुड गाने को बोलते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं मुश्किल आती है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसको बहुत ज्यादा. तो हर सिंगर को, हर म्यूजिशियन को मैंने जो अपनी फील्ड में देखा

0: लगता है ये चीज कहाँ तक सही है, क्योंकि लाइव एक अलग तरीका है गाने का और प्लेबैक अलग है, तो इसके लिए रियाज अपना होना चाहिए या कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्या चीज मैटर करती है?
1: मैम टेक्निकल गाने बहुत जरूरी है प्लेबैक के लिए तो,
0: ओके,
1: और इवन लाइव सिंगिंग के लिए भी है, बट अब लाइव सिंगिंग में बहुत तरीके का भी मामला होता है। अब जॉनर जैसे मैंने बात करी, जॉनर भी बहुत सारे हैं। अब रॉक में आपको दहाड़ने वाली आवाज चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि म्यूजिक इतना लाउड है तो आपको आवाज भी अपनी लाउड रखनी
0: है। बिल्कुल।
1: अब अगर मेलो पीछे बज रहा है, म्यूजिशियन मेलो बजा रहे हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट सॉफ्ट सा गाओगे, लोगों को सॉफ्ट मेलो वाइब मिलेगी। प्ले बैक में यह है कि आपको ये दर्शाना है, पहली बात तो आप एक्टर या एक्ट्रेसेस की आवाज बन रहे हो आप वहाँ पे, तो जब आप आवाज बन रहे हो तो आपको अपनी आवाज से ही जादू बिखेरना है वहाँ पे। अब आप फिजिकली वहाँ प्रेजेंट नहीं हो कि आप अपना एक्सप्रेशन करके दिखा पाओ, अच्छा मैं तो ये तान ले रहा हूँ जी, मैं ये वो ले रहा हूँ, अलाप ले रहा हूँ
0: जी,
1: आपको अपने आवाज से ही दिखाना है। क्योंकि अगर कोई गाड़ी में बंदा सुन रहा है तो आपकी आवाज ही सुन रहा है सर, उससे अगर आपको सुकून मिल पा रहा है, ऑडियंस को सुकून मिल पा रहा है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है
0: जी।
1: तो और कहीं ना कहीं जैसे प्लेबैक की आपने बात करी, मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि जो सारे सिंगर्स अभी भी जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उनको ये जरूर बोलना चाहूंगा कि प्लेबैक देखो हर किसी को तो मिलता नहीं है, फिल्म में गाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, बट आपके हाथ में जो है, आपके हाथ में कला ये हो सकती है, आपके हाथ में कलम हो सकती है, आप लिरिक्स लिख सकते हैं, आपके हाथ में अगर आप सिंगर हैं या म्यूजिशियन हैं, आप कॉम्पोजिशंस बना सकते हैं, आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके थ्रू आप अपना म्यूजिक पहुंचाइए लोगों तक। जरूरी नहीं है कि आप उस चीज का वेट करते हैं प्लेबैक हमें मिलेगा, हम तो बड़ा रियाज कर लिया, 10 साल कर लिया, 15 साल कर लिया, तब भी हमें कुछ नहीं मिल रहा
0: जी।
1: आप अपने गाने निकालिए, अपने गाने से आगे बढ़िए। और ये मैं बहुत, मेरे को लगता नहीं कि ये कोई समझता भी होगा इस चीज का, जो लिरिक्स की बात जहां पे आती है ना, लिरिक्स की बात, वहां पे लोग बोलते हैं कि यार ये तो ना ऊपर वाले की आमद है, बट मैं मानता हूँ कि ना इसकी तालीम हम स्कूल में सीख चुके हैं। अब आप पूछेंगे कैसे सीख
0: जैसे
1: चुके? जो हम पोएम्स पढ़ते थे
0: जी,
1: हिंदी की पोएम हो गई, अगर किसी के स्कूल में पंजाबी थी, मेरे स्कूल में पंजाबी थी, या इंग्लिश की पोएम्स पढ़ते थे, तो आप वहीं से सीखते हुए आ रहे हैं, राइमिंग स्कीम्स सीखते हुए आ रहे हैं, राइमिंग वर्ड सीखते हुए आ रहे हैं
0: जी।
1: वही चीजें ही गाने में तब्दील हो जाती हैं बाद में जाके।
0: बिल्कुल।
1: काफिया रदीफ जो उर्दू के 32 बहर हैं, मीटर्स जो होते हैं उर्दू के, 32 बहर 32 मीटर जो होते हैं, उसी के अंदर ही, उसी के इर्द गिर्द ही गाने घूमते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जो गजल है, गजल 32 मीटर में सारी की सारी होती है, जो गाने हैं वो भी मीटर में होते हैं। अगर किसी को मीटर नहीं भी समझ, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, ये भी मैं बादशाह सर का भी नाम लेना चाहूंगा, एक बार मैंने उनसे भी सीखा था, और मेरे एक दोस्त भी हैं।
0: अच्छा।
1: मतलब कुछ कुछ जैसा होता है ना, एक एलिमेंट आप यहाँ से समझते हैं, फिर वहां समझते हैं।
0: हाँ, किसी से भी सीखने के लिए।
1: एग्जैक्टली।
0: बिल्कुल।
1: आपकी रिसर्च जारी आप अपनी रखो पहली बात तो, फिर हल्का हल्का आपके ना पॉइंट्स क्लियर होते रहेंगे, कुछ अगर बंदा यहाँ से बताएगा, कुछ वहां से बताएगा, आपके पॉइंट्स क्लियर होते रहेंगे। तो मीटर में लिखना लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है, पर मीटर में लिखना सबसे ज्यादा आसान है।
0: अच्छा।
1: आप किसी भी गाने को पकड़ो, उसकी ऑलरेडी जो कॉम्पोजिशन बनी हुई है उसी पे वर्ड्स चेंज कर दो।
0: okay.
1: आप अपने वर्ड्स लिख दो
0: जी,
1: उसके बाद कॉम्पोजिशन चेंज कर दो, आपका गाना बन गया।
0: वाओ।
1: ये सिंपल सिंपल चीज बता रहा हूँ मैं
0: जी,
1: जो हर बंदा, हर सिंगर, हर म्यूजिशियन कनेक्ट कर पाएगा इस चीज से। अब ये बात वो अलग है कि कॉम्पोजिशन बनाने में कितना टाइम लगेगा, उसके लिए रियाज अलग, उसके लिए बैठना पड़ेगा।
0: जी जी जी। तो जॉली, आपका कभी मन करता है कि आप अपने खुद के लिखे हुए गानों को आगे करें कंपोज?
1: बिल्कुल मैम, मैं तो अभी कर ही रहा हूँ।
0: कर ही रहे हो, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में है आई थिंक।
1: मेरा अभी, अब मैं सस्पेंस ही क्रिएट करूंगा, क्योंकि ये अब सिंगल आने वाला है या ईपी आने वाली है, एल्बम आने वाली है, वो तो आप सब देखेंगे ही
0: जी।
1: जो मर्जी बोल लीजिए, एल्बम बोल लीजिए, ईपी बोल लीजिए, सिंगल बोल लीजिए, द फर्स्ट चैप्टर मैंने नाम रखा है उसको। फर्स्ट चैप्टर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैंने अभी तक जो गाने करे हैं वो मैंने सारे अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके करे हैं।
0: अच्छा।
1: मतलब उसमें शायद मेरा जो एक रंग है वो नहीं दिखा पाया हूं मैं अभी तक।
0: ओके।
1: जो मैं करता हूँ, जिसको मैं डिफाइन करूँ कि ये जॉली है, ये सौरभ जॉली है, इस चीज से डिफाइन होता है जॉली
0: जी।
1: तो मैं वो चीज अब करने जा रहा हूँ, मेरी अपनी लिखावट उसके अंदर बहुत सारे गानों की, और मैं उनका सबका मैं नाम भी लेना चाहूँगा। पहली बात तो बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं जिक्र का भी बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा उसमें सारे, मेरे मोहित भाई, दो मोहित भाई हमारे, मोहित भाई हो गए, लवण्या भाई, मानसू भाई, विधि, जीशन भाई, आसिफ भाई, तुशांत भाई, बहुत सारे जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। एक गाना बनने में मैम बहुत सारे बंदों का हाथ होता है। पहली बात तो लिरिक्स राइटर, अब लिरिक्स मैंने बहुत गानों के तो मैंने ही लिखे हैं,

0: एक गाना मैंने अपने दोस्त से भी लिया है, उसने भी बहुत अच्छा लिखा है, वो दोस्तों यारों के ऊपर गाना है।
1: अच्छा।
0: वो इंद्रजीत, मैं उसका नाम लेना चाहूंगा, उसने भी मेरे पहले भी मैंने उसके साथ बहुत गाने करे, गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर गाने करे थे, तो वो चीज इंद्रजीत का नाम लेना चाहूंगा मैं। विकेट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और म्यूजिक जो मिक्स कर रहे हैं, तो एक कलेक्टिव एफर्ट है ये, सिर्फ मेरा एफर्ट नहीं है कि मैं गाना गा रहा हूँ, मैं कंपोज कर रहा हूँ,
1: बिल्कुल।
0: बट हाँ, ये चीज है कि आपको बहुत रिलीफ हो जाता है अगर आपको लिरिक्स राइटर के पास नहीं जाना पड़ता, तो आपको खुद रिलीफ हो जाता है बहुत ज्यादा। मैं ये मानता हूँ आपके पास खुद के लिरिक्स हैं, आप खुद गाते हो, खुद कंपोज करते हो। आप ये देखते हो अगर करण औजला चल रहा है, सिद्धू भाई चल रहे थे, ये और भी पंजाबी सिंगर जो लिखते हैं कंपोज करते हैं खुद, तो वो क्यों आगे हैं? क्योंकि उनको दर दर भटकना नहीं पड़ रहा कि हमारे लिए लिरिक्स लिख दो जी, दो दो तीन तीन महीने की वेटिंग नहीं है उनके लिए
1: जी।
0: उन्होंने खुद बना लिया वो चीज, खुद उसका रियाज करा हुआ है। अगर आप, कई लोग कहते हैं कि यार हम तो पढ़ पढ़ के जी लिरिक्स हमसे नहीं लिखे जाते, कई लोग ऐसे करते हैं जी किताबें पढ़ने शुरू कर देते हैं उसमें फिर उससे लिरिक्स लिखते हैं। आप किताबें पढ़ेंगे आपकी वोकैबुलरी पहली बात तो बढ़ेगी, हालांकि मैं ये नहीं मानता कि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, बट मेरा दूसरा नुस्खा है कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ, मेरा एक दूसरा नुस्खा है। अब हर किसी का अलग अलग, मेरे को लगता है कि हर अलग अलग नुस्खे हो सकते हैं, हर किसी की अलग अलग तुकबंदियां हो सकती हैं
1: जी।
0: तो आधा काम तो आपका वहीं पे आसान हो गया, लिरिक्स आपके हो गए, कॉम्पोजिशन आपकी हो गई, सिंगर आप खुद हैं
1: जी।
0: उसके बाद सिर्फ आपको एक प्रोडक्शन वाला बंदा चाहिए, आपको मिक्स वाला बंदा चाहिए बहुत अच्छा, और फिर साथ में आपको बाद में जाके जो रोल आता है, जब आपको अगर एक बड़ा आर्टिस्ट बनना है प्रमोशंस, तो उसके बारे में भी मैं बहुत बहुत ही बड़ा वास्ट टॉपिक है ये।
1: हाँ।
0: मैं बहुत बड़ी चर्चा करना चाहूंगा इसके बारे में भी, प्रमोशंस भी हो गए और आर्टिस्ट मैनेजर्स यहाँ तक पहुंचना बड़ा जरूरी है, तभी एक बड़ी जर्नी बनती है, नहीं तो आप फिर अपने चैनल पे निकाल के खत्म हो।
1: बड़ी और अच्छी जर्नी, सक्सेसफुल जर्नी तभी बन पाती है। और आपकी लाइफ में भी मुझे लगता है सभी का, आपके जिन्होंने आपके नेम्स लिए आपने जिनके, तो उनका सबका कॉन्ट्रीब्यूशन काफी हद तक रहा है, उन्हीं के साथ से ये चीज आपकी यू नो सक्सेसफुल हो पाई।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं हिमांशु भाई के शायद नाम लेना भूल गया।
1: अच्छा। तो हम डेफिनेटली प्रे करेंगे कि आपकी ये कब आ रही है एल्बम, पहले आप हमें बताइए कब हम सुन सकते हैं ये
0: हमारी। मैम मेरी एल्बम तो मैं एक स्पेसिफिक डेट तो नहीं बोलूंगा, पर इस 2026 में ही मैं या तो वो धीरे
1: आप लॉन्च
0: करके निकालूंगा या फिर इकट्ठे
1: निकालूंगा,
0: मतलब क्योंकि सारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी लोग।
1: वाओ, चलिए इंशाल्लाह हम आपके लिए प्रे करते हैं कि विशेस हमारी आपके साथ है। सो दोस्तों अब वक्त हो चला एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे जॉली जी के साथ। अब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सौरभ जॉली जी। तो सौरभ जी, हमें एक बात बताइए, आपने अपने बैंड का नाम लिया जिक्र बैंड, राइट?
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो कैसे आप इस बैंड का हिस्सा बने और अब आप देश में बल्कि या विदेशों में भी बहुत परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं, तो हमें बताइए इसके बारे में।
1: मैम, बहुत बड़ा रोल रहा है जिक्र का मेरी जर्नी में, और एज एन इंडिविजुअल आर्टिस्ट भी बहुत बड़ा रोल रहा है, और एज अ कलेक्टिव टीम भी बहुत बड़ा रोल रहा है। हम फैमिली जैसे ही हैं सारे। शुरुआत में जैसे मैंने आपको आई थिंक पहले बताया था कि श्रुति मिश्रा जो
0: जी,
1: है
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: उनकी वजह से, एक स्टोरी की वजह से कहीं ना कहीं हमारा कॉन्टैक्ट हुआ, और फिर जब वहाँ से जुड़ा मैं, तो जैसे मैंने बताया कि उस टाइम भी बॉलीवुड जो था थोड़ा हल्का हल्का मामला ही था, ऐसा नहीं था। तो धीरे धीरे करके उनसे सीखा, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, और बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी मिला है, पर उसको पॉजिटिव वे में लेके मैंने बाउंस बैक करा है। मुझे ये आइडिया है, मुझे अभी तक जो मैं अभी तक भी करता हूँ, कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियाँ तो इंसान में रही जाती हैं मैम
0: जी,
1: तो अभी तक वो चीज़ चल रही है, और मेरे को लगता है कि चलनी भी चाहिए, तभी मेरी भी ग्रोथ होगी और एज अ टीम भी ग्रोथ होगी
0: जी।
1: तो वापस से मैं एक बार सबके नाम लेना चाहूंगा जिक्र में, मोहित भाई, दोनों दो मोहित भाई हमारे, हिमांशु भाई, लवण्या भाई, और विधि, रीशन भाई, आसिफ भाई, तुशांत भाई, और वापस से अगर मैं किसी का नाम बोल रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी।
0: तो आप पर... इसमें लीड सिंगर हैं?
1: हाँ, मतलब... जी, मैं लीड सिंगर हूँ, और साथ में हमारी फीमेल सिंगर भी।
0: और आपको अब कितना समय हो गया इस बैंड के साथ जुड़े हुए, कितने साल हो गए?
1: मैम, मेरे को 6 साल से ऊपर हो गया है।
0: नाइस, वेरी नाइस। तो आपने जैसे कि इंडिया में तो परफॉर्मेंसेज आप करते ही हैं, आपने बाहर भी परफॉर्म किया हुआ, लाइक मलेशिया, नेपाल और भी जगह, तो वहाँ पे ऑडियंस का किस तरीके से रुख रहता है, थोड़ा सा वो हमें बताइए। क्योंकि इंडिया में तो काफ़ी लोग अपने इंडियन गानों के लिए, बॉलीवुड सॉन्ग्स के लिए रहते हैं, इवन पंजाबी के लिए भी, तो बाहर आपको ऑडियंस का कैसा यू नो इम्पैक्ट वहाँ पे नजर आता है, क्या उनका रहता है फीडबैक?
1: वहाँ पे भी सब सुनते हैं।
0: अच्छा,
1: ऐसी
0: सुनते
1: बात नहीं है कि वहाँ, अगर यहाँ पे पंजाबी सुनते तो वहाँ नहीं सुनेंगे, यहाँ बॉलीवुड सुनते तो वहाँ नहीं सुनेंगे।
0: जी जी जी,
1: सब चीजें सुनी जाती हैं बाहर भी। अब जैसे आप फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे सोचे, अब उनके लिए जो बाहर रहते हैं, उनके लिए हम फॉरनर्स हैं
0: जी।
1: अब हम भी कहीं ना कहीं वेस्टर्न म्यूजिक सुनते हैं, अफ्रीकन म्यूजिक सुनते हैं, अब वो किसी दूसरे नजरिए से आता है हमारे पास। लिरिक्स बस इंडिया के होते हैं और म्यूजिक जो होता है वो बाहर का होता है।
0: ओके,
1: तो मेन अगर आप देखा जाए, अगर हम सुन रहे हैं किसी म्यूजिक को, स्पैनिश म्यूजिक सुन रहे हैं, अगर एफ्रो म्यूजिक सुन रहे हैं, हम किसी और पर्टिकुलर जॉनर को सुन रहे हैं, वेस्टर्न म्यूजिक सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पैर थड़कने शुरू हो जाएंगे
0: जी,
1: आपका सर झूमना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने पैर थड़कवा दिए, अगर आपने सर झुमवा दिया किसी का, तो मुझे लगता है कि आप चाहे वो फॉरनर हो, चाहे वो मतलब कोई जिसको क्या भी टर्म बोलना चाहेंगे, विदेशी या फिर स्वदेशी, कोई भी बंदा हो, वो कनेक्ट जरूर करेगा।
0: जी जी जी,
1: मैं ये मानता हूँ।
0: मतलब वहाँ पे भी आपको काफी अच्छा रिस्पांस मिला?
1: 100% मैम, 100%।
0: बिल्कुल,
1: मतलब तो... उनके मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि जब सारे जब नाच रहे होते हैं, उनके पैर अपने आप, मतलब फॉरनर्स को क्या पता कि कैसे भांगड़ा
0: जी,
1: होता है।
0: जी जी जी,
1: तो अपने आप ही उनके पैर थिड़कने शुरू होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार हमारा म्यूजिक भी ये लोग सुनते हैं, तो कितनी प्राउड फील वाली बात है हमारे लिए।
0: तो जॉली, जो आप अपने बैंड के साथ, कोई एक आपका होगा ना, एक जो सबसे बेस्ट आपका नंबर सॉन्ग है, वो हमें गा के सुनाइए, जिसपे एक्चुअल में लोगों के पैर थिड़कते हैं।
1: अच्छा, तो पंजाबी गाना ही?
0: हाँ हाँ, पंजाबी।
1: हो गुड़ नाल ओए शिक मिठा, हो गुड़ नाल ओए शिक मिठा, आए हाए ओ रब्बा लगना किसे नू जावे, गुड़ नाल इश्क मिठा, ओ मेरी भावे जिंद कड लै, हो मेरी भावे जिंद कड लै, आए हाए हो मेरे यार नू मंदा ना बोलनी, मेरी भावे जिंद कड लै, ओ लड्डू खा लै बाणी एहदे, हो लड्डू खा लै बाणी एहदे, आए हाए ओ गन्ने चूप लै जट्टां दे पोले, लड्डू खा लै बाणी एहदे।
0: वाओ, अमेजिंग, हमें भी पूरा डांस का माहौल बन गया यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। बहुत ही मजा आ रहा है आज आपके साथ, आपकी सिंगिंग जर्नी के बारे में बात करते हुए, और बहुत ही इंस्पायर भी हो रहे हैं हम भी, इवन हमारे लिसनर्स जो सुन रहे हैं आज आपको। तो जॉली जी, हमें ये बताइए कि आपने जैसे अपनी जो बचपन में अपनी मम्मी के साथ गाया, उनको देखा अपने गाते हुए, उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी, तो अब जैसे आप इतने बड़े हो गए हैं, अपने शोज़ करते हैं, अपना आपका एक बैंड है बहुत अच्छा, तो क्या अभी भी मम्मी आपको कहीं ना कहीं करेक्ट करती हैं, कुछ सलाह देती हैं, या फिर आप मतलब इग्नोर करते हो उन चीज़ों को, या मानते हो उनकी बात?
2: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी भी मम्मी करेक्ट करते हैं बहुत सारी चीजों में
0: जी।
2: मैं तो मतलब मम्मी का मुरीद हूँ सच्ची बताऊँ तो, क्योंकि मम्मी लता जी को गाते हैं।
0: वाओ
2: उनसे तो ऊपर कोई है था ही नहीं और ना है और ना होगा मेरे को लगता
0: जी,
2: है
0: जी, जी।
2: तो उनके उनके गाने गाने ही बहुत बड़ी बात है। तो जब भी कुछ बॉलीवुड वाली चीज मतलब मैं गाता हूँ हल्की फुल्की तो मम्मी मुझे करेक्ट भी करते हैं, हाँ नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है बेटा, ऐसे नहीं ऐसे होता है।
0: जी जी। सो मतलब आप अपनी मम्मी की एडवाइस को मानते हैं?
2: 100%
0: जो वो आपको समझाते हैं उसको डेफिनेटली आप फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल मैं करता हूँ, और करनी भी चाहिए क्योंकि देखो चाहे मम्मी हो मैम, चाहे पापा हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी इंसान हो, हर किसी इंसान से आपको सीखने को मिलता है।
0: जी बिल्कुल, बिल्कुल।
2: म्यूजिक ना हो तो नहीं, तो कहीं ना कहीं लाइफ लेसन भी सीखने को मिलते हैं। जैसे मैंने बात करी जो मेरे सर हैं जगतेंद्र सिंह सिद्धू जी, तो उनसे सिर्फ म्यूजिक लेसन ही नहीं मिले मुझे, मुझे लाइफ लेसन भी बहुत सारे मिले हैं
0: जी,
2: जिनकी वजह से एक माइंड सेट क्रिएट हुआ है कि हाँ इस तरीके से मैं आगे बढ़ सकता हूँ।
0: जी जी जी।
2: क्योंकि जब आप मार्केट में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिलती हैं, तो आपको कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रांग भी होना पड़ता है।
0: बिल्कुल।
2: सर का बहुत बड़ा योगदान है उसमें, और मम्मी पापा का तो है ही
0: जी, नहीं होना भी चाहिए, और हम तो
2: बाकी खुद के एक्सपीरियंसेस भी हैं बहुत सारे।
0: जी जी जी। नहीं जरूर होना चाहिए। और जॉली जैसे आपने बचपन से म्यूजिक, चलिए आप गाते थे अपनी मम्मी के साथ और बाद में आप इस लाइन में, तो कुछ लोगों का तो देखिए सपोर्ट रहता है, पेरेंट्स का तो डेफिनेटली रहता है, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको मतलब हर जगह बोलते हैं, मतलब मना करते हैं कि अरे म्यूजिक में क्या करियर रखा है, पढ़ो और ये सब करो, मतलब वो ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ जहां आपको स्ट्रगल करना पड़ा?
2: मैम स्ट्रगल जो वर्ड है मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में ना, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे में लेकर बाउंस बैक करना
0: जी,
2: ये बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है।
0: बिल्कुल।
2: क्योंकि जब आप उस फेज में होते हो कि आपको कुछ वैसा सुनने को मिल रहा है कि आप ऐसा कर रहे हो वैसा कर, तो माइंड में बहुत सारी चीजें आती हैं कि यार मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मतलब बंदा हो सकता है डिप्रेशन में भी चला जाए। और मेरा एक हाँ हालांकि फेज आया था कि तकिए में घुस घुस के मैं रोता होता था तो पर मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं यार मुझे करना है
0: जी।
2: क्योंकि मैंने चूज करा तो मुझे करना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: मुझे लगता है कि मैं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर ये चीज मैंने फील्ड चूज करी है तो मुझे ही कुछ ना कुछ करके आगे खुद ही बढ़ना है, कोई मेरे को आगे हाथ नहीं दे देगा
0: जी।
2: बाकी जो पीछे खींचने वाले होते हैं, जैसे जो आप बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं वो बहुत होते हैं मैम, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
0: बिल्कुल।
2: तो वो तो जिंदगी भर चलता
0: रहेगा, और वो तो हाँ अभी भी वो चीज कंटिन्यू
2: हो, बिल्कुल चलता रहेगा। बट हाँ मेरे को ये भी चीज लगती है क्रिटिसिज्म जो है बहुत जरूरी है लाइफ में
0: जी,
2: हर इंसान के लिए एक असली चेहरा दिखाना बड़ा जरूरी है।
0: बहुत अच्छी यहाँ पे आपने बात बोली है कि ये चीज तो लाइफ में चलती रहेगी और कभी कभी क्रिटिसिज्म भी जरूरी रहता है आगे बढ़ने के लिए। और ये मुझे लगता है सिर्फ सिंगिंग में ही नहीं, हर लाइन में ये चीज अप्लाई होती है।
2: 101%।
0: बिल्कुल। तो जॉली एक चीज और बताइए, जैसे एक जगह मतलब आप क्लासिकल सिंगर हैं अगर कोई, और साथ में वो अपना शोज वगैरह, आप किसको ज्यादा तवज्जो देंगे, मतलब क्या चाहेंगे कि किस चीज में ज्यादा अच्छा करियर बन सकता है, क्लासिकल या स्टेज परफॉर्मर, किस चीज में?
2: मैम सिंपल अगर आंसर दूं तो अगर आप अपनी जेब के लिए करना चाहते हैं
0: जी,
2: तो वो लाइव परफॉर्मेंसेस हैं।
0: बिल्कुल।
2: क्योंकि प्लेबैक करके और अपने गाने भी करके आपको वापस से रिटर्न नहीं मिलेगा।
0: ओके।
2: लाइव परफॉर्मेंसेस करके आप अपने घर का खर्चा चला सकते हैं।
0: बिल्कुल।
2: क्लासिकल सिंगिंग में भी है, मेरे को मैं सच्ची बताऊं तो मेरे को उसके बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है।
0: ओके।
2: मैंने कॉन्सर्ट्स इतने ज्यादा अटेंड नहीं करे, मैंने एक ही बारी राजन साजन मिश्रा जी, मैं कानू का हाथ लगाऊंगा
0: जी, तो जी, जी।
2: उनका मैंने करा था अटेंड, और वो बहुत बड़े दिग्गज हैं
0: जी,
2: उनमें से एक भाई तो नहीं रहे पर
0: हाँ
2: हमारे दिलों में जरूर बसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो क्लासिकल सिंगिंग एक अलग जॉनर है। बाकी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आमदन के लिए करना है, अपने रूह के मनोरंजन के लिए करना है
0: जी,
2: तो वो चीज करनी चाहिए आपको लाइव शोज।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: रूहानियत हर चीज में मैम, आपके अंदर रूहानियत है, मेरे अंदर रूहानियत है, जो बंदे जो पशु पक्षी हैं, जो पेड़ पौधे हैं, हर किसी के अंदर रूहानियत तो है
0: जी।
2: जो अब जैसे मेरी जो जर्नी गुरुद्वारे से शुरू हुई है, रूह की शांति के लिए जो गाना है वो एक अलग गाना होता है। मैं मस्कीन जी की एक बात बोल रहा हूँ कानों हाथ लगा के, उन्होंने ये चीज बताई थी कि रूह की शांति के लिए जो गाना है वो एक अलग पर्सपेक्टिव है, और रूह के मनोरंजन के लिए गाना है वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। दोनों में रूहानियत है, ऐसी बात नहीं है, बट दोनों अलग चीजें हैं
0: जी।
2: अब ये बहुत बारीक बात है, जो समझने वाले हो शायद समझ जाएंगे।
0: बिल्कुल जरूर समझेंगे। ओके सो जॉली जी, आपने जैसे अपने बहुत से सॉन्ग्स भी किए हैं और आप कवर्स भी गाते हैं, बैंड्स में भी परफॉर्म करते हैं अपने, तो अपने गाने करके कोई इंसान कितना आगे फेमस हो सकता है, कितना लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है, इसके बारे में बताइए।
2: मैम इसकी तो बहुत बड़ी जर्नी है
0: जी।
2: अपने गाने करके भी मतलब 100 गाने कर लीजिए आप, ऐसा भी हो सकता है कि 100 के 100 ना चले
0: जी,
2: और ऐसा भी हो सकता है कि आपके 100 में से 50 चल जाएं, 10 चल जाएं या 1 चले, ऐसा भी हो सकता है। बट वो अगर आपको एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको एक टीम ज़रूर चाहिए। अपने गाने तो प्लीज़ आप करते ही रहें, वो बहुत ज़रूरी है अपनी एक मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू बनाने के लिए, पर साथ में आपको ये भी जानना पड़ेगा कहीं ना कहीं आपको एक टीम ज़रूर चाहिए। अब वो बहुत बड़ी टीम हो सकती है। देखिए अब गाना जब बन जाता है तो आप एक लेबल के पास जाते हैं, बट लेबल से अगर आपका डायरेक्ट कांटेक्ट है तो ठीक है, वरना आपको एक आर्टिस्ट मैनेजर चाहिए।
0: बिल्कुल,
2: उसके लिए कि जो कांटेक्ट करेगा। उसके बाद जर्नी शुरू होती है प्रमोशंस वगैरह की
0: जी,
2: और ये बहुत बड़ी गेम है। मतलब जो आप गाना सुनते हैं इंस्टाग्राम पे बार बार, वो आपको जो सुनाया जाता है, इसके पीछे बहुत बड़ी गेम है
0: जी।
2: मतलब ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे बताता होगा, और मेरे तो चलो अभी गाने निकल रहे हैं तो मेरे को तो मैं ये चीज़ मुझे पता है कि किस तरीके से हो रही है, और लोगों को भी पता होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कोई आज तक किसी ने अपने इंटरव्यू में पॉडकास्ट में ये चीज़ बताई है
0: जी।
2: हालांकि पता सबको होता है कि रीलें बननी है, कैसे कैसे चलना है, पर कोई बताएगा नहीं खुल के कि ये जो आप गाना अगर कोई चढ़ जाता है
0: जी,
2: उसको पहली बात तो आर्टिफिशियली पहले आपको वो पुश करेंगे गाना इंस्टाग्राम पे, उसके पीछे बहुत करोड़ों रुपए लगा होगा, लाखों रुपए लगा होगा। जो आप रील्स देखते हैं, जो लड़कियां रील्स बनाती हैं डांस करके, लड़के रील्स बना रहे होते हैं, तो पहले उस गाने को आर्टिफिशियली पुश करा जाता है।
0: ओके।
2: जब वो लोगों तक पहुंच जाता है, बार बार वो लोग सुन लेते हैं
0: जी।
2: क्योंकि आप खुद देखिए ना कि अगर कोई गाना बज रहा है, आपने एक बार सुना, दो बार सुना, जरूरी नहीं है आप उस टाइम पे रील बना दोगे
0: जी।
2: अब जब तक आप ना, आपका कोई दोस्त नहीं बोलेगा या कोई आपका रिलेटिव, यार वो गाना बड़ा अच्छा है यार
0: जी।
2: अब वो भी रिलेटिव भी रील बनाने शुरू कर दी, वो आपके इर्द गिर्द के लोग रील बना रहे, तब जाके आप सोचो कि हाँ यार
0: कि हमें गाना भी तो बड़ा अच्छा है।
2: बट उस गाने की जर्नी जो चल रही है वो बहुत पहले से चल रही है
0: जी।
2: वो आर्टिफिशियली पहली बात तो पुश करा गया, उस पर प्रमोशन बहुत ढेर सारा करोड़ों रुपया लगा हुआ है। गाना बिल्कुल अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, गाना बिल्कुल अच्छा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है वो, पर इसके पीछे गेम है
0: जी।
2: ये पूरी जो लोग बताते नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि बतानी
0: नहीं,
2: एक सच बताना बड़ा जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: मैं मानता हूँ
0: जी जी जी। नहीं ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, और बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कि पीछे का क्या है स्टोरी, क्या रहता है प्रोसीजर पूरा, तो बहुत ही अच्छी चीज आपने आज हमें बताई है। तो जॉली जी, अब हमने आपके सफर के बारे में तो बहुत सही बात कर ली, लेकिन अब वक्त हो चला है एक रैपिड फायर राउंड का जो हम आपके साथ करेंगे।
2: ये तो बड़ा मुश्किल है।
0: सो आर यू रेडी?
2: अच्छा।
0: ओके सो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अर्ली मॉर्निंग रियाज या लेट नाइट जैमिंग?
2: देखिए ज्यादातर तो मैंने जैम लेट नाइट करा है और मजा बहुत ज्यादा आता है। सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा लेजी लेजी सा फील होता है।
0: ओके
2: करते हैं, बिल्कुल वो भी करते हैं, बट लेट नाइट जैम्स बड़े अच्छे रहते हैं, मजा आता है उसमें।
0: नाउ शबद गुरबानी या सूफी सोल?
2: मैम शबद गुरबानी
0: जी, वो मुझे लगी रहा था।
2: इसलिए करेंगे क्योंकि वो शांति
0: जी जी जी, सूफी काफी सुकून।
2: सूफी बेसिकली एक स्टेट है, लोग समझते हैं आजकल जो चल रहा है ट्रेंड, चल रहा है सूफी का गाना ट्रेंड चल रहा है, ये म्यूजिक कवाली है, ये जॉनर इसको कवाली बोलेंगे, बट ये सूफी बोलना शुरू कर दिया लोगों ने कि सूफी बैंड है या सूफी गाने हैं, ऐसा है नहीं असल में वैसे।
0: ओके नाउ लाइव स्टेज या स्टूडियो माइक?
2: लाइव स्टेज या स्टूडियो माइक? मैम दोनों
0: दोनों। ओके इंडिया टूर या इंटरनेशनल टूर?
2: इंटरनेशनल टूर में बहुत मजा आता है।
0: ओके
2: अपना देश प्यारा है
0: जी जी जी, बहुत स्मार्टली आप आंसर कर रहे हैं। Now, इबादत या ओरिजिनल कॉम्पोजिशन?
2: मैम ओरिजिनल कॉम्पोजिशन, क्योंकि एक सिंगर की जो पहचान है मुझे ऐसा लगता है, या सिंगर या म्यूजिशियन जो भी, उसकी पहचान सिर्फ अपने गाने से ही होती है। वो उस तक ही जोर लगा रहा होता है जब तक मेरा गाना हिट ना हो जाए, उस एक गाने की ही वेट हो रही होती है बहुत टाइम से
0: जी,
2: तो ओरिजिनल कॉम्पोजिशन में ही बोलूंगा।
0: ओके सोलो परफॉर्मेंसेस या बैंड जिक्र के साथ?
2: जिक्र बैंड मैम ऑलवेज.
0: ओके नाउ हाई नोट्स या डीप सोलफुल आलाप्स.
2: मेरा जो रुझान ज्यादा है वो पंजाब के कल्चर से बहुत जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे हाई नोट्स ज्यादा लिए जाते हैं, तो मैं वो उस पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ.
0: नाउ हेडफोन्स ऑन या स्पीकर लाउड.
2: स्पीकर
0: जी, लाउड स्पीकर.
2: लाउड वैसे लाउड इतना ज्यादा नहीं, ठीक मतलब ठीक ठाक.
0: ओके ओके नाउ वन वर्ड दैट डिफाइंस योर म्यूजिक.
2: एक वर्ड में पूरा सीमित कर देना म्यूजिक को, मेरे को नहीं लगता कि ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए सही रहेगा, तो मैं इसका जवाब तो नहीं बोलूंगा. सच बता रहा हूं मैं.
0: ठीक है, थोड़ा सा
2: खुद एक सागर है, तो उसको एक वर्ड में डिफाइन
0: नहीं कर सकते, शब्द में नहीं डिफाइन कर सकते. ये भी बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है. नाइस. सो जॉली जी, एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का यहाँ पे समय हो गया है. लिसनर्स जल्दी से म्यूजिकल ब्रेक से वापस आते हैं, फिर जॉली जी के साथ उनके एक अमेजिंग से सॉन्ग और उनके एक मैसेज के साथ अपने इस वार्तालाप को हम यहाँ पे खत्म करेंगे. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील.

0: वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुपर टैलेंटेड सौरभ जॉली जी। सो सौरभ जी, अब लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप आज के यूथ को, आज की जनरेशन को जो म्यूजिक में अपना करियर देखते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: मेरा तो यही हिदायत रहेगी कि अपने गाने जरूर बनाओ, अपनी मार्केट वैल्यू, अपनी फेस वैल्यू बहुत जरूरी है
0: जी।
1: अपने गाने बनाएंगे तो आप जाने जाएंगे लोगों में, तभी जाके वो कहते ना कि अब स्टेज परफॉर्मेंसेस तक कैसे पहुंचना है, तो वो यही जरिया है। आप अपने गाने निकालेंगे, अगर आपका कोई भी गाना क्लिक हो गया ऑडियंस को, तो तभी आपको ओकेजन्स पर बुलाया जाएगा, इवेंट्स पर बुलाया जाएगा, चाहे वो वेडिंग हो, चाहे वो फेस्टिवल्स हो, चाहे वो कोई बर्थडे पार्टी हो, चाहे वो किसी भी तरीके का इवेंट हो। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर गाना हिट करने की देर है
0: जी।
1: अगर आपके दिमाग में, अगर आप गाड़ी में सुनते सुनते जा रहे हैं कि यार ये यार सिंगर बड़ा अच्छा है, यार ये क्या गाना गाया यार, आप सोचिए कि 2 घंटे की परफॉर्मेंस और वो सिर्फ एक गाना सुनने के लिए बुला रहे हैं आपको, सोचो।
0: बिल्कुल।
1: और सिर्फ आप उस एक गाने से हिट हो गए हो, बाकी के गाने आप चाहे कुछ और भी गाओ
0: जी,
1: बट सिर्फ एक गाना आपको सुनने के लिए बुला रहे हो तो उसके आपको कितने, मतलब लोगों को पता भी है नहीं भी पता, लाखों लाखों रुपए मिल जाता है, करोड़ों करोड़ों रुपया भी मिल जाता है उस चीज के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। बस ये हिदायत है कि अपना म्यूजिक जरूर करें
0: जी,
1: वो बहुत जरूरी है।
0: मतलब अपनी पहचान, कवर्स वगैरह के साथ अपना भी,
1: अपनी पहचान बनानी बहुत जरूरी है मैम
0: जी।
1: मेरे को तो कोई, जैसे कॉलेज में ये बोलते होते थे कि तू ना इसके तरीके का गाता है, तू ऐसा गाता है
0: जी,
1: यार मतलब मेरे को डिफाइन करते थे किसी सिंगर से,
0: कि किसी से मैच कर।
1: अब लोगों को तो इतने बड़े बड़े नाम सुन के किसी सिंगर को तो लगेगा यार क्या बात है, मुझे कंपेयर कर रहा है वैसे
0: जी।
1: बट मेरे को पर्सनली बहुत बुरा फील होता था,
0: बिल्कुल
1: मेरी उल्टी अप्रोच थी, क्योंकि मैं किसी और के नाम से नहीं जानना मतलब पसंद करूंगा अपने आप को। मैं चाहूंगा कि मेरा खुद का नाम बने, मेरी खुद की पहचान बने, जो मैं हूं मैं वो बाहर से भी वैसे दिखूं जैसा मैं अंदर से हूं।
0: बिल्कुल।
1: That's all.
0: नहीं, बहुत अच्छी सीख है आपने हमें दी और बहुत अच्छी बात कही कि अपनी पहचान बनानी बहुत जरूरी है, और इवन हर फील्ड में ये चीज लाजमी है। सो जॉली जी, अब लास्ट में आप कौन सा गाना हमें सुनाएंगे, हमारे लिसनर्स को सुनाएंगे?
1: आजकल मैं लाइव में मैं करता हूँ तो बड़ा पसंद करते हैं लोग, मैं वो गाना चाहूंगा, बांध साहब का गाना है वो
0: जी। जरूर।
1: घगरे भी गए फुलकारियां भी गई, कन्ना बिच कोकरू दे वालियां भी गई, आओ घगरे भी गए फुलकारियां भी गई, कन्ना बिच कोकरू दे वालियां भी गई, रेशमी दुपट्टे डोरे जालियां भी गई, वो कुंड भी गए ते कुंड वालियां भी गई, वो चल पे वल्ले ती बाणे, ओ की बणू

0: अल्लाह बिस्मिल्ला तेरी जुगनी, हाय तारे आवे तेरी जुगनी, साई बोला वाले आवे जुगनी, अल्लाह बिस्मिल्ला तेरी जुगनी ही हो।
1: वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग सौरभ, मजा आ गया आपका ये गाना सुन के, बिल्कुल मतलब मन खुश हो गया।
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू।
1: सो थैंक यू सो मच सौरभ जौली जी, आपने हमारे लिए अपना इतना कीमती समय निकाला और आप आज हमारे रेडियो शो में आए, क्रिएटिव मंच में आके आपने, जी जी जी, क्रिएटिव मंच में आपने आके जो ये चार चांद लगाए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो लिसनर्स, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी हमारे इसी शो क्रिएटिव मंच में। मुझे यानी गौरी मल्होत्रा को दीजिए इजाजत और तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील राइट।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन्ज मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: वेल हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सर श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आरजे सागर, आज को हूँ लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ। आप लोग इस टाइम सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, फील गुड फील लाइव। ये शो हमारा बहुत स्पेशल है, रीजन भी यहाँ पर हर बार आपको हम स्किल्स देके भेजते हैं। हम कोशिश करते हैं यहाँ पर आपको बता सके कि एक डोमेन को क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उस डोमेन की स्किल्स आप कैसे अर्न कर सकते हैं, चीजें आप कैसे सीख सकते हैं, पैसे आप कैसे कमा सकते हैं, क्या करियर है। तो इसलिए शो अपने आप में बहुत खास हो जाता है। इट्स लाइक अ काउंसलिंग सेक्शन फॉर यू। टुडे वी हैव मिस्टर कशिश धमीजा। कशिश इज अ फिटनेस कोच। कशिश की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने अपनी पीएचडी छोड़ी थी और पीएचडी छोड़ के इन्हें लगा कि फिटनेस परस्यू करनी चाहिए। उसे कॉन्ट्रास्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी हाई प्रोफाइल लाइफ से, इतनी हाई प्रोफाइल जहां पर एकेडमिक्स इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है, वहां से लेकर के एक बिल्कुल ही अलग कन्वेंशनल मेथड की तरफ ये आए हैं। विल टॉक अबाउट इट। सो देयर इज सो मच टू इट जो आज हम जान रहे होंगे कशिश से। आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा, बट ये सारी बातें होंगी इस शो में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस। नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम कशिश। हाय कशिश, वेलकम टू आवर शो।
2: हाय, वेलकम सागर।
1: कशिश, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा हमेशा होता है, अपने बारे में, अपने शब्दों में बताइए, आप कौन हैं, क्या करते हैं, क्या डोमेन है आपका?
2: ओके, सो बेसिकली राइट फ्रॉम स्टार्ट आई स्टार्टेड माय करियर लाइक विद द डिड माय मास्टर्स आल्सो फ्रॉम आईआईटी एंड देयर आई वाज अ स्कॉलर एंड अ गोल्ड मेडलिस्ट एज वेल। देन आई स्टार्टेड माय पीएचडी। But during this course, my inclination towards the fitness was there. So at that time, the interest got so high that I wanted to shift my main profession from an engineering background to a fitness field. So then I started learning about the fitness things and I started doing a lot of courses. And then after like 2 years of doing the PhD, I made a decide and I decided to do and shift into the full time into the fitness game. And from past 6 years, I am working as a fitness coach, online fitness coach in 50 plus countries, where I have taught and trained more than like 2000 people. So this is a rough background of me.
1: Right, so amazing. But if I may ask you, what triggered your curiosity? Like, kya hua aisa ki fitness mein aapko ye laga ki this is something I need to do full time?
2: So, see, I was always into sports and something when I did lot of sports activity, I feel very good and energetic. And then I got introduced to the gym and the bodybuilding. So, I started looking at the physique of the good people around and I got inspired that one day I should also look like this. From there, my journey in going to the gym started. But then I started liking going to the gym and when I saw the changes happening in my body, so there the inclination increases. But then during the course, I realized one thing, I might be through the engineering background, I might be earning a lot of money. But technically that money does not hold a lot of respect, as in my work is only valued till the point I am there. But compared to this fitness field, just like when a person is, जैसे कोई person अगर कोई बीमार है, so वो जब अगर मान लो एक doctor के पास जाता है and doctor उसको उस चीज से cure करके वहां से निकाल के ले आता है उस वाली critical situation से, then we are always thankful to a doctor. And just like that, doctors end point पे cure करते हैं, a fitness coach is someone who prevents the injuries or the issues or health related concern to build up to that extent ke doctor ke paas tak ki need pade. So wahan se mera thoda inclination aaya. Then ek aur cheez jo mere ko realize hui ki if I become a fitness coach and I help people become independent and become strong and fit in their life, then the money will also come, but with a lot of hidden blessings. So that was the core objective to shifting to this field, where The objective was not just to earn money, but rather create an impact in people's life and add some values in their life. That was the core objective.
1: All right. So amazing. Okay. When you say that I thought of starting my career as a

0: ज्वाला, समंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
1: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
0: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
1: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
0: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
1: तो फिर एक वादा करो।
0: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
1: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
0: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: कैसे इनकी फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई एंड व्हाट ट्रिगर्ड, क्या होता है एक इंसान के अंदर जो उसका पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज करता है। कशिश, जब मैं बात करना चाहूंगा दूसरे वर्टिकल की, विच इज की अगर बहुत सारे लोग आपको इस टाइम सुन रहे हैं, अगर उनमें से कुछ लोग फिटनेस कोच बनना चाहते हैं, टू गेट स्टार्टेड मैन, जस्ट बिल्कुल बेसिक से बताओ कि क्या स्किल्स चाहिए होते हैं, कैसे गेम करने होते हैं, किसको बनना चाहिए फिटनेस कोच, क्या माइंडसेट होता है।
1: सी फर्स्ट थिंग, पहले बात करते हैं किसको बनना चाहिए। अगर इफ यू आर जस्ट कमिंग इन दिस फील्ड फॉर द मनी, देन आई थिंक यू नीड टू टेक अ पॉज एंड रीथिंक, बिकॉज दिस फील्ड इज समथिंग, जैसे एक डॉक्टर की बहुत बड़ी वैल्यू है कि वो एक पेशेंट को मौत के मुंह से बाहर निकाल के लेके आ सकता है। इन अ सिमिलर वे द फिटनेस कोच होल्ड्स अ वेरी बिगर वैल्यू कि वो एक पर्सन को जब वो रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा थोड़ा उनकी लाइफ में हेल्थ कंसर्न बिल्डअप हो रहे होते हैं, तो उस चीज के लिए उनको गाइड करना कि वो वहां पे उस लेवल तक कभी पहुंचे ही नहीं कि जहां पे हमें डॉक्टर के लिए बोलना पड़े प्लीज बचा लीजिए। तो वो वाली एक वी होल्ड अ वेरी बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फिटनेस कोच, एंड फॉर दैट इट्स मोर देन द मनी, इट्स अबाउट द केयर एंड अंडरस्टैंडिंग द पेन एंड द सफरिंग ऑफ योर मेंबर्स टू हुम यू आर गिविंग द ट्रेनिंग। दैट इज अ वेरी, you have to basically what I am saying, trying to say is you have to be empathetic and will eagerness, you should have a eagerness to help your members become their best version in terms of their fitness journey. So that is one thing. जिसको इस चीज से प्यार है उसके लिए ये वाली जर्नी बहुत अच्छी है। I hope I have answered your first question. Shall I answer the next?
0: Yes, yes.
1: So the next step what you asked is what are the core skill set? So core skill set with, जैसे कि मैंने पहले समझाया, सबसे पहला है अगर आपको किसी को कुछ चीज सिखानी है तो मतलब पहले आपको खुद भी सीखना है, तो पहले जिम के रिलेटेड जितनी भी नॉलेज हमें गेन करनी है इन टर्म्स ऑफ हाउ टू डू द एक्सरसाइज, उसकी राइट टेक्निक्स, फॉर्म्स, उसके बायोमैकेनिक्स क्या है, किसके लिए कौन सी एक्सरसाइज रिकमेंडेड होती है, कौन सी नहीं होगी, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग ऑल अबाउट एक्सरसाइजेस, दैट इज फर्स्ट। उसके लिए you can do a proper certification. Then next thing is after the exercise, what important step is the nutrition. So aap ek proper ek nutrition related sab course kare, jisse ki aapko ek knowledge mile about what are calories, what are protein, carbs, fats, iske liye kitne gram carbs of hame chahiye day to day life mein। अगर एक बंदा बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव है उसको कितना प्रोटीन देना है, अगर एक बहुत बंदा सेडेंटरी है उसको कितना प्रोटीन देना है, देन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंडियन डाइट कल्चर कि इंडियन डाइट में व्हाट ऑल आर शॉर्टकमिंग्स, कि लोगों की डाइट में क्या चीज की कमी है, एंड देन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द माइक्रो डिफिशियंसीज, जैसे कि जो हमने पहले भी बात करी कि रिपोर्ट्स को पढ़ना आना चाहिए, तो ये भी एक प्रॉपर एक स्किल है कि रिपोर्ट्स, आप मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ के बेसिक लेवल पे आप उनकी डिफिशियंसीज को डिटेक्ट कर सकें कि उनका फैटी लीवर ट्रिगर हो रहा है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है या उनका ग्लूकोज लेवल है, तो ये सारी रिपोर्ट्स रीडिंग करके

0: and someone who can listen to their problem and then find a solution around that. So be empathetic and a good counselor. So these are, I think, these are the four skill sets from which you can start your fitness journey, and then obviously further you can upgrade your knowledge in depth of these further topics.
1: There is a big misconception in the market. Someone who has just made a good physique, just made a good body, okay, somehow he made it, he thinks I can be a fitness coach. Please also debunk this thing.
0: Yes, this is the one of the worst thing we are experiencing, not just in India, around the world. Because in any other field, you will see, you cannot claim yourself a doctor, a lawyer, or an engineer without proper knowledge. Because if you try to do it, you might be end up having a legal action. But when it comes to fitness journey, everyone who has a good physique, he can claim himself as a fitness coach without any authority, because no one is checking on them. So it's very important, isko sahi karne ka ikalauta tarika hai, that the general public has to become educated by themselves. Jaise ki mera kehne ka matlab kya hai, like we have all done a certain level of schooling, ke matlab humne ek similar schooling level kara hai, ke agar hum maths mein bol rahe hain 2 plus 2 4 hi hoga, and everyone jisne ye schooling understand kari hai to wo 2 plus 2 4 hi bolega, irrespective wo kisi bhi region se aaye, kisi bhi culture se aaye, kisi bhi geographical condition se aaye. That means education was same, and everyone who did education was being taught this way. Just like in that way, jab tak fitness mein general public will not become aware of the basic fundamentals of the fitness, ke fitness ki basic fundamentals kya hain, tab tak ye cheez kabhi khatam nahi ho sakti, ke jo log self proclaimed coaches hain wo aapko fool, general public ko fool karte rahenge. So that means not just the fitness coach, सबसे पहले the core authority lies with the general public to become basic level पे अपनी fitness education को clear करना. And for that you have a lot of entry level fitness courses जहाँ पे कि जिनको objective आपको fitness coach में की तरह establish नहीं करना है, but right, जैसे आप school में A for apple, B for ball, ये सब मतलब fundamental सीखने गए थे, ऐसे ही फंडामेंटल्स ऑफ फिटनेस को आप वहां पे सीख सकते हैं जनरल पब्लिक, सो दैट कोई भी उन्हें फूल करना जाए, देन दे माइट नो कि ये गलत बता रहे हैं. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस कल्चर विल शिफ्ट, एंड ओनली द राइट एजुकेटेड कोचेस विल हैव अ वैल्यू इन द मार्केट, एंड देन दिस फिटनेस इंडस्ट्री विल बिकम अ लिटिल बेटर.
1: अरे दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक जितनी हमने बात करी है, जितनी चीजें हमने समझने की कोशिश करी आप लोग समझ पाएंगे, क्योंकि पेशेंस यहाँ पर बहुत सिंपल शब्दों के साथ हमें बताने की कोशिश करनी एग्जैक्टली कैसे ये इंडस्ट्री ड्राइव होती है, कैसे चीजें काम करती है यहाँ पर. ओके, एंड एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये भी अभी क्लियर हुआ है कि आपकी अगर बॉडी अच्छी बन गई तो डजंट मीन आपके पास वो स्किल्स आ गए. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ गुड प्लेयर एंड अ गुड कैप्टन, गुड कोच. सो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड ऑलवेज, अगर आपको फिटनेस कोच बनना है देयर इज नो हार्म टू दैट पार्ट, बट यू हैव टू गेट few skills जो चाहिए होंगे, so that कि आप आगे जाकर किसी अपने member को या अपने mentee को नुकसान ना पहुंचाए, उसकी life में कुछ value add करें. Now on this note लेंगे एक musical break, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे सबके favorite topic की, which is पैसा. क्या होता है पैसा, कैसे आता है यहाँ पर, बात करेंगे. लेकिन कहीं जाइएगा, मैं जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं हूँ आरजे सागर, शो चल रहा है आपको वॉइस ऑफ यूथ, आप जुड़े हुए रेडियो बागवाश्ता 107.8 FM के साथ.

0: हो भाई, आपको मजा तो आ रहा होगा। फिलहाल इसी के साथ अपने शो को हम एक और बार आगे लेकर के चलेंगे। ये लास्ट वर्टिकल है हमारे शो का। यहाँ पर हम लोग करियर में जो पैसा होता है उसकी बात करेंगे। कशिश, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द मॉनेटरी थिंग्स ऑफ दिस प्रोफेशन, कि यहाँ पर पैसा कैसे होता है, कितना होता है। आई मीन इट्स लाइक अ बबल फॉर अस, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, थोड़ा सा बताइए।
1: सी, अगर इफ यू एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज अ गुड कोच ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, देन आई थिंक ये वाली फील्ड ऐसी है कि यू कैन रीच स्काई एज वेल। बिकॉज इफ यू सी सेलिब्रिटी ट्रेनर्स, अगर आप उनको ही देखते हो, सेलिब्रिटी ट्रेनर्स, सेलिब्रिटी कोचेस को, फॉर इवन अ वन सिंगल सेशन दे आर चार्जिंग इवन अ लाख। ठीक है, सो बट वो एक एक्सट्रीम एंड लेवल हो गया। एंड लेवल को शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत होगी आपकी लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन करने से, जो कि आपके जैसे आपने फिटनेस एजुकेशन ले ली, देन यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग योर सोशल मीडिया इम्पैक्ट। सोशल मीडिया आपने अपनी प्रेजेंस बनाना शुरू करा एंड अपने नियर बाय फ्रेंड्स कम्युनिटीज में आपने स्टार्टिंग में जैसे उनको उनके साथ ट्रेन उनको ट्रेन करना शुरू करा। थ्रू देयर ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन यू विल फ्लोट दैट ऑनलाइन एंड ऑल, अपनी आप मार्केटिंग करेंगे विद दैट एंड उन जो वो लोगों को रिकमेंड करेंगे, आपका धीरे धीरे बेस बन जाएगा टूवर्ड्स द के लोगों को आप एस्टैब्लिश कर रहे हैं एंड यू आर केपेबल इनफ कि आप उनको ट्रांसफॉर्म करने के काबिल हैं। तो वहां से आपका जो ट्रस्ट फैक्टर बनेगा, देन यू कैन स्टार्ट चार्जिंग देट। देन उसके बाद धीरे धीरे यू कैन कंटिन्यू वर्किंग विद लॉट ऑफ डिफरेंट क्लाइंट्स एंड एज यू बिल्ड अप द एक्सपीरियंस यू कैन ऑब्वियसली इंक्रीज एंड एड अप मोर सर्विसेज इनटू योर गेम। लाइक अगर आप एक अच्छे एजुकेटर भी हैं, मतलब यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड यू आर अ गुड टीचर लेवल स्किल है आप में, देन वॉट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट योर ओन फिटनेस कोर्स। के जैसे आपको अपनी फिटनेस जर्नी में ये एक्सपीरियंस हुआ कि बहुत सारे कोर्सेज के बीच में कौन सा अच्छा कोर्स को फाइंड करने की एक जो हसल है, अगर आपकी अथॉरिटी एज अ कोच बिल्डअप हो जाती है, सो यू कैन एस्टैब्लिश योर ओन कोर्स जहां पे कि जो आपको प्रॉब्लम फेस हुई थी आप उनको बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में जनरल पब्लिक को अवेयरनेस के लिए या जिन लोगों को एज अ कोच बनना है उनके लिए आप एक कोर्सेज को रन कर सकते हैं। देन यू कैन, दूसरी जो एक फील्ड है इस वाली फील्ड में, फिटनेस वाली में, एक सप्लीमेंटेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो जो वो सप्लीमेंटेशन का गेम है, अब बहुत सारे मार्केट में सप्लीमेंटेशन है बट हर सप्लीमेंट की हर बंदे को नीड नहीं है। सो आप एक दूसरा जो डोमेन हो सकता है कि यू कैन ओपन अप अ सप्लीमेंट स्टोर, ठीक है, जहां पे यू आर सेलिंग ओनली द राइट सप्लीमेंटेशन जो कि एक्चुअल में रिक्वायर्ड है। देन नेक्स्ट कैन बी ओपनिंग अ जिम, जहां पे आप अपने जिम का कल्चर आप डिसाइड कर सकते हो कि किस टाइप से आप लोगों को वहां पे एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हो या एनवायरमेंट देना चाहते हो। सो वो एक दूसरा पाथवे हो सकता है। तो देर आर एन नंबर ऑफ डोमेन्स और ब्रांचेस विच कैन ओपन अप इन योर फिटनेस फील्ड। नाउ एवरी वन, जिसका जिसका जैसे जैसे इंटरेस्ट इंक्लिनेशन बढ़ता जाएगा कि जिसको कोई मैनेजमेंट साइड में जाना है देन ही कैन ओपन अप अ जिम एंड ही कैन रन द मैनेजमेंट डोमेन, या जिसको कोर टीचिंग के स्किल में रहना है सो वो टीचिंग के लिए कोर्सेज के डोमेन में घुस सकता है। अगर किसी को जस्ट ट्रेनिंग कराने से मजा आता है देन ही कैन टेक इंडिविजुअल पर्सनल वन ऑन वन ट्रेनिंग और जूम ग्रुप क्लासेस ट्रेनिंग और अनदर ही कैन फाइंड अनदर क्रिएटिव वेज ऑफ गिविंग ट्रेनिंग ऑनलाइन ऑफलाइन पर्सनल। So there are many branches which can open up.
0: Right. So basically, it's up to you how you want to expand it and how you can encash it. So totally, yeah. आपके हाथ में चीजें आ जाती हैं. Okay. Yeah. How important is it to upgrade yourself? How often a fitness coach has to upgrade himself or herself?
1: See, every down the line in next every one or two years, lot of new researches comes up. रिलेटेड टू सप्लीमेंटेशन और सम ड्रग, एज आज के टाइम में जो आप बज वर्ड देख रहे हो ओजम्पिक मोन्जारो, सो दैट इज समथिंग जो वेट लॉस ड्रग के लिए प्रमोट हो रहा है बट उसका कोर ऑब्जेक्टिव वेट लॉस करना नहीं है, दैट इज फॉर अ डिफरेंट पर्पज। बट लोग उसको उसके एक बेनिफिट के जो उनका साइड इफेक्ट है उसके लिए वेट लॉस के लिए बहुत मासेस को प्रमोट कर रहे हैं। So, ये अपने आप को, अगर आप एक एज अ फिटनेस कोच अपने आप को डे टू डे जो भी मार्केट में शिफ्ट हो रहा है या कोई नई ट्रेंड आ रहा है या आप कोई भी आपकी नई रिसर्च आ रही है, अगर आप उस चीज से अपडेटेड नहीं रहते हैं, सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल गो अवे फ्रॉम दिस गेम एंड यू माइट लूज द गेम बिकॉज यू आर नॉट कीपिंग योर सेल्फ अपडेटेड। एंड इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ऐसी बेनिफिशियल चीज भी आती हैं कि जैसे कि इक्विपमेंट इंडस्ट्री को ही आप देखेंगे तो पहले के जो इक्विपमेंट से आज से 20 साल पहले के जिम की इंडस्ट्री के इक्विपमेंट्स एंड आज के इक्विपमेंट्स जो हैं, सो द इक्विपमेंट्स हैव इवॉल्व्ड ड्रास्टिकली। पहले एक जनरल इक्विपमेंट बनाते थे एक जनरल आसपास के स्टोर्स, बट आज के टाइम में बायोमैकेनिक्स बैग इक्विपमेंट की पूरी प्रॉपर साइंस मशीनरी मैकेनिक्स सब कुछ को डील करते हुए यू आर फाइंडिंग अ वेरी लॉट ऑफ गुड इक्विपमेंट्स ब्रांड कमिंग अप। सो उनके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होना, फिर साथ में सिंस जैसा हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है आज के में हम बहुत ओवर द हर 2-3 साल में एक नई बीमारी को देख रहे हैं, तो उस चीज के बारे में कैसे एज अ फिटनेस कोच हमको अपने मेंबर्स को इसी को ही यूज करके आप अपने मेंबर्स को बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस देने दे सकते हो। एंड दैट्स द ओनली रोल एज अ फिटनेस कोच, सो एज टू टेक केयर ऑफ वट एवर चैलेंजेस दे माइट फेस, बी अवेयर एंड देन यू शुड बी गाइडिंग देम फॉर फिटनेस कोच।
0: अभी कशिश, आई एम डन विद माय क्वेश्चंस, कोई भी चीजें जो मैं ना पूछ पाया हूं और आप कहना चाहते हो प्लीज फील फ्री।
1: सो ओनली मैसेज आई वॉन्ट टू से इज के इन द फिटनेस फील्ड लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस एंड लॉट ऑफ सेल्फ डाउट्स आर देयर। बहुत सारे लोग, अगर आप 10 लोगों से बात करोगे तो किसी को लगता है एक्सरसाइज क्या ही करनी है, हम तो जी योगा जाते हैं पैदल चलते हैं, बट टेक्निकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द कोर फंडामेंटल विच एवरी पर्सन शुड अंडरस्टैंड इज एज यू आर गेटिंग ओल्डर यू आर लूजिंग द प्रेशियस थिंग ऑफ योर बॉडी दैट इज द मसल। एंड द ओनली वे टू ट्रेन एंड कीप योर सेल्फ मोहताजी ना आए आने वाले जैसे जैसे आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो, सो एज टू बी इंडिपेंडेंट कि आप अपना रोजमर्रा का काम खुद से कर सको, आप किसी पे डिपेंड ना हो, अपने लव्ड वंस पे आप बोझ ना बनो, उस चीज को रोकने के लिए द ओनली वे इज टू मेक श्योर कि

0: आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक प्रॉपर अपने मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं, सो दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मसल लॉस होना चाहती है उसको बचा के रख सके, सो दैट यू कैन स्टे फिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड फॉर दैट अगर आपको एक्सरसाइज का स्किल आता है, बहुत अच्छा है, आप कंटिन्यू करें, एक अच्छा न्यूट्रिशन लें, अच्छी डाइट लें, एक अच्छा टाइमली सोएं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। अगर नहीं आता है देन यू शुड नॉट स्टार्ट रैंडमली, गेट योर सेल्फ अ गुड कोच, पहले उनसे एक बेसिक स्किल को सीख लीजिए। वंस यू फील लाइक कि यू आर इंडिपेंडेंट इन दैट स्किल, देन यू कैन कंटिन्यू ऑन योर ओन इन दैट फिटनेस जर्नी, एंड उसको बस मेंटेन करें। सो दैट जो आज हम इंडिया में जो कंडीशन देख रहे हैं या अक्रॉस द ग्लोब देख रहे हैं, ओबेसिटी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, डायबिटीज, हेल्थ कंसर्न, इवन छोटे छोटे 15 15 20 20 साल के बच्चों को आप हार्ट अटैक की सिचुएशन जो समझ रहे हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आने वाले 10 साल में या 15 साल में बेटर होने का इकलौता तरीका है वेन पीपल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ देयर हेल्थ ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो दैट इज द कोर मैसेज आई वॉन्ट टू से, अपना ध्यान रखो सो दैट आपके लव्ड वन के साथ आप एक कुछ ज्यादा समय बिता सको एंड यू कैन एंजॉय वॉट एवर, आप जो मेहनत करके यू आर अर्निंग द मनी, आप उस मनी को यूज कर सको, उसके बेनिफिट ले सको, ना कि जस्ट वो एक बैंक बैलेंस में पैसा ऐड हो गया बट वो एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ नहीं आना चाहिए। हेल्थ इक्वल टू वेल्थ, ना कि हेल्थ इज मोर बेटर देन हेल्थ या वेल्थ इज बेटर देन हेल्थ, ये नहीं होना चाहिए। दोनों एस्पेक्ट पे काम करना हमने, हेल्थ पे भी वेल्थ पे भी। सो दैट इज द कोर मैसेज।
1: सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुली यू हैव पोर्ट्रेट दिस एवरीथिंग। थैंक यू सो मच कशिश फॉर जॉइनिंग अस, इट मींस अ लॉट टू अस, थैंक यू सो मच मैन। ऑलराइट दोस्तों, वक्त है अपने शो को यहां पर कंक्लूड करने का। कशिश से आज हमने बात करी, ढेर सारी चीजें हमने जानी, हमने जाना कि फिटनेस कोच होता क्या है, कैसे बना जाता है, पैसा कैसे कमाया जाता है, और फंडामेंटल्स की हमने यहाँ पर बात करी। आई होप आपके बेसिक्स आज क्लियर हो गए होंगे इस शो से। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू थिंक ऑफ बिकमिंग अ फिटनेस कोच, थिंक इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ योर बॉडी। ओके, दैट्स अ बोनस पॉइंट, बट अगेन इट हैपेंस इवेंचुअली विद द स्किल्स। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, और उम्मीद कर रहा हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा। फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना। टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील।

चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर किसान भाइयों, आ चुका है आपका दोस्त फहीम लेकर आपका कार्यक्रम अन्नदाता। और आज अन्नदाता में आपसे बात करने वाला हूँ पालक के बारे में। देखिए किसान भाइयों, पालक का मूल स्थान जो है केंद्रीय और पश्चिमी एशिया है और ये अमरांथसियाई प्रजाति से संबंध रखती है। ये एक सदाबहार सब्जी है और पूरे विश्व में इसकी खेती की जाती है। और जैसा कि हम सब इसको पालक के नाम से जानते हैं, लेकिन किसान भाइयों के अलावा दोस्तों आपको भी बताना चाहता हूँ, ये जो पालक है ना, इसमें आयरन होता है और विटामिन का ये एक बेहतरीन स्रोत है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं जो कि हमारी सेहत से ताल्लुक रखते हैं। ये जो पालक है ना दोस्तों, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। ये पाचन के लिए, त्वचा के लिए, बालों के लिए, आँखों के लिए और हमारे दिमाग के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। इससे कैंसर रोधक और एंटी एजिंग दवाइयाँ भी बनती हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र

पश्चिम बंगाल और गुजरात यानी कि इन प्रांतों में इस पालक को खूब उगाया जाता है और वहाँ के किसान इसको उगा करके बेहतरीन लाभ प्राप्त करते हैं। तो आपको आज इसी के बारे में बताऊंगा, यानी पालक के बारे में कि किस तरह से इसकी खेती करनी चाहिए और वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रख कर के इस फसल को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम सलाम।

मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ। किसान भाइयों, आज आपसे मैं पालक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले बात आती है मिट्टी की तैयारी की। देखिए, पालक को मिट्टी की कई किस्मों जो अच्छे जल निकास वाली होती हैं उनमें उगाया जा सकता है, पर ये रेतली चिकनी और जलोढ़ मिट्टी में बढ़िया परिणाम देती हैं। तेजाबी और जल जमाव वाली मिट्टी में पालक की खेती करने से बचाव करें, क्योंकि ये इसके लिए अच्छा नहीं होता। इसके लिए मिट्टी का पीएच 6 से 7 होना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात आती है किस्मों की, तो किस्मों के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। पंजाब ग्रीन के नाम से एक किस्म है। इसके पत्ते अर्ध सीधे और गहरे चमकीले रंग के होते हैं। बिजाई के बाद ये 30 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 125 क्विंटल प्रति एकड़ होती है और इसमें ऑक्सेलिक एसिड की मात्रा कम होती है। दूसरी किस्म की बात करें तो उसको जाना जाता है पंजाब सेलेक्शन के नाम से। इसके जो पत्ते होते हैं वो हल्के हरे रंग के होते हैं, पतले भी होते हैं और लंबे भी होते हैं, साथ ही साथ संकीर्ण होते हैं। इसके पत्ते स्वाद में हल्के खट्टे होते हैं, पर इस किस्म का तना जामुनी रंग का होता है। इसकी औसतन पैदावार 125 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। तो ये रही बात किस्मों की, अब बात आती है जमीन की तैयारी की। तो जमीन की तैयारी कैसे की जाए और इसकी बिजाई को कैसे किया जाए, इन दोनों बातों के बारे में भी आपसे बात करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते।
1: किसान भाइयों, पालक की खेती करने के लिए ये जो जमीन की तैयारी है ना, जमीन को पहले भुरभुरा कर लेना चाहिए। जमीन को भुरभुरा करने के लिए 3 से 5 बार जुताई करें। जुताई के बाद सुहागे से मिट्टी को समतल कर देना चाहिए। बेड तैयार करें और सिंचाई करें। बिजाई की जब बात आती है तो बिजाई का एक समय है। पालक की बिजाई लगभग 1 साल में की जा सकती है, पर अगस्त से दिसंबर का समय बिजाई के लिए उचित माना जाता है। बिजाई के लिए पंक्ति से पंक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हो और पौधे से पौधे का फासला 5 सेंटीमीटर रखें। बीज की गहराई की अगर बात करें तो बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में ही बोएं। अब बात आती है कि भाई बिजाई का ढंग कैसा होना चाहिए, तो किसान भाइयों, बिजाई पंक्ति या बुरकाव द्वारा की जा सकती है। अब एक और प्रश्न आता है कि बीज की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए, या फिर बीज में कोई रोग लग गया है तो उसका उपचार कैसे करें। इन सारे प्रश्नों के उत्तर देगा आपका दोस्त फहीम। आप सुन

0: दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है।
1: किसान भाइयों, आज बात हो रही है पालक के बारे में, लेकिन जब बात आती है बीज की, यानी कि बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एकड़ खेत के लिए लगभग 4 से 6 किलो बीजों की आवश्यकता होती है। बीज के उपचार की अगर बात करें तो अंकुरण की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को 12 से 24 घंटे तक पानी में भिगो कर रखें। अब बात आती है खाद की, ये मैं आपको किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यूरिया है तो यूरिया 75, SSP 75। इसके बाद आती है बात नाइट्रोजन कितना होना चाहिए, नाइट्रोजन 35 और फॉस्फोरस 12। इसके अलावा फसल के बढ़िया विकास और बढ़िया पैदावार के लिए अच्छी तरह से गला हुआ गाय का गोबर 200 क्विंटल और नाइट्रोजन 32 किलो यानी 70 किलो यूरिया, फास्फोरस 16 किलो यानी सुपर फास्फेट 100 किलो प्रति एकड़ में डालें। गले हुए गाय के गोबर और फास्फोरस की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बिजाई से पहले डालें। बाकी की नाइट्रोजन को 2 बराबर भागों में प्रत्येक कटाई के समय डालें। खाद डालने के बाद हल्की हल्की सिंचाई जरूर कर दें। अब बात आती है खरपतवार की, इससे कैसे नियंत्रण किया जाए। तो किसान भाइयों, नदियों को 2 से 3 गुणाई की जरूरत होती है। गुणाई से मिट्टी को हवा मिलती है। रासायनिक तरीके से नदियों की रोकथाम के लिए पायराजोन 1 से 1.12 किलो प्रति एकड़ में प्रयोग करें। बाद में

कीटनाशक के उपयोग से बचें। तो ये बात हो गई खरपतवार के बारे में, लेकिन दोस्तों आगे आपसे बात करूंगा सिंचाई की। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की।
1: आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं सिंचाई के बारे में। देखिए, बीजों के बढ़िया अंकुरण और विकास के लिए मिट्टी में नमी का होना बहुत आवश्यक है। अगर मिट्टी में नमी अच्छी तरह से ना हो तो बिजाई से पहले सिंचाई करें या फिर बिजाई के बाद पहली सिंचाई जरूर करें। गर्मी के महीने में 4 से 6 दिनों के फासले पर सिंचाई करें, जबकि सर्दियों में 10 से 12 दिनों के फासले पर सिंचाई करनी चाहिए। लेकिन याद रखें, ज़्यादा सिंचाई करने से परहेज करें। ध्यान रखें कि पत्तों के ऊपर पानी ना रहे, क्योंकि इससे बीमारी का खतरा और गुणवत्ता में कमी आ जाती है। ड्रिप सिंचाई पालक की खेती के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। अब फिर एक सवाल आता है कि पौधे की देखभाल कैसे की जाए। हाँ, बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हानिकारक कीट होते हैं जो फसलों को बर्बाद कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक ऐसे कीट के बारे में जिसका नाम है चेपा। इसका हमला दिखाई दे तो मेलाथियोन 50 EC 350 ml को 80 से 100 लीटर पानी में मिलाकर क्या करना चाहिए? स्प्रे करना चाहिए। मेलाथियोन की स्प्रे के बाद तुरंत कटाई बिल्कुल ना करें, बल्कि स्प्रे के 7 दिनों के बाद कटाई करनी चाहिए। लेकिन ये हानिकारक जो कीट है ना, इनके अलावा कुछ बीमारियां भी होती हैं, कुछ रोग भी होते हैं। उन रोगों को कैसे रोका जाए, उनकी रोकथाम कैसे की जाए, इसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की।
1: किसान भाइयों, मैंने आपसे बात की थी कीटों के बारे में कि वो कीट आपकी फसल को किस तरह से बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन उसकी रोकथाम कैसे की जाती है वो भी मैंने आपको बताया। तो आइए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बीमारी के बारे में जो कि हमारे पालक के पत्तों पर लग जाती है। इसकी रोकथाम कैसे की जाए वो भी मैं आपको बताऊँगा। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि जो हमारे पालक के पत्ते हैं, पत्तों पर छोटे गोलाकार धब्बे दिखाई देते हैं। बीच से स्लेटी और लाल रंग के धब्बे पत्तों के किनारों पर दिखाई देते हैं। आपकी फसल में अगर इसका हमला दिखाई दे तो कार्बेंडाजिम 400 ग्राम या इंडोफिल M45 400 ग्राम को 150 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे कर देना चाहिए। अगर जरूरत हो तो दूसरा स्प्रे 15 दिनों के अंतराल पर करें। अब बात आती है फसल की कटाई की। देखिए साथियों, फसल बिजाई के 25 से 30 दिनों के बाद पहली कटाई के लिए तैयार हो जाती है। कटाई 20 से 25 दिनों के फासले पर लगातार की जानी चाहिए, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, कटाई के लिए तीखे चाकू या फिर दराती का इस्तेमाल करें। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं अन्नदाता।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: किसान भाइयों, बहुत सारी बातें मैंने आपसे कर ली हैं पालक की फसल के बारे में, एक बात आपके साथ और साझा करना चाहता हूं और वो है बीज उत्पादन। बीज के उत्पादन के लिए 50 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर फासले का प्रयोग करें। पालक की खेती के लिए लगभग 1000 मीटर का फासला होना चाहिए। प्रत्येक 5 पंक्तियों के बाद एक पंक्ति छोड़नी चाहिए जो कि खेत के परीक्षण के लिए जरूरी है। बीमार पौधों को हटा दें, पत्तों में विभिन्नता दिखाने वाले पौधों को भी हटा दें। जब बीज भूरे रंग के हो जाएं, तब फसल की कटाई करें। कटाई के बाद पौधों को सूखने के लिए एक सप्ताह के लिए खेत में ही रहने दें और अच्छी तरह से सूखने के बाद बीज लेने के लिए फसल की छटाई करें। अब इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे आज्ञा चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। और चलते चलते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आधुनिकता के दौर में ज्ञान विज्ञान के विकास से समाज और व्यक्ति में कई भौतिक एवं वैचारिक प्रकट हुए हैं। इन परिवर्तनों से उत्पन्न मानवीय संवेदना से 8वें दशक की प्रमुख रचनाकार यानी मधु कांकरिया का साहित्य जुड़ा हुआ है। तो आज मैं आपसे बात करूंगा रचनाकार मधु कांकरिया के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में और संघर्षों का भी जिक्र होगा। फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है रचनाकार मधु कांकरिया के बारे में। उनका अध्ययन, चिंतन और लेखन न केवल साहित्य, संस्कृति और शिक्षा तक व्यापक है, बल्कि आज की राजनीति, मीडिया और समाज व्यवस्था के सूक्ष्मतम अंतर्ध्वनियां भी उनके मानस पटल में पूरी तरह से रची बसी हैं। उन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा वृतांत, संस्मरण यानी कि इस तरह के साहित्यिक रूपों में अपनी अनुभूति की प्रामाणिकता और बोध प्रवणता को अभिव्यक्त किया है। अब तक उनके द्वारा रचित चारों कहानी संग्रहों बेताते हुए 2004 और अंत में ईशु 2008, युद्ध और बुद्ध 2014, जलकुंभी 2020 में भाषा, धर्म, रूढ़ी, दरिद्रता, उजड़ते गांव, स्त्री समस्या, नक्सलवाद की समस्या, बुद्धिजीवी वर्ग, पीढ़ियों के बीच के अंतर यानी कि इनसे जुड़े अनेक ज्वलंत सवालों को प्रकट किया है। ये कहानियां आज के समाज की प्रतिच्छवि हैं और इनसे झांकती आम आदमी के मानव अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता मधु कांकरिया की पहचान है। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, साहित्य के विकास और समाज की पहचान को समझने में युगबोध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एक साहित्यिक और दार्शनिक अवधारणा है जो साहित्यकार के समय और समाज की समझ को व्यक्त करती है और जिससे रचना में उस समय की संवेदनाओं, समस्याओं और विचारधाराओं का प्रतिबिंब दिखाई देता है। युग और बोध शब्दों के योग से बना युग बोध एक यौगिक शब्द है जिसका तात्पर्य किसी युग के प्रति हमारी समझ, दृष्टिकोण यानी कि इससे जुड़ा हुआ है। ये अपने आप में एक व्यापक शब्द है जो विशेष समय अवधि में घटित सभी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक, धार्मिक, व्यवसायिक घटनाओं को यथार्थ रूप में केंद्रीभूत रखता है। युगबोध वास्तविकता से परिचित कराता है। इसका ना वर्तमान के साथ कोई संबंध है और ना भविष्य से कोई ताल्लुक है। ये समय सामायिकता पर जोर देता है। एक ही युग में प्रत्येक व्यक्तियों का चेतन अलग अलग होने के कारण हर किसी की युगबोध को लेकर धारणा अलग अलग हो सकती है और उसका प्रभाव भी अलग अलग पाया जा सकता है। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर सुनते रहिए फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, बात हो रही है मधु कांकरिया के बारे में, जो एक बड़े ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं। उनका कहना है, युगबोध को किसी एक विशेष परिभाषा में परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय के साथ साथ उसका स्वरूप बदल जाता है। समाज का संपूर्ण रूप साहित्य में समाहित है और युगबोध का पूर्ण रूप रचना में देखने को मिलता है। अतएव युगीन परिवेश को रेखांकित करने के लिए एक

परवर्ती युग में उसे महत्व मिल भी सकता है और नहीं भी। इसके अलावा वो और क्या कहना चाहती हैं अपने शब्दों के माध्यम से आपके साथ साझा जरूर करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, रचनाकार मधु कांकरिया का कहना है कि किसी भी रचना को पूरी तरह समझने, उसका मूल्यांकन करने के लिए वो रचना कब लिखी गई थी, उस समय का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश किस तरह का था, यानी कि इन सारी बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसे युगबोध कहा जाता है। युगबोध को सिर्फ आधुनिकता, समसामायिकता ही प्रभावित नहीं करती। आधुनिकता के साथ साथ इतिहास, संस्कृति, परंपरा भी उसे प्रभावित करते हैं, क्योंकि प्रत्येक युग के पीछे उसकी पृष्ठभूमि रहती है। इतिहास के किसी भी युग का साहित्य उठाकर देख लिया जाए तो उस युग की तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण अवश्य देखने को मिलता है, जिसकी भावधारा मनुष्य चेतना, समाज और उसके परिवेश से बंधी हुई है। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, मधु कांकरिया का कहना है कि साहित्य जीवन का दूसरा नाम है। साहित्य समाज की चेतना में सांस लेता है। समाज का वो परिधान है जिसमें समाज के सुख दुख, आशा निराशा, हर्ष विषाद, आकर्षक विकर्षक यानी कि सारे ताने बाने बुने जाते हैं। उसमें मानव जाति की आत्मा का स्पंदन होता है। और दूसरी बात, समाज के बिना साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। और साहित्य से परिचित हुए बिना हम समाज को समझ नहीं पाते हैं। साहित्य सृजन के लिए जो भाव विचार चाहिए वो सब समाज से ही मिलते हैं, जिसे युग बोध कहा जाता है। मानव जीवन के तमाम पहलुओं को आत्मसात करके उसे अभिव्यक्त करने का काम साहित्य के द्वारा ही होता है, ऐसा कहना है रचनाकार मधु कांकरिया का। लेकिन इसके अलावा वो कुछ और भी कहना चाहती हैं। उन सारी बातों को आपके साथ साझा करता रहूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था मधु कांकरिया के बारे में, उनका कहना है कि मानव जीवन के तमाम पहलुओं को आत्मसात करके उसे अभिव्यक्त करने का काम साहित्य द्वारा होता है। इसी के साथ साथ वो ये भी कहती हैं कि युग बोध साहित्य का धर्म है। बोध एक आंतरिक प्रक्रिया होने के कारण किसी विषय, परिवेश, परिस्थिति के प्रति हमारी धारणा का निर्माण करता है। बोध हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय के मुताबिक ये बदलता रहता है। अपनी बोध शक्ति के मुताबिक हर एक व्यक्ति दूसरे से अलग होता है। ये एक प्रकार का अनुभव है जो हमें अपने जीवन को सहज करने के लिए सहायक होता है। हर एक देश का, समाज का अपना स्वतंत्र बोध होता है और युग बदलने के साथ साथ उसका बोध भी बदलता रहता है, जिसका रूप साहित्य में देखने को मिलता है। जिस प्रकार व्यक्ति और समाज एक दूसरे के परिपूरक हैं, ठीक उसी तरह साहित्य और युग बोध भी अनुपूरक हैं। एक के बिना अन्य की कल्पना असंभव है, ऐसा कहना है रचनाकार मधु कांकरिया का। लेकिन दोस्तों, मधु कांकरिया के बारे में और भी बहुत सारी बातें थीं, आपके साथ साझा कर सकता था, पर समय इजाजत नहीं देता। इसलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में इन्हीं के बारे में आपसे और भी बातें साझा करूंगा। फिलहाल इजाजत चाहता हूं। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। नमस्ते, खुदा हाफिज़।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानवरचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।
2: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। जी हाँ, एक ऐसा एपिसोड जो लेकर आता है आपके लिए ट्रेंड की बहुत सारी बातें, और आज भी कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ आ गई हूँ मैं आपके पास। हर संडे शाम 4 से 5 मिलते हैं हम इसी टाइम पर, और करते हैं बहुत सारी ट्रेंड की बातें, साथ ही लेकर आ जाती हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत से गाने भी। और आज का सफर ना थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सफर की जिसका हिस्सा हम सब है, यानी कि आप, मैं और आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं, मेरे जितने जानने वाले लोग हैं, वो सब एक ऐसा सफ़र जो 15th ऑफ अगस्त 1947 से शुरू हुआ और आज यानी 2026 तक पहुंच चुका है। दोस्तों, कल ही हमने सेलिब्रेट किया था 15th अगस्त, इंडिया का इंडिपेंडेंस डे। हर साल की तरह इस बार भी तिरंगा शान से लहराया, देशभक्ति का गीत सुनाई दिया, स्कूल्स और कॉलेजेस में सेलिब्रेशंस हुए और हर तरफ आज़ादी का जश्न देखने को मिला। लेकिन आज 16 अगस्त को जब सेलिब्रेशन का एक्साइटमेंट थोड़ा सा सेटल हो गया है, तो क्यों ना थोड़ी देर रुक कर ये सोचा जाए कि आखिर ये जो 79 साल का ये सफ़र रहा वो कैसा रहा। अब देखिए, मैं मिलने तो आपसे संडे को आती हूँ, अब कल सैटरडे था, अब कल तो मैं नहीं आ सकती थी आपके पास, तो क्यों ना आज के दिन हम इस खास दिन को सेलिब्रेट करें। दोस्तों, 15th ऑफ अगस्त 1947, वो दिन जब इंडिया ने ब्रिटिश रूल से आज़ादी हासिल की। लेकिन आज़ादी मिलना कहानी का एंड नहीं होता, बल्कि असल में वहीं से एक नए इंडिया की शुरुआत हुई। जी हाँ, एक नई इंडिया की कहानी शुरू हुई थी, एक ऐसे इंडिया की जिसे अपने आप को दोबारा बिल्ड करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, एजुकेशन को एक्सपेंड करना था, एग्रीकल्चर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना था, इकॉनमी को डेवलप करना था और दुनिया के सामने अपनी एक अलग पहचान बनानी थी। और अगर आज हम देखें कि 2026 में खड़े होकर पीछे देखें, तो ये सफ़र सच में बहुत ही यादगार रहा है। कभी जिस देश को बेसिक रिसोर्सेज और डेवलपमेंट की बहुत सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, वो इंडिया आज स्पेस मिशंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, साइंस, स्पोर्ट्स और इनोवेशन जैसे फील्ड में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना रहा है। कभी इंफॉर्मेशन के लिए लेटर्स और न्यूज़पेपर का वेट होता था, और आज के स्मार्टफोन से दुनिया भर के इंफॉर्मेशन सेकेंड्स में हमारे सामने होती है। एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और इंडियन यूथ आज सिर्फ इंडिया में ही नहीं है बल्कि दुनिया भर में अपनी टैलेंट से और आइडियाज के साथ इम्पैक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, 79 साल की जो जर्नी है उसको सिर्फ अचीवमेंट की लिस्ट समझना भी सही नहीं होगा। इस सफर में चैलेंजेस आए, फेलियर्स हुए, चेंजेस हुए और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो आज का ये ट्रेंडिंग तड़का, जिसमें हम इस जर्नी को थोड़ा सा डिफरेंट नज़रिए से देखने वाले हैं, बहुत कुछ समझेंगे आज हम इस एपिसोड में। 1947 का इंडिया कैसा था, 2026 का इंडिया कैसे बदल चुका है, आज़ादी का असली मीनिंग क्या है हमारे लिए, इन सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे यहाँ पर और बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे 80 साल एक सफ़र आज़ादी से जिम्मेदारी तक की। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं वापस से 1947 के इंडिया में। लेकिन लेकिन लेकिन उससे पहले सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजी स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और अभी हमने बात की इंडिया के उस सफर की जो कि 15th of August 1947 से शुरू हुआ। आजादी के बाद इंडिया के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, धीरे धीरे देश ने अपने लिए एक नई डायरेक्शन बनाई। अब जरा इमेजिन कीजिए कि अगर 1947 का कोई यंग पर्सन टाइम ट्रेवल करके सीधा 2026 के इंडिया में आ जाए तो उसके लिए सबसे सरप्राइजिंग चीज क्या होगी। शायद सबसे पहले तो उसे टेक्नोलॉजी देखकर शॉक लगेगा कि इतना बड़ा चेंज कैसे आ सकता है। और आज हम जब स्मार्टफोन से किसी भी पर्सन को दुनिया के किसी भी कॉर्नर में वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं और सेकंड्स में इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन 1947 में कम्युनिकेशन का वर्ल्ड बिल्कुल अलग था। लेटर, न्यूज़पेपर्स और लिमिटेड कम्युनिकेशन ही मेजर सोर्सेस थे। एजुकेशन की बात करें तो आज स्टूडेंट के पास स्कूल है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज के साथ साथ ऑनलाइन लर्निंग जो प्लेटफॉर्म्स है वो भी है और डिजिटल रिसोर्सेज भी है। आप घर बैठे दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स देख सकते हैं। नॉलेज तक पहुंचने के ऑप्शंस बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो चुके हैं। और दोस्तों, विमेन की जर्नी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज विमेन एजुकेशन, बिजनेस, साइंस, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, एविएशन और ऑलमोस्ट हर फील्ड में अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट कर सकती है। चैलेंजेस अब भी है लेकिन अपॉर्चुनिटीज और कन्वर्सेशंस दोनों पहले से काफी ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। टेक्नोलॉजी और साइंस की बात करें तो इंडिया ने स्पेस रिसर्च से लेकर डिजिटल इनोवेशन तक एक लंबी जर्नी को कवर किया है। जिस इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद डेवलपमेंट की बेसिक फाउंडेशन बिल्ड करनी शुरू की थी, वही इंडिया आज स्पेस मिशन और कटिंग एज टेक्नोलॉजी की बात करता है। और फिर आता है हमारा यूथ। जी हाँ, 1947 का यूथ एक नए आजाद देश को बिल्ड करने का सपना देख रहा था और आज का यूथ एक ग्लोबल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टार्टअप्स हो, कंटेंट क्रिएशन हो, टेक्नोलॉजी हो, स्पोर्ट्स, रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप, यंग यूथ जो है हमारे वो इंडियंस नए नए फील्ड में अपनी जगह बना रहे हैं। लाइफस्टाइल भी कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, वो हम सब देखते हैं। पहले इन्फॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटीज जियोग्राफिकली लिमिटेड थी लेकिन आज इंटरनेट ने दुनिया को लिटरली हमारे फोन स्क्रीन से उस तक लाकर रख दिया है। लेकिन दोस्तों, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी और कन्वीनियंस ही नहीं होता है बल्कि क्या प्रोग्रेस के साथ हमने अपनी वैल्यूज भी प्रिजर्व की है। क्या मॉडर्न इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज तो बड़ी है लेकिन क्या सबके लिए अपॉर्चुनिटीज इक्वली एक्सेसिबल है, ये क्वेश्चन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जब हम कहते हैं कि तब का भारत और आज का भारत, तो कंपैरिजन सिर्फ पुराने और नए इंडिया की नहीं बल्कि कंपैरिजन ये होना चाहिए कि हम कहां से चले थे, कहां तक आए हैं और हमें अब कहां तक जाना है। और इसी थॉट के साथ अब हम अपने प्रोग्राम को अगले सवाल की तरफ बढ़ाते हैं। 1947 में जो आजादी एक नेशनल ड्रीम थी, क्या 2026 में उस आजादी का मीनिंग हमारे लिए बदल चुका है या अभी भी वही है? जानेंगे इसके बारे में भी, लेकिन अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आज स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। जी हाँ दोस्तों, हर संडे शाम 4 से 5 लेकर आ जाती हूँ आपके लिए कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक। बहुत सारी ट्रेंड की बातें करते हैं हम, और साथ ही उसी के साथ लेकर आ जाती हूँ आपके लिए बहुत ही प्यार प्यार से गाने भी। तो दोस्तों, अभी तक हमने बात की कि इंडिया के 79 जो ईयर्स है इस सफर को देखा, और 1947 से लेकर 2026 तक हमारा देश कितना बदला है। लेकिन अब बात थोड़ी सी पर्सनल करते हैं कि जब हम सब हर साल कहते हैं कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तिरंगा देखते हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स सुनते हैं, गाते भी हैं, फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सीरियसली सोचा है कि हमारे लिए आज़ादी का एक्चुअल मीनिंग क्या है? 1947 में आज़ादी का मतलब था एक पूरे देश का फॉरेन रूल से फ्री हो जाना। लेकिन आज 2026 में एक इंडिविजुअल के लिए आज़ादी का मीनिंग क्या हो सकता है? शायद अपने करियर का डिसीजन खुद लेना, शायद अपनी बात को बिना डरे कह पाना, या फिर शायद अपने सपनों को परस्यू करना, या फिर सिंपली अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस को खुद लेने का कॉन्फिडेंस होना। और यही तो इंटरेस्टिंग बात है कि आज़ादी सबके लिए सेम नहीं होती, सबकी पर्सपेक्टिव अलग है। किसी यंग पर्सन के लिए आज़ादी का मतलब हो सकता है कि वो अपना करियर, अपनी चॉइस को सिलेक्ट करे। किसी स्टूडेंट के लिए आज़ादी का मतलब हो सकता है कि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके। किसी वुमेन के लिए आज़ादी का मतलब होता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अपनी चॉइस और अपनी आइडेंटिटी हो सकती है। किसी के लिए आज़ादी का मतलब हो सकता है कि वो अपनी ओपिनियन ओपनली एक्सप्रेस कर सके बिना किसी फियर के कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि हम जो चाहें बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के करते रहें। फ्रीडम के साथ अंडरस्टैंडिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को हर्ट करने के लिए या हेट स्प्रेड करने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन शेयर करें। हमें चॉइस की फ्रीडम है, लेकिन दूसरों की चॉइसेस और बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। और शायद इसी वजह से आज़ादी एक राइट भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग सवाल आपसे भी है, अगर आपको सिर्फ एक लाइन में डिफाइन करना हो कि मेरे लिए आज़ादी का मतलब क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि क्या आज़ादी है आपके लिए? अपनी लाइफ के डिसीजंस को खुद लेना, क्या आज़ादी है आपके लिए कि अपनी वॉइस को एक्सप्रेस करना, या फिर बिना डिस्क्रिमिनेशन के अपॉर्चुनिटीज पाना, या फिर आज़ादी है कि अपने सपनों को चेज करने का हक होना? सोचिए, क्योंकि 1947 में हमने एक नेशन के रूप में आज़ादी हासिल की थी, लेकिन 2026 में सवाल ये है कि क्या हम अपनी पर्सनल फ्रीडम की वैल्यू को समझ भी पा रहे हैं या नहीं? और अगर हम आज़ाद हैं तो क्या सच में हर तरह के प्रेशर, फियर और स्टीरियोटाइप से भी आज़ाद हैं हम? इस सवाल को आपने सुना, इसके बारे में सोचिएगा जरूर और हमें भी बताइएगा। हमारा नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078 पर हमें मैसेज करिए, हमें कॉल करके बताइए कि आपके लिए आज़ादी का असली मतलब क्या है और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो चलिए, वक्त हो गया है इसी के साथ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव।

आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारी आजादी की, हमारे इंडिपेंडेंस डे की। जी हाँ, कल हमने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया, 79 ईयर्स हमने कंप्लीट कर लिए है अब, और इस साल हमने अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मनाया है। तो दोस्तों, आज मेरे पास ना कुछ सवाल है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि क्या भारत जो पहले था वो अब भी है? क्या हम जो आज़ादी का मतलब पहले समझते थे, क्या आज भी वही आज़ादी का मतलब है? और आपके लिए आज़ादी सच में है क्या? हम क्या सोचते हैं इसके बारे में? अब तक हमने बात की कि आज़ादी का मीनिंग कैसे चेंज हुआ, लेकिन अब आता है कि हमारे आज के एपिसोड का शायद सबसे इम्पॉर्टेंट और थॉट प्रोवोकिंग सवाल, कि क्या हम सच में आज़ाद हैं या नहीं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ऑब्वियसली हम आज़ाद हैं, इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हमें अपने राइट्स मिले हुए हैं और हम अपनी बात रख सकते हैं, अपने एजुकेशन और करियर को चूज कर सकते हैं और अपनी लाइफ के डिसीजंस भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम सबको पता है, लेकिन यहाँ हम एक स्लाइटली डिफरेंट एंगल से बात कर रहे हैं कि क्या हम सिर्फ बाहरी रिस्ट्रिक्शन से आज़ाद हैं या फिर अपने माइंड और सोसाइटी के प्रेशर से भी। अगर हम आज के जो यंग पर्सन है उन्हें देखें, उनके पास अपॉर्चुनिटीज पहले से ज़्यादा है, लेकिन क्या प्रेशर भी उससे ज़्यादा है या वो कम है? करियर चूज करते वक्त लोग क्या कहेंगे, रिलेशनशिप में सोसाइटी क्या सोचेगी, अपीयरेंस को लेकर मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं दिखता, सोशल मीडिया पर क्या मेरी लाइफ दूसरों से कम एक्साइटिंग लगती है इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते? कभी कभी हम किसी के डायरेक्टली रोकने की वजह से नहीं, बल्कि जजमेंट के फियर की वजह से अपनी चॉइसेस को चेंज कर देते हैं। और ये सिर्फ यूथ की ही बात नहीं है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप भी एक तरह की इनविजिबल बाउंड्री को क्रिएट करता है। कभी किसी लड़की से कहा जाता है कि ये करियर तुम्हारे लिए नहीं है, कभी किसी लड़के को कहा जाता है कि इमोशंस शो करना वीकनेस होती है। तो सवाल ये है कि अगर सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स हमारी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो क्या हम कम्प्लीटली फ्री हैं आज भी? फिर आता है मिस इन्फॉर्मेशन, और आज के टाइम में हमारे पास मिस इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं होती। सोशल मीडिया पर एक मैसेज सेकंड में थाउजेंड्स ऑफ पीपल तक पहुंच सकता है, अगर हम बिना वेरीफाई किए उसे फॉरवर्ड कर दे तो हम इससे अननॉलेजली मिस इन्फॉर्मेशन का पार्ट बन सकते हैं। यहाँ भी फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी कनेक्ट होती है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, फ्रीडम तभी मीनिंगफुल होता है जब वो सबके लिए हो। अगर किसी को एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता और किसी को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, या किसी को सिर्फ अपनी आइडेंटिटी की वजह से अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो हमें अपनी प्रोग्रेस पर एक ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने प्रोग्रेस नहीं किया, हमने बहुत प्रोग्रेस किया है, हमने बहुत काम किया है अपने ऊपर, लेकिन प्रोग्रेस का मतलब प्रॉब्लम का कम्प्लीटली खत्म हो जाना नहीं होता है, बल्कि प्रोग्रेस का मतलब होता है कि हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, उसके बारे में बात करें और उन्हें बेटर करने की कोशिश करें। तो आपके लिए एक और सिंपल सा सवाल कि क्या हम आज़ाद हैं? शायद जवाब सिर्फ यस या नो में नहीं है, शायद आज़ादी एक जर्नी है जिसमें हर जनरेशन को कुछ इनविजिबल चेन्स तोड़नी है। और जब हम अपनी आज़ादी की बात करते हैं तो सवाल नेचुरली आ ही जाता है कि अगर आज़ादी हमारा हक है तो उसके साथ हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं अपने देश की। जी हां, हमने कल ही 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया है और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जिसमें आज बहुत ही खास बातें चल रही है। अभी तक हमने एक इम्पॉर्टेंट सवाल पर बात करी थी, बहुत ज़रूरी बात करी कि क्या हम सच में आज़ाद है, और शायद इसका जवाब हमें एक और इम्पॉर्टेंट थॉट की तरफ लेकर जाना चाहता है कि आज़ादी सिर्फ एक हक नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। जी हाँ दोस्तों, जब हम इंडिपेंडेंस डे सुनते हैं तो हम फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं। उन लोगों ने एक आज़ाद इंडिया का सपना देखा था, उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए भी स्ट्रगल किया, और आज हम उन्हीं जनरेशन में से एक है। तो अब सवाल ये है कि हम अपनी आज़ादी के साथ क्या कर रहे हैं। मान लीजिए हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है, हम अपनी ओपिनियंस को शेयर कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम बिना कुछ भी सोचे समझे कुछ भी बोल सकते हैं? नहीं, ये गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। हम फैक्ट चेक करें, दूसरों की फीलिंग्स और डिग्निटी को रिस्पेक्ट करें और हेट या फिर मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड ना करें। हम अपनी लिमिट में रहकर कह सकते हैं, हमें ज़रूरी नहीं कि हम किसी के लिए कुछ गलत बोले, तभी ये हमारे लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच कहलाएगा। इसी के साथ हमें वोट करने का राइट मिला है, लेकिन सिर्फ वोट करना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स और इश्यूज के बारे में भी इन्फॉर्मेशन लेना जरूरी है। फिर आता है एनवायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, हमें नेचर के रिसोर्सेज यूज करने की फ्रीडम है, लेकिन क्या हम

उन्हें अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वाटर सेव करना, वेस्ट कम करना, प्लास्टिक का यूज रिस्पॉन्सिबल होकर करना, ये छोटी चीजें लग सकती हैं, लेकिन कलेक्टिवली बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं। और दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सिर्फ कंट्री के लिए कुछ बड़ा करना नहीं होता है, कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सिंपल हो सकती है, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज ना करना, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करना, ऑनलाइन किसी को भी ऐसे टारगेट ना करना, अपने आसपास के लोगों की चॉइसेस की रिस्पेक्ट करना। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना भी नेशन बिल्डिंग का पार्ट है, और यूथ के लिए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आज का जो यूथ है वो सिर्फ फ्यूचर ही नहीं है बल्कि आज हमारा प्रेजेंट भी है। हम सोशल मीडिया पर क्या शेयर करते हैं, हम पब्लिक स्पेस में कैसे बिहेव करते हैं, हम एनवायरमेंट को कितना सीरियसली लेते हैं, हम दूसरों के राइट्स को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, ये सब भी इंडिया के फ्यूचर को शेप करता है। तो शायद मेरी आज़ादी मेरी जिम्मेदारी का एक सिंपल सा मीनिंग ये है कि मुझे जो फ्रीडम मिली है मैं उसका यूज सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए भी करूं। दोस्तों, 79 ईयर्स पहले इंडिया को आज़ादी मिली थी, आज हमारी जनरेशन के पास एक डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस आज़ादी को समझना और रिस्पेक्ट करना और रिस्पॉन्सिबली इसे यूज़ करना। और अब जब हम पास्ट से प्रेजेंट तक आ गए हैं तो एक बार फ्यूचर की तरफ भी देख लेते हैं। जब इंडिया 2047 में अपने 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करेगा तब हम अपने देश को कैसे देखना चाहेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और दोस्तों, अब तक हमने देखा कि इंडिया ने 1947 से लेकर 2026 तक कितनी लंबी जर्नी को कवर किया है। हमने बात की कि आजादी का मीनिंग क्या है, ये भी सोचा कि हमें क्या हम सच में कम्प्लीटली फ्री है, और इसको भी समझा कि फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। लेकिन अब एक स्टेप और आगे चलते हैं कि आज हम 2026 में खड़े हैं, इंडिया अपना 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है, और अब सोचिए 2047 में क्या होगा। जी हाँ, 2047 वो साल होगा जब इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस के 100 साल को पूरा करेगा। जी हाँ, आज से 21 साल बाद इंडिया अपने 100 साल पूरे कर लेगा। हो सकता है जो चीजें आज हमें इतनी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगती है वो नॉर्मल डेली लाइफ का हमारा पार्ट बन जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबाइलिटी, स्मार्ट सिटीज और डिजिटल सर्विसेज, शायद इनका रोल भी और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, 2047 का डेवलप्ड इंडिया सिर्फ टेक्नोलॉजी से डिफाइन नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा इंडिया इमेजिन करना चाहिए जहां पर एजुकेशन सिर्फ लोगों तक ही लिमिटेड ना हो, बल्कि हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिले। जहां जो हमारी जो यंग पीपल है उनके पास सिर्फ डिग्रीज ही ना हो, बल्कि मीनिंगफुल करियर अपॉर्चुनिटीज भी हो। जहां वुमेन्स अपने सपनों को परस्यू करने के लिए परमिशन नहीं, बल्कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज और सेफ स्पेस मिले। जहां गांव और शहरों के बीच में अपॉर्चुनिटीज का गैप कम हो। जहां हेल्थ केयर और बेसिक फैसिलिटीज हर सिटीजन तक एक्सेसिबल हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक ऐसा इंडिया जहां पर डेवलपमेंट के साथ एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जाए। क्योंकि अगर हम फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं तो हमें ये भी सोचना होगा कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ कर जा रहे हैं। और यहाँ फिर एक बार यूथ की बात करना जरूरी है। 2047 में जो इंडिया होगा उसे बिल्ड करने वाले आज के स्टूडेंट और यंग प्रोफेशनल्स ही होंगे। आज जो हम जो स्किल्स को सीख रहे हैं, जो आइडियाज को क्रिएट कर रहे हैं, जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर जो इनोवेशन कर रहे हैं और सोसाइटी में जो चेंज लेकर आ रहे हैं, ये सब फ्यूचर इंडिया की फाउंडेशन का पार्ट है। तो मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक और बार पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको 2047 का इंडिया डिजाइन करने का चांस मिले तो आप उस इंडिया में क्या क्या देखना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि इंडिया टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर हो? क्या आप चाहेंगे कि हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले? क्या आप ये चाहेंगे कि वुमेन्स और मेन्स के बीच में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले? क्या आप ये चाहेंगे कि इंडिया क्लीनर, ग्रीनर और मोर सस्टेनेबल हो? या फिर आपके माइंड में कोई और ऐसा इंडिया के लिए सपना है? तो हमें मैसेज करके जरूर बताइएगा। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078 पर। दोस्तों, 2047 सिर्फ एक फ्यूचर डेट ही नहीं है, बल्कि वो एक विजन है, और एक विजन को रियलिटी बनाने का काम किसी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी जनरेशन का नहीं है, बल्कि हम सब उस फ्यूचर का पार्ट है। 79 ईयर्स पहले एक जनरेशन ने आजाद इंडिया की नींव रखी थी। अब हमारी जनरेशन की बारी है कि हम उस फाउंडेशन पर कैसे इंडिया को बिल्ड करते हैं। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। सुनी बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और अब हम आ गए हैं ट्रेंडिंग तड़का में स्पेशल एपिसोड में फाइनल सेगमेंट पे। जी हाँ, आज के सफर में हमने 1947 से लेकर 2026 तक की इस जर्नी को देखा। हमने बात की कि 79 ईयर्स में इंडिया कितना बदला टेक्नोलॉजी और एजुकेशन से लेकर विमेन और यूथ के कितने रोल, कितनी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इन सब के बारे में जाना। हमने ये भी समझा कि आज़ादी का मीनिंग सिर्फ एक कंट्री का इंडिपेंडेंट होना ही नहीं है, बल्कि हर इंडिविजुअल के लिए अपनी लाइफ, अपनी चॉइसेस और अपनी आवाज़ को लेकर कितनी ज़्यादा वैल्यू है। और फिर हमने आपसे कुछ सवाल भी पूछे कि क्या हम सच में आज़ाद हैं, आप उस आज़ादी को क्या समझते हैं। शायद इसका आंसर सिंपल येस या नो में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री में रहते हैं, लेकिन फिर भी सोसाइटी का प्रेशर, स्टीरियोटाइप्स, जजमेंट्स, फियर और मिस इन्फॉर्मेशन जैसे इनविजिबल चैलेंजेस हमारे सामने आ जाते हैं। और इसीलिए आज की कॉन्वर्जेशन का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है कि आज़ादी और जिम्मेदारी एक दूसरे से अलग नहीं है, ये दोनों ना साथ में चलती हैं। दोस्तों जरा सोचिए, अगर हमें अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने की फ्रीडम है तो दूसरों की ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर हमें वोट करने का राइट है तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमें पब्लिक स्पेसेस को यूज करने की फ्रीडम है तो उसे क्लीन और सेफ रखना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर हमें अपने सपनों को फॉलो करने के लिए फ्रीडम है तो दूसरों को भी उनके सपनों को फॉलो करने के स्पेस देना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यही तो है आज़ादी की रियल स्पिरिट। मैं आज़ाद हूँ, लेकिन सिर्फ मैं नहीं, मेरे आसपास का हर इंसान भी अपनी डिग्निटी और चॉइसेस के साथ जीने के लिए आज़ाद हो। 15 अगस्त का दिन हमारे लिए बहुत खास है। कल हम सभी ने तिरंगा लहराया, इस तिरंगे को सेलिब्रेट किया, आज हम उस तिरंगे से जुड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज को याद कर रहे हैं। कल हमने फ्रीडम फाइटर्स को सैल्यूट किया और आज हम सोच रहे हैं कि उनके सपनों के इंडिया को कैसे आगे लेकर जा सकते हैं। और कल जब 2047 आएगा तब इंडिया 100 साल अपने इंडिपेंडेंस को कंप्लीट कर लेगा, तो शायद उस वक्त की जनरेशन हमारी तरफ देखेगी और कहेगी उन्होंने अपने टाइम में अपने इंडिया को और बेटर बनाने की कोशिश की थी। तो दोस्तों आज के एपिसोड का एक सिंपल से थॉट के साथ एंड करते हैं कि 79 साल पहले हमने आज़ादी हासिल की थी, आज हम उस आज़ादी को जी रहे हैं और कल की जनरेशन के लिए इसे और मीनिंगफुल बनाना हमारी जिम्मेदारी है। आज़ादी सिर्फ एक सेलिब्रेशन ही नहीं है, आज़ादी एक हक है, आज़ादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आज़ादी एक प्रॉमिस है एक बेटर इंडिया का। मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और इसी थॉटफुल मैसेज के साथ मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत। मिलेंगे अगले ट्रेंडिंग तड़का में किसी और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है। तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के संग लेक वादा, अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। और अब दोस्तों, समय हो चुका है कैसे कार्यक्रम का, जहां बात होती है आप ही की सुरक्षा की। प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद और इसमें हमारे नॉलेज पार्टनर हैं फरीदाबाद पुलिस, जहां हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से फरीदाबाद पुलिस के विभिन्न अधिकारी आपसे बातचीत करते हैं विभिन्न मुद्दों पर। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, वो विषय एक ऐसा विषय है जो हम सबकी जिंदगियों से डायरेक्टली जुड़ा है, बरसात होना और बरसात में पानी भरना। लेकिन इस माहौल में आपकी मदद के लिए अगर कोई सबसे पहले आते हैं तो वो है वहाँ आसपास के एरिया के लोकल रेजिडेंट्स और ट्रैफिक पुलिस या पुलिस के वो जवान जो सड़क पर हैं आप ही की निगरानी, आप ही की सेफ्टी के लिए। ऐसे ही हाल ही में बारिश के दिनों में एक दिन इतनी बारिश हुई दिल्ली एनसीआर में कि पूरा एनसीआर डूबा हुआ सा नजर आ रहा था। सारे न्यूज चैनल्स, रिपोर्ट्स, हर जगह पर कुछ वीडियोज ऐसी वायरल हो रही थी जहां पर लोग सिर तक पानी में भरे हुए दिखाई दिए और तैर कर इधर से उधर जा रहे थे। गाड़ियां पानी में रुक चुकी थी, लोग फंस चुके थे। घंटों के जाम के बाद लोग रात को, शाम के चले हुए रात को अपने घर पहुंचे। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस भी 2-2 घंटे दूर नजर आ रहा था लोगों को। लेकिन ऐसी परिस्थिति में कुछ जांबाज ऐसे थे जो सामने आए और उन लोगों की मदद की जिनकी लाइफ कहीं ना कहीं, जिनकी जिंदगी कहीं ना कहीं दांव पे लग चुकी थी पानी भरने की वजह से। ऐसी एक वीडियो वायरल हो रही है फरीदाबाद पुलिस के एक ऐसे अधिकारी की जो कि पानी में गए और एक पूरी डूबी हुई गाड़ी में से शख्स को निकालने में मदद भी करी और उस गाड़ी को भी बाहर निकलवाया। जी हाँ, ये वीडियो वायरल हो रही है एक अंडरपास जो कि ओल्ड अंडरपास के नाम से जाना जाता है फरीदाबाद में, और सबसे ज्यादा आवाजाही इस अंडरपास पर रहती है। कुछ टाइम पहले यहाँ पर बारिश के पानी में हादसे में 2 लोगों ने जान भी गंवाई थी और उसके बाद से यहाँ पर गेट बंद कर दिए जाते हैं। तेज बारिश होने पर वार्निंग भी लगा दी जाती है, लेकिन फिर भी कई बार लोग समय बचाने के लालच में या फिर जाम में ना फंसने के लालच में इन अंडरपास का इस्तेमाल करना चाहते हैं और करते भी हैं। ऐसा ही एक हादसा 7 अगस्त की रात को हुआ, शाम को हुआ इनफैक्ट। और 7 अगस्त की शाम को जब पूरा दिन बारिश चली, शाम तक पानी जो था वो काफ़ी हद तक भर गया था और इस भरे हुए अंडरपास में से भी कुछ गाड़ियों की वीडियो वायरल हो रही है। एक बस पूरी डूबी रही थी और एक SUV पूरी डूबी हुई थी, लेकिन इसमें जो शख्स थे उन्हें बचा लिया गया। पर आज हमारे साथ स्टूडियो में वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने इन व्यक्ति की हेल्प भी करी और उस गाड़ी को भी निकलवाया और साथ ही इस पूरे एरिया की निगरानी भी करी और सिर्फ इस गाड़ी को नहीं, कुछ और भी लोगों की मदद करी। हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद हैं ASI इंद्रजीत जी, जो कि फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस में ही हैं और इस पूरे एरिया जो कि बटकल और NIT का एरिया है, इसके जोनल ऑफिसर भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: इंद्रजीत जी, एक वीडियो आपकी बहुत वायरल हुई हाल ही में, वो वीडियो थी जहां पर आप उस गहरे पानी में, अंडरपास का जो पानी है उसमें चलते चले आ रहे हैं और वो इतना पानी भरा हुआ है कि उसमें से आम इंसान का निकलना बहुत मुश्किल है, और साथ ही एक पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई SUV दिखाई दे रही है और एक बस की भी छत दिखाई दे रही है। तो ये क्या मंजर था, थोड़ा सा हमें बताइए, क्योंकि उस दिन 7 अगस्त पूरे दिन जो सुबह 5 बजे से 4 बजे से बारिश शुरू हुई वो रात तक चलती रही, इनफैक्ट अगले दिन तक चलती रही।
2: ये बस की छत तो सुबह दिखाई देने लगी, शाम तक जी तो बिल्कुल भी छत भी दिखाई नहीं दे रही थी उसकी
1: जी।
2: ये बस खराब हुई तकरीबन 3-4 बजे करीब शाम को, जब ये बच्चों को तो छोड़ के आ गया था, लेकिन प्रिंसिपल से बात हुई थी तो वो कह रहे थे कोई जो 4th क्लास है उनके जो वहाँ पे सब हेल्प थे, लेडीज थी, उनको घर छोड़ने के लिए गए थे
1: जी।
2: जो रास्ते में वही अंडरपास में खराब होगी क्योंकि उसमें पानी था,
1: तो उसमें कोई व्यक्ति नहीं था।
2: जब निकाल लिए थे पहले ही
1: जी, जी।
2: वो खड़ी थी, खड़ी खड़ी गाड़ी अब खराब हो गई है, उसको
1: वो
2: डूब गई पानी, इतना पानी आया कि बस पूरी की पूरी डूब गई थी। फिर शाम को 7:30 बजे करीब एक एक्सयूवी फॉर्चूनर गाड़ी थी, फॉर्चूनर गाड़ी आई 21 की तरफ से, और मैं था उस समय जो अपना रेलवे स्टेशन की तरफ वाले रास्ते के पास में।
1: ओके जी।
2: मैंने उधर से दिखाई दिया कि भाई गाड़ी पानी के अंदर है अंडरपास में, और लाइटें जलती हुई थी,
1: वो लाइटों की रिफ्लेक्शन जो आपको दिखी होगी,
2: रेड कलर की लाइट, बैक बैक की जो रेड लाइट जलती वो दिखाई दे रही थी।
1: ओके।
2: तो मैं भाग के घूम के चंदीला गांव की तरफ से 21A की तरफ पैदल पहुंचा वहां से, क्योंकि गाड़ी को जाने का कोई रास्ता नहीं था, मैंने बाइक भी अपनी उधर ही खड़ी कर रखी थी। तो मैं पैदल घूमते हुए वहां गया। वहां पर एक संजय गिरी नाम का व्यक्ति था, जो इसने सिचुएशन को देखा कि भाई गाड़ी अंदर गई है, वो उसको बिना अपनी जान की परवाह किए हुए उसको बचाने के लिए गया।
1: अच्छा।
2: मैं उसका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं जो अपने से ज्यादा दूसरों की जान की परवाह करते हैं। तो जब जैसे ही मैं घूम के गया तो तब तक उन्होंने उसको गाड़ी से निकाल लिया था।
1: अच्छा,
2: संजय गिरी निकाल लिया था
1: जी।
2: तो वो बाहर लेके आए और उसका फिर मैंने वो किया, मतलब कि जो देते हैं
1: CPR
2: देते हैं वो कराया उसका CPR दे के, फिर उसको अभी तक तो उसकी आवाज वगैरह उसके मुंह से कुछ नहीं रही,
1: बेहोश थे,
2: ना ही उसकी आंख खुल रही थी, ना कुछ बोल पा रहे थे। हमने उससे पूछने की कोशिश की कि गाड़ी में आपके साथ कोई और है, व्यक्ति है या नहीं है, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन में था कि बता नहीं पाया। तो हमने उसको तुरंत ही, एक वहां पे गाड़ी खड़ी हुई थी, बिना देरी के हमने उस गाड़ी के अंदर बैठाया उसको और फोर्टिस हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ उसका ट्रीटमेंट चला। अब उसकी कंडीशन बेटर बताई जा रही है।
1: कौन थे ये शख्स, कुछ पता चला फरीदाबाद?
2: ये नीरज मित्तल जी थे, सेक्टर 9 में रहते थे।
1: ओके
2: जी। इनके लड़के भी आ गए थे थोड़ी देर बाद, जिनको हमने बता दिया था कि भाई आपके फादर को ऐसे ऐसे वो हो गया था, तो उनको फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया।
1: जी जी। जब इनको गाड़ी में से निकाला तो गाड़ी में पूरा पानी भर चुका हो?
2: बिल्कुल भर चुका था
1: जी।
2: जो पीछे की खिड़की तोड़ी हमने, शीशा तोड़ा, और एक साइड का राइट साइड का शीशा तोड़ा,
1: तब जाके इनको
2: निकाला गया था।
1: और ये बेहोश हो चुके थे, पानी में
2: बिल्कुल, क्योंकि एज 60+ एज है।
1: अच्छा, 60+ एज है? और
2: जी बिल्कुल 60+ एज थी
1: जी। तो इनसे क्या किसी की बात हुई जब ये थोड़े ठीक महसूस किया कि ये क्यों इतने पानी में जाते रहे, क्योंकि अब तो वार्निंग
2: नहीं, अभी तक तो वेंटिलेटर पर जी, अभी तक सिचुएशन मतलब कि ठीक है, मतलब कि ये नहीं है बिल्कुल भी, हम ये नहीं बता सकते, कह सकते कि भाई बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन पहले से बहुत ही बेटर
1: है। सो बहुत सारी बातें दोस्तों चल रही हैं अनुज कुमार जी से, जो कि इंस्पेक्टर हैं और SHO ट्रैफिक हैं फरीदाबाद के, और इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कावड़ यात्रा के दौरान भी माहौल को एकदम शांत और ट्रैफिक को एकदम सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। इस पर बहुत सी चर्चा करी है हमने, जानकारी आपके साथ साझा की है, बातें और भी ट्रैफिक के बारे में करेंगे, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन और कार्यक्रम है सुरक्षा संवाद। मैं हूं दीक्षा आपके साथ। आज हमारे कार्यक्रम में हमारे गेस्ट हैं अनुज कुमार जी, इंस्पेक्टर फरीदाबाद पुलिस, SHO ट्रैफिक फरीदाबाद, और इनसे हम जानने की कोशिश करें हैं कि शहर में ट्रैफिक को सुचारू रूप से कैसे चलाया जा सकता है, क्या प्रबंध किए जाते हैं और क्या क्या रूल्स बने हुए हैं ट्रैफिक को सही रूप से चलाने के लिए और साथ ही एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए। इंद्रजीत जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इतनी वार्निंग इस अंडरपास को लेकर लगाई जा चुकी है, दीवारों पर लिखा हुआ है, गेट बंद कर दिए हैं, हादसे पहले हो चुके हैं, तो सब अवेयर हैं शहर में, सबको
1: बिल्कुल सबको पता है,
0: पता है कि यहाँ पर हादसे होते हैं, फिर लोग क्यों जाते हैं अंडरपास में?
1: अंडरपास में क्या है कि सब ये सोचते हैं कि भाई जल्दी पहुंच जाएंगे यहाँ से निकलने के बाद, लेकिन पानी वो उनको अंदाजा नहीं होता कि भाई पानी कितना गहरा हुआ।
0: और वो अंडरपास जो है सबसे ज्यादा चलता हुआ अंडरपास है, सबसे ज्यादा रश है। तो इसमें आपने जिस तरीके से उनको बचाया, संजय गिरी जी के बारे में मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा बताएं, क्या करते हैं ये, कहाँ रहते हैं?
1: ये संजय गिरी जो महिला थाना अपना 21A के अंदर महिला थाना, उसके सामने चाय की दुकान है इनकी
0: जी, और इन्हें स्वार्थ भाव से वहाँ पहुंचे और बचाया, ये भी कोई छोटी चीज नहीं है।
1: फिर उसके बाद मैं भी देखने के लिए गया था, मैं खुद तैरता हुआ पानी के अंदर गया कि भाई कोई अपनी तसल्ली के लिए भाई कोई शख्स उस गाड़ी के अंदर रह तो नहीं गया है,
0: कहीं कोई और भी
1: कोई हो जी, लेकिन उसमें ऐसा कोई कुछ था नहीं
0: जी। तो आपके मुताबिक ये एक ऐसा मामला था जिसमें सिर्फ समय बचाने के लिए, शायद
1: समय बचाने के लिए,
0: और गेट ऑलरेडी बंद थे,
1: गेट ऑलरेडी हमने दिन में ही बंद कर दिए थे
0: जी, जैसी बारिश थोड़ी सी बड़ी आपने सारा बंद कर दिया। तो इंद्रजीत जी, ऐसे बहुत सारे और भी लोग होते हैं जो थोड़ा सा समय बचाने के लिए, क्योंकि उस दिन जाम जो था वो घंटों का जाम,
1: बहुत ज्यादा जाम था, क्यों सुबह से लेकर शाम तक बारिश पूरा कंटिन्यू चल रही थी, बिल्कुल भी बारिश नहीं रुकी थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक स्लो था
0: जी, बहुत स्लो था उस दिन, तो मतलब हर कोई जो है वो अपने घर घंटों बाद पहुंचा था।
1: और ये भी बता दें, इसके जो लड़के आए थे उन्होंने बताया था कि ये इनका कोई रिलेटिव था जो एशियन हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था,
0: उनको देखने के लिए गए थे।
1: उन्होंने ये सोचा भाई बड़खल फ्लाईओवर के ऊपर पूरा रश था, पूरा जाम था, उन्होंने ये सोचा भाई यहाँ जाम है ज्यादा
0: तो
1: ओल्ड अंडरपास से निकाल लेते हैं, इनकी गाड़ी ऊंची थी फॉर्चूनर गाड़ी,
0: इनको
1: लगा कि भाई निकल भी जाएगी, इसलिए वो इन्होंने वो रास्ता चुना।
0: पर पानी इतना ज्यादा भरा हुआ था कि फॉर्च्यूनर तो छोड़िए बस तक पूरी
1: बस तक बिल्कुल डूब चुकी थी
0: जी। इंद्रजीत जी, एक और गाड़ी आपने निकलवाई थी, वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप हमारे लिसनर्स को बताएं, श्रोताओं को बताएं कि वो क्या हादसा था, वो कैसी लापरवाही थी, एकदम नई गाड़ी, दोस्तों जो वीडियो मैंने देखी है वो भी एकदम नई गाड़ी थी और पूरे तरीके से आधी वो डूबी हुई थी।
1: वो पटेल चौक के पास जो शमशान घाट है
0: जी,
1: उनका कोई वो था रिलेटिव, तो उसमें दाग के लिए गए थे
0: जी, जी
1: वहाँ पे जा रहे थे, तो वो यहाँ पे नए आए थे, उनके बारे में ये नहीं कह सकता कि उनको रास्ते का नहीं पता था, वो दिल्ली से आए थे, उनको रास्ते के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ से गड्ढा है या क्या है। तो पटेल चौक हनुमान मंदिर से जैसे ही वो उसकी तरफ चले शमशान घाट की तरफ, तो शमशान घाट के बिल्कुल सामने इन्होंने सोचा कि शमशान घाट सामने है, लेफ्ट में टर्न किया, लेफ्ट में टर्न लेते ही ना वो एक गड्ढा था वहाँ पे, जो जहाँ पे ये अपना छठ पूजा वगैरह करते हैं उसका गड्ढा था, उसमें पानी भर के वो करते थे, उसमें उसके अंदर गिर गई
0: गाड़ी, उसमें चली,
1: उसमें आगे का हिस्सा पूरा उसमें उसके अंदर जा चुका
0: और वो दिख नहीं रहा था क्योंकि पानी भर चुका था
1: जी बिल्कुल।
0: तो ये अपने आप में बड़ी एक खतरनाक सिचुएशन हो जाती है।
1: हाँ, ये पब्लिक को भी ध्यान में रखना चाहिए, जब बारिश हो ऐसा रास्ता चूज ना करे जो हमने कभी देखा ना हो या जिसपे हम कभी चले ना हो।
0: और इंद्रजीत जी, इसमें कहीं वार्निंग भी तो लगानी चाहिए, देखिए जैसे अंडरपास में वार्निंग लगी,
1: अंडरपास पे तो वार्निंग लगी हुई, रोड के दोनों तरफ टाइल लगी हुई है।
0: हाँ।
1: अब उस पे क्या वार्निंग लगाएंगे भाई, जब रोड के दोनों तरफ टाइल लगा दी तो इसका मतलब रोड क्लोज है, खत्म है, वहां से उसके तरफ जाएंगे तो वो तो ड्राइवर की गलती है।
0: लेकिन कोई पैदल चलता हुआ शख्स उसमें गिर सकता है अगर गलती से उस जगह पे चला गया और गड्ढा नहीं दिख रहा तो, या तो कुछ
1: पैदल के लिए उधर से मैं खुद देख के आया था, थोड़ा सा रास्ता लेफ्ट साइड में था जिसपे
0: पैदल
1: मैं खुद वहीं से गया था
0: जी जी, यानी वो
1: तो दिखाई दे रहा था,
0: वो एक कह सकते हैं कि हल्की लापरवाही हो गई।
1: हाँ, वो सोचे थोड़ा बहुत पानी होगा वो निकाल लें।
0: तो इसमें आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो लोग हमें सुन रहे हैं, बारिश का सीजन चल रहा है और बारिश इस बार लगातार, पहले भी जो 2-3 हफ्ते पहले बारिश हुई थी लगातार एक एक दो दो दिन चलती है जिससे शहर की पूरी व्यवस्था एकदम से चरमरा जाती है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे?
1: एक तो जितने भी फरीदाबाद नहीं, गुड़गांव या कहीं भी कहीं भी पूरे ऑल इंडिया में जहां भी अंडरपास हो, बारिश के समय में किसी भी अंडरपास का प्रयोग ना करें, और जब भी बारिश के उसमें अपनी गाड़ी चलाए, धीरे चलाए, ताकि दूसरों को छींटे ना लगे, जिससे भी वो एकदम से चौक जाते हैं और हादसा होने की संभावना बनती है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बातों का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आपको ये बातचीत बहुत अच्छी लग रही है और आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट रेडियो मानव रचना, और इस ऐप में पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आरजे दीक्षा के फोल्डर में आपको फरीदाबाद पुलिस के साथ हुए ये संवाद यानी सुरक्षा संवाद कार्यक्रम के काफ़ी एपिसोड्स मिल जाएंगे, जिनको आप कभी भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने शहर की सुरक्षा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम है सुरक्षा संवाद सपोर्टेड बाय फरीदाबाद पुलिस। और फरीदाबाद पुलिस से आज हमारे बीच हैं SHO ट्रैफिक फरीदाबाद इंस्पेक्टर अनुज कुमार जी, और इनसे जान रहे हैं हम ट्रैफिक के कुछ खास रूल्स, चालान और एक्सीडेंट्स को कम करने के बारे में, उठाए गए प्रयासों के बारे में। इंद्रजीत जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहती हूँ। गाड़ियां जब चलती हैं सड़क पे और बारिश हो रही होती है, मतलब बारिश होने के दौरान जब गाड़ी चलती है, तो गाड़ियां सड़क स्लिपरी हो जाती है बहुत ज्यादा,
1: बिल्कुल,
0: और ऐसे में हादसे होने के बहुत चांसेस होते हैं,
1: बिल्कुल जी।
0: तो खास तौर पर से ये जो हाईवेज पर गाड़ियां चल रही हैं 100 की स्पीड से 80 की स्पीड से चल रही, इनको क्या सजेस्ट करना चाहिए?
1: इनको भी सजेशन यही किया जाता है कि भाई बारिश के समय में ज्यादा स्पीड से गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि ब्रेक लगते तो है लेकिन स्केट कर जाते हैं ब्रेक उसमें, जिससे हादसा होने की ज्यादा संभावनाएं होती है।

0: पीछे से आने वाली गाड़ी को दिखता
1: दिखाई नहीं देता, वो सामने से बारिश के पड़ रही है, वाइपर भी चलाते हैं लेकिन दिखाई फिर भी बहुत कम देता है, उसके लिए डिपर जो है अपने चला के रखना चाहिए।
0: जी चला के रखने चाहिए, वो आप सजेस्ट करना चाहेंगे। अगर गाड़ी गहरे पानी में फंस जाए, अब जैसे यही हादसा था ओल्ड अंडरपास वाला, इसमें गाड़ी गहरे पानी में फंस गई है और शख्स निकल नहीं पा रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए, निकलने के लिए इमरजेंसी में क्या करें, गाड़ी कैसे पीछे करें, कैसे वापस लाएं, क्योंकि पानी का बहाव इतनी तेज होता है कई बार कि आपकी गाड़ी जाम हो जाती है
1: पानी में जाते ही। आजकल गाड़ियां जो आ रही है सेंटर लॉकिंग है,
0: जी जी
1: सभी में तकरीबन सेंटर लॉकिंग है, जो पानी में जाते ही सेंसर काम करने बंद कर देते हैं और गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। उसके लिए गाड़ी में कुछ ऐसे वो रखे जिससे शीशे को तोड़ा जा सके, शीशे को तोड़ के आप बाहर निकल सकते हो
0: जी। और एक गाड़ी के जो सीट हेडरेस्ट जो होता है उसको भी निकालने का प्रावधान होता है
1: जी, सीट रेस्ट के पीछे जो ऊपर होता है ना गर्दन लगाने के लिए, उसको निकाल के उससे भी तोड़ सकते हैं
0: जी। यानी ये उपाय जो है पता होने चाहिए। बहुत सारे पैदल चलने वाले लोग भी हादसे का शिकार होते हैं बरसात में, उनको क्या और गाड़ी चलाने वाले उनका ख्याल कैसे रखें, क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर जो गाड़ी चलाता है उसको ये परवाह ही नहीं होती कि साथ में कोई पैदल चल रहा है
1: जी। देखो अब ओल्ड अंडरपास की हम बात करते हैं
0: जी,
1: ओल्ड अंडरपास पे बारिश खत्म होने के बाद में पानी भी निकाल दिया गया था, उसके बाद भी कीचड़ कम से कम एक एक डेढ़ डेढ़ फुट कीचड़ थी उसके अंदर, जो फिर भी पब्लिक पैदल जाने वाले व्यक्ति बिल्कुल नहीं मान रहे थे। मैंने खुद ही उनको, मैं प्रेजेंट था वहाँ पे, मैंने उनको खुद रोका टोका लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थे। इसके लिए मैं पब्लिक से भी आग्रह करना चाहूँगा कि वो पुलिस की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, पुलिस आपके फायदे के लिए कुछ वो कर रही है तो आपके फायदे के लिए कर रही है,
0: तो यानी जो कीचड़ है जो स्टिल्ट बना हुआ है सारा उसमें से ना गुजरे,
1: उसमें से ना गुजरे।
0: तो सर ये कीचड़ में से गुजरने अगर कोई जा रहा है पैदल तो क्या हादसे हो सकते हैं, क्या आपको लगता है?
1: बाय चांस स्लिप हो जाए पैर, सर में गहरी चोट लग सकती है, हाथ पैर टूट सकते हैं उससे, स्लिप होने से, जमीन पक्का है उसमें गिरेंगे तो हादसा हो सकता है,
0: तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें।
1: जी बिल्कुल।
0: इसके साथ साथ एक टायर से ऊपर जब पानी तैरने लग जाए, बहुत ज्यादा पानी जो गाड़ी के ऊपर से हो जाने, तो कब हमें गाड़ी जो है वो साइड पे लगा लेनी चाहिए, क्योंकि कई लोग पानी में जाते जाते जाते जाते जाते जाते हैं और फिर गाड़ी जो है वहाँ रुक जाती है और पीछे एक बड़ा जाम जो है वो लग जाता है। सो कैसे इस चीज को समझें कि यहाँ पर गाड़ी खराब हो सकती
1: है? देखो ऊपर से तो हमें जब गाड़ी में बैठते हैं तो पानी इतना दिखाई नहीं देता, लेकिन जब तक जब बोनट के ऊपर पानी आ जाता है, जब लगता है कि कुछ ज्यादा पानी है, इसलिए अपना पानी का अंदाजा लग ही जाता है भाई ज्यादा है या कम है। वो अपनी गाड़ी जब जो गाड़ी चलाता है ना उसको पता होता है कि गाड़ी के पानी, अब गाड़ी चल रही है तो गाड़ी में कितना कहां तक पानी आ चुका है,
0: तो फिर गाड़ी
1: साइड में लगा लेनी चाहिए।
0: जी जी। तो बहुत सारे ऐसे हादसे जो हैं वो थोड़ी बहुत समझ से रोके जा सकते हैं, और ऐसे हादसों को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ पुलिस जो है वो कोशिश करे ये पॉसिबल नहीं होता है, एक आम इंसान को भी समझना चाहिए।
2: तो दोस्तों बातों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, आप भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं 8010781078 पर। मैं हूं दीक्षा आपके साथ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। कार्यक्रम है सुरक्षा संवाद और सुरक्षा संवाद एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हमारे साथ जुड़ते हैं फरीदाबाद पुलिस के अधिकारी और बात करते हैं आप ही की सेफ्टी के बारे में, चाहे वो हो ट्रैफिक से जुड़ी हो, चाहे वो महिला सेफ्टी हो या फिर बच्चों की सुरक्षा के बारे में बात हो या फिर साइबर फ्रॉड को रोकने के बारे में। हमारे एक्सपर्ट ऐसे ही हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते हैं और आज इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं इंस्पेक्टर अनुज कुमार जो कि SHO ट्रैफिक हैं फरीदाबाद पुलिस में। आइए जानते हैं और भी बहुत सी बातें रोड सेफ्टी के बारे में।
1: आप सर इंद्रजीत जी पूरा ट्रैफिक भी देख रहे हैं और जब जैम लगता है और इतनी बारिश होती है तो मैंने अपनी आंखों से पुलिस वालों को देखा है कि बेचारे अपने शूज उतार कर और भीगे हुए लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ 2 मिनट रुक जाइए, हमें यहाँ से ये ट्रैफिक निकालने दीजिए, 2 मिनट का सब्र, पर लोग नहीं सुन रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमें बताइए कि ट्रैफिक कैसे मैनेज करते हैं जब इतनी बारिश हो रही होती है।
2: ट्रैफिक तो मैम मैनेज करना पड़ता है, आज के टाइम में किसी को भी थोड़ी देर का समय नहीं है कि मैं थोड़ा वेट कर लूं। मैं अपना खुद का बता रहा हूं मैम, मैंने कई बार देखा हम पब्लिक को रोकते लेकिन थोड़ा थोड़ा सरका सरका के आगे निकल ही जाते,
1: बिल्कुल
2: भाई निकल जाऊं मैं भी निकल जाऊंगा, पर कोई नहीं मानता, लेकिन फिर भी उसको मैनेज करके हम जैसे भी हो सकता है मैनेज करके उसको निकालते हैं।
1: जी जी, तो पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे ऐसे ट्रैफिक जाम में जब फंसते हैं तो?
2: ट्रैफिक जाम में जब फंसते हैं तो पब्लिक को यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा संयम बरते, संयम बरतोगे तो पुलिस के सहयोग भी होगा और आपको भी पूरा सहयोग होगा और आप टाइम से भी घर पहुंच पाओगे,
1: ट्रैफिक जल्दी खुलेगा। यही जो लोग इधर से भी आ जाते हैं राइट से भी लेफ्ट से भी, वो आगे जाकर गड़बड़
2: कर देते हैं, पूरा एकदम ब्लॉक हो जाता है, उसको निकालना फिर वो हो जाता है।
1: जी जी जी सर, ट्रैफिक जाम में बहुत सारे लोग हमने देखे हैं रॉन्ग साइड गाड़ियां चलाते हैं, बहुत रॉन्ग साइड चलाते हैं, तो क्या इतना ज्यादा जाम लगा है तो पुलिस कोई एक्शन लेती है उन पे?
2: रॉन्ग साइड के बहुत ज्यादा चलान करते हैं मैडम
1: जी। कितना
2: एक बाईपास पे स्पेशली रॉन्ग साइड के, रॉन्ग तकरीबन बाईपास पे सारे कट ऐसे बनाए हुए हैं जो रॉन्ग साइड चलते हैं पब्लिक, वहाँ पे एक स्पेशली हमने छोड़ा हुआ है कि भाई एक बंदा जो रॉन्ग साइड के ही चलान करता है,
1: टारगेट वहाँ से पूरे हो जाते
2: हैं तकरीबन डेली, वहाँ के 100 चलान तो होते ही होते हैं
1: डेली, 100 चलान रॉन्ग साइड के,
2: रॉन्ग साइड के डेली वहाँ के बाईपास के, और बाकी जो करते हैं वो एक्स्ट्रा है जी बिल्कुल।
1: यानी आप 100 चालान डेली बाईपास के काट रहे हैं रॉन्ग साइड के, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। और हमने देखा है
2: बड़े इसका भी 5,500 रुपए का फाइन करते हैं,
1: 5,500 रुपए,
2: 5,500 रुपए का रॉन्ग साइड का फाइन है, लेकिन फिर भी पब्लिक नहीं मानती, अपनी जान जोखिम में डाल देंगे लेकिन चलेंगे रॉन्ग साइड।
1: ये तो अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम भी है, क्योंकि जब आप रॉन्ग साइड चलाते हैं तो आपको नहीं पता सामने से कौन सी गाड़ी
2: और स्पीड में, वो तो अपना ठीक चल रहा है, उसकी गलती क्या है,
1: ये बहुत जानलेवा है सिचुएशन।
2: बिल्कुल,
1: हाल ही में DC साहब का भी एक ऑर्डर आया था कि कोई भी अगर इन एक्सप्रेस वे से रॉन्ग साइड पे जाता है बाईपास से तो उसकी गाड़ी इम्पाउंड कर लेते हैं, क्या आप लोग करते हैं गाड़ी
2: इम्पाउंड? भी करते हैं,
1: इम्पाउंड भी करते हैं, फिर उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है?
2: वो फिर कोर्ट से चलान भर के छुटवाए जाते हैं
1: और 5,500 रुपए का चलान,
2: बिल्कुल
1: ये अपने आप में बहुत बड़ा चलान है। तो अगर आप हमें सुन रहे हैं और आप रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हैं सिर्फ थोड़ा सा समय बचाने के लिए तो ये गलती मत कीजिएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि आप सिर्फ अपना समय नहीं बचा रहे हैं, आप दूसरे की जान को खतरे में डाल रहे हैं और अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। सो इंद्रजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें जानकारी दी कि बरसात में आपने किस तरीके से मदद की, एक शख्स को अस्पताल पहुंचाया, उनके जीवन को बचाया और साथ ही लोगों को ये भी गाइड कर रहे हैं कि भाई आप इस पूरे बारिश के मौसम अपना ख्याल रखें और सड़कों पर बेवजह गलती से भी कोई गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि चाहे आप गाड़ी चला रहे हैं चाहे पैदल जा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी हादसे की एक दस्तक जो है वो बनी रहती है, तो उससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए।
2: जी आपका भी धन्यवाद, थैंक यू।
1: तो बहुत सारी बातें दोस्तों हम कर चुके हैं इंद्रजीत जी जो कि SI हैं फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस में, और हाल ही में ओल्ड फरीदाबाद में जो एक बड़ी गाड़ी फंसी और जिसमें जो शख्स फंसे उनको संजय गिरी के साथ अस्पताल तक पहुंचाने वाले शख्स यही थे जिन्होंने एक व्यक्ति की जान बचाई, और आज वो व्यक्ति अस्पताल में एडमिट हैं लेकिन पहले से बेहतर हैं। और आपसे यही हम अपील करना चाहेंगे, यही आपसे इल्तजा करना चाहेंगे कि कृपया करके बारिश के मौसम में अगर अंडर पासेस की तरफ से आप रेगुलरली जाते हैं तो बरसात के मौसम में उसे अवॉइड कीजिए। ट्रैफिक जाम से निकल के तो आप चाहे 1 या 2 घंटे में अपने घर पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप अंडर पास में फंस गए तो फिर ज़िंदगी बचानी बहुत मुश्किल हो जाती है। ये शख्स बहुत किस्मत वाले थे कि इन्हें इंद्रजीत और संजय गिरी जी जैसे 2 शख्स मिले जिन्होंने इनकी ज़िंदगी बचाई। लेकिन हर इंसान इतना खुश नसीब नहीं होता है, इसलिए प्लीज़ अंडरपास ज़मीन से बहुत नीचे होते हैं और पानी भरना यहाँ पर लाजमी है। तो आप प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा सीरियसली लें और समय की जगह अगर अपनी ज़िंदगी को बचाने में फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रोग्राम सुरक्षा संवाद में आज बस इतना ही। मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाज़त और हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे फरीदाबाद पुलिस का इस सीरीज़ के लिए। और आपसे भी यही कहना चाहेंगे, अगर आपके सवाल हों और कुछ कहना चाहते हो तो जरूर हमें मैसेज करें 8010781078 पर। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आपको भी पता है ये जो खास कार्यक्रम है ना, ये हर रविवार को आपके पास आता है, और रविवार की शाम खास तब बनती है जब हम मानवता की बात करते हैं। एज ह्यूमंस जरूरी ये है कि हम ह्यूमैनिटी को जिंदा रखें, लेकिन परेशानी ये है कि आजकल की भागदौड़ भरी कॉम्पिटिटिव जिंदगी में हमने ह्यूमैनिटी को पीछे छोड़ दिया है। और ह्यूमैनिटी को पीछे छोड़ने की बात अगर मैं कर रही हूँ तो मैं जरूर बात करने वाली हूँ एक ऐसी चीज पर जो ना किसी फैक्ट्री में बन सकती है और ना ही इसे हम कहीं रेप्लिकेट कर सकते हैं, यानी रक्तदान और साथ के साथ ऑर्गन डोनेशन। अंगदान और रक्तदान दो ऐसी चीजें हैं जो दान ही की जा सकती हैं, ये कहीं बनाई नहीं जा सकती हैं। सो आज हम बहुत सारी बात करने वाले हैं कि ऑर्गन्स क्यों डोनेट होने चाहिए और इसकी ज़रूरत कितनी है हमारे भारत में, क्या आंकड़ा है और क्यों किस लेवल पर हम पहुँचे हुए हैं। और अंगदान की मैं अगर बात करूँ, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं और बहुत सारे एनजीओज ऐसे हैं जो आगे बढ़कर आगे आए हैं और वो अंगदान पर ढेर सारी अवेयरनेस भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही सीनियर रोटेरियन है, रोटेरियन नरेश वर्मा जी, जो वैसे तो पास्ट प्रेसिडेंट हैं रोटरी क्लब फरीदाबाद सेंट्रल के, लेकिन अगर मैं ऑर्गन डोनेशन की बात करूं तो नॉर्थ इंडिया के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस रोटरी एक्शन ग्रुप के। सो रोटरी अलग अलग आयामों में काम करता है जिसमें कि ऑर्गन डोनेशन एक बहुत ही अहम हिस्सा है। आज हम इनसे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ऑर्गन डोनेशन पर अलग अलग किस्म की अवेयरनेस ड्राइव ये क्रिएट करते हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं, लेकिन उससे पहले करेंगे हम इनका स्वागत रेडियो मानवरचना 107.8 FM के स्टूडियो में।
2: थैंक यू, नमस्कार भावना जी, इट्स नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को आपके साथ इस टॉपिक पे बात करते हुए, क्योंकि ये अवेयरनेस अभी समाज में बहुत कम है, अंगदान की अवेयरनेस बहुत कम है।
1: इस कड़ी में ना सबसे पहला सवाल नरेश जी मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि हम जब अंगदान की बात करते हैं तो हमारा एक गैप है, मतलब हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, भारत आप देखिए सबसे बड़ी पॉपुलेशन का देश है, लेकिन अगर मैं अंगदान की बात करूं और अंगदान की कमी से होने वाले डेथ्स की मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ा फिगर है। सो किस तरीके का गैप है, और अगर मैं इस गैप की बात करूं तो आंकड़ा क्या कहता है और क्यों है इतना बड़ा गैप?
2: हर साल हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर लगभग 5 लाख रेसिपेंट्स रेडी रहते हैं जिनको अंगदान की ज़रूरत होती है, डिफरेंट अंग पार्ट्स के। पार्ट्स में हम बात करें हार्ट, लीवर, पेनक्रियास, आईज, किडनी और टिश्यूज और स्किन, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम दूसरे को दे सकते हैं। बट कमी की बात ये है कि 5 लाख में से सिर्फ हमको साल भर में 30,000 से 40,000 ही हमको डोनर्स मिल पाते हैं, बाकी या तो कुदरत उनके साथ कुछ और करती है या फिर वो वेटिंग में ही रहते हैं।
1: और बहुत सी बार तो ऐसा भी होता होगा नरेश जी कि हम जब ये कहते हैं वेटिंग में, तो शायद ज़िंदगी उतना समय नहीं देती है। भाई मान लीजिए कि आज आपको किसी एक ऑर्गन की ज़रूरत है और वो ऑर्गन जिस तरीके से हमारी बॉडी में फंक्शन कर रहा है वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, तो अगर वो ऑर्गन ख़त्म हो गया तो उसके साथ साथ आपका जीवन भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि लोगों में आज भी इसके बारे में अवेयरनेस है?
2: बहुत कम अवेयरनेस है जितनी होनी चाहिए, जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन है और जिस तरीके से हमारी ज़रूरत है। इसके अंदर मैं आपको ये बात कहूँगा, अगर आप ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो हिंदुस्तान वर्ल्ड में नंबर 3 पे है
1: जी,
2: नंबर 3 पे। सबसे ऊपर USA है जी। उसके बाद आपका चाइना है और फिर नंबर 3 पे इंडिया आता है नंबर ऑफ डूइंग ट्रांसप्लांट्स। परंतु ट्रांसप्लांट कौन देता है? सिर्फ फैमिली मेंबर टू फैमिली मेंबर
1: जी।
2: ये जो स्टेम डेथ हो जाती है जिसको ब्रेन डेड बोलते हैं, या फिर किसी के घर में कोई मौत हो जाती है, वो डोनर्स तो 1 मिलियन पे लेस देन 1% भी नहीं है हमारे पास, जिस वजह से डोनर्स की इतनी लंबी लिस्ट बढ़ती जा रही है, और जबकि वर्ल्ड की बेस्ट सर्विसेज हमारे यहाँ ट्रांसप्लांटेशन की है।
1: देखिए भाई, अगर हम बात करें तो आजकल के टाइम में मेडिकल फैसिलिटीज के लिए पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है। आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर कि आप जाएंगे तो उतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है जितनी भारत की है, लेकिन विडंबना ये है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस की बहुत कमी है और भ्रांतियां तो बहुत सारी हैं। आज भी हम कुछ कुरीति कुछ भ्रांतियों के साथ जी रहे हैं, और जिसके कारण ऑर्गन डोनेशन भारत शायद बहुत नीचे स्तर पर है, अभी भी लोग इसके बारे में बात नहीं करते। सो क्या किया जा सकता है? क्या आंकड़े कह रहे हैं, ये तो हमने जान ही लिया, 5 लाख की जरूरत है और मात्र 30-40 हजार में मिलते हैं। सो कहीं ना कहीं कुछ करने की जरूरत है, और ये करने की जरूरत है आपको और हमको। कैसे करेंगे और किस तरीके से, रोटरी इसमें एक बहुत अभिन्न हिस्सा निभा रहा है, इसके बारे में सबके बारे में करेंगे बात। छुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइफ।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर। मानवता की राह पर अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, और ये जो स्टेप है अभी हमें इसलिए लेने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग किस्म की बीमारियों के शिकार हैं, और उन बीमारियों में कई बार उनके जो अंग हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं और उन अंग को रिप्लेस करना ज़रूरी होता है। अब नरेश जी, सबसे अहम सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, और वो ये है कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है और क्यों?
1: सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर जो जरूरत पड़ी है वो पड़ी है किडनी की
0: जी,
1: और 50% हमारे रेसिपेंट्स जो इंतज़ार कर रहे हैं वो किडनी का इंतज़ार करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसप्लांट हमारे किडनी के भी होते हैं
0: जी।
1: उसके बाद हमारी है आईज़ की
0: जी,
1: और उसके बाद पैनक्रियास और सारे पार्ट्स हैं, और स्किन का भी बहुत बड़ा रोल है जिसकी ज़रूरत पड़ती है। बट किडनी में ज़्यादातर जो एक्ट आया 1996 में आया था कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट जो आया था, लेट आया, और फिर उसके बाद अवेयरनेस नहीं आई, अवेयरनेस का कोई कैंपेन नहीं हुआ। आप अगर ब्लड की देखें तो ब्लड की अवेयरनेस 80s में शुरू हो गई थी, और आज ब्लड की वजह से कोई भी जान नहीं जाती है, जबकि परमानेंट डोनर या परमानेंट रेसिपेंट से हम नहीं लेते, ओ पॉजिटिव को ओ पॉजिटिव ही देते हैं, सब देते हैं। पूरे देश में कहीं भी ब्लड की वजह से आप शॉर्टेज नहीं है, सब जगह ब्लड बैंक है, सब कुछ है, बट ऑर्गन डोनेशन के अंदर अवेयरनेस ना होने की वजह से कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ और चीज़ें हैं जिसकी वजह से अभी ऑर्गन डोनेशन इतना प्रमोट नहीं हो पाया। और रोटरी में हमारे डिस्ट्रिक्ट ने, डिस्ट्रिक्ट 3011 है, इसने ये एक लीड लिया 3 साल पहले, और उसमें कुछ लोग जो साथ में पहले जुड़े हुए थे, मैं भी तभी से जुड़ा हूँ, तो इसके अंदर हमने लीड लेके फिर हमने इसकी अवेयरनेस प्रोग्राम बनाई, फिर हमने उत्तराखंड, हिमाचल और आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सब जगह हमने, और दिल्ली, सब जगह डिफरेंट लीडर्स को तैयार किया, कि डिफरेंट एनजीओस के साथ हमने बातचीत करी, उनको समझाया कि ऑर्गन डोनेशन के लिए आप अपने सभी समाज में ये भ्रांतियाँ दूर करें कि भी ऑर्गन डोनेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे आपको अगले जन्म में कोई दिक्कत होगी या इस जन्म में कोई दिक्कत होगी
0: जी। नरेश जी, बस अगला सवाल मेरा वही था कि हम इन भ्रांतियों पर बात करेंगे, और साथ के साथ जिस प्रकार के कैंपेन्स रोटरी करता है और जिस तरीके से लोगों के अंदर आज भी ये भ्रांतियाँ उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है। बट एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक ले रहे हैं, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं रोटेरियन नरेश वर्मा जी के साथ, पास्ट प्रेसिडेंट रोटरी क्लब फरीदाबाद सेंट्रल, लेकिन ये नॉर्थ इंडिया जोनल कोऑर्डिनेटर हैं ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस के, रोटरी एक्शन ग्रुप। रोटरी ढेर सारे काम करता है, और अगर हम बात करें तो अब हम ऑर्गन डोनेशन की जो बात कर रहे हैं उस पर तो एक अभिन्न हिस्सा निभाया जा रहा है। नरेश जी, एक बड़ा अहम सवाल आपने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरत किडनी की होती है, और हम पूरा भारत, मैं ये कहती हूँ, ये जानता है कि हम डायबिटीज कैपिटल हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेज इतनी ज्यादा हो गई हैं कि क्या कहने, लेकिन परेशानी ये है कि जहाँ डिजीजेज आ रही हैं वहाँ इलाज के लिए बहुत सारी दवाइयाँ भी आ रही हैं, लेकिन एक कंडीशन वो आ जाती है जहाँ किडनी डायलिसिस और डायलिसिस के बाद मात्र ट्रांसप्लांट, मतलब जब वो स्टेज आने लगती है तो परिवार के सदस्य आपस में ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि किडनी कौन देगा, और फिर चेक्स शुरू हो जाते हैं किस तरीके से सबसे ज्यादा किसकी फेमिलियरिटी है, या कहना चाहिए किसकी मैच है डोनर का, और वो फिर वो डोनेट करें। लेकिन परेशानी ये है कि अबंडेंस में हमारी तो पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, इतनी अबंडेंस में हमारे पास पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन से अगर समय समय पर डोनेशंस मिलती रहें ऑर्गन्स की, सो मुझे लगता है ये गैप काफी हद तक कम हो सकता है। तो इसमें रोटरी किस प्रकार से एक हिस्सा निभाता है, आप लोग कैसे काम करते हैं, और ये अवेयरनेस ड्राइव्स कैसे क्रिएट करते हैं?
1: सबसे पहले हम अवेयरनेस का ये बताते हैं कि एक्ट क्या कहता है। ये एक्ट जो बना था थॉटा एक्ट, इसके अंदर आप किसको अपना बॉडी पार्ट लिविंग में या नॉन लिविंग में दे सकते हैं।
0: जी,
1: लिविंग में अगर आप हैं और किसी को आपके फैमिली में किसी को किडनी या आई या कोई चीज़ का या पेन लीवर का कोई पार्ट चाहिए या किडनी देनी है आपको, तो ये एक्ट इसलिए बनाया गया कि ट्रेडिंग ना हो। सिर्फ आप फैमिली मेंबर टू फैमिली मेंबर मींस ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, हस्बैंड, पोता, बेटा, दादा, दादी, ये सब दे सकते हैं जो 18 साल से उम्र के ज़्यादा हैं, तो वो लिविंग में किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, बट ओनली अपने। दूसरा इसमें एक्ट में इजी किया है कि आप स्वैप कर सकते हैं। सपोज मेरी और एक्स की दोनों को किडनी चाहिए, तो बट उसके पैरामीटर्स हमारे से मैच कर रहे हैं हमारे पेशेंट से, और हमारे जो डोनर हैं उसके उससे मैच कर रहे हैं, तो उसकी परमिशन इजीली मिल जाती है। एक्ट में ये भी प्रोविज़न है कि कोई एम्प्लॉयर है, कोई एम्प्लॉई है, या कोई डिस्टेंट रिलेटिव है और वो दूसरे को देना चाहता है, प्रोविज़न है, बट उसका अप्रूवल मिलना बड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए ताकि इसकी ट्रेडिंग ना हो हिंदुस्तान में।
0: जी, लेकिन जैसे आप एक्ट की बात कर रहे हैं, सो इस एक्ट को आप प्रमोट कैसे करते हैं? क्या प्रमोट अलग अलग ड्राइव की जाती हैं?
1: जी, हम डिफरेंट सिटीज में जाते हैं, वहाँ के रोटेरियंस को और वहाँ के लीडर्स को इकट्ठा करके कैंपेनिंग करते हैं, रैली निकालते हैं। हमने पंजाब में कई रैलीज निकाली, हमने मेरठ, मुजफ्फरनगर में कई रैलीज निकाली, तो लोग देखते हैं, ऑर्गन्स देखते हैं, ये देखते हैं, अगले दिन अखबार में पढ़ते हैं, उन्हें पता चलता है, फिर हम उनको बताते हैं कि हाउ टू डोनेट योर ऑर्गन, वो भी बताते हैं हम। डोनेट ऑर्गन, ऑर्गन को डोनेट करने के लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि आप नोटा सोटा ये बने हुए हैं, और इसकी साइट के ऊपर आप जाएं, ऑर्गन डोनेशन के ऊपर आप एक कॉल करें या आप साइट पे जाएं, इसके ऊपर एक क्यूआर कोड आ जाता है, उसके अंदर आपने सिर्फ आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन भरनी है और अपना फ़ोन नंबर डालना है, आपको एक सर्टिफिकेट बन के आ जाता है विद इन 2 मिनट्स कि आप ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज कर रहे हैं।
0: जी।
1: आप सिर्फ प्लेज कर रहे हैं, आप ऑर्गन दे नहीं रहे हैं, और प्लेज करने के बाद भी अगर आपको कभी कुछ हो जाता है, आप उस सर्टिफिकेट को अपने यहाँ रखिए, ड्राइंग रूम में रखिए, अपने सोशल सर्कल में सबको बताइए जिससे अवेयरनेस हो, अगर कुछ हो जाता है तो आपके परिवार के पूछे बिना आपका कोई ऑर्गन नहीं लिया जाएगा, उनके कॉन्सेंट के बिना नहीं लिया जाएगा। भावना जी, ऐसा नहीं है कि आपने प्लेज कर दिया और आपको कुछ हो जाता है तो उठा के गवर्नमेंट आ जाएगी और आपके पुर्जे निकाल के ले जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो आपके जो उस वक्त फैमिली मेम्बर्स होंगे उनसे कॉन्सेंट रिटर्न में लेंगे और तब ये प्रोसेस शुरू होगा, चाहे आपने प्लेज भी कर दिया हो। बट प्लेज करने से क्या होता है कि अवेयरनेस बढ़ती है, तो अवेयरनेस का सबसे बड़ा काम हम कर रहे हैं इसमें।
0: देखिए भाई, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन में ना एक एंगल आता है, और वो एंगल आता है इमोशनल एंगल। जहाँ पर लॉजिकली आपको दिखता है, अगर मैं आपको डेटा बताऊँ और आज आप जीवित हैं और आपको मैं ये कहूँ कि 5 लाख की जरूरत है, 30-40 हजार मात्र मिलते हैं, तो आपका भी दिल ये कहेगा लाइए मैं प्लेज कर देता हूँ। जीवित होते हुए आप जब हेलन हार्टी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, आप वो साइन कर देंगे, सर्टिफिकेट ले लेंगे। लेकिन जब ओरिजिनली उसे डोनेट करना होता है और आप इस दुनिया में नहीं है, आपका शरीर चल नहीं रहा है, लेकिन जब उसे डोनेट करना होता है तो एक सबसे बड़ी परेशानी आती है और वो आती है कंसेंट की। आपने अपने परिवार के सदस्यों को ये बता दिया है कि भाई आपने अपने ऑर्गन्स को प्लेज कर दिया है, लेकिन क्या वो इन्हें दे पा रहे हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पूछूंगी इसके बारे में, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फिलहाल इस गाने को एंजॉय करिए और एक बार पॉन्डर जरूर करिए, सोच कर जरूर देखिए जब ऐसा होता है। ये जो मंजर है ना, ये मैंने एक्चुअली अपनी आंखों से देखा है और इसीलिए मैं इस बात पर हमेशा जोर देती हूँ कि भाई आप प्लेज तो कर देते हैं, लेकिन क्या आपने अपने परिवार को इस बारे में बताया और उन्हें ये कहा कि ये मेरी दिली इच्छा है और ये शरीर मेरा है। पूछेंगे इसके बारे में, जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं रोटेरियन नरेश वर्मा जी के साथ। नरेश वर्मा जी पास्ट प्रेसिडेंट है रोटरी क्लब फरीदाबाद सेंट्रल के, लेकिन नॉर्थ इंडिया जोनल कोऑर्डिनेटर हैं ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस रोटरी एक्शन ग्रुप के, और ये एक लंबे समय से न सिर्फ इस मुहिम को चला रहे हैं लेकिन इस अलग को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेश जी, अब मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि मैंने पर्सनली इस चीज़ को विटनेस किया है, मेरे नेक्स्ट डोर नेबर्स बुजुर्ग थे, उन्होंने अपनी आईज को प्लेज किया हुआ था, खुदा ना खास था उनकी एक छोटे से हादसे में डेथ हो जाती है, लेकिन उनके बच्चे जो पढ़े लिखे थे उन्होंने एक ऐसा सीन क्रिएट कर दिया कि जब उनकी आंखों को लेने के लिए, मतलब नेत्रदान उन्होंने किया था, तो उनकी आंखों को लेने के लिए जब आए तो उन्होंने उन्हें हाँ ही नहीं की, डिस्पाइट कि वो सर्टिफिकेट था, डिस्पाइट की पूरी गली यानी कहना चाहिए आसपास के लोग नेबर सबको ये बात पता थी, उन्हें खुद भी ये बात पता थी, उन्होंने ले जाने नहीं दिया। अब ऐसी कंडीशन में क्या लगता है आपको, कैसे मैनेज किया जाए? मतलब देखिए, एक तरफ तो जो खुद प्लेज करता है वो तो देना चाह रहा है, लेकिन जब परिवार के सदस्य हाँ नहीं करेंगे, और आपने ये बात कही कि सरकार ले जा नहीं सकती है, कि उसी के पास भी ये राइट नहीं होता है, सो ये राइट दरअसल जो प्लेज कर रहा है उसके पास नहीं है, ये राइट उसके पास है जो उस समय जीवित होगा। सो क्या कहीं कुछ चेंज होना

0: एडवाइस लिविंग पर्सन की जनरली नहीं लेते हैं अनटिल अनलेस वो ब्रेन डेड ना हो या कोई ऐसी बात ना हो। तो आइस के अंदर एक आदमी की आइस दो लोगों को लगती है
1: जी।
0: और आपके पास तो एग्जांपल है बट मेरे पास थोड़ा दूसरा एग्जांपल है। एम्स हरिद्वार के अंदर दे हैव कलेक्टेड मोर देन 600 आइस। आइज में आई नहीं निकालते हैं, उसका ऊपर का पोर्शन निकाला जाता है जो कि शीशे की तरह होता है और कोई ब्लीडिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता। और उन्होंने ऑल ओवर इंडिया तकरीबन 500 से ज़्यादा उन्होंने लोगों को 500 के मल्टीपल करेंगे इसको रातर, और उन्होंने आइज ट्रांसप्लांट करी हैं, ग्रीन कॉरिडोर्स बना के करी हैं। दूसरा हमारा पड़ोसी कंट्री है छोटा सा श्रीलंका, श्रीलंका से आइज एक्सपोर्ट होती हैं पूरे वर्ल्ड में।
1: बताइए,
0: तो ये सिर्फ टॉक की बात है, हमको ये बात समाज में, घर में, हर जगह अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने ग्रुप सर्कल में बात करनी चाहिए कि भाई अगर हम डोनेट कर दें, किसी के लग जाएगी, किसी के काम आएगी तो कितना अच्छी बात है।
1: वाकई।
0: और आइज के लिए मैं जानकारी देना चाहूँगा सिर्फ इसी टॉपिक पे कि आइज के लिए घर में मान लिया अनटाइमली किसी के साथ डिसमाइस हो जाता है, कोई डेथ हो जाती है, तो आइज के ऊपर गीला कपड़ा रखें, तकिया थोड़ा सा नीचे उनके सिर के नीचे लगा दें और कमरे का पंखा या एसी को बंद कर दें, और थोड़ा सा, और आप कहीं भी ऑनलाइन फ़ोन कर दें तो कोई भी नज़दीक का आई बैंक आके, वो 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर है और उसके ना कोई ब्लीडिंग होती है, कुछ होती है, और बहुत आसानी से आप आइज दे सकते हैं।
1: देखिए, आई डोनेशन सबसे आसान है टू बी वेरी ऑनेस्ट, और साथ के साथ सबसे ज़रूरी भी। आप सोचिए ना कि आप इस दुनिया से चले गए हैं लेकिन आपकी आंखें, और प्रैक्टिकली आपकी आंखें नहीं होती हैं, एक बहुत छोटा सा माइनर सा कट लगाया जाता है, और उस माइनर से कट से वो सिर्फ आपके कॉर्निया का जो एक छोटा सा पोर्शन होता है ना, उसे लिया जाता है। अब आप सोच कर देखिए कि उससे कोई दो लोग इस खूबसूरत दुनिया को देख पाएंगे, एंड दे विल बी सो ब्लाइज्ड एंड हैप्पी कि आपने उन्हें ये मौका दिया। लेकिन होता क्या है कि डिसीजन मेकर कोई और होता है, और इसलिए नरेश जी ये बात बहुत ज़रूरी है कि घर में डायलॉग होना चाहिए, घरों में, खास तौर पर सोसाइटी में होता है। आज हम देखें तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े स्पीकर मीट्स, या फिर अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी जगह पर लोग बात करते हैं और इस वहाँ पर सब लोग हाँ कहते हैं, लेकिन जब घर की चार दीवारी में आते हैं, जब अपने बच्चों के साथ होते हैं, तो ये जो वर्जन्स हैं ना, ये बदल जाते हैं। और वहाँ आने के बाद बहुत सारे मिथ्स आगे आ जाती हैं, कहीं पर लोग ये कहने लग जाते हैं आज इस जन्म में हम आँख देखेंगे तो अगले जन्म में आप अंधे पैदा होंगे, जितने लोग अंधे पैदा हुए हैं पिछले जन्म में आँखें दान करके आए हैं। सो ये जो सब भ्रांतियाँ हैं ना, सबसे पहले तो इन कुरीति, भ्रांति, इन सारी चीज़ों को ना बहुत अच्छे से स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण है। मतलब कई बार आप देखें एक बड़ा गैप इसी कारण है, क्योंकि इन चीज़ों के कारण, मान लीजिए किसी के एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, अब वो इंसान चला गया लेकिन उनके शरीर के कुछ पार्ट्स किसी को जिंदा रख सकते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि समय पर जो परिवार के सदस्य हैं वो डिसीजन नहीं लेते हैं, हाँ नहीं करते हैं, अप्रूवल्स नहीं देते हैं। और आज भी भारत में अगर आप देखें तो इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद ये जो ऑर्गन डोनेशन का गैप है इतना ज़्यादा है। इतने सारे डिस्कशंस होते हैं, इतने सारे कैंपेन्स क्रिएट किए जा रहे हैं, बट दी ओनली थिंग इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस नहीं, अंडरस्टैंडिंग जरूर कहूंगी। सो इसके बारे में हर घर में बात होनी बहुत जरूरी है, और ये कोशिश करेगा कि जब कभी भी समय मिले, सही समय मिले, अपने घर में एक बार इस पर बात जरूर करें। जुड़े रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन

0: दीप जलाए।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं रोटेरियन नरेश वर्मा जी के साथ और आज हम बात कर रहे हैं ऑर्गन डोनेशन पर। देखिए भाई, ऑर्गन डोनेशन पर अलग अलग आयाम में बात की जाती है, लेकिन परेशानी ये है कि हम इसके बारे में सही जानकारी नहीं लेते हैं। किस ऑर्गन को किस समय डोनेट किया जाता है और साथ के साथ क्यों डोनेट करना जरूरी है, एंड सबसे अहम चीज कि हम क्या आज भी एक सेल्फिश जिंदगी जी रहे हैं जहां हम ये सोचते हैं मर भी जाएं वो हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं या तो वो मिट्टी में दफन हो जाएं या फिर वो आग के उसमें हम उन्हें जला दें, लेकिन हम किसी के काम नहीं आएंगे। तो ये मुझे कई बार लगता है कि ये जो हमारी एक बहुत सेल्फिश एक्ट है, इसे हम कम कर सकते हैं। और वो कैसे हो सकती है? उन सारे ऐसे मौजूद लोगों के कारण जो कि इसके लिए डेडिकेटेड है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स बैठे हैं, रोटेरियन नरेश वर्मा जी, पास प्रेसिडेंट रोटरी क्लब फरीदाबाद सेंट्रल, लेकिन बहुत सारा काम कर रहे हैं ऑर्गन डोनेशन पर और अवेयरनेस फैलाने पर। नॉर्थ इंडिया के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस रोटरी एक्शन ग्रुप। नरेश जी, अब जो अहम सवाल, हमने शायद हमारे सभी सुनने वालों को ये बताया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी फिलहाल अगर हम देखें भारत की कंडीशन में किडनी है, उसके बाद नंबर टू पर आइज है, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, पैनक्रियाज ट्रांसप्लांट होती है, स्किन की ज़रूरत होती है, इतने सारे एसिड के विक्टिम्स हैं, इतने सारे अगर आप देखें तो बर्न केसेस हैं, उन सभी को स्किन की भी ज़रूरत होती है। और ऐसा भी नहीं है, अगर मैं आंकड़ा उठाकर देखूं और वाकई इस पर रिसर्च करी जाए, सो मैं देख रही थी इंटरनेट पर, आंकड़ा ये कहता है कि हमारे यहाँ डेली रोड एक्सीडेंट में इतनी सारी डेथ्स होती हैं, और इन डेथ्स को अगर हम कंपेयर करें उस वेटिंग लिस्ट में तो काफ़ी हद तक ये गैप कम किया जा सकता है। सो क्या किया जाए कि जिससे ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएं?
2: रोड एक्सीडेंट्स में जो लेटेस्ट डाटा लास्ट ईयर का आया है कि 1,80,000 से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में रोड में एक साल में डेथ हुए, और उसके अलावा जो ब्रेन डेड हुए वो उनकी तो गिनती नहीं है। ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, इसके अलावा अनऑफिशियल रिकॉर्ड भी काफी है। तो अगर अगर उससे आईज मिल जाती हैं तो मेरे को लगता है कि अगर गवर्नमेंट कोई कानून बनाए, कुछ ऐसा होता है और लोग उसको सपोर्ट करें, लोगों की सपोर्ट भी जरूरी है, तो ये जो ऑर्गन की वजह से कोई फेलियर की वजह से कोई, मैं नहीं लगता अगले 3-4 साल के अंदर हम अचीव ना कर पाए कि कोई ऑर्गन की उसकी वजह से चला जाएगा।
1: नरेश जी, जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि स्कूल के करिकुलम में, टेक्स्ट बुक्स में, और यहाँ तक कि मतलब बचपन से ही इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, तो इस तरीके से चैप्टर्स होने चाहिए, या फिर जैसे अभी मैंने कहा कि घरों में बात होनी चाहिए, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड अपने पेरेंट्स से होते हैं, अपने परिवार से होते हैं। बट आपको क्या लगता है सही तरीका क्या हो सकता है?
2: देखो, सभी तरफ से काम होना चाहिए, गवर्नमेंट के भी रूल्स बनने चाहिए और इम्प्लीमेंट अवेयरनेस के लिए स्कूल टाइम में ही होनी चाहिए। अभी हम जो है रोटरैक्ट क्लब और इंटरेक्ट क्लब जो हमारे रोटरी के होते हैं, जो इन्वेस्टर्स के होते हैं, उनको भी अपनी टीम में ले रहे हैं, सो दैट वो प्रेजेंटेशन बनाते हैं इसके बारे में, सारा बताते हैं और उनको अपने आप भी जानकारी बढ़ती है। तो इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल एक और बताऊंगा, ये तो हम डोनेशन की बात करें, मैं रेसिपिएंट की बात करता हूँ कि अगर आपने ऑर्गन दे रहे हैं आप कहीं किसी भी हॉस्पिटल में, तो अगर आपकी जैसे कोई पहचान का है जिसकी बॉडी ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दी, ब्रेन डेड डिक्लेयर करने के लिए भी प्रोसीजर है, किसी को नहीं कर सकते, एक तो उस हॉस्पिटल का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि एक्टिवली डॉक्टरेट कर रहा हो, एक्टिवली वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हो, एक जो जो उसको ट्रीट कर रहा हो, एक तीसरा एक और डॉक्टर होता है, तीन लोगों की कमेटी होती है, और वो ट्रांसप्लांट की टीम में नहीं होना चाहिए। तो तीन लोग 6-6 घंटे के इंटरवल पे उसको चेक करते हैं कि भाई ये सिर्फ मशीन्स के ऊपर रह रहा है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, इसको कभी मशीन से हटा देंगे तो उसके बाद ये बॉडी काम नहीं करेगी, ये बॉडी के रूप में आ जाएगा उस वक्त, तो वो जब डिक्लेयर कर देते हैं तो उसके बाद उसके ऑर्गन्स लिए जाते हैं। दूसरी मैं एक और भ्रांति आपको क्लियर कर दूँ, उसके ऑर्गन्स अगर डोनेट हो गए हैं या किसी की आई कहीं डोनेट हो गई है, वो किसको जा रही है, किसको लग रही है, आपको ये कभी भी नहीं बताया जाएगा।
1: बाकी
2: तो आप ये समझिए कि ये गुप्त दान है, और गुप्त दान हिंदुस्तान में हमारी कल्चर में हमारी पूरे के पूरे भारतवर्ष के टाइम से ही गुप्त दान को सबसे बड़ा दान माना जाता है।
1: बाकी
2: तो ये दो चीज़ें। तीसरी एक और बात मैं कहना चाहता था, जैसे 5 लाख लोग अभी लिस्टेड हैं कि साहब मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए। एनी रिच पर्सन कैन नॉट जंप द क्यू, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। इसके अंदर जो आपके सपोज आज कहीं पूरे इंडिया में 5 किडनी निकलती हैं, रेसिपेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, तो 5ों की मैचिंग देखी जाएगी, नियरेस्ट अवेलेबिलिटी देखी जाएगी, या फिर ग्रीन कॉरिडोर से पहुंचाना होगा वो पहुंचाएंगे। अगर वो उनके टिश्यूज़ मैच नहीं करते तो फिर वो नेक्स्ट को कंसिडर करेंगे, अदरवाइज़ कोई जंप नहीं कर सकता, चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे वो पैसे वाला हो। ये एक सिस्टम कानून ने दे रखा है और ये अभी तक हिंदुस्तान में हुआ भी नहीं है।
1: जी देखो, अगर आप सुन रहे हैं इस बात को तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि अक्सर ना लोग ये सोचते हैं कि भाई आप इन ऑर्गन्स को ना खरीद सकते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इन ऑर्गन्स को खरीद लेंगे। बट वाकई आज ये बड़ी अहम बात बताई आपने नरेश जी, कि आप चाहे कितने ही पूंजीपति हैं, आप कितने ही पैसे वाले हैं, या आपके पास कितना ही रसूख है, आपके पास कितनी ही पावर है, ये पॉसिबल नहीं है कि वो जो क्यू चला आ रहा है उस क्यू को आप जंप करेंगे, आपको सबसे पहले मिल जाएगी, आप प्रायोरिटी में आ जाएंगे। ये कोई एयरपोर्ट की लाउंज नहीं है जहां आपके पास प्रायोरिटी चेक इन होगा और आप आगे बढ़कर आ जाएंगे। सो ये भी बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये प्रायोरिटी या फिर इस तरीके की घूसखोरी या किसी भी चीज़ की नौबत ही नहीं आएगी अगर आपके पास अवेलेबिलिटी होगी। और उस अवेलेबिलिटी के लिए ज़रूरत ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस फैलाएं। हर वो शख्स जो इस कंडीशन में है कि वो अपने ऑर्गन को डोनेट कर सकता है, वो ऑर्गन को डोनेट करने के लिए प्लेच करे और सबसे पहले अपने दिमाग में रेडी हो जाए कि हाँ, मेरे मरने के बाद या फिर मेरे जीवित होते हुए जो भी ऑर्गन जा सकता है और मैं उसके बिना काम चला सकता हूँ, मेरी बॉडी फंक्शनल हो सकती है, आप उसे दे सकते हैं। वो चाहे अपने परिवार के लिए दे रहे हैं, अपने किसी बहुत करीबी दोस्त के लिए दे रहे हैं, नियर एंड डियर वंस के लिए दे रहे हैं, सो विद प्रॉपर कहना चाहिए वाइबिलिटी आप उसे कर सकते हैं। बट साथ के साथ आपको ये जो चीज़ें हैं ना, ये अपने आसपास के लोगों को भी बताने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जहाँ पर कि मात्र पति पत्नी के रिश्ते में, माता और बच्चे के रिश्ते में, या फिर कहना चाहिए कि भाई बहन के रिश्ते में सिर्फ ये डोनेशन देखी जाती है। मतलब बहुत कम ऐसे किस्से होंगे ना नरेश जी कि आप अनजान शख्स आया और उसने कहा चलिए भाई ले लीजिए मुझसे, आपको किडनी की ज़रूरत है तो एक किडनी मैं डोनेट कर देता हूँ।
2: जी वो मैंने पहले भी बताया कि आपको वो आपको कोर्ट से और एक टीम से अप्रूवल लेनी पड़ती है, और जनरली हमारी नॉलेज में नहीं है किसी को 2-2, 3-3 वर्षों के बाद भी कोई अप्रूवल मिला हो, क्योंकि वो जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि मैं आपसे इमोशनली अटैच्ड हूँ और मैं आपको अपना बॉडी का पार्ट देना चाहता हूँ, तो वो नहीं है पॉसिबल।
1: अब मैं अगर एक पॉलिटिशियन की बात करूं तो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं हमारे भारत के, नाम नहीं लूंगी, लेकिन उनकी खुद की बेटी ने किडनी दी है। फॉर द ओनली रीज़न वो इतने अमीर हैं कि वो उस किडनी को खरीद सकते थे। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे लॉज बड़े स्ट्रिंजेंट हैं भारत में, एंड यहाँ पर आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और सिर्फ यहाँ नहीं, मुझे लगता है पूरे विश्व में लॉज इतने स्ट्रिंजेंट हैं कि आप बाहर जाकर भी अगर खरीदने की कोशिश करें तो आप खरीद नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखें, कोशिश ही ना करें कि आप इस कंडीशन में आए कि आपको किसी ऑर्गन की ज़रूरत पड़े। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है तो हम यही कहेंगे कि जब तक हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ये जो कमी है ये बरकरार रहेगी। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं रोटेरियन नरेश वर्मा जी के साथ, जो कि ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस रोटरी एक्शन ग्रुप के नॉर्थ इंडिया के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं और एक लंबे समय से इस पर काम कर रहे हैं। बहुत सारी बातें आपसे जानी नरेश जी, जाते जाते क्या अहम चीज़ें हैं जो आप हमारे लिसनर्स को बताना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इसको डिस्कस करें, ये परिवार में, समाज में, जहाँ बैठे डिस्कस करें और एक इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएं। और आप प्लेज करने में कुछ नहीं आता, अगर हम 1,00,000 लोग प्लेज करेंगे, हो सकता है अगले 1,00,000 के लोग में और प्लेज करेंगे, तब जाके हमें कोई एक डोनर की स्थिति आएगी। और अगर हम उसको बात करते रहेंगे तो 10,00,000 लोग तक बात जाएगी। तो इसको डिस्कस करना उतना ही ज़रूरी है जितना हम कैरियर, बिजनेस, मौसम को डिस्कस करते हैं। दूसरी बात मैं कहूँगा, जो इसका मेन पार्ट है, कि चाहे आप डोनर हैं चाहे आप रेसिपेंट हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी फिज़िकल एक्टिविटी में कोई फ़र्क आता है। कोई भी महिला किडनी लेने के बाद, पार्ट ऑफ लीवर लेने के बाद, आइज लेने के बाद, या कोई भी टिश्यू लगाने के बाद या स्किन लेने के बाद, वो दोबारा गर्भवती हो सकती है, नॉर्मल जिंदगी जी सकती है। और देने वाले को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हेल्दी वेलबिंग 18 साल से ऊपर को देख के ही ये सब चीज़ें ली जाती हैं। या फिर जिनके ऑर्गन टिश्यूज़ मैच करते हैं प्रॉपरली, जिनकी डेथ के बाद लिए जाते हैं तभी लिए जाते हैं। इसमें मैं और बात करूंगा जो कि सबके लिए बहुत आश्चर्यजनक भी होगी। 2025 में इसी तरह के लोगों का भी एक ओलंपिक हुआ था। उस ओलंपिक में हिंदुस्तान से 47 एथलीट्स गए थे जो कि डोनर्स थे या रेसिपेंट्स थे, एंड वी वॉन 56 हमने अवार्ड्स जीते हैं, वहाँ पे मेडल्स जीते हैं,
0: क्या बात है,
1: एथलीट्स ने। तो आप समझिए कि अगर आप ऑर्गन रेसिपेंट है या ऑर्गन का पार्ट या ऑर्गन किसी को देते हैं, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं आता, आप लाइफ वैसे ही जीते हैं, वैसे इंजॉय करते हैं जैसे कि आम आदमी या उससे पहले आप जी रहे थे।
0: तो भाई ये तो और एक बहुत अहम मैसेज है जो आप मोटिवेट हो जाएं और आप अपने आसपास देखें। कई बार हम कहते हैं ना कि क्या किया जाए जो हम अपने कर्मों को सुधार सकें, कई बार होता है बेस्ट क्या दे सकते हैं। देखिए पैसा तो हर कोई दे सकता है, लेकिन अगर आप क्षमता रखते हैं, और मैं तो ये कहती हूँ अगर आप प्लेज कर सकते हैं तो आज ही नियरेस्ट ऑर्गन डोनेशन के ऑफिस में जाइए। और छोड़िए, ऑफिस जाने की भी ज़रूरत नहीं, आजकल तो आपके पास वेबसाइट अवेलेबल है, बस जाइए ऑर्गन डोनेशन की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ जाकर प्लेज करिए। और प्लेज कर कैटेगरीज होती हैं, आप क्या प्लेज करना चाहते हैं आप उन्हें प्लेज कर सकते हैं, और उसको प्लेज करने का भी तरीका होता है। अब आप यहाँ बैठकर किडनी प्लेज नहीं कर सकते हैं, उसको प्लेज करने के लिए आप आइस प्लेज कर सकते हैं, आप अपनी स्किन प्लेज कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके मरने के बाद उसे निकाला जा सकता है। सो ऐसे आप प्लेज करिए, इसके बारे में घर पर बात करिए, अपने किड्स एंड किन्स, आसपास के, और जो लोग आपको लगता है कि आपके मरने के बाद उस टाइम अवेलेबल होंगे उन्हें ज़रूर बताइए। बहुत सारे लोग ना मेरे मरने के बाद ये कर देना, मेरे मरने के बाद ये कर देना, बच्चों को बता कर जाते हैं, लेकिन ये नहीं बता कर जाते हैं कि मैंने अपने ऑर्गन्स प्लेज किए हैं, अगर कोई लेने आता है तो उन्हें ले जाने दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर करिए। और जब ऐसे डिस्कशंस हमारे नॉर्मल घरों में होंगे, हमारी सोसाइटी में होंगे, हमारी किटी पार्टीज़ में होंगे, हमारे बेसिक रिश्तेदारों की मीट्स में होंगे, तो लोग ना इसे नॉर्मल समझेंगे। अभी आज भी ऑर्गन डोनेशन को हम एबनॉर्मल समझते हैं। सो हम ना अजीब नज़रों से देखते हैं, अरे इसका ना किडनी, एक किडनी निकल गई है, इसके एक किडनी एक्स्ट्रा आ गई है। सो हम उन्हें आज भी अजीब नज़रों से देखते हैं। जब तक हम इन चीज़ों को नॉर्मल नहीं करेंगे ना, तब तक ये नॉर्मलाइज नहीं होगा। तहे दिल से धन्यवाद नरेश जी, आज आपने बहुत सारी बातें बताई। जाते जाते क्या खास मैसेज?
1: अंगदान महादान, और आपका रेडियो मानव रचना का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
0: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की हमारी कहानी है काली सलवार, जिसे लिखा है सादत हसन मंटो ने।
2: दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी, जहां कई गोरे उसके ग्राहक थे। इन गोरों से मिलने जुलने की वजह से वो अंग्रेजी के 10-15 शब्द सीख गई थी। इनको वो आम बातचीत में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार ना चला, तो एक दिन उसने अपनी पड़ोसन तमंचा चांद से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी ये जिंदगी बहुत बुरी है जिसमें खाने को ही नहीं मिलता। अंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छा चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आ जाते थे। वो 3-4 घंटे में ही 8-10 गोरों को निपटा कर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सिर हिलाकर कह दिया करती थी, साहब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आती। और अगर वो उससे जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी जुबान में गालियां देना शुरू कर देती। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो वो उनसे कहती, साहब तुम एकदम उल्लू का पट्ठा है, समझा। ये कहते वक्त अपने लहजे में गुस्सा न लाती, बल्कि बड़े प्यार से उनके साथ बातें करती। यहाँ दिल्ली में जब वो आई थी, एक भी गोरा उसके घर नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के शहर में रहते हो गए थे, जहाँ उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमला चले जाते हैं। मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2। और इन 6 ग्राहकों से उसने खुदा झूठ ना बुलवाए तो 18.5 रुपए वसूल किए थे। 3 रुपए से ज्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने इनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपए बताया था, मगर ताज्जुब की बात है, इनमें से हर एक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपए से 1 कौड़ी ज्यादा नहीं देंगे। न जाने क्या बात थी कि इनमें से हर एक ने उसे 3 रुपए के काबिल समझा। चुनांचे जब 6ठा आदमी आया तो उसने खुद उससे कहा, देखो मैं 3 रुपए एक टाइम के लूंगी, इससे एक धेला तुम कहो तो मैं ना लूंगी, अब तुम्हारी मर्जी, रहना है तो रहो वरना जाओ। 6ठे आदमी ने यह सुनकर तकरार ना की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में वो दरवाजा बंद करके अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो न दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकाल कर उसको दे दी, और सुल्ताना ने भी चुपचाप ले ली कि चलो जो आया गनीमत है। 18.5 रुपए 3 महीने में, 20 रुपए महीना तो इस कोठे का किराया था, जिसको मकान मालिक अंग्रेजी भाषा में फ्लैट कहता था। इस फ्लैट में ऐसा पखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नल में नीचे गायब हो जाती थी, और बड़ा शोर होता था। शुरू शुरू में तो शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो शौच जाने के लिए उस पखाने में गई तो उसकी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। फारिग होने के बाद जब वो उठने लगी तो उसने लटके हुए जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, चूंकि ये खास लोगों की रहने की जगह है इसलिए यह जंजीर लगाई गई होगी कि उठते वक्त तकलीफ ना हो और सहारा मिल जाए। मगर जैसे ही उसने जंजीर को पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खटखट की आवाज हुई और फिर एकदम पानी इस शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदा बख्श कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान ठीक कर रहा था और साफ बोतलों में हाइड्रोकोलीन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ, ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये मुआ पैखाना है या क्या है? बीच में ये रेलगाड़ी की तरह जंजीर क्यों लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था, मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूंगी, पर इस मुई जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूँ। इस पर खुदा बख्श बहुत हंसा और उसने सुल्ताना को उस पैखाने के बारे में सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैशन का है जिसमें जंजीर हिलाने पर सब गंदगी जमीन के नीचे धस जाती है। खुदा बख्श और सुल्ताना आपस में कैसे मिले ये एक लंबी कहानी है। खुदा बख्श रावलपिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लॉरी चलाना सीखा। चुनांचे 4 साल तक वो रावलपिंडी और कश्मीर के बीच लॉरी चलाने का काम करता था। इसके बाद कश्मीर में उसके दोस्ती एक औरत से हो गई। उसको भगाकर वो लाहौर ले आया। लाहौर में चूंकि उसको कोई काम न मिला तो इसलिए उसने अपनी औरत को पेशे पर बैठा दिया। 2-3 साल तक ये सिलसिला जारी रहा और फिर वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदा बख्श को मालूम हुआ कि वो अम्बाला में है। वो उसकी तलाश में अम्बाला आया जहाँ उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनांचे दोनों का संबंध हो गया। खुदा बख्श के आने से सुल्ताना का कारोबार एकदम चमक उठा। औरत चूंकि अंधविश्वासी थी इसलिए उसने समझा कि खुदा बख्श बड़ा लक्की है जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चुनांचे इस विश्वास ने खुदा बख्श की अहमियत उसकी नजर में और बढ़ा दी। यहाँ वो गोरों की फोटो खींचता रहता। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी में बहुत से गोरों से जान पहचान हो गई। चुनांचे वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदा बख्श के जरिए कई गोरे सुल्ताना के पक्के हो गए और उसकी आमदनी भी दुगनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बूंदे खरीदे, 5.5 तोले की 8 कंगड़ियां भी बनवा ली, 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियां भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। कुल मिलाकर अम्बाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी। मगर एकाएक न जाने खुदा बख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती जबकि खुदा बख्श को अपने लिए बड़ा लकी समझती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल किया। सोचा कि इतने बड़े शहर में जहाँ लाट साहब रहते हैं उसका धंधा और भी चलेगा। चुनांचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाज कर वो खुदा बख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुँच कर खुदा बख्श ने 20 रुपये पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया जिसमें वो रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चली गई थी। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर का एक भाग खास वेश्याओं के लिए रख दिया था ताकि वो शहर में जगह जगह अड्डे ना बनाए। नीचे दुकानें थी और ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट। चूंकि सब इमारतें एक ही डिजाइन की थी इसलिए शुरू शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाशने में बड़ी मुश्किल होती थी। पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई। बोर्ड पर लिखा था, यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। ये बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश लिया करती थी। इस तरह उसने बहुत सी निशानियां कायम कर ली थी। मसलन बड़े बड़े अक्षरों में जहाँ कोयले की दुकान लिखा था वहीं उसकी सहेली हीराबाई रहती थी जो कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी। जहाँ यात्रियों के खाने का सारा इंतजाम है लिखा था वहीं उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। पलंग के कारखाने के ऊपर अनवरी रहती थी जो उस कारखाने के सेठ के पास नौकर थी। चूंकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाने की देखभाल करनी होती थी इसलिए वो अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़ी आते हैं। चुनांचे जब 1 महीना तक सुल्ताना बेकार रही तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी। पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर न आया तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने खुदा बख्श से कहा, क्या बात है खुदा बख्श, हमें आए आज पूरे 2 महीने हो गए, किसी ने इधर का रुख नहीं किया। मानते हो आजकल बाजार बहुत मंदा है पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल ही देखने ना आए। खुदा बख्श को भी ये बात बहुत अरसे से खटक रही थी मगर वो खामोश था। वो इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। खुदा बख्श और सुल्ताना दोनों ने इस आवाज की तरफ ध्यान दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। खुदा बख्श ने लपक कर दरवाजा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये पहला ग्राहक था जिससे 3 रुपए में सौदा तय हुआ। उसके बाद 5 और आए यानी 3 महीने में 6 जिनसे सुल्ताना ने 18.5 रुपए वसूल किए। 20 रुपए महीना तो फ्लैट के किराए में ही चले जाते थे। पानी का टैक्स और बिजली का बिल अलग था इसके अलावा घर के दूसरे खर्चे थे, खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू, और आमदनी कुछ भी नहीं थी। 18.5 रुपए 3 महीने में आए तो उसे आमदनी तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगनियां जो उसने अंबाले में बनवाई थी आहिस्ता आहिस्ता बिक गई। आखिरी कंगनी की जब बारी आई तो उसने खुदा बख्श से कहा, तुम मेरी सुनो और चलो अंबाले में। यहाँ क्या धरा है भाई? होंगे यहाँ लाट साहब, पर हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहाँ खूब चलता था, चलो वहाँ चलते हैं। जो भी नुकसान हुआ उसको अपना सिर सदका समझो। लो इस कंगनी को बेच कर आओ, आज रात की गाड़ी से ही यहाँ से चल देंगे। खुदा बख्श ने कंगनी सुल्ताना के हाथ से ली और कहा, नहीं जाने मन, अंबाला अब नहीं जाएंगे, यही दिल्ली में रहकर कमाएंगे। तुम्हारी चूड़ियां सबकी सब वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है, यहाँ भी वो कोई ना कोई सबब बना ही देगा। सुल्ताना चुप हो गई। चुनांचे आखिरी कंगनी भी हाथ से उतर गई। सूने हाथ लेकर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिर किसी काम धंधे से भरना था ना। 5 महीने गुजर गए और आमदनी खर्च के मुकाबले चौथाई से भी कुछ कम रही तो सुल्ताना की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। खुदा बख्श भी अब सारा सारा दिन गायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी 2 मिलने वालियां मौजूद थी, उनके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी। हर रोज उनके यहाँ जाना

0: घंटों बैठे रहना उसको बुरा लगता था। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता उसने इन सहेलियों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी सुपारी काटती रहती, कभी पुराने फटे कपड़ों को सीती रहती और कभी बाहर बालकनी में आकर जंगले के पास खड़ी हो जाती और सामने रेलवे रोड में खड़े और चलते इंजनों की तरह घंटों बेमतलब देखती रहती। अंबाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहां उसने कभी इन चीजों को ऐसी नजरों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता कि ये जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर धकेलते रहते हैं। सुल्ताना को कभी कभी ये इंजन सेठ मालूम होते थे जो कभी कभी अंबाला में उसके यहाँ आया करते थे। खुदा बख्श से उसने कई बार कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना को ये कहकर तसल्ली दी, जाने मन मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे मगर अभी तक ना सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था ना खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सिर पर आ रहा था मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुख्तार ने लेडी हिमल्टन की एक नए ढंग की कमीज बनवाई, उसकी आस्तीनें काली जॉर्जेट की थी, जिसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली सैटन की सलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जॉर्जेट की एक बड़ी उम्दा साड़ी खरीदी थी, उसने सुल्ताना से कहा था वो इसी साड़ी के नीचे सफेद बॉस्की का पेटीकोट पहनेगी क्योंकि ये नया फैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी ने काली मखमल का एक जूता भी लिया था जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीजें देखी तो उसको इस एहसास से बहुत दुख हुआ कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की हैसियत तक नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देखकर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत दुखी था। उसे ऐसा मालूम होता था कि थोड़ा सा उसके अंदर हो गया है, घर बिल्कुल खाली था। खुदा बख्श वैसे ही हमेशा की तरह बाहर था। देर तक वो दरी पर गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेटी रही, पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई की वजह से अकड़ सी गई तो उठकर बाहर बालकनी में चली गई ताकि गमगीन ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दे। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झाक करने के बाद चुपचाप घर का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन आ गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। ये अजीबो गरीब ख्याल दिमाग में से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की ओर देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखा था। सुल्ताना ने उसे हाथ से इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखा और सुल्ताना से इशारों में पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चलाया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बैठाया। जब वो बैठ गया तो उसने बातचीत शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर रहे थे? वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डरने की बात ही क्या थी? इस पर सुल्ताना ने कहा, मैंने ये इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोचकर आए। वो ये सुनकर फिर मुस्कुराया, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तो ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था, वहां कोई औरत खड़ी अपने मर्द को ठेंगा दिखा रही थी, मुझे ये मंजर पसंद आया, फिर बालकनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ, मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज रोशनी मुझे बहुत पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है। ये कहकर उसने कमरे का जायजा लेना शुरू किया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? आदमी ने जवाब दिया, नहीं मैं तुम्हारे मकान देखना चाहता हूँ, चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ। चलिए सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से उन कमरों का मुआयना किया। जब वो फिर उसी कमरे में आ गए जहां पहले बैठे थे, तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है। सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वो ठीक ठाक कद, मामूली शक्ल सूरत का आदमी था, मगर उसकी आंखें सबसे अलग, साफ शफाक थी। कभी कभी उसमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था, खाकी रंग की गर्म पैंट पहने था, सफेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था कि शंकर की बजाय सुल्ताना ग्राहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को थोड़ा परेशान कर दिया। चुनांची उसने शंकर से कहा, फरमाइए। ये सुनकर वो लेट गया। मैं क्या फरमाऊं, तुम ही कुछ फरमाओ, तुम ही ने तो मुझे बुलाया है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गई, मगर इसके बावजूद उसे बेख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, यही जो तुम करती हो। क्या तुम क्या करती हो? मैं कुछ नहीं करती। तो मैं भी कुछ नहीं करता, सुल्ताना ने भन्ना कर कहा। ये तो कोई बात ना हुई, आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे ना। शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तो तुम भी तो कुछ ना कुछ जरूर करती होगी। झक मारती हूं। तो मैं भी झक मारता हूं। तो आओ झक मारे, मैं हाजिर हूं, मगर झक मारने के दाम मैं कभी नहीं दिया करता। होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं। तो मैं भी वॉलंटियर नहीं। सुल्ताना यहां रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर क्या होते हैं? जाने तुम क्या उटपटांग बातें करते हो, बोलो रहोगे? इसी शर्त पर जो मैं पहले बता चुका हूं। सुल्ताना उठ खड़ी हुई, तो जाओ रास्ता पकड़ो। शंकर आराम से उठा, पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ ठूंसे और जाते हुए कहा, मैं कभी कभार इस बाजार से गुजरा करता हूँ, जब भी तुम्हें जरूरत हो बुला लेना, मैं बहुत काम का आदमी हूँ। शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके बारे में सोचती रही। इस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। शाम को जब खुदा बख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे? पुराने किले के पास से आ रहा हूँ, वहाँ एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं, उन्हीं के पास हर रोज जाता हूँ कि हमारे दिन फिर जाएं। कुछ उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए, पर सुल्ताना मैं जो उनकी खिदमत कर रहा हूँ वो अकारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल अगर शामिल हाल रहा तो जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदा बख्श से रोनी आवाज में कहने लगी, सारा सारा दिन बाहर गायब रहते हो, मुहर्रम सिर पर आ गया है, कुछ तुमने इसकी फिक्र की कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में फूटी कौड़ी नहीं, कंगनियां थी सो वो एक एक करके बिक गई, तुम ही बताओ क्या होगा? यूं फकीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो आप काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा। खुदा बख्श तरी पर लेट गया और कहने लगा, पर ये काम शुरू होने के लिए भी तो थोड़ा कुछ सरमाया चाहिए। सुल्ताना ने बात काट कर कहा, तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डाका मारो, पर मुझे एक सलवार का कपड़ा जरूर ला दो। मेरे पास सफेद बॉस्की की कमीज है, उसको मैं काला करवा लूंगी। सफेद निनॉन का एक दुपट्टा भी मेरे पास है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर लाकर दिया था, ये भी कमीज के साथ रंगवा लिया जाएगा। सिर्फ सलवार की कसर है सो वो तुम किसी ना किसी तरह पैदा कर दो। देखो, तुम्हें मेरी जान की कसम है, किसी ना किसी तरह जरूर ला दो। मेरा मरा मुंह देखो अगर ना लाओ। मैं कहां से लाऊं? अफीम खाने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं। कुछ भी करो, मगर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो। तुम अगर चाहो तो जरूर इतने पैसा पैदा कर सकते हो। जंग से पहले ये साटन 12-14 आने गज मिल जाती थी, अब 1.25 रुपए गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गजों पर कितने कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? अब तुम कहती हो तो मैं हिला करूंगा। ये कहकर खुदा बख्श उठा, चलो अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊं। होटल से खाना आया, दोनों ने मिलकर निपटाया और सो गए। सुबह हुई, खुदा बख्श पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोती रही, इधर उधर कमरों में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफेद निनोन का दुपट्टा और सफेद बॉस्की की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहां रंगने का काम भी किया जाता था। ये काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताब पढ़ी, जिसमें उसकी देखी हुई फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताब पढ़ते पढ़ते वो सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे, क्योंकि धूप आंगन में मोरी के पास पहुंच चुकी थी। नहा धोकर फ्री हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकनी में आ खड़ी हुई। तकरीबन 1 घंटा सुल्ताना बालकनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई थी, बत्तियां रोशन हो रही थी, नीचे सड़क पर रोशन के आसार नजर आने लगे थे। सर्दी थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, मगर सुल्ताना को ये नागवार महसूस ना हुई। वो सड़क पर आते जाते टांगों और मोटरों की तरफ एक अरसे से देख रही थी। अचानक उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुलवा लिया। शंकर ऊपर आया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिना सोचे समझे इशारा कर दिया था। शंकर भी ऊपर चला आया, जैसे उसका अपना ही घर हो। पहले दिन की तरह वो गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात ना की तो उसने कहा, तुम मुझे 100 दफा बुला सकती हो और 100 दफा ही कह सकती हो कि चले जाओ, मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज नहीं हुआ करता। नहीं, बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता है? शंकर इस पर मुस्कुरा दिया। तो मेरी शर्तें मंजूर हैं?
1: कैसी शर्तें?
0: सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे?
1: निकाह और शादी कैसी?
0: ना तुम उम्र भर किसी से निकाह करोगी ना मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं, छोड़ दो इन फिजूल की बातों को, कोई काम की बात करो।
1: बोलो, क्या बात करूं?
0: तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे दो घड़ी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी नहीं, कुछ और भी है।
1: साफ साफ कहो, तुम उससे क्या चाहते हो?
0: जो दूसरे चाहते हैं। शंकर उठकर बैठ गया।
1: तुम में और दूसरों में फिर क्या फर्क रहा?
0: तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं, उनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पूछनी नहीं चाहिए।
1: सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई हूँ,
0: तो कहो क्या इरादा है?
1: तुम जीते मैं हारी, पर मैं कहती हूँ आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल ना की होगी।
0: तुम गलत कहती हो, इस मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लो औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है जो तुम बगैर किसी एहसान के कबूल करती रही हो। लेकिन इनके ना यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना?
1: हाँ, सुल्ताना ही है।
0: शंकर उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा।
1: मेरा नाम शंकर है। ये नाम भी उटपटांग होते हैं। चलो आओ अंदर चले।
0: शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा,
1: शंकर मेरी एक बात मानोगे?
0: शंकर ने जवाब में कहा, पहले बात बताओ।
1: सुल्ताना कुछ झेप सी गई। तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ, मगर कहो कहो, रुक क्यों गई हो?
0: सुल्ताना ने हिम्मत से काम लेकर कहा,
1: बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि काली सलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे बखेड़े तो मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद है जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है।
0: शंकर ने यह सुनकर कहा,
1: तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं जिससे तुम काली सलवार बनवा सको?
0: नहीं,

सकती हो, ले लो। ये कहकर सुल्ताना ने बूंदी उतारकर शंकर को दे दिए। सुल्ताना को कतई यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा, मगर 8 रोज के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो शंकर खड़ा था। अखबार में लिपटी हुई चीज उसने सुल्ताना को दी और कहा, साटन की काली सलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। शंकर सलवार देकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से ना की। उसकी पतलून में शिकने पड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। ऐसा महसूस होता था कि अभी अभी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चलाया है। सुल्ताना ने कागज खोला, साटन की काली सलवार थी, ऐसी ही जैसी वो अनवरी के पास देख कर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बूंदों और इस सौदे का जो अफसोस उसे हुआ था, इस सलवार ने और शंकर के वादे निभाने ने उसे दूर कर दिया था। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री वाले से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई। तीनों काले कपड़े जब उसने पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो अनवरी दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा, कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ महसूस होता है, पर हाँ, ये सलवार नहीं है। कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी से लाई हूँ। ये कहते हुए उसकी नजरें अनवरी के कानों पर पड़ी। ये बूंदे तुमने कहाँ से लिए हैं? अनवरी ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए हैं। इसके बाद उनमें कोई बात नहीं हुई।

0: રેડિયો 107.8 FM પર ઢેર સારી મસ્તી, ખૂબ સારા ફન, ક્યોંકિ યે હૈ ફરીદાબાદ કા રેડિયો નંબર 1.
1: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे स्नेहा और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हम बात करते हैं सक्सेस होने की। जी हाँ, हर हफ्ते लेकर आ जाती हूँ आपके लिए कुछ खास मोटिवेशनल जर्नी, उनकी लाइफ की स्टोरीज जो आपको इंस्पायर करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी लगन से और कहते हैं ना कि एक संकल्प के साथ चीज को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करी है। जी हाँ, हम कभी कभी ना लाइफ में हार मान लेते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं या कभी कभी ना फेलियर आने के बाद रुक जाते हैं, पर कहते हैं ना कि कुछ लोगों की बातें या कुछ लोगों की ऐसी स्टोरी, उनकी जर्नी हमें मोटिवेट करती है कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। और इसीलिए आज फिर से वापस आ गई हूँ मैं लेकर आपके लिए एक खास जर्नी, एक सिंपल सा क्वेश्चन आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके लिए इंडिपेंडेंस का मतलब आखिर होता क्या है? क्या इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ इतना है कि हम एक फ्री कंट्री में रहते हैं, या फिर इसका मतलब है अपनी चॉइसेस लेने की फ्रीडम होना, या अपनी बात को कहने की फ्रीडम और अपने सपनों को फॉलो करने की फ्रीडम भी है? तो सोचिएगा जरूर कि आपके लिए असली इंडिपेंडेंस क्या है। और इसी थॉट के साथ चलिए अपने सक्सेस मंत्रा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे एक ऐसे यंग रेवोल्यूशनरी की जिनका नाम सुनते ही हमारे माइंड में ना करेज और सेक्रीफाइसेस की इमेज बनना शुरू हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शहीद भगत सिंह की। भगत सिंह एक ऐसा नाम जिसे शायद हमने स्कूल की बुक्स में पढ़ा होगा, उनके पोस्टर्स देखे हैं, उनके बारे में स्पीचेस भी सुनी हैं, लेकिन क्या हमने कभी सीरियसली सोचा है कि सिर्फ 23 साल की एज में एक यंग मैन ने देश के लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया? और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि भगत सिंह सिर्फ एक ब्रेव रेवोल्यूशनरी ही नहीं थे, वो एक डीप थिंकर भी थे, पैशनेट रीडर भी थे और एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड यंग मैन भी थे। उनकी लाइफ ना हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन देती है कि एज आपकी छोटी हो सकती है लेकिन आपके थॉट्स अगर बड़े हों तो इम्पैक्ट उसका बड़ा ही होता है। और आज के शो में जब हम भगत सिंह की पूरी जर्नी को एक अलग नज़रिए से समझने वाले हैं, उनकी चीज़ों को जानने वाले हैं, उनका बचपन कैसा था, वो उनकी थिंकिंग कैसे डेवलप हुई, एक यंग यूथ के लिए उनके आइडियाज़ क्या थे और सबसे इम्पॉर्टेंट आज के टाइम में हम उनकी लाइफ से क्या सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भगत सिंह सिर्फ एक हिस्ट्री का चैप्टर ही नहीं थे बल्कि आज के यूथ के लिए एक पावरफुल इंस्पिरेशन भी है, तो क्या है वो सब बातें बताऊंगी मैं आपको। पर अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए मोटिवेशनल जर्नीज, जिससे आप मोटिवेट होते हैं और अपनी लाइफ में कुछ करने का ठान लेते हैं। इस आजादी के जश्न में एक ऐसा जो यंग रेवोल्यूशनरी है उनको याद करना तो बनता है। जी हाँ, जिनका नाम इंडियन हिस्ट्री में हमेशा याद किया जाएगा, शहीद भगत सिंह। जी हाँ, हम सब बचपन से ये नाम सुनते हुए आ रहे हैं। मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ आज इनकी जर्नी, इनकी लाइफ की जर्नी, जो हमें मोटिवेट करेगी और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हौसला देगी। लेकिन दोस्तों, आज हम थोड़ा सा ना पीछे चलते हैं उनकी बचपन के दिनों में, क्योंकि कोई भी इंसान एक दिन में तो नहीं बन जाता। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी थिंकिंग और उनके डिसीजन के पीछे बचपन से लेकर बड़े होने तक का बहुत सारे एक्सपीरियंसेस छुपे होंगे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बांगा विलेज में हुआ था, जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया के पंजाब का हिस्सा था। उनका परिवार भी फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। उनके फादर किशन सिंह और उनके अंकल अजीत सिंह और स्वरण सिंह ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे थे। तो सोचिए दोस्तों, जिस घर में बचपन से ही देश की आज़ादी की बातें हो रही हो, तो वहाँ एक बच्चे की थिंकिंग पर कितना इम्पैक्ट पड़ता होगा। कहते हैं ना कि बच्चे हमेशा अपने घर से ही सीख कर आते हैं। तो भगत सिंह के लिए देश और फ्रीडम कोई सिर्फ टेक्स्ट बुक का कोई टॉपिक ही नहीं था, बल्कि ये चीज़ें उनके आसपास की रियल लाइफ का पार्ट थी। और उनकी लाइफ में एक इवेंट ऐसा भी हुआ था जिसने उनकी थिंकिंग को डीपली अफेक्ट किया, वो है जलियांवाला बाग कांड। जी हाँ, 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिटिश फोर्स ने पीसफुल गैदरिंग पर फायरिंग कर दी थी। इस ट्रेजिक इंसिडेंट में बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान भी चली गई थी। भगत सिंह उस वक्त बहुत यंग थे, लेकिन इस इंसिडेंट का उनके माइंड पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ा था। कहा जाता है कि वो जलियांवाला बाग भी गए और वहाँ की मिट्टी अपने साथ लेकर आए। चाहे हम इस इंसिडेंट को एक हिस्टोरिकल डिटेल की तरह देखें, लेकिन एक बात क्लियरली समझ सकते हैं कि उनकी एज छोटी थी, लेकिन देश की सिचुएशन को लेकर उनकी सेंसिटिविटी बहुत स्ट्रांग थी। दोस्तों, यहाँ से ना हम एक इंटरेस्टिंग लेसन हम अपनी लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और वो है कि हमारे चाइल्डहुड और टीनेज ईयर्स में जो चीज़ें हम देखते हैं, जो क्वेश्चंस हम पूछते हैं और जिन लोगों से हम इन्फ्लुएंस होते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए सोच समझ कर हमें अपने जो लोग हैं जिनसे हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं, जिनसे हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उसे बहुत सोच समझ कर बनाना चाहिए कि आप किससे फॉलो कर रहे हैं और किससे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो दोस्तों, भगत सिंह ने भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे होंगे। उन्होंने सोसाइटी को ऑब्जर्व किया, उन्होंने पढ़ा और धीरे धीरे उनकी थिंकिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती गई। यही वो एक सक्सेसफुल पर्सन की क्वालिटी होती है, जो वो सिर्फ सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करता बल्कि उन्हें समझने की कोशिश भी करता है। तो दोस्तों, भगत सिंह की जर्नी हमें ये बताती है कि किसी भी बड़े चेंजेस की बिगनिंग अक्सर एक छोटे से क्वेश्चन से ही होती है, या कहे तो आवाज़ उठाने से होती है। और शायद इसी क्वेश्चन ने भगत सिंह की लाइफ को एक अलग डायरेक्शन भी दी। लेकिन उनकी जर्नी में सिर्फ इमोशंस ही नहीं थे, उनकी थिंकिंग के पीछे नॉलेज और रीडिंग का भी बहुत बड़ा रोल था। तो अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे भगत सिंह के यंग माइंड, उनकी रीडिंग हैबिट्स और उनके पावरफुल थिंकिंग के बारे में भी। पर अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए कुछ खास जर्नी जो आपको मोटिवेट करती है। और आज हम बात कर रहे हैं शहीद भगत सिंह की। जी हाँ, अभी तक हमने भगत सिंह के बचपन और उनके उन एक्सपीरियंस के बारे में बात की जिन्होंने उनकी थिंकिंग को शेप किया। लेकिन दोस्तों, भगत सिंह की पर्सनैलिटी की एक क्वालिटी जो मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायरिंग लगती है और वो थी उनकी नॉलेज के लिए क्यूरियोसिटी। जी हाँ, आज हमारे पास इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, एक क्लिक करो और दुनिया भर की इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर आ जाती है। लेकिन भगत सिंह के टाइम में ऐसा नहीं था, फिर भी उन्होंने रीडिंग को अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया। वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स और आइडियाज के बारे में पढ़ते थे, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, फिलोसफी और सोशल इश्यूज जैसे टॉपिक्स में उनका इंटरेस्ट था। उनके लिए रीडिंग करना सिर्फ एक एग्जाम पास करने का मीडियम नहीं था, वो पढ़ते थे ताकि दुनिया को समझ सके। और दोस्तों, यही डिफरेंस होता है सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने में और नॉलेज को गेन करने में। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें बताती है कि क्या हो रहा है, नॉलेज हमें समझाने में हेल्प करती है कि ये चीजें क्यों हो रही है। भगत सिंह क्वेश्चंस पूछने वाले यंग पर्सन थे। वो ब्लाइंडली किसी भी आइडिया को एक्सेप्ट करने के बजाय उसके बारे में सोचना और समझना ज्यादा पसंद करते थे। अब जरा इससे हम अपनी लाइफ से कनेक्ट करते हैं। आज के यूथ भी बहुत अवेयर है, सोशल मीडिया पर भी हर टॉपिक पर डिस्कशन भी होता है, एक न्यूज वायरल होती है, एक ओपिनियन ट्रेंड करता है और हम कुछ ही सेकंड्स में उस पर अपनी ओपिनियन बना लेते हैं। लेकिन क्या हम उस टॉपिक को एक्चुअली समझते हैं? क्या हम कभी रुककर पूछते हैं कि इसकी रियलिटी सच में है क्या? क्या जो ये इन्फॉर्मेशन इतनी स्प्रेड हो रही है, क्या वो सही है या नहीं? भगत सिंह की लाइफ हमें यही हैबिट को डेवलप करने की इंस्पिरेशन देती है कि आप ना सवाल पूछिए, पढ़िए, समझिए और फिर अपनी ओपिनियन को बनाइए। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ कि भगत सिंह की एज बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनके थॉट्स उनकी एज से कहीं ज्यादा मैच्योर थे। इससे हमें बहुत ही एक खूबसूरत सा लेसन भी मिलता है कि यंग होना हमारी वीकनेस नहीं होता, यंग होना पॉसिबिलिटी से भरा हुआ एक खजाना है। और आज अगर कोई यंग पर्सन सोसाइटी में चेंज लाना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, किसी कॉजेस के लिए काम करना चाहता है या सिंपली अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहता है, तो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है उसकी क्यूरियोसिटी। क्योंकि जब हम क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं, आवाज़ उठाना शुरू करते हैं, तो वहीं से ही हमारी लर्निंग शुरू होती है। और जब लर्निंग के साथ करेज आ जाता है, तब थॉट एक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। भगत सिंह की जर्नी भी इसी कॉम्बिनेशन को दिखाती है कि क्यूरियोसिटी, नॉलेज, करेज और स्ट्रॉन्ग बिलीफ, ये सब मिलकर आपको एक खास इंसान बनाते हैं। तो आज का एक छोटा सा सक्सेस मंत्रा आपके लिए, सिर्फ सुनिए मत, समझिए, सिर्फ फॉलो मत करिए, क्वेश्चंस करिए और सिर्फ सपने मत देखिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक्शन भी लीजिए। और इसी थॉट के साथ अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा की इस कड़ी में हम चल रहे हैं शहीद भगत सिंह की जर्नी के साथ। जी हाँ, आज हम उनकी लाइफ से बहुत सारे मोटिवेशन ले रहे हैं, बहुत सारी बातें सीख रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने भगत सिंह के बचपन, उनकी क्यूरियोसिटी और उनकी रीडिंग हैबिट के बारे में बात कर रहे थे, और अब आते हैं उनकी लाइफ के एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर, उनकी रेवोल्यूशनरी थिंकिंग पर। तो दोस्तों, जब हम भगत सिंह का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले वर्ड याद क्या आते हैं कि रेवोल्यूशनरी, फ्रीडम फाइटर, करेज और सेक्रीफाइसेस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगत सिंह के ये रेवोल्यूशनरी का एक्चुअल मीनिंग क्या था? अक्सर हम रेवोल्यूशन को सिर्फ फाइटिंग या फिर वॉयलेंस के साथ कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन भगत सिंह की राइटिंग और आइडियाज़ को देखें तो उनकी जो थिंकिंग और फोकस सिर्फ ब्रिटिश रूल को हटाने तक लिमिटेड नहीं था। वो एक ऐसी सोसाइटी सोचते थे, सपना देखते थे जहाँ पर एक्सप्लोइटेशंस ना हो, इनइक्वालिटी कम हो और कॉमन पीपल को डिग्निटी और राइट्स मिले, हर एक का बराबर साथ हो। यानी उनके लिए फ्रीडम का मतलब सिर्फ फॉरेन रूल से फ्रीडम नहीं था, बल्कि उनके लिए फ्रीडम का एक डीपर मीनिंग था, एक बेटर सोसाइटी बनाना। आज हम उनकी स्टोरी को हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं, और उनकी लाइफ से जो हम लेसन्स ले सकते हैं वो है अपनी बिलीव्स के लिए आवाज उठाना, इनजस्टिस को क्वेश्चंस करना और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज के लिए स्टैंड लेना। आज के टाइम में रेवोल्यूशन का फॉर्म बिल्कुल अलग हो सकता है। आप एजुकेशन के थ्रू चेंजेस ला सकते हैं, आप किसी सोसाइटी इशू के लिए अवेयरनेस को क्रिएट कर सकते हैं, आप किसी गलत प्रैक्टिस के अगेंस्ट रिस्पेक्टफुली वॉइस रेज कर सकते हैं, आप किसी जरूरतमंद की हेल्प कर सकते हैं। यानी कि चेंज के लिए हर बार बहुत बड़ा स्टेप लेना जरूरी नहीं होता, कभी कभी ना एक ऑनेस्ट क्वेश्चन भी या फिर एक ऑनेस्ट आवाज भी किसी चीज की शुरुआत कर सकती है। और शायद इसीलिए आज जो हम भगत सिंह की बात करते हैं वो हमारी यंग जनरेशन के साथ कनेक्ट करती है। उनकी लाइफ हमें बताती है कि फ्रीडम सिर्फ राइट्स का नाम नहीं होता है, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी नाम होता है। तो दोस्तों, आज का सक्सेस मंत्र याद रखिएगा कि चेंज तब शुरू होता है जब हम प्रॉब्लम्स को सिर्फ देखते नहीं हैं, बल्कि उनके बारे में सोचते हैं और कुछ करने का शुरू करते हैं। वक्त हो गया है इसी के साथ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्र। एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए मोटिवेशनल जर्नीज, जो आपको मोटिवेट करती है, आपको अपनी जर्नी से इंस्पायर करती है कि आप बिना अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, जरूरी नहीं होता कि हम जब पैदा होते हैं ना तो हमारे पास सब कुछ हो, हमारे पास पैसा होगा तो ही हम सब कुछ करेंगे, या हमारे पास कहते ना कि जनरेशन बाय जनरेशन सारी चीज़ें चलती हुई आती है तो आगे जनरेशन उसको हैंडल करती है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सब कुछ हो तो हम तभी करें। कुछ लोग ना अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी डेडिकेशन से ना वो चीज़ें खुद क्रिएट करते हैं। जी हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसी मैं आपके साथ जर्नी में आपके साथ शेयर करती हूँ जिससे हम उनकी जर्नी से इतना तो समझते हैं कि इंसान के पास ज़रूरी नहीं कि सब कुछ होता है। कुछ लोग ना उसे खुद बनाते हैं अपनी मेहनत से। और इसी के साथ जब आज हम जर्नी पर निकले हैं तो आज की हमारी जो जर्नी है वो है शहीद भगत सिंह की। जी हाँ, शहीद भगत सिंह के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने भगत सिंह की थिंकिंग और उनके लिए रिवॉल्यूशन का क्या मीनिंग था इसको समझा। लेकिन दोस्तों, कभी भी इंसान के आइडियाज की असली स्ट्रेंथ तब पता चलती है जब उसके सामने डिफिकल्ट सिचुएशंस आ जाती है। और भगत सिंह की लाइफ में भी ऐसा टाइम आया जब उन्हें जेल जाना पड़ा। जी हाँ, जेल के अंदर की लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं थी। भगत सिंह और उनके जो साथ के लोग थे वहाँ भी उन्होंने अपने राइट्स और बेटर ट्रीटमेंट के लिए आवाज़ उठाई। जी हाँ, उनकी एक इम्पॉर्टेंट डिमांड थी कि इंडियन पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स जैसे ट्रीटमेंट्स ना किया जाए। वो प्रिजनर्स के लिए बेटर फूड्स, क्लोथिंग, हाइजीन और बेसिक फैसिलिटीज़ की डिमांड कर रहे थे। और इसी प्रोटेस्ट का एक मेजर पार्ट था हंगर स्ट्राइक। सोचिए दोस्तों, आज अगर हम एक दिन प्रॉपरली खाना ना खाएं तो हमें कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो भगत सिंह थे और उनके साथ के जो लोग थे उन्होंने अपनी डिमांड को लेकर हंगर स्ट्राइक को चालू रखा। ये सिर्फ फूड को अवॉइड करना ही नहीं था बल्कि उनके लिए एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट था, अपने राइट्स और प्रिंसिपल्स के लिए स्टैंड लेना। इसी स्ट्रगल के दौरान उनके फेलो रिवोल्यूशनरी जतन दास की हंगर स्ट्राइक के बाद डेथ हो गई थी। जी हाँ, इस इंसिडेंट ने पूरी कंट्री में स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन भी क्रिएट किया था। भगत सिंह के लिए पीरियड फिजिकली और मेंटली बहुत चैलेंजिंग रहा था, लेकिन डिफिकल्ट सर्कमटेंसेस के बावजूद उनकी डिटर्मिनेशन कभी भी कमजोर नहीं पड़ी। और दोस्तों, यहीं पर भगत सिंह की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट लेसन हम अपनी लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स शायद उनकी प्रॉब्लम जितनी इतनी ह्यूज ना हो, लेकिन हम सबकी लाइफ में डिफिकल्ट फेसेस आते हैं। कभी एग्जाम का प्रेशर होता है, कभी करियर की कंफ्यूजन होती है, तो कभी रिजेक्शन होते हैं, कभी किसी सपने का पूरा ना होना, और कभी कभी हम खुद से ही क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं। ऐसे मोमेंट्स में भगत सिंह की लाइफ हमें एक सिंपल रिमाइंडर देती है कि डिफिकल्ट सिचुएशन का मतलब ये नहीं होता कि अपनी जर्नी को ही खत्म कर लेना। कभी कभी डिफिकल्ट सिचुएशन हमें अपनी ताकत को समझने का चांस देती है। भगत सिंह ने भी अपनी डिफिकल्ट सर्कमटेंसेस को सिर्फ सफर नहीं किया, उन्होंने उन सिचुएशन में अपनी आइडियाज को और प्रिंसिपल्स को होल्ड किया। जी हाँ, जेल में भी उन्होंने रीडिंग और राइटिंग को जारी रखा। उनके लेटर्स और राइटिंग से हमें उनकी इंटेलेक्चुअल साइड और ज्यादा क्लियर नजर आती है। और ये बात बहुत ही इंस्पायरिंग है कि बॉडी को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है लेकिन हमारे जो विचार है, हमारे जो आइडिया है, उनको नहीं। तो दोस्तों, आज के सक्सेस मंत्र का एक और सिंपल मैसेज है कि प्रेशर में टूटना नहीं बल्कि प्रेशर में अपनी ताकत को पहचानना सीखना चाहिए। लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, हर चैलेंज का सॉल्यूशन इंस्टेंटली नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप अपने वैल्यूज, अपने पेशेंस और डिटर्मिनेशन को स्ट्रांग रखते हैं तो डिफिकल्ट फेज भी आपको स्ट्रांगर बना सकता है। और भगत सिंह की जर्नी का सबसे पेनफुल चैप्टर अभी बाकी है। जी हाँ, अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे उन लेगेसी की और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज के यूथ के लिए भगत सिंह की लाइफ का एक्चुअल सक्सेस मंत्र क्या हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम चल रहे हैं भगत सिंह की जर्नी के साथ। अभी तक हमने उनकी जर्नी में भगत सिंह की बचपन से लेकर उनकी रेवोल्यूशनरी थिंकिंग, रीडिंग हैबिट और जेल के डिफिकल्ट फेज तक बहुत कुछ चीजें जानने की कोशिश करी। लेकिन दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनकी लाइफ से क्या मंत्रास जो है वो हम ले सकते हैं, क्या सीख सकते हैं? क्योंकि हिस्ट्री को सिर्फ याद करना इनफ नहीं होता, हिस्ट्री से कुछ सीखना और अपनी लाइफ में अप्लाई करना उसकी रियल वैल्यू उसको बताता है। और भगत सिंह की लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लेसन्स हैं जो आज के यूथ के लिए बहुत ही रेलिवेंट माने जाते हैं। सबसे पहला लेसन है, क्वेश्चंस करिए, आवाज उठाइए सारी चीजों के लिए। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो उसके लिए आवाज उठाइए, सवाल पूछिए। भगत सिंह ब्लाइंडली किसी भी सिस्टम या फिर आइडिया को एक्सेप्ट करने वाले पर्सन नहीं थे। वो क्वेश्चंस पूछते थे, पढ़ते थे और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते थे। आज हम भी सोशल मीडिया पर रोज हजारों ओपिनियंस को देखते हैं, लेकिन हर वायरल पोस्ट सच नहीं होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई इन्फॉर्मेशन आपके सामने आए तो एक सेकेंड रुक कर सोचिएगा कि क्या ये सही है या नहीं। क्वेश्चन करना नेगेटिविटी नहीं होती है, अगर रिस्पेक्टफुली और लॉजिकली किया जाए तो क्वेश्चन करना लर्निंग का पहला स्टेप मानी जाती है। सेकंड लेसन है, पढ़ना। जी हाँ, भगत सिंह की रीडिंग हैबिट हमें ये याद दिलाती है कि नॉलेज सिर्फ क्लासरूम तक ही लिमिटेड नहीं होती है, बल्कि आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं या किसी नॉलेजेबल पर्सन से बात कर सकते हैं। बस अपनी क्यूरियोसिटी को अलाइव रखिए। थर्ड लेसन है, स्टैंड फॉर व्हाट यू बिलीव इन राइट। लाइफ में हर कोई आपकी ओपिनियन से एग्री नहीं करेगा, कभी फ्रेंड्स आपके साथ नहीं खड़े होंगे, तो कभी सोसाइटी, तो कभी सर्कमटेंसेस। लेकिन अगर आपने अपनी किसी चीज को प्रॉपरली समझा है और आपको लगता है कि वो बिल्कुल सही है, तो रिस्पेक्टफुली अपनी बातों को रखिए और आपकी बातों में करेज होना चाहिए। फोर्थ लेसन है, डोंट लेट योर एज डिफाइन योर पोटेंशियल। जी हाँ, भगत सिंह बहुत ही यंग थे, लेकिन उनके थॉट्स और इम्पैक्ट बहुत बड़े थे। आज भी अगर आप यंग है तो ये मत सोचिए कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बोलने से क्या चेंज आ सकता है। लेकिन चेंज की जो शुरुआत है वो किसी एज से नहीं होती है, बल्कि आपके हौसले से और आपकी बात रखने से होती है। और लास्ट लेसन है, पर्पस। जी हाँ, आज हम सब अपने करियर, मनी, सक्सेस और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और बिल्कुल सोचना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी खुद से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछना चाहिए कि मैं अपनी सक्सेस से सिर्फ खुद को बेनिफिट करना चाहता हूँ या सोसाइटी के लिए भी कुछ मीनिंगफुल करना चाहता हूँ। भगत सिंह की लाइफ हमें पर्पस के साथ जीने की इंस्पिरेशन भी देती है। तो दोस्तों, आज का सक्सेस मंत्रा बिल्कुल सिंपल है कि रीड मोर, क्वेश्चन मोर, थिंक डीपली, स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट एंड यूज योर पोटेंशियल फॉर समथिंग मीनिंगफुल। और इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजी स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए कुछ ऐसी जर्नीज जो आपको मोटिवेट करती है, आपको इंस्पायर करती है अपनी जर्नी से। और दोस्तों, आज की जर्नी में हम चल रहे हैं भगत सिंह के साथ। जी हाँ, आज हमने उनके बारे में बहुत सारी बातें करी और अब हम आ पहुंचे हैं अपने फाइनल सेगमेंट में। जी हाँ, पिछले सेगमेंट में हमने भगत सिंह की जर्नी को, उनकी लाइफ को बहुत ही क्लोजली समझने की कोशिश की, उनके बचपन को, उनकी क्यूरियोसिटी को और उनकी रीडिंग हैबिट्स को और साथ ही उनकी रेवोल्यूशनरी थिंकिंग को, उनकी जेल की जो डिफिकल्ट फेस थी और उनकी लाइफ में मिलने वाले इंपॉर्टेंट लेसन को, बहुत सारी बातें जानी, उनकी लाइफ की जर्नी से बहुत सारी चीजें सीखी। लेकिन अभी भी ना एक क्वेश्चन है जो मेरे पास है, भगत सिंह आज भी हमारे बीच में इतने ज्यादा याद क्यों किए जाते हैं? चलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ, शायद इसका आंसर ना सिर्फ उनके सेक्रीफाइसेस में नहीं है बल्कि उनकी सोच में छुपा है। जी हाँ, भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को राजगुरु और सुखदेव के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूट किया। उस वक्त उनकी एज सिर्फ 23 साल की थी, मतलब कितनी यंग एज थी। आज के जो 23 साल की उम्र में बहुत से लोग हैं जो हमसे, वो अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड होते हैं, फ्यूचर प्लान कर रहे होते हैं, अपने सपनों को डिस्कवर कर रहे होते हैं, पर जो भगत सिंह थे उन्होंने अपनी यंग एज में अपने आइडियाज और बिलीफ के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। इसलिए उनकी स्टोरी सिर्फ सेक्रीफाइस की स्टोरी नहीं है बल्कि ये हमें याद दिलाती है कि यूथ के पास एनर्जी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। और जब हमने इस साल 15 अगस्त को जब सेलिब्रेट किया, हम तिरंगा देखते हैं, नेशनल एंथम सुनते हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स

ना भी कंट्रीब्यूशन है, कभी ऑनेस्टली अपने काम को करना भी कंट्रीब्यूशन ही है, और कभी सिर्फ इतना करना भी कंट्रीब्यूशन है कि हम हेट की बजाय अंडरस्टैंडिंग चूज करें। तो दोस्तों, भगत सिंह की स्टोरी से आज फाइनल हमें एक जो सक्सेस मंत्र मिलता है वो है कि आजादी को सिर्फ सेलिब्रेट मत करिए, उसकी वैल्यू को समझिए, अपने राइट को जानिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाइए और अपनी लाइफ को एक मीनिंगफुल पर्पस दीजिए। मैं हूं आज स्नेहा आपके साथ, और इसी पावरफुल थॉट के साथ मैं ले रही हूं आपसे इजाजत। जी हाँ, वक्त हो गया है मेरा आपसे इजाजत लेने का। अगले हफ्ते फिर से आऊंगी किसी और नई जर्नी के साथ जो आपको मोटिवेट करेगी, आपको इंस्पायर करेगी और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक बार फिर से आपको कुछ चीजें ऐसी बताएगी कि आप भी मोटिवेट हो जाए उससे और अपनी लाइफ में दोबारा से उठकर आगे चलने का सोचे। शायद आप रुक गए हैं कहीं पर और आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो ये प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए है कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी ना ऐसा नहीं होता जो पॉसिबल ना हो, हर चीज़ पॉसिबल है, आप बस करके एक बार देखिए तो सही, बहुत आसान होता है आगे बढ़ना। तो बढ़िए, काम करते रहिए और सोचते रहिए और उस पर मेहनत करते रहिए, और इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे इजाज़त। मिलूंगी अगले हफ्ते फिर से किसी और नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको जुड़े रहना है अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: सिटी का जंक्शन 107.8 FM फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन,
1: मन का रेडियो बजने दे जरा।
2: सुमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

0: ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारूमि और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।
1: योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मानोरचना 107.8 FM।
2: जी नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवश्रम 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। शो को अपने हम स्टार्ट करेंगे ये बताते हुए कि भैया ये एक एजुकेशनल शो है आपके लिए, आपको हर एक एपिसोड में एक केस स्टडी जानने को मिलती है। इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी कैसे स्टार्ट हुई, इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कंपनी के फाउंडर्स कौन हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, तमाम चीज़ें आपको बताते हैं। वी मेक श्योर कि आप जब ये शो जब तक ये शो खत्म हो आप एक कंपनी को एक इंडस्ट्री को अच्छे से काफ़ी करीब से समझ चुके हो। आज वापस से सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करने वाले हैं, बट ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो अभी मेरा सलाम कबूल करिए, लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक। आई होप आपको गाने पसंद आए। नाउ दिस नोट, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। मैं आरजे सागर, शो का नाम है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। दोस्तों, आज के शो में जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसकी इंडस्ट्री को समझते हैं। सो दिस कंपनी डील्स इन फैशन टेक। फैशन टेक फैशन और टेक्नोलॉजी को मिलाकर बनी हुई एक इंडस्ट्री है, एक बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो करता हुआ सेक्टर। और इंडिया में हमें जो देखने को मिलता है फैशन और टेक्नोलॉजी का ब्लेंड, उसने लिटरली मतलब इस इंडस्ट्री को एक नई शेप दी है, एक नई उड़ान दी है, एक नई ग्रोथ दी है, जहां पर आपको बहुत सारे इनोवेटिव डिजाइन देखने को मिलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलिंग, इवन कस्टमर एक्सपीरियंस, सब कुछ काफी एनहेंस हुआ है। With the help of artificial intelligence, augmented reality, virtual reality, IoT, blockchain, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। तो टेक ये जो है, जब से इस फैशन इंडस्ट्री में आया है, तब से इसमें बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली हैं। तो आज हम इस मार्केट को समझेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम आज की कंपनी को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं फैशन टेक मार्केट इंडिया में क्या है। देखिए, आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, डिजिटल मार्केट प्लेसेस देखने को मिलती हैं, तो ये सब कुछ हो पाता है इस एक इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद से, जहां पर डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक, सप्लाई चेन से लेकर मैनेजमेंट तक, रिटेल से लेकर कस्टमर एंगेजमेंट तक, सब कुछ शामिल होता है। स्मार्ट टेक्सटाइल्स, वियरेबल टेक्नोलॉजी लाइक स्मार्ट क्लोदिंग, जिसमें हेल्थ को मॉनिटर किया जाता है। अब फैशन के साथ हमारी हेल्थ को मॉनिटर किया जा रहा है, हमारे हार्ट रेट को मॉनिटर किया जा रहा है, इट्स अ ग्रेट थिंग। AR VR solutions, जिसकी वजह से आप वर्चुअली ट्राई कर सकते हो कौन सा कपड़ा आपके ऊपर सूट करेगा और कौन सा नहीं करेगा, जो आपके ओवरऑल शॉपिंग एक्सपीरियंस को काफी बेहतर बनाता है। AI driven platforms, जो आपके हिसाब के स्टाइल आपको दिखाते हैं, आपके हिसाब से आपको फैशन जो है वो रेकमेंड करते हैं, और जैसी भी आपकी डिमांड होती है उस तरीके से आपके लिए कुछ क्रिएट करके देते हैं। देन इसके बाद सस्टेनेबल फैशन इनोवेशन, जो टेक्नोलॉजी की वजह से हो पा रहा है, जिसमें हम वेस्ट को रिड्यूस करते हैं और प्रमोट करते हैं एथिकल प्रैक्टिसेस को। सो दिस इज फैशन टेक इंडस्ट्री इन इंडिया। अब ये मैंने आपको मेजर पिलर्स बताए कि किन किन वर्टिकल्स के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद हम ये समझेंगे कि फैशन टेक मार्केट इवॉल्व कैसे हो रही है इंडिया में। बट इन द मीन टाइम, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

उम्मीद है कि आपको गाना पसंद आई। नाउ विद दिस नोट अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। मैं हूं आरजे सागर, शो का नाम है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और दोस्तों, आज की जो इंडस्ट्री है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सब कुछ आपको समझाने की यहां पर कोशिश की जाएगी। इंडस्ट्री का नाम है फैशन टेक। फैशन और टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक शब्द बना है फैशन टेक, जिसकी वजह से हमारी फैशन इंडस्ट्री इंडिया में बहुत रैपिडली इवॉल्व हुई है और अभी भी होती जा रही है। और देखिए, फैशन बहुत पहले से है, लिटरली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रही है हमारे बीच में हमेशा से। तो अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, फैशन चेंज होगा, लेकिन फैशन इस टर्म को हम सीधा लेकर जाएंगे बैक इन 100 years ago, 200 years ago, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। आप जहां तक जा सकते हैं वहां तक इसको लेकर जाइए, क्योंकि उस टाइम पर भी जब कपड़े नहीं थे हमारे पास, टेक्सटाइल नहीं हुआ करता था, लोग बनाया करते थे, अपने हिसाब से कपड़े बनाते थे, अपने हिसाब से ज्वेलरी बनाते थे। सो फैशन वॉज स्टिल देयर। अब यहां पर समझेंगे कि इंडिया में फैशन टेक कैसे इवॉल्व हुई है। सबसे पहला पॉइंट आता है शिफ्ट टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। पैंडेमिक के बाद से बहुत कुछ बदला है, हमारा ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा होता गया है और लोग भी ऑनलाइन प्रेफर करने लगे हैं, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो हुई है। क्योंकि फैशन के साथ एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, टेक, दैट मींस टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा है पैंडेमिक के बाद, जो लोगों का टेस्ट चेंज हुआ है ऑनलाइन की तरफ, जो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। देन इसके बाद इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ी है टेक्नोलॉजी में, लोग अब इन्वेस्ट करने लगे हैं। वर्चुअल ट्राई ऑन्स, AI बेस्ड पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन एंड चैटबॉट बेस्ड कस्टमर सर्विस, ये सब चीजें अब कंपनीज ऑफर करने लगी हैं, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री तेजी से ग्रो हो रही है। राइज इन D2C ब्रांड्स। देखिए, बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं फैशन के जो आपको D2C मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर, सीधा कस्टमर तक जो उस सामान को डिलीवर करते हैं आपको दिखाते हैं, आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, नो मिडलमैन रिक्वायर्ड। सिंपली वहां पर जिसने लिस्ट किया हुआ है प्रोडक्ट को, उसके थ्रू आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और प्रोडक्ट आपके घर पे। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है। नाउ दिस इज द न्यू फैशन, मानिए इस बात को। लोग अब पूछने लगे हैं, भैया इको फ्रेंडली है क्या आपका जो कपड़ा है, क्या आप उसमें क्या किस तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, आप जिस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं आपने इस फैब्रिक को, इस टेक्सटाइल को, या जिस तरीके से आप ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कहीं आप मदर नेचर को नुकसान तो नहीं पहुंचाते हैं। या सिमिलर टू कार्स, जैसे कार्स में सेफ्टी पूछी जाने लगी है, वो एक नया फैशन बन चुका है। सो हाँ, फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। एंड देन इसके बाद अगला पॉइंट आता है जो सबसे क्रूशियल है, दैट इज पर्सनलाइज्ड कस्टमर इंगेजमेंट। देखिए, आपको पर्सनलाइज करके दिखाया जाएगा कपड़ा। मानकर चलिए आपने व्हाइट टी शर्ट देखी जो आपको थोड़ी रेट्रो वाइब देगी, तो आपको रेट्रो वाइब की ही जीन्स दिखाई जाएगी, वैसे ही शूज दिखाई जाएंगे, और जो एल्गोरिदम है वो आपके टेस्ट को समझेगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप उस प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो आपको वैसे ही वो इंगेज करके रखेगा, क्योंकि वैसे से ही ऑप्शंस आपको दिखाए जाएंगे। दैट्स हाउ ये जो इंडस्ट्री है वो इवॉल्व होती जा रही है और हमेशा से होती आई है, आगे भी होती रहेगी। बट ये आप समझ सकते हैं कि मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है। नाउ विद दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक। उम्मीद कर रहा हूं जितना अभी तक आपको समझाया गया है उतना आप समझ पाए हैं फैशन टेक को। आगे बात करेंगे फैशन टेक मार्केट के हाइलाइट्स के बारे में, बट फिलहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं हूं आरजे सागर, शो का नाम है आत्मनिर्भर भारत, पेश है यहां पर ये गाने आपके लिए, फील गुड फील लाइफ।

फील गुड फील लाइव। दोस्तों मेरा नाम सागर शोकन, आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की, और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 एफएम। तो आज की जो कंपनी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसकी केस स्टडी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, वो जिस इंडस्ट्री में डील करती है उस इंडस्ट्री का नाम है फैशन टेक। आइए थोड़े सा इसके हाईलाइट समझते हैं। पहला आता है इंटीग्रेशन ऑफ AI एंड ML, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये लिटरली मतलब बहुत तेजी से यहाँ पर जो है हमें देखने को मिला है कि हर एक कंपनी जो है इन टूल्स का सहारा ले रही है, जिसकी वजह से इनकी डिमांड बढ़ी है, नए नए ट्रेंड्स आते जा रहे हैं, कस्टमर बिहेवियर को प्रिडिक्ट किया जा रहा है, सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं फैशन टेक मार्केट जो इंडिया में डील करती है उसका वन ऑफ द मेजर हाईलाइट्स है इंटीग्रेशन ऑफ AI एंड ML। उसके बाद है AR/VR फॉर वर्चुअल शॉपिंग एक्सपीरियंस। मानकर चलिए आपको कोई कपड़ा ऑर्डर करना है, कोई गूगल्स आपको ऑर्डर करनी है, वॉच आपको ऑर्डर करनी है, आप उसको पहले अपने घर पर चेक कर सकते हैं। आपके पास AR/VR का ऑप्शन है अच्छा खासा। बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं इसमें जो लिटरली मतलब चीजों को टॉप नॉच रखना चाहते हैं और अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी समझते हैं। वहां पर आप घर से चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर वो कलर सूट करेगा, और वो कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है उतना एक्यूरेसी के साथ आपको रिजल्ट दे पाए। उसके बाद थर्ड मेजर हाईलाइट है 3D प्रिंटिंग एंड डिजिटल फैशन। ऐसे भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो आपको मौका देते हैं एक्सप्लोर करने का 3D प्रिंटिंग, जहां पर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड एक्सेसरीज, कस्टमाइज्ड अपेरल्स जो है वो बनवा सकते हैं। आप कमांड देंगे, आपको लगेगा यू आर द ओनर जिसने ये सब कुछ सेलेक्ट किया है। और एक नया बिजनेस भी स्टार्ट हुआ है इसमें, POD प्रिंट ऑन डिमांड। वह लिटरली लोग इन टूल्स की हेल्प से एक साइड बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और अच्छा खासा पैसा कमा पा रहे हैं। सो या, दिस इज वन ऑफ द मेजर हाईलाइट्स इन फैशन टेक मार्केट इन इंडिया, 3D प्रिंटिंग एंड डिजिटल सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जो मेजर हाईलाइट है, दैट इज स्मार्ट वेयरेबल्स एंड टेक्सटाइल्स। देखिए मेजर हाईलाइट है, लेकिन आप सब लोग फेमिलियर हैं इस एक टर्म से, स्मार्ट वेयरेबल्स से, कि किस तरीके से हम जो है स्मार्ट बैंड्स पहनते हैं, स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, स्मार्ट क्लोथिंग आ गई है जो हमारी ओवरऑल हेल्थ को मेजर भी करती है और साथ साथ हमें काफी ट्रेंडिंग लुक भी देती है। सो या, वन ऑफ द मेजर हाईलाइट्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत कुछ बदला है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है ये सस्टेनेबिलिटी, एंड ये चीज अगेन हर एक सेगमेंट में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी की वजह से लिटरली मतलब बहुत कुछ चेंज हुआ है, लोग अब जागरूक हो गए हैं। चाहे आप बात करें Tier 1 की, चाहे आप बात करें Tier 2 की, चाहे आप बात करें Tier 3 की, किसी भी पर्टिकुलर आप क्राइटेरिया को यहां पर पिक करें, आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात की जाने लगी है। क्योंकि सिटीजन्स को अभी समझ आ गया है कि मदर नेचर को बचाना है हमें, और ये सब कुछ हमें करना होगा बाय जस्ट सिंपली शिफ्टिंग आवर चॉइसेस। तो इसलिए शायद कंपनीज भी अभी से एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर बहुत फोकस कर रही है। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पाए हैं कि क्या क्या हाइलाइट्स है फैशन टेक मार्केट के इंडिया में। अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे ड्राइविंग फैक्टर्स की, कि कौन कौन से वो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जो इंडिया में इस एक इंडस्ट्री को ड्राइव करते हैं और जिसकी वजह से यहां पर ये इंडस्ट्री ग्रो हो पा रही है, मतलब टूल्स की बात करेंगे। पर फिलहाल मजा लीजिए इन गानों का, क्योंकि अभी वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइफ।

फील गुड फील लाइव। नाउ विद दिस नोट अपने शो को आगे लेकर चलेंगे दोस्तों। मैं आरजे सागर, शो का नाम है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और आज यहां पर हम जिस कंपनी के स्टडी आपके लिए लेकर आए हैं दैट डील्स इन फैशन टेक इंडस्ट्री, और यहां पर हम फैशन टेक को अच्छे से समझ रहे हैं फिलहाल। अब हम बात करने वाले हैं जहां पर ना यहां पर ड्राइविंग फैक्टर्स की। पहला ड्राइविंग फैक्टर, ग्रोइंग ई कॉमर्स पेनिट्रेशन। देखिए जितना ज्यादा ई कॉमर्स बढ़ता जा रहा है, जितनी ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, उतनी ज्यादा फैशन टेक मार्केट ग्रो होती जा रही है। रीजन, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड हैं। अब जब लोग अपने फोन को इतना यूज कर रहे हैं, सब कुछ फोन पे दिख जाता है, फोन पर मल्टीपल ऑप्शंस दिख जाते हैं, इतने सारे पोर्टल्स हैं, इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, और सब आपको सारी फैसिलिटीज फोन पर ही प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उस एक पर्टिकुलर ग्रोथ को फ्यूल मिलेगा। सेकेंड फैक्टर, राइजिंग इंटरनेट एंड स्मार्टफोन यूजेज। अब काफी अफोर्डेबल प्राइस पर आपको स्मार्टफोन मिल जाता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी गांव-गांव तक पहुंच गई है, तो इन सब चीजों की वजह से अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है, स्मार्टफोन मिल गया है, ऑनलाइन फैशन शॉपिंग जो है वो एक मेन स्ट्रीम चीज बन गई है। स्पेशली अगर हम बात करें टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज की, जहां पर लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, बहुत बड़े बड़े मॉल्स नहीं होते हैं, बट स्टिल दे कैन चूज, और दुनिया के जो भी बेस्ट फैशन प्रोवाइडर्स हैं उन सब में से वो सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी तरह की चीजें जो है मॉडिफाई करा सकते हैं, अपनी पसंदीदा चीजों को एक पर्सनलाइज टच वो दे सकते हैं। थर्ड जो ड्राइविंग फैक्टर है दैट इज टेक सेवी मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी। देखिए यंगस्टर्स हमारी जो कंट्री है उसमें बहुत ज्यादा है, बहुत पॉपुलेशन है, 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में यंगस्टर्स की है, और यंगस्टर्स क्योंकि वो काफी इनोवेटिव माइंडसेट वाले होते हैं और उन्हें पर्सनलाइज्ड फैशन एक्सपीरियंस चाहिए, टेक सेवी भी होते हैं, और कंपनीज इन सारे क्राइटेरियाज पे खरी उतर पा रही है, तो इसकी वजह से भी ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। फोर्थ पॉइंट अगेन बोलूंगा, सस्टेनेबिलिटी फोकस किया जा रहा है। अब जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी उतना ही ज्यादा वो यूएसपी बनती चली जाएगी, जो कंपनी जितना ज्यादा सस्टेनेबल मॉडल लेकर आएगी उतना ही तरक्की करने वाली है लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो, क्योंकि लोग अब पूछने लगे हैं लिटरली। तब उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है सरकार का सपोर्ट एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स। देखिए सरकार के बिना कुछ नहीं हो पाता है, अगर कोई भी इंडस्ट्री ग्रो कर पाती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सरकार का होता है, सरकार मुहिम चलाती है। जैसे ब्रॉडर व्यू से अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए सरकार के द्वारा, लाइक डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन सब ने मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार किया जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स हुए, यहाँ पर स्टार्ट हुए, लोगों ने भी उनको एक्सेप्ट किया, अपने दिलों में जगह दी और डिमांड बढ़ती चली गई। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिनकी वजह से ये इंडस्ट्रीज ग्रो होती हैं, और फैशन टेक भी उसी का एक रिजल्ट है कि यहाँ पर इतना तेजी से ग्रो हो रही है। उम्मीद कर रहा हूं यू गॉट द पॉइंट। तो हमने आपको अभी 5 ऐसे ड्राइविंग फैक्टर्स के बारे में बताया, ग्रोइंग ई कॉमर्स पेनिट्रेशन, राइजिंग इंटरनेट एंड स्मार्टफोन यूजेज, टेक सेवी मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी, फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नमेंट सपोर्ट एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स। नाउ विद दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे और बताएंगे आपको कुछ चीजें जो जुड़ी हुई हैं फैशन टेक से। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपके गाने पसंद आए और हमारे शो को आप पसंद कर रहे हैं, और ये भी उम्मीद कर रहा हूँ साथ साथ कि आज की जो इंडस्ट्री हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर फैशन टेक, जिसमें हमारी आज की कंपनी डील करती है, उसको आप समझ पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है उतना फेमिलियर आपको करा दें इस एक इंडस्ट्री से। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, अगर कोई नया प्लेयर आना चाहता है इस मार्केट में तो कैसे आ सकता है? मतलब देखिए, वो टोटली आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस होने वाला है, बट स्टिल जितना हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, जितनी रिसर्चेज हम कर पाते हैं, उनके आधार पर कुछ पर्टिकुलर ऐसी स्ट्रेटजीज हम आपको बता सकते हैं जिस हिसाब से आप चल सकते हैं, मतलब एक बार देखा जा सकता है। पहली रहेगी, अपनी नीश आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। ऑल्दो फैशन टेक बहुत एक ब्रॉड कैटेगरी है, उसमें भी आपको पर्टिकुलर एक नीश सेट करनी होगी कि किस तरह का फैशन आप ऑफर करना चाहते हैं।

कौन आपका टारगेट कस्टमर रहेगा। सेकंड जो स्ट्रेटजी हो सकती है, दैट इज लेवरेज टेक्नोलॉजी, क्योंकि ऑलरेडी हमें डिस्कस कर रहे हैं कि टेक बेस्ड इंडस्ट्री है और उसमें सारी कंपनीज कोशिश कर रही हैं जितना हो सकता है उतना अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस बना पाए। लाइक एआई में इन्वेस्ट करते हैं, एआर में इन्वेस्ट करते हैं, वीआर में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे एक यूनिक सर्विस, एक यूनिक प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक पहुंचा पाए, डिलीवर कर पाए और कस्टमर को कन्विंस कर पाए कि आप यहां से खरीद सकते हैं, वी आर द बेस्ट। तो ये आपको करना होगा, एक बार देखा जा सकता है। थर्ड स्ट्रेटजी रह सकती है फोकस ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल है लगभग हर एक इंडस्ट्री में, क्योंकि कस्टमर इज द गॉड। अगर कस्टमर खुश है आपके प्रोडक्ट से तो वापस आएगा, बाकी लोगों को भी रेकमेंड करेगा और इस तरीके से कंपनी ग्रो करेगी। अगर कस्टमर खुश नहीं है, आपको उसकी खुशी से फर्क नहीं पड़ता, तो शायद प्रॉब्लम होगी आपके लिए, आपको चीजों को हमेशा ऑल्टर करना होगा। इसलिए हमेशा कस्टमर एक्सपीरियंस को अपनी प्रायोरिटी बनाकर चलिएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी आपकी हो सकती है कोलैबोरेट विद टेक स्टार्टअप्स। अब देखिए, समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई इंसान स्टार्ट करना चाहता है, फैशन का सेंस है, समझते हैं फैशन को, लोगों की डिमांड को समझते हैं, क्या नई चीजें आने वाली है फ्यूचर में वो देख पाते हैं, बट टेक में हाथ थोड़ा सा तंग रह जाता है। तो ऐसे में आप जो बाकी टेक स्टार्टअप्स हैं जो कटिंग एज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं हमें, उनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू कैन जस्ट एंटर अ मार्केट जो ऑलरेडी काफी ग्रो कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी हो सकती है बिल्ड एन ओमनी चैनल प्रेजेंस। मतलब एक ऐसी आपको प्रेजेंस अपनी बनानी होगी जहां पर आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही चैनल्स पर केटर कर पाए अपने कस्टमर्स को। अगर ऑनलाइन कोई आना चाहता है उसके लिए भी आपके पास अच्छी सर्विस हो, ऑफलाइन भी आपको बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होंगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है लेंसकार्ट। स्टोर्स भी काफी अच्छे हैं और आप ऑनलाइन अगर जाते हैं तो आपको उनके पोर्टल पे भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो सबसे ट्रेंडिंग अभी है, जो आज हम लगभग हर एक सेगमेंट में देख पा रहे हैं, दैट इज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ये आपको फॉलो करना होगा क्योंकि अल्टीमेटली जो एनवायरमेंटल कॉन्शियस कंज्यूमर्स हैं वो आपकी तरफ जरूर आएंगे और वो काफी लॉयल रहने वाले हैं आपके साथ अगर आप ये वाली प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। देन इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, उसमें आपको खुद को एंगेज करना होगा, लाइक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया कंटेंट आपको बनाना होगा ताकि आप एक ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंच पाए। देन उसके बाद अंडरस्टैंड लोकल प्रेफरेंसेस। आपको ये भी समझना होगा कि इंडिया में भी बहुत सारे रीजन्स हैं और हर रीजन में किस तरह का टेस्ट लोग पसंद करते हैं। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फेस्टिवल्स, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बहुत ही जनरलाइज कर देते हैं चीज़ों को। लाइक नॉर्थ इंडिया का कपड़ों पहनने का तरीका अलग होता है ट्रेडिशनल क्लोथ्स की अगर बात करें, और वहीं पर साउथ इंडिया का बिल्कुल अलग होगा। तो इस तरीके से हमें समझना होगा कि किस एरिया में किस चीज़ की प्रेफरेंस है और रूट्स क्या बोलती हैं, कैसे हम उनके ट्रेडिशनल फैशन को आज के जो हमारा फैब्रिक है, आज का जो हमारा फैशन है, उसके साथ अलाइन करके उन्हें दिखा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो अगर आप फॉलो करते हैं या कोई भी ऐसा नया प्लेयर फॉलो करता है तो उसकी काफी हेल्प होने वाली है इस एक मार्केट में खुद को एस्टेब्लिश करने में। आप ट्राई कर सकते हैं। नाउ विद दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे आज की कंपनी की।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक आप इंडस्ट्री को समझ पाए हैं, उम्मीद कर रहा हूँ आपको म्यूजिकल वाइब पसंद आ रही है। चलिए बिना किसी देरी के शो को आगे बढ़ाते हैं ना। फाइनली बात करते हैं आज की कंपनी की। इस कंपनी का नाम है ज़ूक। काफी यूनिक नाम है। ज़ूक का मतलब होता है, ज़ूक रेफर्स टू वाइब्रेंट हाई एनर्जी डांस फॉर्म। और जो फाउंडर्स हैं उन्होंने इसको कनेक्ट किया सूक से भी, SOUK। सूक का मतलब होता है एक मार्केट प्लेस या बाजार। आइडिया बहुत सिंपल था कि एनर्जी और वाइब्रेंसी दोनों को जो है कैप्चर किया जा सके, और वो बहुत अच्छे से इस कंपनी ने करके दिखाया। सो आज की हमारी जो कंपनी है वो है ज़ूक। ज़ूक का अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं, ज़ूक एक इंडियन D2C फैशन एंड लाइफस्टाइल ब्रांड है दैट टुक समथिंग वेरी ट्रेडिशनल इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल डिजाइन और उसको एक मॉडर्न फंक्शनल प्रोडक्ट में जो है कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि हैंडबैग हो गया, लैपटॉप बैग हो गया, वॉलेट्स हो गए, लगेज हो गया। एंड इसी वजह से ये अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर बन जाता है इस कंपनी का, जो कि है ज़ूक, जिसके बारे में हम ये पूरी कहानी आपको सुना रहे हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो अच्छे से कि प्राउडली इंडिया का डिज़ाइन है, वीगन है, हैंडक्राफ्टेड है, और ये डिज़ाइन जो है हमारी हर रोज़ की रिक्वायरमेंट को पूरा भी करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब आपको ये समझनी पड़ेगी कि ये हमारे लोकल आर्टिसंस बहुत काम करते हैं। हर एक जगह का यूनिक आपको चीज दिखाई देगी। एग्जाम्पल के तौर पर इफ यू गो टू मनाली एंड इफ यू आर विजिटिंग अ नाइकी स्टोर, सो यू विल गेट ऑल द प्रोडक्ट्स जो आपको मुंबई में, बैंगलोर में या अमेरिका में या दुनिया के बाकी और जगहों पर मिलेंगे, सेम प्रोडक्ट्स आपको वहां पर मिलेंगे। बट इफ यू आर विजिटिंग मनाली एंड यू आर बाइंग समथिंग फ्रॉम अ लोकल आर्टिसन, सो यू विल गेट अ डिफरेंट थिंग। दिल्ली में अलग मिलेगा, जयपुर में अलग मिलेगा, उदयपुर में अलग मिलेगा, महाराष्ट्र में अलग मिलेगा, गुजरात में अलग मिलेगा। जैसे कोल्हापुरी चप्पल है, हाथ से बनाई जाती है, दैट्स वाई वो एक जैसी दो चप्पलें कभी नहीं होती, क्योंकि मशीन से नहीं बनाई, वो हाथ से बनाई हुई चीज़ें, वो उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी होती है। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ आर टूडेज कंपनी विच इज़ ज़ूक। एक मुंबई बेस्ड मॉडर्न इंडियन लाइफस्टाइल ब्रांड है जो ऑपरेट करता है अंडर सी टर्टल प्राइवेट लिमिटेड, और इसका सिंपल सा मिशन है भैया कि क्रिएट स्टाइलिश एंड फंक्शनल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो इंडिया का एसेंस कैरी करते हो अपने साथ। तो ये है हमारी आज की कंपनी। फिलहाल लेंगे म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे। बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, पता तो उस वक्त मैं कहां था, पता तो उस वक्त तू कहां थी।

All right, welcome back. अपने शो को कंटिन्यू करके मैं हूँ सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज है कि ओरिजिन कैसे हुआ ज़ूक का। आप ये लगा लीजिए कि ज़ूक एक एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट से एक कंपनी बनी है। बिल्कुल सही सुना आपने। आप ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने इमीडिएटली ना तो पैसे रेज किए, ना बहुत बड़ी टीम हायर करी, ना कुछ ई कॉमर्स पे बहुत मेगा लॉन्च किया। सिंपल प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया गया। तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली 20 लैपटॉप बैग्स जो है वो बनवाए पहले, ओके, जिसमें इंडियन टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट जो है उसको एस्थेटिक वे में मॉडर्न बैग कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की उन्होंने। उसके बाद फिर ये फ्ली मार्केट इवेंट था एक मुंबई में, वहां पर उसको लेकर के गए एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 5 आवर्स, मात्र 5 घंटों में वो 20 के 20 पीस जो है बिक चुके थे। एंड ये मोर देन इनफ होता है समझने के लिए कि मार्केट क्या उस प्रोडक्ट के लिए रेडी है, क्या उसको रिकॉग्निशन मिलेगी उस मार्केट में। एंड ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज बन जाता है। तो ये है वो कंपनी ज़ूक, जिसने एक एक्सपेरिमेंट की तरह शुरू किया। मतलब ऑब्वियसली इनका प्लान था कंपनी लॉन्च करने का, बट दे वांटेड टू एक्सपेरिमेंट इट फर्स्ट। सो ये खुद को डेलिबरेटली ऐसे ही बिल्ड करते हैं अराउंड 4 आइडियाज। फर्स्ट इज प्राउडली इंडियन, सेकेंड मॉडर्न एंड फंक्शनल, थर्ड वीगन और क्रुएल्टी फ्री, फोर्थ हैंडक्राफ्टेड। लेट्स सेल इंडियन हैंडक्राफ्ट्स ऑनलाइन। ये ऐसा बिल्कुल नहीं कहते, क्योंकि बाकी ब्रांड्स का एक स्लोगन जब ऐसे होता है सिंपल ऐसे होता है। ये कंपनी इसको इसी सेम बात को अलग तरीके से कहती है, व्हाई कांट इंडियन कल्चर एस्थेटिक्स बिकम पार्ट ऑफ एवरीडे कंटेम्परेरी फैशन। सही बात है, क्योंकि एक तरफ आप बोल रहे हो कि हमें बेचना है, दूसरी तरफ चीज का मायना चेंज हो जाता है जब आप ये बोलते हो कि यार कि फैशन क्यों नहीं बन सकता, एस्थेटिक क्यों नहीं बन सकता है? जब हमारे हाथों से बनी हुई चीजें होते हैं ना, शॉल होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कल्चरल चीजें, अगर आप निकलेंगे लोकल मार्केट में या लोकल जो आर्टिसंस से आप मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली कितनी यूनिक चीजें हैं, यूनिक फ्लेवर्स हैं। सो दैट्स हाउ ज़ूक स्टार्टेड, दैट्स हाउ दे बिल्ट दिस कंपनी अराउंड 4 आइडियाज, 4 मेजर आइडियाज, प्राउडली इंडियन, मॉडर्न एंड फंक्शनल, वीगन और क्रुएल्टी फ्री एंड हैंडक्राफ्टेड। एंड दे डिडंट से लेट्स सेल इंडियन हैंडक्राफ्ट्स ऑनलाइन, दे सिंपली सेड व्हाई कांट इंडियन कल्चरल एस्थेटिक्स बिकम पार्ट ऑफ एवरीडे कंटेम्पररी फैशन। पॉइंट ब्लैंक सिंपल। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फाउंडर की बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइफ।

है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: माँ कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कोड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

वेलकम बैक, मैं सागर शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग सुन रहे रेडियो 107.8 एफएम। अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। ज़ूक हमारी आज की कंपनी है और ज़ूक क्या करती है हम आपको बता चुके हैं। एक्सपेरिमेंट के तौर पर स्टार्ट हुआ एंड इट इज डूइंग वेल ऑनेस्टली। तो अब फाउंडर की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दिशा है हालांकि इस कंपनी के फाउंडर, दिशा सिंह, बट ये डायरेक्ट जो है कंपनी के फाउंडर नहीं बनी, ठीक है। दिशा हरसेल्फ हैज सेड कि इनिशियली शी रियलाइज्ड कि मेकिंग अ प्रोडक्ट एंड बिल्डिंग अ कंपनी वर टू डिफरेंट थिंग्स। इसलिए इन्होंने ज्यादा जो टाइम अपना बिताया वो ज़ूक के लिए एक्सपेरिमेंट जो है वो करने में व्यतीत किया। उनका बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग का, एमबीए किया है, अहमदाबाद से एनर्जी सेक्टर से आती हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस है, बैंकिंग एक्सपोजर है, हेल्थ केयर, हेल्थ टेक एक्सपोजर है, फैशन एक्सपोजर है। ज़ूक का जो अपना फाउंडर प्रोफाइल है वो इनको बताता है एज फैशन, हेल्थ केयर एंड बैंकिंग एंड एनर्जी। ओके, तो इनिशियली इन्होंने वो नहीं किया, बट इनिशियली जो कंपनी के फाउंडर रहे जिनका नाम लिस्टेड है वो है प्रदीप कृष्णा कुमार नाम से। प्रदीप बेसिकली दिशा के हस्बैंड है और IIM अहमदाबाद के बैचमेट है। उनका बैकग्राउंड रहा है बिजनेस प्लस ऑपरेशंस प्लस टेक एंड स्ट्रेटजी में। IIT मद्रास से इंजीनियरिंग की है, IIM अहमदाबाद से MBA किया है। इनके प्रीवियस अगर एक्सपीरियंसेस की बात करें तो ड्यूशे बैंक, मैकिन्जी एंड कंपनी, गिल्ड कैपिटल, ब्राउजर स्टैक, ठीक है। इनका रोल जो ज़ूक में रहा है वो बहुत अच्छा खासा रहा है, ऑपरेशन, सप्लाई चेन, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेंशन, रिटेल। देन अगर दिशा की बात करें तो दिशा के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि इन्होंने IIM अहमदाबाद से MBA किया है, साथ साथ इंजीनियरिंग की डिग्री इन्होंने की है फ्रॉम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर। एज पर हर

पब्लिक प्रोफाइल। ओके, बिफोर जूक उन्होंने जो काम की एक्सपोजर जो उनको मिला वो मैं आपको बता चुका हूँ। जूक में इनका काम है प्रोडक्ट डिजाइन का, ब्रांड बिल्डिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का, प्रोडक्शन का, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग का, ओवरऑल कंपनी स्ट्रेटजी का। एंड दैट्स हाउ ये हस्बैंड वाइफ ने मिलकर के कंपनी बनाई। बट मैं वापस से याद करना चाहूंगा आपको कि ये दोनों ही मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे मार्केट कैसे काम करती है। इसलिए दिशा ने अपफ्रंटली जो है अपना नाम आगे नहीं किया एंड सिंपली अपने हस्बैंड को एज अ फाउंडर इंट्रोड्यूस किया और खुद सारा टाइम जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने में और चीजों को और रिफाइन करने में बिताया। दैट इज जूक फॉर यू। फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक, मैं सागर। शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। ज़ूक हमारी आज की कंपनी है। लेट्स टॉक अबाउट द यूएसपीज ऑफ ज़ूक।
1: ओके,
0: इसको चार लेयर में समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि कोई एक यूएसपी नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं एक यूएसपी बता के यहाँ पर शांत हो सकता हूँ, बिकॉज लिटरली हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि इंडियन डिजाइन लैंग्वेज, मोस्टली जो मेन स्ट्रीम हैंडबैग्स आपको दिखाई देते हैं, हिस्टोरिकली भी अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा ज्यादा दिखाया गया है वहां पर। वेस्टर्न डिजाइन वोकैबुलरी वहां पर आपको दिखाई देती है, बट ज़ूक जो कंपनी है ये डेलिब्रेटली रिकॉग्नाइजेबल इंडियन डिजाइन आइडेंटिटी वहां पर कोशिश कर रही है कि दुनिया रिकॉग्नाइज कर पाए। उन्हीं को ये बिल्ड कर रहे हैं, उन्हीं को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इंडियन प्रिंट्स एंड मोटिव्स, टेक्सटाइल्स, क्राफ्ट, ये सब कुछ इंडियन जो चीज़ें हैं, इंडियन जो एलिमेंट्स हैं, वो आपको इस कंपनी के जो भी एक्सेसरीज दिखाई देंगी वहां पर आपको दिखाई देते हैं क्लियरली। सेकेंड इज फंक्शनैलिटी। नाउ दिस इज क्रिटिकल। The founders of this company didn't just want to make handicrafts that looked beautiful, but हमारी शेल पे बैठे रहे, मतलब फंक्शनल होना चाहिए। बहुत सिंपल है यार कि ब्यूटीफुल चीज आप लेकर के आ गए लेकिन आप उसका यूज नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट के जो डिजाइन हैं वो ऐसे बनाए जो कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। लैपटॉप, फोन, वर्क, कॉलेज, ट्रेवल, एवरीडे कैरिंग, ऑर्गेनाइजेशंस, सबके लिए इन्होंने स्टाइलिश एंड फंक्शनल प्रोडक्ट्स बनाए विद इंडियन एसेंस। सेकंड बिगेस्ट यूएसपी। थर्ड इज वीगन। अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि कंपनी अपने आप को आइडेंटिफाई ऐसे करती है एज अ ब्रांड कि भैया हम, बाकी सब चीजें सेकेंडरी है, फर्स्ट नॉन नेगोशिएबल थिंग इज प्रोडक्ट्स विल बी क्रुएल्टी फ्री एंड वीगन। एंड इट शोज दैट देयर इज सो मच ऑफ एम्पैथी विद इन द प्रोडक्ट्स जो आप देख रहे होंगे वहां पर। एंड लास्ट पॉइंट आता है पर इंडियन क्राफ्टमैनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि सेम स्लोगन मैं बोलना चाहूंगा, वोकल फॉर लोकल। और ये करना बहुत जरूरी भी है हमारे लिए कि अपने लोकल लोगों को पहले हम प्रायोरिटाइज करें, उनको पहली प्रायोरिटी दें ताकि उनकी आवाज उठ के सामने आ पाए। तो यहाँ पर इन्होंने जो लोकल आर्टिसंस हैं उनको अपने साथ ऑनबोर्ड किया, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका इस्तेमाल किया अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। एंड एक इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन्होंने बनाया मुंबई में, और वहीं से सारी चीजें शुरू हुई। हंड्रेड्स ऑफ आर्टिसंस वर इन्वॉल्व्ड व्हेन द कंपनी स्टार्टेड। ओके, तो इनकी यूएसपी बन जाती है इंडियन आइडेंटिटी प्लस मॉडर्न यूटिलिटी प्लस वीगन मटेरियल प्लस क्राफ्टमैनशिप। और ये चार चीजों की लेयर मिला करके बनाती है इस कंपनी को स्पेशल, विच इज ज़ूक। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मजा आ रहा है। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों मैं हूँ सागर, शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवष्टा मंदिर 7.8 FM के साथ, फील गुड फील लाइव। अपने शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का वक्त है। तो आज हमने बात करी कि ऐसी कंपनी की जो इंडियन क्राफ्टमैनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, इंडियन डिज़ाइन, इंडियन नुआंसेस, इंडियन एसेंस को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्ट हुई और बखूबी इस कंपनी ने अपने मोटिव को फुलफिल किया। ज़ूक की आज हमने बात करी। उम्मीद कर रहा हूँ आज की स्टडी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आपके पास कोई पॉइंट है जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ हमें बताइए 8010781078 पर। फिलहाल इसी नोट पर मेरा वक्त है शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का। फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर रिकॉर्ड शो। लेकिन तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खैरियत से रहें। दिस इज आरजे सागर साइनिंग।

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ और एक बार फिर से लेकर आ गए हैं प्रोग्राम जिसका नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। और आज जिस हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत सारी रील्स आपने देखी होंगी, बहुत सारे डॉक्टर्स के इंटरव्यूज भी आपने देखे होंगे, बहुत सारे नुस्खे भी आपने देखे होंगे, कुछ लोग आजमा भी रहे होंगे। लेकिन एक्चुअल यानी रियल सिचुएशन क्या है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ये जानना भी जरूरी है एक्सपर्ट के द्वारा। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हम सबकी लाइफ को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, फैटी लिवर। जी हाँ, लिवर एक ऐसा ऑर्गन जो हर किसी के लिए बेहद ज़रूरी है शरीर को सही तरीके से चलाने के लिए, लेकिन आजकल बढ़ते हुए पोल्यूशन या फिर लाइफस्टाइल कह लीजिए, कहीं ना कहीं फैटी लिवर की समस्या हर दूसरे व्यक्ति दूसरे घर में देखी जा रही है। पर ये फैटी लिवर आखिर है क्या? अगर आपको नहीं हुआ है तो आप बहुत खुशनसीब हैं और इसको ऐसे ही यहीं पर रोक सकते हैं। लेकिन फैटी लिवर आखिर है क्या, कैसे इससे बचा जाए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर पवन कुमार चौबे जी, जो कि कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। तो डॉक्टर पवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
3: थैंक यू रेडियो मानव रचना मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए।
2: सो डॉक्टर पवन, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, फैटी लिवर के बारे में हम बात करें लेकिन लोगों को अभी भी बहुत कम आइडिया है कि फैटी लिवर क्या होता है और इसे साइलेंट डिजीज क्यों कहा जाता है।
3: मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेडिकल टर्म में हम लोग बात करते हैं तो फैटी लीवर तब बोलते हैं जब 5% ऑफ द लीवर सेल में फैट का डिपोजिशन होने लगता है। नाउ मोस्टली इसे टेक्निकली अगर हम लोग अवॉइड करें तो मोस्टली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको कोई सिम्टम होते नहीं है। मोस्टली क्या आते हैं, हमें बोलते हैं कि दे जस्ट हैव अंडरगोइंग अल्ट्रासाउंड, वो कोई भी सिम्टम्स हुआ अगर उनको एक रूटीन अल्ट्रासाउंड में वो बोलते हैं हमें फैटी लीवर हो गया, कोई बोलते हैं हमें Grade 1 या Grade 2 फैटी लीवर हो जाता है विदाउट एनी सिम्टम। उनके लीवर एंजाइम्स नॉर्मल रहते हैं, उन्हें कोई भी भूख में दिक्कत होना या पेट दर्द होना कोई ऐसे सिम्टम्स होते नहीं है, तो फिर इसलिए हम लोग इसे साइलेंट डिसीज या फिर ये बोलते हैं।
2: ओके, यानी सिर्फ 5% अगर लिवर में फैट डिपॉजिट है तो वो फैटी लिवर की कैटेगरी में आ जाता है।
3: जी बिल्कुल,
2: यानी सिर्फ और सिर्फ 5% आपकी प्रॉब्लम को और भी बढ़ा सकते हैं। बट कोशिश ये करनी चाहिए कि ये सिचुएशन आए ही ना। ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे आप अपने लिवर का ख्याल रख सकते हैं, या फिर अगर फैटी लिवर हो जाए तो सोल्यूशन क्या है और कैसे पता लगेगा कि लिवर फैटी हो चुका है, ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं आज। अगर आपके मन में भी कुछ प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, नंबर बहुत आसान है 8010781078। फिलहाल वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूं दीक्षा आपके साथ।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती थी, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

का प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उस पर रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छटपटाती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: साधु नेता।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं? मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: इतना तेज जहन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
1: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम है ऑल इज वेल, जिसमें हमारे नॉलेज पार्टनर हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी बातें फैटी लिवर के बारे में आज चल रही हैं, क्योंकि बहुत सारी किताबों में आपने पढ़ा है, अखबारों में पढ़ते हैं, एक्सपर्ट्स की रील देखी होगी, जहां पर फैटी लिवर आजकल सबसे बड़ी समस्या बनता चला जा रहा है और बहुत सारे पेशेंट्स इससे परेशान हो रहे हैं। पर ये फैटी लिवर क्या होता है ये तो आपको हमारे एक्सपर्ट ने बता दिया, बट एक्चुअली में फैटी लिवर की पहचान कैसे करें ये भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई शरीर में प्रॉब्लम बढ़ रही है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पहचाना जाए, ये बातें जानेंगे हमारे आज के खास मेहमान, हमारे खास एक्सपर्ट डॉक्टर पवन कुमार चौबे जी से, जो कि कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। तो डॉक्टर पवन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि फैटी लिवर क्या होता है, वो तो आपने बता दिया, कैसे ये साइलेंटली लोगों को परेशान कर सकता है ये भी आपने बता दिया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हम जब लिवर प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो जनरली देखा जाता है कि जो लोग बहुत अल्कोहलिक होते हैं, बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, बट अभी कुछ सालों से हमने देखा है कि जो लोग नहीं भी पीते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर क्या होता है?
2: एक्चुअली मैम, इनिशियली हम लोग क्या देखते थे कि किसी को भी, अगर हमारे सोसाइटी में किसी को भी लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो हम लोग दो या तीन कारणों पे ही फोकस करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोलते थे कि अल्कोहल का इंटेक हो रहा है या फिर वायरल हेपेटाइटिस, स्पेशली हेपेटाइटिस बी और सी रिलेटेड चीज़ों को हम लोग ये करते थे। नाउ साइलेंट डिसीज या कहने का सबसे बड़ा रीज़न फैटी लिवर का इसलिए क्योंकि इससे जो रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है वो हम लोग लेटर हाफ ऑफ द एजेस में देखते हैं, स्पेशली आफ्टर 55 और आफ्टर 60। अल्कोहल रिलेटेड आपको इजिली दिख जाएंगे पर्सन अराउंड इन देयर लेट 30s और 40s हैविंग सिम्टम ऑफ द अल्कोहल, लाइक उनको जॉन्डिस होने लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगी या फिर अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स आएंगे। बट फैटी लिवर इज जस्ट काइंड ऑफ ऐसा साइलेंट डिसीज है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अल्ट्रासाउंड में ग्रेड 1 या ग्रेड 2 फैटी लिवर मिल सकता है, आपको लीवर एंजाइम में SGOT SGPT का बढ़ना मिल सकता है, उसके अलावा आपको कोई सिम्टम्स नहीं होगी। तो फिर मोस्टली हम लोग को सिम्टम्स जो है लेटर हाफ यानी 55 या 60 के बाद ये चीज़ें डेवलप करती हैं, इसलिए फैटी लिवर को बहुत ज़रूरी है कि टाइमली इंटरवेन करके इसको ट्रीट करना है, बिकॉज फैटी लिवर एक ऐसी डिसीज़ है जिसको कि हम लोग लाइफस्टाइल से एसोसिएटेड मानते हैं,
1: यानी हमारा लाइफस्टाइल खराब है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके कोई सिम्टम्स हमें शुरुआत में नजर नहीं आते?
2: शुरुआत में इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, अगर कुछ प्रतिशत पेशेंट में हम लोग बोलते हैं 1/3 ऑफ पेशेंट में अगर सिम्टम आता भी है तो जस्ट लाइक, चूंकि लीवर का फैट पे डिपॉजिशन जब होता है तो लीवर का थोड़ा सूजन होती है, तो जब हम लोग बोलेंगे डीप ब्रीथिंग हो रहा है या फिर अगर एक्सेसिव हमें करेंगे तो राइट साइड में, राइट हाइपोकॉन्ड्रियन यानी कि पसलियों के नीचे राइट तरफ में हमें थोड़ा थोड़ा पेन महसूस होगा, यही एक सिम्टम्स आते हैं, अदरवाइज इसको सिर्फ हम लोग अल्ट्रासाउंड या LFT में चेंजेस से जानते हैं।
1: जी जी, और अगर LFT ठीक आ रहा है तो सब कुछ ठीक है?
2: नहीं, ऐसा नहीं है, कई पेशेंट होते हैं जिसमें अर्ली स्टेज ऑफ फैटी लिवर है उसमें LFT भी नॉर्मल आ सकते हैं, तो इसके लिए और भी टेस्ट होते हैं जिनको हम लोग करवाते हैं, जैसे कि अगर कोई भी अगर हमारे पास आ रहा है और उसके अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर आ रहा है तो हम लोग उसके बाद सबसे पहला जो टेस्ट उसको करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिप फोर टेस्ट। बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है जिसमें हम लोग नॉर्मली पेशेंट का एज, उसके LFT यानी SGOT SGPT और प्लेटलेट से वो डिसाइड कर सकते हैं कि उसका फैटी लिवर किस स्टेज में, क्योंकि फैटी लिवर जो होता है वो नॉर्मली इनिशियली फैटी लिवर होता है बट वो कन्वर्ट हो सकता है फाइब्रोसिस में, जो लेटर में सिरोसिस या फिर लीवर फेलियर जैसे सिचुएशन को ला सकता है।
1: ओके, यानी ये 5% का जो फैट है ये धीरे धीरे इतनी बड़ी समस्या ला सकता है अगर आप समय पर इसको नहीं ढूंढते हैं, नहीं पकड़ते हैं। डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल की आपने बात करी कि एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है और बहुत लोगों को सिर्फ लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से हो रही है, सो बेसिकली क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से फैटी लिवर बढ़ रहा है लाइफस्टाइल में? खाना अगर ऑयली ज़्यादा खा रहे हैं या शुगर ज़्यादा खा रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं?
2: सबसे पहली चीज़ है जिसमें जो बोलते हैं हम लोग का सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अगर हम लोग फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस होती है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ों का डिपॉजिशन होता है। रिस्क फैक्टर्स लाइक स्पेशली डायबिटीज़, मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि मेरी डाइट तो बहुत अच्छी है, एकदम प्रॉपर है, मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, मुझे डायबिटीज़ या थायराइड है। सो डायबिटीज़ थायराइड इट्स अ रिस्क फैक्टर, ये क्लियर कट हम बोलते हैं कि अगर आपकी डाइट कंट्रोल है इट्स सेल्फ, लेकिन डायबिटीज़ और थायराइड्स में फ्री फैटी एसिड या फ्री शुगर जो होता है वो लेटर ऑन डिपोजिशन होता है. थर्ड, जैसा कि आपने बताया, ऑयली चीजें, लिपिड ज्यादा होना, शुगरी ड्रिंक्स का एक्सेसिव इनटेक करना, ये चीजें होगा लीवर पे फैट का डिपोजिशन है. मैं फिर यही रिपीट करना चाहूंगा कि फैटी लीवर इट्स नॉट ए डिसीज, इट्स जस्ट अ प्रिकर्सर फॉर अ डिसीज. ये डिसीज की शुरुआत में है. इसका पूरा ट्रीटमेंट पर्सन के पास खुद है, कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी डिसिप्लिन और लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस पे इसको टाइम रहते कंट्रोल किया जा सकता है. बट अगर ये फाइब्रोसिस की तरफ हो रहा है तो फिर हमें फिर मेडिकेशन लेना होगा, या अगर लेटर ऑन सिरोसिस या फिर लीवर फेलियर में डेवलप हो रहा है फिर हमें सिर्फ लीवर फेलियर या सिरोसिस की ही मेडिकेशन कर सकते हैं. ये फिर एक इरिवर्सिबल स्टेज है, यहाँ से वापस आना मुश्किल है.
1: डॉक्टर साहब, यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा आजकल क्रेज है ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक्स का, एनर्जी ड्रिंक्स का, और रात रात भर काम करते हैं और एनर्जी ड्रिंक्स लेते जाते हैं. ये एनर्जी ड्रिंक्स लिवर पे बहुत गलत असर डालते हैं.
2: जी बिल्कुल, स्पेशली हाई शुगरी ड्रिंक, फिजी ड्रिंक्स, स्पेशली हाई कैलोरी दीज आर ड्रिंक्स, ये ना तो लिवर पे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है बल्कि उसमें एक्सेसिव फैट या एक्सेसिव शुगर का डिपोजिशन करता है. और लाइफस्टाइल में अगर चेंजेस हो तो दोनों मिलके साथ में फैटी लीवर को फॉर्मेशन कर सकते हैं. बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इसीलिए हम लोग बोलते हैं देयर आर लॉट ऑफ डिटॉक्स ड्रिंक्स ऑल्सो, लाइक लेमन वाटर यू कैन टेक, प्लेन वाटर भी आप ले सकते हैं, ग्रीन टी भी ले सकते हैं. बट अगर मुझसे पूछें तो ओनली प्रूवन जो रिकमेंडेड ड्रिंक है इस इनटेक ऑफ कॉफ़ी. आप ब्लैक कॉफ़ी डेली एटलीस्ट 2 to 3 times ऑफ डे ले सकते हैं. इट हैज़ प्रूवन रोल, ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस काइंड ऑफ ड्रिंक्स.
1: यानी दवाई के तौर पर भी अगर आप ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हैं दिन में 2 बार तो भी आपका लिवर जो है वो डिटॉक्स हो सकता है, बेटर हो सकता है. बहुत सारे

0: उनको डॉक्टर साहब हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है और वो कॉफ़ी अवॉइड करते हैं, सो क्या वो कॉफ़ी ले सकते हैं? ब्लैक कॉफ़ी से कोई नुकसान तो नहीं होगा?
1: अगर ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल है आफ्टर द मेडिकेशन तो वो बिल्कुल ले सकते हैं।
0: ओके,
1: सिर्फ कुछ कार्डियक डिसीजेज होती हैं जिसमें कि स्पेशली हमें टैकीकार्डिया यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें कैटेगोलोमिन का रिलीज होता है जिससे कि हर्ट रेट रेज होते हैं, उनमें हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि उसमें कॉफ़ी को इनटेक को रिड्यूस क्वांटिटी में करने का, बाकी हर कोई इसको कंटिन्यू कर सकता है।
0: जी, यानी अगर फैटी लिवर से बचना है तो सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल ठीक करें। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बहुत ऑयली खाना, बहुत हाई शुगर वाले ड्रिंक्स लेना, एनर्जी ड्रिंक्स लेना, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और एक्सरसाइज बिल्कुल ना करना, ये तो मुझे लगता है कि हर एक बीमारी को आपकी बॉडी तक ले आता है। तो बहुत सारी बातें और भी जानेंगे फैटी लिवर के बारे में, और अगर आपको ये बातचीत अच्छी लग रही है और आप किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करना चाहते हैं जिसकी हेल्थ को आप ठीक रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, इंटरनेट रेडियो मानव रचना, और पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आरजे दीक्षा के फोल्डर में आप जाएंगे तो डॉक्टर पवन कुमार चौबे के साथ हुई ये सारी बातचीत फैटी लिवर से जुड़ी हुई आपको मिल जाएगी, जिसको आप कभी भी कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल वक्त है दोस्तों एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम है ऑल इज वेल, जिसे सपोर्ट किया है एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने। और आज हमारे साथ हमारे खास एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पवन कुमार चौबे, कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। टॉपिक है आज का फैटी लिवर, क्योंकि एक ऐसी समस्या है जो बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही है, यंगस्टर्स को बहुत परेशान करने लगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार वो खुद हैं अपने खराब लाइफस्टाइल की वजह से। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने कहा, लाइफस्टाइल सुधारिए, फैटी लिवर की प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो आपकी पूरी बॉडी के पूरे सिस्टम को मेंटेन करने का बहुत बड़ा काम भी करता है, और साथ ही ये एक ऐसा ऑर्गन है जो खुद ब खुद ग्रो भी हो जाता है। इस ऑर्गन के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आज हमारे खराब लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा खामियाजा भी भुगत रहा है। डॉक्टर पवन से जानते हैं, आइए बहुत सारी और भी बातें फैटी लिवर से जुड़ी हुई। डॉक्टर पवन, फैटी लिवर की जब हम बात करते हैं, तो अभी आपने कहा कि अल्कोहल लेना ये बहुत बड़ा एक रीजन होता है, लेकिन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी एक बहुत बड़ा रीजन है, जो कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। बट इसके अलावा फैटी लिवर मोटापे में ज्यादा देखा जाता है लोगों में, या पतले लोगों में भी होता है?
1: मैम, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रेज किया है, बिकॉज आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनका कि बीएमआई या फिर लीन बॉडी वेट नॉर्मल रहता है, बट इटसेल्फ उनके अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर आता है ग्रेड वन या ग्रेड टू। तो उनका यही क्वेश्चन हमेशा रहता है कि मेरी तो डाइट हमेशा प्रॉपर है, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं, तो व्हाई आई एम हैविंग द फैटी लिवर। सो नाउ बहुत ही अच्छा टर्म है, और इस पहले मैं स्टार्ट करूंगा लीन नैश। इसको हम लोग लीन फैटी लिवर या लीन नैश कहते हैं। ये मोस्टली ऐसे पेशेंट्स में होता है जो कि स्पेशली इसमें, जैसे हमने बताया कि दो फैक्टर हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ फैटी लिवर। फर्स्ट इज अबाउट डाइटरी, जिसमें हम लोग ज्यादा ऑयली या ज्यादा फ्री शुगर। सेकंड इज अबाउट दैट एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल पार्ट। सो स्पेशली हम लोग बोलते हैं कि स्पेशली जो लोग का लाइफस्टाइल पार्ट प्रॉपर नहीं होता है, वेट मान लीजिए आपकी हाइट अच्छी है, आपका वेट अराउंड 65 kg है, आपका बीएमआई नॉर्मल है अराउंड 22 है, बट अगर आपका लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, सिडेंट्री है, आप लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं, तो फिर इट कैन कॉज द फैटी लिवर। ऐसे पेशेंट में फिर दे कॉज द ट्रीटमेंट कि फिर मेरा तो वेट सही है तो मैं वेट लॉस करूंगा, तो और वेट लॉस होगा तो व्हाट शुड बी ट्रीटमेंट फॉर दोज पेशेंट वी आस्क अबाउट की ओनली ट्रीटमेंट इज फॉर रेगुलर एक्सरसाइजेस, इवन ऑल काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस। मैम, पीपल आस्क स्पेशली एरोबिक एक्सरसाइज, इवन हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, ये सारे एक्सरसाइजेस प्रूवन है 20-30% ऑफ जो लीवर के अंदर इंट्राहेपेटिक फैट का रिडक्शन करते हैं। तो लीन नैश के जो पेशेंट है उनको मैं यही बोलूंगा कि अगर आपकी डाइटरी कंट्रोल है तो वरी नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने शेड्यूल में एक्सरसाइज को ऐड करना है। एरोबिक एक्सरसाइजेस अगर फॉलो कर सकते हैं, तो वो जो नॉर्मल हम लोग फॉलो करते हैं एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे ऑफ अराउंड 150 मिनट्स ऑफ पर
0: वॉकिंग भी अगर हम
1: वॉकिंग
0: करते हैं,
1: ब्रिस्क वॉकिंग इट शुड बी द वर्ड वी यूज मैम, ब्रिस्क वॉकिंग, बिकॉज एटलीस्ट आप एक ऐसी पेस पे वॉक करना है वेयर यू कैन टॉक, यू कांट टॉक ऑन द फोन, और यू कैन टेक अ डीप ब्रेथ। सो दैट्स काइंड ऑफ ब्रिस्क एक्सरसाइज स्पेशली हेल्प अस इन दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग एंड अदर हेल्प फॉर द लीन नैश। एंड फॉर द ओबीस पेशेंट, एक इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट मैम बताऊंगा, इंडिया में अराउंड प्रिवेलेंस इज अबाउट 1/3 इन द एडल्ट, अराउंड 33-36% ऑफ एडल्ट इज हैविंग द फैटी लिवर, बट ओबीस चिल्ड्रन, इन ओबीस चिल्ड्रन इट्स अबाउट 2/3 ऑफ देम, अराउंड 66-67% ऑफ द ओबीस चिल्ड्रन आर हैविंग फैटी लिवर।
0: फैटी लिवर, और ये क्या उम्र होती है उन बच्चों की, 8 से 10 साल?
1: 14 ईयर 15 ईयर 12 ईयर्स वी हैव सीन।
0: Okay.
1: And the main problem is that it's not the risk factor only for the fatty liver. ये later on diabetes, cardiac diseases, सबके risk factors होते हैं।
0: Of course, मोटापा तो हर एक चीज को invite करता है।
1: जी, बिल्कुल। इसलिए जो भी ये होते हैं, मैं इनको सबको बोलता हूँ कि it's early time, so start running, start losing weight, start control on your diet. Because of few times देंगे, आप एक बार इन चीजों पे control होंगे, you will automatically start seeing the result. Because as initially हम लोगों ने discuss किया, it's a silent disease. मैं एक interesting case बताऊँगा। हम लोग के पास आई थी इमरजेंसी में ब्लड वॉमिट, वो बोली थी कि उनको वॉमिटिंग हुई थी ब्लड की ऑलमोस्ट 2 or 3 episodes, तो वी जस्ट हैड एडमिटेड इन द आईसीयू, स्टेबलाइज्ड है, आफ्टर 2 days वी हैव अंडरगो द इंडोस्कोपी एंड इट शोज द लार्ज वेरिसेस, मतलब बड़े बड़े उनके खाने के नली में नशे फूले हुए थे। उनके ब्लड, उनके रिपोर्ट्स देखे तो ओनली देर वॉज रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन बिकॉज ऑफ द ब्लड लॉस, रेस्ट उनका पूरा रिपोर्ट नॉर्मल था। प्लेटलेट वॉज स्लाइटली लोअर, दैट इज 1.2 lakh, होल LFT, होल RFT, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल,
0: सब कुछ ठीक।
1: वी अंडरगो स्कैन्स और इट शो शी वॉज हैविंग क्रोनिक लिवर डिजीज। अब उनके अटेंडेंट बोले, अम्मा तो अल्कोहल नहीं लेती, शी इज नॉट हैविंग हेपेटाइटिस बी एंड सी, तो कैसे उनको हो गया ये? देन आई हैव अंडरगो, वी हैव अंडरगो द अदर टेस्ट ऑल्सो, विच एंड शी हैव हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज। विच वॉज कंट्रोल एट दैट टाइम. देन वी हैव एक्सप्लेन कि मैम स्पेशली अगर आपको फैटी लीवर होता है तो इट्स नेवर कम विथ एनी काइंड ऑफ वार्निंग सिम्टम्स. इट कैन साइलेंटली डायरेक्टली गो टू द क्रोनिक लीवर डिसीज फेज. सो बेटर इन द अर्ली हाफ इट शुड बी कंट्रोल.
0: जी जी जी. यानी अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है या फिर थायराइड है, तो लिवर का जो ख्याल है वो आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा.
1: जी बिल्कुल.
0: डॉक्टर साहब, बहुत सारे बच्चों को या बड़ों को डायबिटीज़ काफ़ी समय से होती है. बच्चों में टाइप 1 होती है, बड़ों में टाइप 2 नॉर्मली हो जाती है. कंट्रोल में भी है कि आपकी 200-250 के अंदर ही रह रही है. कुछ इंसुलिन लगा रहे हैं, कुछ दवाइयाँ खा रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज करें, फिर भी क्या टाइप 1 वाले, क्योंकि वो बच्चे होते हैं, मैं ये जानना आपसे ज़रूर चाहूँगी कि उनको भी फैटी लिवर हो सकता है?
1: टाइप 1 में मैं मोस्टली जो हम लोग बच्चे रहते हैं वो दे आर थिन लीन होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऑफ पैथोलॉजी. सो उनमें फैटी लीवर के चांसेस जस्ट फॉर डाइटरी और डिपोजिशन आर क्वाइट लेस. बट इफ़ द सेकेंड पार्ट लाइक डाइटरी एंड सेकेंड वन इज लाइफ स्टाइल, इफ द लाइफ स्टाइल पार्ट हैज बीन अफेक्टेड देन लीन नैश कैन बी सीन इन दैम.
0: यानी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. LFT KFT रेगुलरली कराते रहना.
1: बिल्कुल.
0: तो साल में एक बार ऐसे टेस्ट कराने से आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं. ज़रा सा आपको कहीं कोई दर्द महसूस हो रहा है अगर अपनी बॉडी में, पेट के ऊपर की तरफ, तो डेफिनेटली आपको ज़रूर डॉक्टर से भी बार बार कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये कुछ शुरुआती सिम्टम्स हैं जो बहुत कॉमनली पकड़े भी जा सकते हैं, देखे भी जा सकते हैं, और फैटी लिवर की पहचान इन्हीं से होती है. आगे और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि फैटी लिवर को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ दवाइयां हैं, या फैटी लिवर आगे बढ़कर और कितना नुकसान पहुंचा सकता है, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, और क्या कोई वैक्सीन है हेपेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए, करेंगे ऐसी बातें लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद.

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM. मैं हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम है ऑल इज वेल, जिसे सपोर्ट किया है SSV हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने. और बातें चल रही हैं बहुत सारी आप ही की हेल्थ के बारे में, और आज का विषय है फैटी लिवर. डॉक्टर पवन कुमार चौबे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फैटी लिवर आखिर होता क्या है, कैसे इस प्रॉब्लम से बचा जाए और कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए. सो डॉक्टर पवन, बहुत सारी बातें आपसे कर ली हैं, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, फैटी लिवर, क्या इस सिचुएशन को रिवर्स किया जा सकता है, क्या ये रिवर्सिबल है, और अगर नहीं है, अगर नहीं हो रहा है रिवर्स, किसी का बढ़ता ही जा रहा है, तो ये किस लेवल पर पहुंच सकता है और कितने समय में ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है?
1: मैम, ये फैटी लीवर के रिलेटेड ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बिकॉज हम लोग देखते हैं कि सारे फैटी लीवर के पेशेंट्स लीवर फेलियर या सिरोसिस तक नहीं जाते. हम लोग बोलते हैं कि अराउंड अगर किसी को भी फैटी लीवर होता है तो 80% ऑफ पेशेंट का फैटी लीवर उसी स्टेज तक ही रहता है. इट डजंट प्रोग्रेस इनटू द फाइब्रोसिस और सिरोसिस और फर्दर ऑन. बट द अर्ली ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग जो पेशेंट अर्ली फैटी लीवर है, उनको सबको डाइटरी एंड लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए बोलते हैं, वेट लॉस के लिए बोलते हैं और एक्सरसाइजेस के लिए, और उस पर सोचते हैं कंट्रोल होने को. वंस दीज इंटरवेंशन फेल, देन ओनली वी अंडर गो फॉर द फार्माकोथेरेपी और ड्रग्स.
0: ओके,
1: ड्रग्स का मैं फिर बोलता हूँ, फैटी लीवर का ट्रीटमेंट जो है हर किसी को खुद मालूम है, बहुत एक्स्ट्रा कोई एफर्ट लेने की जरूरत है, वी कैन इजीली डू ऑन इट्स ओन. द ओनली चेंजेस विच वी हैव टू डू, अगर आपके डाइटरी लाइफस्टाइल से फैटी लीवर नहीं कंट्रोल हो रहा है, या फिर आप उसको जब हम लोग फर्दर टेस्ट करते हैं लाइक फाइब्रोस्कैन टेस्ट या फिपो टेस्ट, उसमें अगर फैटी लीवर जो फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो चुका है, तो फिर बहुत सारी न्यूअर मेडिकेशन है जिनको हम लोग यूज करते हैं टू अर्ली स्टेज टू रिवर्स दोट फाइब्रोसिस. बट वंस दोज फाइब्रोसिस प्रोग्रेस इनटू सिरोसिस, फिर आपको मेडिकेशन ऑफ सिरोसिस की या फिर हम लोग फर्दर लीवर ट्रांसप्लांटेशन विल बी द ओनली ऑप्शन.
0: वो काफी मेजर प्रॉब्लम,
1: वो मेजर प्रॉब्लम है. तो फैटी लीवर के बेस्ट पार्ट क्या है एज कम्पेयर टू एल्कोहलिक लीवर डिसीज, दैट इट गिव्स अ लॉन्ग विंडो पीरियड. एल्कोहल क्या है कि अगर हम लोग कंटिन्यूअसली ले रहे हैं तो 1-5 ईयर में इट कैन ईजिली वी सी द रिजल्ट ऑफ दिट रिजल्टिंग इन द लीवर की फाइब्रोसिस. बट फैटी लीवर के पेशेंट में हमें लंबा विंडो पीरियड मिलता है, हमें 5-10 ईयर तक का टाइम मिलता है जब वो फैटी लीवर अभी उसी स्टेज में और वो स्लोली स्लोली फाइब्रोसिस की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है.
0: और इसमें डॉक्टर साहब, फैटी लीवर वापस नॉर्मल लीवर में कन्वर्ट हो सकता है?
1: डेफिनेटली हो सकता है.
0: ओके,
1: डेफिनेटली हो सकता है,
0: यानी रिवर्सिबल है.
1: एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, अर्ली द स्टेजेस, इवन अर्ली ऑफ द फाइब्रोसिस टेक आल्सो, इट इज टोटली रिवर्सिबल. देयर आर लॉट्स ऑफ पेशेंट विदाउट इवन एनी मेडिकेशन, दे हैव कंट्रोल्ड इट.
0: ओके, ये तो बात हो गई रिवर्सिबल की, लेकिन आगे मैं आपसे जानना चाहती हूँ कुछ ऐसी चीजें खाने से जिससे लिवर प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, क्या चीज़ें हैं वो जो अवॉइड करनी चाहिए? जैसे हमने अक्सर देखा है कि लोग कहते हैं कि अल्कोहल मत पिए, वो तो एक, मुझे लगता है कि वो तो यूनिवर्सल एक प्रॉब्लम को बढ़ावा देने वाली चीज़ है, तो उसको तो अवॉइड करना ही चाहिए. इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बिल्कुल आपको छोड़ देना चाहिए?
1: बेसिक हम लोग अपने वर्ड्स में बोले तो हाई फैटी फूड्स, स्पेशली ऑयली फैटी फूड्स, फ्राइड आइटम्स, इट शुड बी अवॉइडेड. हाई शुगरी कंटेंट्स फूड लाइक मेनली जूसेस. व्हाट आई ऑलवेज टेल कि आप अगर जूसेस ले रहे हो तो इंस्टेड ऑफ दिस काइंड ऑफ, यू शुड गो फॉर फ्रेश जूस आप ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स.

0: इंटेक कर सकते हैं, गुड सोर्स ऑफ फाइबर भी है. इंस्टीड ऑफ दिस फ्राइड आइटम्स एवॉइड टोटली कट ऑफ आपको डाइट में करना है. लेमन वाटर आप इंटेक कीजिए, आप अर्ली मॉर्निंग में आप ग्रीन टी लीजिए, कॉफी इज अ बिगेस्ट सोर्स, आप इसको इंटेक करना होगा. यू हैव टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स.
1: यानी चीजें काफी सारी हैं जो अवॉइड करें. शुगर कंटेंट, जैसे आजकल बहुत सारे लोग शुगर की जगह सब्स्टिट्यूट्स लेने लग गए हैं, स्टीविया लेने लग गए हैं, खंड लेने लग गए हैं, ऐसी चीजें ले रहे हैं, क्या वो ले सकते हैं?
0: डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट फॉर शुगर, वेरी गुड सब्स्टिट्यूट है, बिकॉज ये जितने हम लोग के शुगर जो स्पेशली मिलते हैं वो मोस्टली दीज आर एसोसिएटेड विद द अदर साइड इफेक्ट्स ऑल्सो, नॉट ओनली रिजल्टिंग इन द फैटी लीवर बट ऑल्सो समटाइम्स दीज आर रिजल्टिंग इन द अदर ऑल्सो ओबेसिटीज एंड अदर थिंग्स, सो वी हैव टू अवॉइड दिस.
1: कितना ज़्यादा नुकसानदायक है पैकेज्ड फूड खाना या जिसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं, और हर चिप्स के पैकेट में, हर आइसक्रीम में, हर कोल्ड ड्रिंक में, हर चीज़ जो बच्चे खा रहे हैं आज की तारीख में, बड़े भी खा रहे हैं फॉर दैट मैटर, कितना नुकसानदायक है?
0: तो पैकेज फूड मोस्टली मैम हम लोग स्पेशली उसमें शुगर कंटेंट हाई होता है, सॉल्ट कंटेंट हाई होता है, एंड दे यूज सेवरल काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव्स विच कैन बी फ्यू ऑफ हैव बीन लाइक अजीमोमोटो लाइट ड्रग्स, फ्यू हैव बीन प्रूवन फॉर द मैलिग्नेंसी रिस्क ऑल्सो, कलरिंग डाइज, दीज हैव ऑल्सो इफेक्ट्स. तो दीज आर नॉट ओनली हार्मफुल फॉर द लिवर बट उसके अलावा बॉडी के और पार्ट में भी काफी
1: नुकसान पहुंचे.
0: एक्जैक्टली,
1: बिल्कुल, यानी आप जो कुछ खा रहे हैं उसका सीधा असर बॉडी पर हो रहा है, और लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो सेंसिटिव है, लेकिन अगर इसमें कहीं कुछ ज़रा सा भी फैट डिपॉजिट हो जाता है तो उसको आप अपने लाइफस्टाइल से ही ठीक कर सकते हैं. बट अगर ये प्रॉब्लम ना देखी जाए, ना समझी जाए और ना ट्रीट की जाए, ना इस पर काम किया जाए, तो ये आगे जाकर लिवर ट्रांसप्लांट जैसी सिचुएशन पर भी पहुँच सकता है. तो बहुत सारी बातें और भी जानना चाहेंगे आज कल के समय में, यानी बरसात हो या फिर गर्मी हो, तो ऐसे में क्या लिवर से होने वाली बीमारियों से बचने का तरीका है, ये भी जानेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद.

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम प्रोग्राम है ऑल इज वेल, जहां हो रही है बातें आपकी हेल्थ के बारे में। मैं हूं दीक्षा आपके साथ, और इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया है एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने। डॉक्टर पवन कुमार चौबे हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट, और इनसे हम जानने की कोशिश करें हैं फैटी लिवर के बारे में काफी कुछ। डॉक्टर साहब, फैटी लिवर के बारे में तो आपने काफी कुछ बता दिया, लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मौसम जैसे ही बदलता है बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी आ जाती हैं जिसमें बच्चे बहुत बीमार होते हैं, बड़े बहुत बीमार होते हैं, डायरिया जैसी सिचुएशन हो जाती है, और खास तौर पर से रेनी सीजन की अगर हम बात करें तो ये प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हो जाती है, इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि कई बार ये सिचुएशन जानलेवा भी साबित हो जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ लिवर से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स इस सीजन में आ सकती है और ये कितनी खतरनाक है।
1: ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैम आपने रेस किया, बिकॉज जैसे ही बारिश आती है हम सब एक कॉमन पैटर्न नोटिस करते हैं हमारे ओपीडी में। बच्चे आते हैं, पेरेंट्स साथ में आते हैं, वो बोलते हैं कि इसको 2-3 दिनों से फीवर हो रहा है, कई बार उसके बाद उल्टियां हो रही हैं और अभी ये कुछ खा नहीं पा रहा है, और धीरे धीरे बोलते हैं कि उसका यूरिन जो है येलो कलर हो रहा है या फिर आँखें पीली हो रही हैं। तो जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो हम लोग बहुत इसमें प्रिकॉशन होने की ज़रूरत है, बिकॉज ये वायरल हेपेटाइटिस का पैटर्न है। वायरल हेपेटाइटिस मोस्टली हमारे इंडिया में हेपेटाइटिस ए एन ई से एसोसिएटेड होते हैं, और भी कॉजेज है लेकिन वो थोड़े कम पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स इसमें जो होता है वो होता है वाटर, कंटामिनेटेड वाटर इन कंटामिनेटेड फूड। रेनी सीजन होते हैं, वो वाटर कहाँ से फ्लो होके आ रहा है, कितने कंटामिनेशन ला रहा है, हुनोस। तो उससे क्या होता है कि फिर वो चीज़ें इफेक्ट करती हैं। स्ट्रीट साइड फूड्स को स्पेशली अवॉइड करना चाहिए, प्रॉपर जो है हैंड वॉश की हैबिट डेवलप करनी चाहिए। जैसे ही रेनी सीजन आए मैं सीधे बोलता हूँ कि बाहर के खाने आपको स्टॉप कर देना चाहिए, बिकॉज हेपेटाइटिस ए और ई रिलेटेड जो होते हैं वायरल हेपेटाइटिस, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स गेट इम्प्रूव विद इन 2-3 वीक्स। जॉन्डिस थोड़ा टाइम लेता है बट वो भी इम्प्रूव हो जाता है एक बार ओरल इंटेक अच्छा हो, बट फ्यू ऑफ द पेशेंट डेवलप्स द लीवर फेलियर। कुछ पेशेंट जो है एक्यूट लीवर फेलियर में जाते हैं, कुछ रिकवर, कुछ को इवन अल्टीमेटली ट्रांसप्लांट रिक्वायर्ड होता है। और स्पेशली इन दिस एज, स्पेशली 12-20 ईयर ऑफ दिस चाइल्ड एज में ये चीज़ें थोड़ी सी वरीसम होती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि रेनी सीजन आए, बाहर की चीज़ें आपको खाने पर कंट्रोल करना चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब, वैक्सीन की बात अगर मैं जानना चाहूँ आपसे, क्या हेपेटाइटिस को कंट्रोल करने के लिए कुछ वैक्सीन्स हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस बी के बारे में तो हमने सुना है, क्या इनको वैक्सीन्स के थ्रू लिवर की प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है?
1: बिल्कुल किया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम में इंक्लूडेड है, 0-16 की डोजिंग है। हम लोग बाय बर्थ जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके बाद उनको बी की वैक्सीनेशन कराते हैं नॉर्मल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। करेंटली हेपेटाइटिस ए भी अवेलेबल हो गई है प्रोग्राम्स में, हेपेटाइटिस ए की भी वैक्सीनेशन, और रिसेंटली हेपेटाइटिस ई भी हम लोगों के पास कमर्शियली अवेलेबल है, हेपेटाइटिस ई की भी वैक्सीनेशन हम लोग करते हैं। तो हेपेटाइटिस बी ए एंड ई, दिस 3 मेजर जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि सीजनल हेपेटाइटिस होती हैं और हेपेटाइटिस बी, इन दोनों का टोटली क्योर हम लोग के पास अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन। वैक्सीनेशन के बाद से अराउंड 98-99% ऑफ द चांसेस जो होती हैं रिड्यूस हो जाती हैं, और ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। तो मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि स्पेशली एडोलसेंट ग्रुप के बच्चों को बिफोर दिस रेनी सीजन एंड ऑल, आप उनको डेफिनेटली हेपेटाइटिस ए और ई की वैक्सीन लगाएं और इससे बचें।
0: जी, जिस तरीके से हम फ्लू की वैक्सीन लगाते हैं उस तरीके से हेपेटाइटिस ए और ई की वैक्सीन भी अवेलेबल है। क्या ये हर बार लगवानी पड़ती हैं या एक ही वैक्सीन से काम चल सकता
1: है? सिंगल वैक्सीन एनफ है, 3 डोजिंग में आती है मैम, 0-16 की डोजिंग है, स्पेशली इन द एडल्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ऑल्सो भी अवेलेबल है, और स्पेशली जो जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है, जैसे हमने कोरोना के टाइम में देखा था इम्यून सिस्टम वीक पीपल पे थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। तो इसीलिए जिनका इम्यून थोड़ा वीक है, इवन हम लोग के लीवर सिरोसिस के भी पेशेंट को हम लोग सजेस्ट करते हैं कि वैक्सीन लगाने की, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए।
0: जी बिल्कुल, यानी वैक्सीन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और अगर आपके बच्चों ने अभी तक ये वैक्सीन नहीं लगाई हैं तो ज़रूर लगवाइएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इन वैक्सीन के थ्रू दूर किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, कोई डिटॉक्स वाटर या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कुछ हद तक हम अपने आप को डिटॉक्स कर सकें बॉडी को, क्योंकि आजकल रील्स जब लोग देखते हैं तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं वो रील्स के, आप इसमें ये सीड डालिए, इसमें खीरा डालिए या इसमें कोई चीज़ डालिए, क्या इनका एक्चुअली में असर होता है?
1: हम सब ने देखा है इस तरह की रील को, मैं भी काफ़ी देखता रहता हूँ, बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, हम देखते हैं चिया सीड्स है, सब्जा सीड्स है, बहुत सारी चीज़ें। मैं अगेन बोलूँगा, अगर मेडिकल टर्म में बात करें हम लोग, तो ओनली प्रूवन इज जस्ट इज दैट्स ब्लैक कॉफी. ब्लैक कॉफी ओनली प्रूवन. वी कैन टेक, स्पेशली वी हैव टू टेक दिस काइंड ऑफ लेमन वाटर और ग्रीन टी और दिस चिया सीड्स. दीज आर वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट. दीज हैव वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर्स. तो ये हमारे गट को, गट माइक्रोबायोटा को मेंटेन करने में बहुत अच्छा हेल्प करते हैं. दीज आर वेरी गुड फॉर आवर बॉडी एंड दे मे हैव स्लाइड बेनिफिट फॉर दिस फैटी लीवर ऑल्सो, बिकॉज फैटी लीवर इज ऑल्सो जुड़ी हुई है हमारे गट बैक्टीरिया से. बट स्टिल देर इज नो प्रूवन रोल कि हम लोग इनटेक करेंगे इतने ग्राम इतने वीक हम लेंगे तो उससे हम लोग का फैटी लीवर जो होता है वो इम्प्रूव होता है. वो सिर्फ और सिर्फ अभी भी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैं सबको बोलूंगा डाइटरी एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस ही है. फार्मेकोथेरेपी तभी यूज करनी है जब हम उसको नहीं यूज कर पाए, बिकॉज इट्स वेरी टफ. हम अगर किसी से बोलेंगे कि आपको 10% ऑफ आपका वेट लॉस करना है फैटी लीवर के रिस्पॉन्स को देखने के लिए, 90 kg हम बोलेंगे 9 kg, तो हार्डली 50% ऑफ पीपल कर पाएंगे. तो जो रिमेनिंग 50 नहीं कर पाते उनको हम सजेस्ट करते हैं फिर फॉर द दिस फार्मेकोथेरेपी.
0: डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग पतले होने के लिए भी आजकल दवाइयां लेते हैं, क्या वो उल्टा नुकसान करने के चांसेस उसके ज्यादा रहते हैं?
1: पहली चीज तो ये कि बहुत सारी अवेलेबल है इंजेक्शन के फॉर्म में. कुछ फेमस इंजेक्शन जो है 1 year बैक आई थी, अभी काफी सारी कंपनीज के थ्रू ये इंजेक्टेबल आ चुकी हैं वेट लॉस ड्रग्स में, अदर अदर फॉर्म्स, अदर अदर ब्रांड के नेम्स में. मैं अगेन बोलूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनको तभी लेना चाहिए जब आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करें, बिकॉज देर इज अ सर्टेन इंडिकेशन फॉर दीज. हम लोग एक प्रॉपर BMI देखते हैं, एक मॉर्बिड ओबेसिटी देखते हैं और फ्यू रिस्क फैक्टर्स देखते हैं, तभी इनको एडवाइस करना है. आप कॉस्मेटिकली या फिर आपको लगा है कि मुझे मेरा वेट सही नहीं हो रहा है तो मुझे लो, तो फिर ये नहीं सही है, क्योंकि इसके ऑब्वियसली साइड इफेक्ट्स हैं. अगर आप प्रॉपरली नहीं लेंगे, हाइड्रेशन नहीं लेंगे, प्रॉपर प्रोटीन इंटेक नहीं लेंगे, तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं. दे हैव क्लियर कट रिटेन दिस साइड इफेक्ट्स ऑन दोस. सो आप ले सकते हैं, बट ओनली आफ्टर एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर्स, बिकॉज देर इज अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल जिनके लिए ही ये एडवाइस है, जिनके लिए ये इसको लोग प्रिस्क्राइब करते हैं.
0: जी बिल्कुल. सो अपने आप से दवाइयाँ खुद ना लें, वैक्सीन समय पर लगवाएं, लाइफस्टाइल को ठीक रखें, दिन में 2 cup ब्लैक कॉफ़ी पीते रहें, डॉक्टर की एडवाइस से अगर आपको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है तो उसकी रेगुलर दवाइयाँ लेते रहें, LFT कराते रहें, और कभी दिक्कत हो तो अल्ट्रासाउंड भी ज़रूर कराएं. यानी फैटी लिवर से बचने के कुछ

0: और ये बिल्लू ने पूरी जान से बल्ला घुमा दिया और ये लगा छक्का।
1: ये क्या किया, मेरी सारी साड़ी खराब कर दी, बदतमीज कहीं का। बोल दिया तेरे घर जाकर अभी तेरी मम्मी को।
2: आंटी जी, इतनी सी गलती पर हमारी मम्मी को बुलाते हो और रोज अपने कचरे से सड़क गंदी करते हो, आपकी मम्मी को बुलाएं?
3: अनजाने में की गई गलती गलती नहीं होती, पर जानबूझकर की गई गलती के लिए अनजानापन क्यों।

0: हेलो एवरीवन, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं गौरी मल्होत्रा, आपकी अपनी कम्युनिटी मेंबर, और मेरे शो क्रिएटिव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हर हफ्ते मैं आपकी मुलाकात कराती हूं एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में महारत हासिल की होती है। और ये पंजाबी फोक अभी मैंने इसलिए गाया है क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान है वो भी एक पंजाबी अमेजिंग सिंगर है। तो दोस्तों, आज क्रिएटिव मंच के प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे आर्टिस्ट जिनकी आवाज में रूहानियत भी है और मॉडर्न सोल भी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मिस्टर सौरभ जॉली जी की। ये एक प्रोफेशनल सिंगर और लाइव परफॉर्मर है जिनका म्यूजिकल सफर गुरुद्वारे के पवित्र सुरों से, शब्द गुरबानी से शुरू हुआ है। म्यूजिक उनके लिए सिर्फ एक कला नहीं बल्कि एक साधना रही है। अपनी मॉम से मिली संगीत की पहली सीख और इंस्पिरेशन के साथ उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है, चाहे वो कॉलेज कॉम्पिटिशन्स हो या बड़े इंटरनेशनल स्टेजेस। दिल्ली यूनिवर्सिटी के खालसा कॉलेज से उनका ये सफर एक परफॉर्मर के रूप में निखरा, जहां उनकी सोलफुल रेंडिशन ऑफ इबादत, एक कवर सॉन्ग, उनकी सिग्नेचर बन गई। रेडियो से लेकर इंटरनेशनल टूर्स तक बैंड जिक्र के साथ उन्होंने इंडिया के साथ साथ यूएई, थाईलैंड, मलेशिया, नेपाल जैसे कई बड़े देशों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। आज वो अपने आर्टिस्टिक सफर के एक नए मोड़ पर हैं। अपनी डेब्यूट एल्बम द फर्स्ट चैप्टर के साथ जहां वो अपनी कहानी अपनी ओरिजिनल म्यूजिक के जरिए दुनिया के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज क्रिएटिव मंच पर स्वागत करते हैं मिस्टर सौरभ जॉली जी का। तो जॉली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे शो क्रिएटिव मंच में।
1: थैंक यू सो मच जी।
0: तो जॉली जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और आज हमारे लिसनर्स डेफिनेटली आपकी आवाज से मंत्रमुग्ध होने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है,
1: क्योंकि आपने बुलाया हमें यहाँ पे।
0: जी जी जरूर,
1: बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज का।
0: तो जॉली जी, आपके संगीत के सफर की शुरुआत किस तरीके से शुरू हुई और किस उम्र में आपने संगीत को अपना मान लिया, इसके बारे में हमें बताइए।
1: मैम, मेरी शुरुआत जो है वो बेसिकली मेरी माता जी जो गाते हैं
0: जी,
1: तो उन्हीं की वजह से शुरू हुई है। और जो शुरुआती दौर था वो गुरुद्वारे से शुरू हुआ
0: जी।
1: जब मेरी माता जी और मैं जाते होते थे और वहाँ पे आपको पता ही है रागी वहाँ पे जो गाते हैं
0: जी, जी,
1: तो उन्हीं से हम पहले तालीम लेते थे पहले वहाँ से। और जो प्रोफेशनल जर्नी वाला जो हिसाब है वो मेरा शुरू हुआ था कॉलेज के बाद। बट उसके दौरान, कॉलेज के दौरान बड़ी बड़ी एक फनी कहानी भी है क्योंकि मोस्टली मैं पंजाबी गाता होता था उस टाइम पे
0: जी।
1: तो पंजाबी गाता था, तो फर्स्ट ईयर में आया मैं तो मैंने ऑडिशंस दिए म्यूजिक सोसाइटी के
0: जी।
1: और उस टाइम पे अरिजीत के गाने बहुत चलते होते थे, तो मुझे मना कर दिया कि यार आप पंजाबी गाने तो गा नहीं सकते हो। तो मैंने अरिजीत का कोई गाना गाया था मैंने उस टाइम पे, तो मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा अभी। तो वो अब क्योंकि मेरा पंजाबी टच है ज्यादा मोस्टली, क्योंकि मैंने गाने वो चीज सुने हुए हैं, तो वो मेरी पंजाबी झलक गई उसके अंदर अरिजीत वाली आवाज में
0: जी।
1: तो सबने बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया मेरा, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया और निराश होकर वहां से चला गया मैं, कोई दिक्कत नहीं थी। पर मुझे लगता है कि रिजेक्शन जो है जिंदगी में होने बड़े जरूरी है, तभी जाके असलियत पता चलती है अपने अंदर की। तो सेकंड ईयर में आया मैं, सेकंड ईयर में फिर मैं पूरा प्रिपेयर करके आया हुआ था कि चलो कोई हिंदी गाना करेंगे अब
0: जी।
1: हालांकि उस टाइम तक भी कोई प्रॉपर तालीम हासिल नहीं थी मुझे, बट तब भी सेकंड ईयर में आया तो मैंने कोई गाना गाया, उस टाइम पे हिंदी गाना ही था। और उसके बाद बोला कुछ अपना कुछ आप सुनाओ, कोई जो आपका मतलब आप जिसमें कॉन्फिडेंट हो बहुत ज़्यादा
0: जी।
1: तो मैंने बोला भाई मैं पंजाबी सुनाता हूँ, तो सारे जो बच्चे बच्चे बैठे हुए थे, तो मैंने पूरी अपनी जो मैं दहाड़ के गाता हूँ जो भगवान ने ऊपर से बख्शा हुआ मुझे, तो वो चीज़ गाई मैंने। और कहीं ना कहीं म्यूज़िक सोसाइटी में भी सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद आप मानेंगे नहीं, उस साल में सेकंड ईयर में भी मेरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा प्राइजेस थे म्यूज़िक सोसाइटी में।
0: वाओ,
1: इवन कॉयर से ज़्यादा थे
0: जी,
1: जो हमारे कॉयर परफॉर्म करते हैं। और थर्ड ईयर में आके मेरे प्राइजेस डबल हो गए उससे।
0: वाओ,
1: और उसके बाद कहीं ना कहीं मेरे को ये ज़रूर लगा कि ऊपर वाला मुझे कुछ साइन दे रहा है मुझे कहीं ना कहीं
0: जी,
1: कि आगे बढ़ने का साइन है कुछ, शायद मेरे को म्यूज़िक में ही जाना चाहिए। पर ऐसा दौर बना कि कॉलेज के बाद फिर प्रोफेशनली अब कमाना भी है कहीं ना कहीं, आमदन भी बहुत ज़रूरी है। तो मम्मी जी ने बोला कि बेटा कुछ और कर, तो एस एस सी की कोचिंग शुरू कर दी थी मैंने।
0: अच्छा।
1: उस टाइम तक कुछ दो तीन महीने गया तो पर मन तो लग नहीं रहा था। मेरा एक दोस्त ही था म्यूजिक सोसाइटी का कॉलेज की, उसने बोला कि यार भाई म्यूजिक करते हैं यार। मैंने बोला भाई ठीक है म्यूजिक करते हैं। तो दो महीने हमने काफ़ी प्रैक्टिस करी और एक शो मेरा सबसे पहला मुझे अच्छे से याद है, एक सूफियाना रेस्टोरेंट होता था रजौरी गार्डन में
0: जी।
1: तो पहला शो मैंने वहीं पे करा था और उसके बाद जो मेरी प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत हुई थी उसमें सबसे बड़ा हाथ मैं एक अपने माँ बाप को तो दूंगा ही दूंगा पर एक और शख्स का हाथ है उसमें, श्रुति मिश्रा
0: जी,
1: मेरी बहन ही है वो और उनके पापा भी बड़े बहुत बड़े गजल गायक हैं। मतलब उसने एक स्टोरी डाल दी, हम ऐसे ही जैम कर रहे थे घर पे बैठ के, उसने स्टोरी डाल दी थी और वहीं से मुझे कॉन्टैक्ट करा गया जिक्र के थ्रू कि एक बार आइए आप, हम आपको सुनते हैं ज़रा और देखते हैं कुछ सबब बनता है तो
0: जी।
1: तो फिर ऊपर वाले ने कुछ ऐसा सबब बनाया कि तब से लेकर अब तक अभी उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ हूँ और बहुत चीज़ें सीखने को मिली हैं, लिटरली बहुत सारी चीज़ें
0: जी, जी, जी,
1: और अभी भी सफ़र चल रहा है।
0: वाओ, बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग स्टोरी लग रही है मुझे आपकी। सो मतलब जैसे कई लोग होते हैं बचपन से सीख रहे हैं 5-6 साल की एज से सीख रहे, बट आपकी लाइफ में वैसा कुछ भी नहीं हुआ।
1: नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था सच बताऊं तो। आपके जो YouTube पे भी अभी आपने डाला था, जो मेरे सर हैं बेसिकली मैं उनसे सीखता हूँ, जितेंद्र सिंह सिद्धू, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है।
0: जी जी जी जी,
1: बहुत बड़ा हाथ मैं बताना चाहूंगा क्योंकि मेरे को सच बताऊं तो नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी उस चीज की, म्यूजिक की बेसिकली, तो टेक्निकल चीजें उनसे सीखने को मिली है मुझे और अभी भी मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ उनसे।
0: वाओ,
1: क्योंकि ये म्यूजिक तो कभी एंड हो नहीं सकता।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये सागर ही है, जितना डूबते जाओ उतना गहरा है।
0: जी जी,
1: म्यूजिकल जर्नी अभी भी चालू है और
0: नहीं, और
1: किसी मुकाम पे पहुंचना है जरूर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपको वो चालू रखनी ही चाहिए, हमें भी यही लगता है बिल्कुल। और जिनसे आप तालीम ले रहे हैं बहुत ही, वो खुद अपने आप में बहुत अच्छे सिंगर हैं। तो ठीक है, तो जो आपने बताया जैसे कॉलेज टाइम में, मतलब आप जिस तरीके से हमें बता रहे हैं कि पहले आपको रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा और उसके बाद आपके पास इतने प्राइज थे कि वो क्वायर ग्रुप से भी ज्यादा, आप सोलो गाते थे फिर उस टाइम पे?
1: मैं सोलो गाता था, मतलब आप मानेंगे नहीं, मतलब उस टाइम पे भी, मतलब देखा जाए तो मैं पहले स्टेज पे जब पहुंचता था कॉलेज में भी आर्टिफिशियली बिहेव करता था मैं,
0: ओके,
1: अपने डर को निकालने के
0: लिए। जी जी जी,
1: पर वो जब धीरे धीरे करके ना डर अपने आप ही निकल गया, वो आर्टिफिशियल बिहेव करना अपने आप कैसे कन्वर्ट हो गया कि भाई मैं यही एक पर्सनालिटी हूँ,
0: बिल्कुल
1: आर्टिफिशियल नहीं हूँ, धीरे धीरे करके अपने आप को उस चीज में ढाल लिया कि ये चीजें करनी पड़ती है एज अ परफॉर्मर, आपको लोगों को लुभाने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ जाती हैं।
0: जी, कहीं ना कहीं
1: सीखने को बहुत सारी चीजें मिली हैं। जब आप स्टेज पे होते हैं उसका रियाज अलग है
0: जी,
1: और जो घर बैठे हैं गाने का रियाज वो चीज अलग है।
0: बिल्कुल,
1: मैं ये मानता हूँ।
0: मतलब आप का कहना क्या है कि जैसे अगर हम स्टेज पर जाते हैं कुछ कुछ चीजें हमें थोड़ा सा फेक प्रिटेंड करना पड़ता है ऑडियंस?
1: नहीं, नहीं, नहीं,
0: के लिए
1: पहले तो मुझे लगता है कि अपने आप को जानना बड़ा जरूरी है
0: जी।
1: जब तक आप अपने आप को जानेंगे नहीं तब तक आप आर्टिफिशियली बिहेव करते रहेंगे। तो वो एक फेज जरूर आया मेरी लाइफ में कि मेरे को अपने आप को जानना जरूर पड़ा
0: जी।
1: नहीं तो मैं कुछ हद तक, मैं कुछ टाइम तक मैंने आर्टिफिशियली बिहेव करके काम चलाया, पर एक टाइम पे आके मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मेरे को पहली बात तो अपने आप को जानना पड़ेगा। अगर मैं किसी को कॉपी कर रहा हूँ, किसी आर्टिस्ट को सुन के कॉपी कर रहा हूँ तो वो सही नहीं है। मेरी अलग क्या पहचान है वो मैं अपने आप को जाना पहली बात, तो कि मैं रियल लाइफ में किस तरीके से बिहेव करता हूँ।
0: बिल्कुल,
1: वो अगर स्टेज पे आपका निकल गया है तो मुझे लगता है कि फिर आपकी ग्रोथ बहुत बहुत दूर तक है
0: जी।
1: मुझे ये चीज लगती है।
0: और जॉली, जहाँ हमने स्टेज की बात की तो क्या डर कहीं ना कहीं जरूरी है मन में?
1: मैम, हर आर्टिस्ट, हर एक ट्रू आर्टिस्ट को डर होता है
0: जी।
1: स्टेज पे जाने से पहले हर एक ट्रू आर्टिस्ट को डर है। जब तक आर्टिस्ट गिरी जिंदा है वो इसी की वजह से है, जब तक डर है।
0: डर होना बहुत
1: बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: इतनी ऑडियंस के सामने गाना आसान बात नहीं है
0: जी, जी, जी।
1: लोगों को लगता है गा रहे, अरे क्या है, गा ही तो रहा है और क्या नहीं, बट बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत चीजों से गुजर के आना पड़ता है आपको वहां तक
0: जी।
1: बहुत सारी चीजें रही हैं, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, क्रिटिसिज्म का भी बहुत सामना करना पड़ा है मुझे, पर कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव वे में लेकर वापस से बाउंस बैक करना वो मैटर करता है जिंदगी में, मुझे ऐसा लगता है।
0: सो जॉली जी, आपने काफी अच्छी बातें अभी हमें समझाई कि स्टेज फियर होना चाहिए और जरूरी भी है वो कहीं ना कहीं। तो आप अब अपनी आवाज में हमें कौन सा ऐसा गाना सुनाएंगे जो या तो कह लीजिए आपका पहली स्टेज परफॉर्मेंस थी या फिर आपका कोई भी पहला गीत जो आपके दिल के बहुत ही करीब हो?
1: मैम, मेरी जो शुरुआत थी जिंदगी की, जिसने, जिस गाने ने मुझे मतलब पहचान दी है और जिस गाने की वजह से मैं शायद यहाँ तक पहुंचा हूँ
0: जी,
1: तो वो गाना इबादत है सरताज साहब का। मैं बहुत बड़ा मुरीद हूँ सरताज साहब का, उनकी लिखावट का।

0: वाओ अमेजिंग जॉली जी, अमेजिंग. इतना खूबसूरत आपने जो अभी सुर लगाए, माय गॉड, मतलब लिटरली गूज बम्स आ गए. और आज तो लगता है हमारी ऑडियंस के भी बहुत चांदी होने वाली है, इतने अच्छे अच्छे गाने आप अपनी आवाज़ में हमें सुनाएंगे. सो गाना है ये इबादत, और सिंगर का नेम आपने सरताज साहब जी का नाम लिया.
1: मैम कवर सॉन्ग निकाला तो नहीं, आप ये बोल सकते हैं कि मैंने जो गाना शुरू करा था
0: जी
1: कॉलेज कॉम्पिटिशन में, वो यही गाना शुरू करा था.
0: ओके.
1: और उस इस गाने की वजह से मेरी पहचान बनी थी. मेरे को अच्छे से याद है कि बड़े धुरंधर आया करते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, बहुत
0: जी,
1: क्लासिकल
0: जी.
1: गायक जो ताने मार रहे हैं, जो अलाप ले रहे हैं इतने बड़े बड़े, और उनके सामने मतलब मैं गा के आया था और मुझे पूरा विश्वास होता था कि मैं जीतूंगा नहीं, मुझे पता है
0: जी.
1: कोई कॉम्पिटिशन मुझे नहीं जीता ना, और भगवान की दया से मुझे नहीं पता क्या उसके अंदर आवाज के अंदर या ऊपर वाले ने क्या बख्शा है या सरताज साहब की बख्शिश हुई है कहीं ना कहीं उस गाने के थ्रू. तो बहुत ब्लेसिंग मिली है और कहीं ना कहीं मेरे को बहुत सारे इस गाने की वजह से फर्स्ट प्राइजेस मिले उन धुरंधरों के सामने, जो कि मतलब बहुत बड़े आजकल के टाइम में भी दिग्गज हैं.
0: जी जी जी.
1: हाँ जी.
0: नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. तो आपने ये गाना आप सुनते थे, आपको पसंद था तभी आपने स्टेज पर गाया, या ऐसे कुछ और भी गाने हैं जो आप गाते थे, गुनगुनाते थे?
1: गाने तो मैं गुनगुनाता तो जरूर था
0: जी जी जी.
1: हालांकि हाँ, मैं जैसे बोला मेरे को उस टाइम पे तालीम हासिल नहीं थी
0: जी,
1: बट गाने जैसे मेरे पास अपना कंप्यूटर होता था और स्पीकर होते थे तो उस पर मैं गाने बजा के जोर जोर से गाया करता था. क्योंकि पंजाब में आप देखेंगे तो पंजाब में खेतों में लोग जोर जोर से ऊंची ऊंची गाते हैं
0: जी जी जी.
1: वो माहौल है तभी उनकी आवाज भी इतनी खुली वाली चीजें हैं. तो वो कहीं ना कहीं बचपन से ही कह सकते हो आप कि अंदर रमा हुआ था मेरे, जो सुन सुन के सीखा, जो मम्मी से सीखा, जो ऊपर वाले की बख्शिश है. तो सारी चीजों की ब्लेसिंग है मेरे को लगता है कि ऊपर वाले की.
0: बिल्कुल.
1: तो आप हाँ क्या पूछ रहे थे, मैं तो शायद ऑफ ट्रैक चला गया.
0: नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है आप जो इतना मतलब क्लियरली अपनी चीजें बता रहे हैं, हमसे शेयर कर रहे हैं. डेफिनेटली हमारे लिसनर्स भी काफी इंस्पायर हो रहे होंगे. सो जॉली, जैसे आप कहते हैं कि म्यूजिक सिर्फ एक आर्ट नहीं है बल्कि एक साधना है, राइट? तो इस साधना का सबसे बड़ा लेसन आपने अपनी जर्नी में क्या सीखा है?
1: मैम ये जिंदगी भर का रियाज है
0: जी.
1: ये आप 2 महीने करके, 3 महीने करके, 4 महीने करके, 1 साल, 2 साल करके आप ये समझ लें कि अगर आप बहुत बड़े सिंगर बन गए, बहुत बड़े म्यूजिशियन बन गए, ऐसा तो नहीं हो सकता
0: जी.
1: मरते दम तक आपको सीखना ही पड़ेगा. और बहुत सारे जॉनर्स हैं, सिर्फ एक जॉनर ही नहीं है, बहुत सारे जॉनर्स को एक्सप्लोर करने के लिए भी आपको ना बहुत लोगों से क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ेगा. जैसे आप वो कौन सी, एक मेरे को याद नहीं आ रहा, वो एक सीरीज आई थी म्यूजिक के ऊपर, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका,
0: बंदिश
1: बैंडिट्स. उसके अंदर वो बंदा क्लासिकल गा रहा होता है मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है, मैंने देखी है, वो क्लासिकल गा रहा होता है और उसको फिर बॉलीवुड गाने को बोलते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं मुश्किल आती है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसको बहुत ज्यादा. तो हर सिंगर को, हर म्यूजिशियन को मैंने जो अपनी फील्ड में देखा है, जो मैं अभी लाइव करते हुए आ रहा हूँ इतने टाइम से, कहीं ना कहीं हर म्यूजिशियन के अंदर कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है.
0: बिल्कुल.
1: बट अगर आप हाँ लाइव स्टेज जब आप कर रहे हो तो आपको वही परफॉर्म करना चाहिए जो आपकी खासियत है, ताकि लोग आपको उसकी वजह से सुनने आए. कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना भी बहुत जरूरी है, बट कहीं ना कहीं आपको अपनी

0: होनी भी बड़ी जरूरी है, मैं ये मानता हूँ।
1: बिल्कुल जॉली, और जैसे हमने देखा है ना, कई होते हैं जो रिकॉर्डेड यानी प्लेबैक सिंगिंग में तो बहुत अच्छी आवाज़ आती है, बट बहुत से सिंगर लाइव में नहीं गा पाते उतना अच्छा। पीछे आपने देखा होगा सिंगर्स को लेकर फिर काफ़ी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है और भी चीज़ें। तो अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है ये चीज़ कहाँ तक सही है, क्योंकि लाइव एक अलग तरीका है गाने का और प्लेबैक अलग है, तो इसके लिए रियाज अपना होना चाहिए या कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्या चीज़ मैटर करती है?
0: मैम टेक्निकल गाने बहुत ज़रूरी हैं प्लेबैक के लिए तो,
1: ओके,
0: और इवन लाइव सिंगिंग के लिए भी है। बट अब लाइव सिंगिंग में बहुत तरीके का भी मामला होता है। अब जॉनर जैसे मैंने बात करी, जॉनर्स भी बहुत सारे हैं। अब रॉक में आपको दहाड़ने वाली आवाज़ चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि म्यूजिक इतना लाउड है तो आपको आवाज़ भी अपनी लाउड रखनी
1: है। बिल्कुल।
0: अब अगर मेलो पीछे बज रहा है, म्यूजिशियन मेलो बजा रहे हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट सॉफ्ट सा गाओगे, लोगों को सॉफ्ट मेलो वाइब मिलेगी। प्ले बैक में ये है कि आपको ये दर्शाना है, पहली बात तो आप एक्टर या एक्ट्रेसेस की आवाज़ बन रहे हो आप वहाँ पे, तो जब आप आवाज़ बन रहे हो तो आपको अपनी आवाज़ से ही जादू बिखेरना है वहाँ पे। अब आप फिजिकली वहाँ प्रेजेंट नहीं हो कि आप अपना एक्सप्रेशन करके दिखा पाओ, अच्छा मैं तो ये तान ले रहा हूँ जी, मैं ये वो ले रहा हूँ, अलाप ले रहा हूँ
1: जी।
0: आपको अपने आवाज़ से ही दिखाना है, क्योंकि अगर कोई गाड़ी में बंदा सुन रहा है तो आपकी आवाज़ ही सुन रहा है सर। उससे अगर आपको सुकून मिल पा रहा है, ऑडियंस को सुकून मिल पा रहा है, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है
1: जी।
0: तो और कहीं ना कहीं जैसे प्लेबैक की आपने बात करी, मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो सारे सिंगर्स अभी भी जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उनको ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि प्लेबैक देखो हर किसी को तो मिलता नहीं है, फिल्म में गाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, बट आपके हाथ में जो है, आपके हाथ में कला ये हो सकती है, आपके हाथ में कलम हो सकती है, आप लिरिक्स लिख सकते हैं, आपके हाथ में अगर आप सिंगर हैं या म्यूजिशियन हैं, आप कॉम्पोजिशंस बना सकते हैं, आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके थ्रू आप अपना म्यूजिक पहुंचाइए लोगों तक। जरूरी नहीं है कि आप उस चीज़ का वेट करते हैं प्लेबैक हमें मिलेगा, हम तो बड़ा रियाज कर लिया, 10 साल कर लिया, 15 साल कर लिया, तब भी हमें कुछ नहीं मिल रहा
1: जी।
0: आप अपने गाने निकालिए, अपने गाने से आगे बढ़िए। और ये मैं बहुत, मेरे को लगता नहीं कि ये कोई समझता भी होगा इस चीज़ का, जो लिरिक्स की बात जहाँ पे आती है ना, लिरिक्स की बात, वहाँ पे लोग बोलते हैं कि यार ये तो ना ऊपर वाले की आमद है, बट मैं मानता हूँ कि ना इसकी तालीम हम स्कूल में सीख चुके हैं। अब आप पूछेंगे कैसे सीख
1: जैसे
0: चुके? जो हम पोएम्स पढ़ते थे
1: जी,
0: हिंदी की पोएम हो गई, अगर किसी के स्कूल में पंजाबी थी, जैसे मेरे स्कूल में पंजाबी थी, या इंग्लिश की पोएम्स पढ़ते थे, तो आप वहीं से सीखते हुए आ रहे हैं, राइमिंग स्कीम्स सीखते हुए आ रहे हैं, राइमिंग वर्ड सीखते हुए आ रहे हैं
1: जी।
0: वही चीजें ही गाने में तब्दील हो जाती हैं बाद में जाके।
1: बिल्कुल।
0: काफिया रदीफ जो उर्दू के 32 बहर हैं, मीटर्स जो होते हैं उर्दू के, 32 बहर 32 मीटर जो होते हैं, उसी के अंदर ही, उसी के इर्द गिर्द ही गाने घूमते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जो गजल है, गजल 32 मीटर में सारी की सारी होती हैं, जो गाने हैं वो भी मीटर में होता है। अगर किसी को मीटर नहीं भी समझ, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, ये भी मैं बादशाह सर का भी नाम लेना चाहूंगा, एक बार मैंने उनसे भी सीखा था, और मेरे एक दोस्त भी हैं।
1: अच्छा।
0: मतलब कुछ कुछ जैसा होता है ना, एक एलिमेंट आप यहाँ से समझते हैं, फिर वहाँ समझते हैं।
1: हाँ, किसी से भी सीखने के लिए जो
0: exactly.
1: भी मिले। बिल्कुल।
0: आपकी रिसर्च जारी आप अपनी रखो पहली बात तो, फिर हल्का हल्का आपके ना पॉइंट्स क्लियर होते रहेंगे, कुछ अगर बंदा यहाँ से बताएगा, कुछ वहां से बताएगा, आपके पॉइंट्स क्लियर होते रहेंगे। तो मीटर में लिखना लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है, पर मीटर में लिखना सबसे ज्यादा आसान है।
1: अच्छा।
0: आप किसी भी गाने को पकड़ो, उसकी ऑलरेडी जो कॉम्पोजिशन बनी हुई है उसी पे वर्ड्स चेंज कर दो, आप अपने वर्ड्स लिख दो
1: जी,
0: उसके बाद कॉम्पोजिशन चेंज कर दो, आपका गाना बन गया।
1: वाओ।
0: ये सिंपल चीज बता रहा हूँ मैं
1: जी,
0: जो हर बंदा, हर सिंगर, हर म्यूजिशियन कनेक्ट कर पाएगा इस चीज से। अब ये बात वो अलग है कि कॉम्पोजिशन बनाने में कितना टाइम लगेगा, उसके लिए रियाज अलग, उसके लिए बैठना पड़ेगा
1: जी जी जी। तो जॉली, आपका कभी मन करता है कि आप अपने खुद के लिखे हुए गानों को आगे करें कंपोज?
0: बिल्कुल मैम, मैं तो अभी कर ही रहा हूँ, मेरा
1: कर ही रहे हो, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में है आई थिंक।
0: डेफिनेटली मैं मेरा अभी, अब मैं सस्पेंस ही क्रिएट करूंगा, क्योंकि ये अब सिंगल आने वाला है या ईपी आने वाली है, एल्बम आने वाली है, वो तो आप सब देखेंगे ही
1: जी।
0: जो मर्जी बोल लीजिए, एल्बम बोल लीजिए, ईपी बोल लीजिए, सिंगल बोल लीजिए, द फर्स्ट चैप्टर मैंने नाम रखा है उसको। फर्स्ट चैप्टर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैंने अभी तक जो गाने करे हैं वो मैंने सारे अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके करे हैं।
1: अच्छा।
0: मतलब उसमें शायद मेरा जो एक रंग है वो नहीं दिखा पाया हूँ मैं अभी तक।
1: ओके।
0: जो मैं करता हूँ, जिसको मैं डिफाइन करूँ कि ये जॉली है, ये सौरभ जॉली है, इस चीज से डिफाइन होता है जॉली
1: जी।
0: तो मैं वो चीज अब करने जा रहा हूँ, मेरी अपनी लिखावट उसके अंदर बहुत सारे गानों की, और मैं उनका सबका मैं नाम भी लेना चाहूंगा, पहली बात तो बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं जिक्र का भी बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा उसमें सारे मेरे मोहित भाई, दो मोहित भाई हमारे, मोहित भाई हो गए, लवन्या भाई, मानसु भाई, विधि, जीशन भाई, आसिफ भाई, तुषांत भाई, बहुत सारे जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। एक गाना बनने में मैम बहुत सारे बंदों का हाथ होता है। पहली बात तो लिरिक्स राइटर, अब लिरिक्स मैंने बहुत गानों के तो मैंने ही लिखे हैं, और एक गाना मैंने अपने दोस्त से भी लिया है, उसने भी बहुत अच्छा लिखा है, वो दोस्तों यारों के ऊपर गाना है।
1: अच्छा।
0: वो इंद्रजीत, मैं उसका नाम लेना चाहूँगा, उसने भी मेरे पहले भी मैंने उसके साथ बहुत गाने करे, गुरु गोविंद सिंह जी ऊपर गाने करे थे, तो वो चीज़ इंद्रजीत का नाम लेना चाहूँगा मैं। विकेट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और म्यूज़िक जो मिक्स कर रहे हैं, तो एक कलेक्टिव एफर्ट है ये, सिर्फ मेरा एफर्ट नहीं है कि मैं गाना गा रहा हूँ, मैं कंपोज कर रहा हूँ।
1: बिल्कुल।
0: बट हाँ ये चीज़ है कि आपको बहुत रिलीफ हो जाता है अगर आपको लिरिक्स राइटर के पास नहीं जाना पड़ता, तो आपको खुद रिलीफ हो जाता है बहुत ज़्यादा। मैं ये मानता हूँ आपके पास खुद के लिरिक्स हैं, आप खुद गाते हो, खुद कंपोज करते हो। आप ये देखते हो अगर करण औजला चल रहा है, सिद्धू भाई चल रहे थे, ये और भी पंजाबी सिंगर जो लिखते हैं कंपोज करते हैं खुद, तो वो क्यों आगे हैं? क्योंकि वो उनको दर दर भटकना नहीं पड़ रहा कि हमारे लिए लिरिक्स लिख दो जी, दो दो तीन तीन महीने की वेटिंग नहीं है उनके लिए।
1: जी।
0: उन्होंने खुद बना लिया वो चीज, खुद उसका रियाज करा हुआ है। अगर आप, कई लोग कहते हैं कि यार हम तो पढ़ पढ़ के जी लिरिक्स हमसे नहीं लिखे जाते, कई लोग ऐसे करते हैं जी किताबें पढ़ने शुरू कर देते हैं उसमें फिर उससे लिरिक्स लिखते हैं। आप किताबें पढ़ेंगे आपकी वोकैबुलरी पहली बात तो बढ़ेगी। हालांकि मैं ये नहीं मानता कि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, बट मेरा दूसरा नुस्खा है कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ, मेरा एक दूसरा नुस्खा है। अब हर किसी का अलग अलग, मेरे को लगता है कि हर अलग अलग नुस्खे हो सकते हैं, हर किसी की अलग अलग तुकबंदियां हो सकती हैं।
1: जी।
0: तो आधा काम तो आपका वहीं पे आसान हो गया, लिरिक्स आपके हो गए, कॉम्पोजिशन आपकी होगी, सिंगर आप खुद हैं। उसके बाद सिर्फ आपको एक प्रोडक्शन वाला बंदा चाहिए, आपको मिक्स वाला बंदा चाहिए बहुत अच्छा, और फिर साथ में आपको बाद में जाके जो रोल आता है, जब आपको अगर एक बड़ा आर्टिस्ट बनना है प्रमोशंस, तो उसके बारे में भी मैं बहुत बहुत ही बड़ा वास्ट टॉपिक है ये।
1: हाँ।
0: मैं बहुत बड़ी चर्चा करना चाहूंगा इसके बारे में भी, प्रमोशंस भी हो गए और आर्टिस्ट मैनेजर्स यहाँ तक पहुंचना बड़ा जरूरी है, तभी एक बड़ी जर्नी बनती है, नहीं तो आप फिर अपने चैनल पे निकाल के खत्म हो जाते।
1: बड़ी और अच्छी जर्नी, सक्सेसफुल जर्नी तभी बन पाती है। और आपकी लाइफ में भी मुझे लगता है सभी का, आपके जिन्होंने आपके नेम्स लिया आपने जिनके, तो उनका सबका कॉन्ट्रीब्यूशन काफी हद तक रहा है, उन्हीं के साथ से ये चीज आपकी यू नो सक्सेसफुल हो पाई।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं हिमांशु भाई का शायद नाम लेना भूल गया।
1: अच्छा। तो हम डेफिनेटली प्रे करेंगे कि आपकी ये कब आ रही है एल्बम, पहले आप हमें बताइए कब हम सुन सकते हैं ये
0: हमारी। मैम मेरी एल्बम तो मैं एक स्पेसिफिक डेट तो नहीं बोलूंगा, पर इस 2026 में ही मैं या तो धीरे
1: धीरे करके
0: निकालूंगा या फिर इकट्ठे
1: निकालूंगा, मतलब क्योंकि मैं सस्पेंस में ही रखना चाहता हूं, इसी साल में सुनने को मिलेगा।
0: एग्जैक्टली 2026 खत्म होते होते सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी लोगों।
1: वाओ, चलिए इंशाल्लाह हम आपके लिए प्रे करते हैं कि विशेस हमारी आपके साथ है। सो दोस्तों अब वक्त हो चला एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे जॉली जी के साथ। अब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सौरव जॉली जी। तो सौरव जी, हमें एक बात बताइए, आपने अपने बैंड का नाम लिया जिक्र बैंड, राइट?
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो कैसे आप इस बैंड का हिस्सा बने और अब आप देश में बल्कि या विदेशों में भी बहुत परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं, तो हमें बताइए इसके बारे में।
1: मैम, बहुत बड़ा रोल रहा है जिक्र का मेरी जर्नी में, और एज एन इंडिविजुअल आर्टिस्ट भी बहुत बड़ा रोल रहा है, और एज अ कलेक्टिव टीम भी बहुत बड़ा रोल रहा है। हम फैमिली जैसे ही हैं सारे। शुरुआत में जैसे मैंने आपको आई थिंक पहले बताया था कि श्रुति मिश्रा जो
0: जी,
1: है
0: जी,
1: तो उनकी वजह से, एक स्टोरी की वजह से कहीं ना कहीं हमारा कॉन्टैक्ट हुआ, और फिर जब वहाँ से जुड़ा मैं, तो जैसे मैंने बताया कि उस टाइम भी बॉलीवुड जो था थोड़ा हल्का हल्का मामला ही था, ऐसा नहीं था। तो धीरे धीरे करके उनसे सीखा, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, और बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी मिला है, पर उसको पॉजिटिव वे में लेके मैंने बाउंस बैक करा है। मुझे ये आइडिया है, मुझे अभी तक, जो मैं अभी तक भी करता हूँ, कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियाँ तो इंसान में रह ही जाती हैं मैम
0: जी,
1: तो अभी तक वो चीज़ चल रही है और मेरे को लगता है कि चलनी भी चाहिए, तभी मेरी भी ग्रोथ होगी और एज अ टीम भी ग्रोथ होगी
0: जी।
1: तो वापस से मैं एक बार सबके नाम लेना चाहूंगा जिक्र में, मोहित भाई, दोनों दो मोहित भाई हमारे, हिमांशु भाई, लवण्या भाई और विधि, जीशान भाई, आसिफ भाई, तुशांत भाई, और वापस से अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी।
0: तो आप इसमें लीड सिंगर हैं?
1: हाँ, मतलब जी, मैं लीड सिंगर हूँ और साथ में हमारी फीमेल सिंगर भी।
0: और आपको अब कितना समय हो गया इस बैंड के साथ जुड़े हुए, कितने साल हो गए?
1: मैम, मेरे को 6 साल से ऊपर हो गए हैं।
0: नाइस, वेरी नाइस। तो आपने जैसे कि इंडिया में तो परफॉर्मेंसेज आप करते ही हैं, आपने बाहर भी परफॉर्म किया हो, लाइक मलेशिया, नेपाल और भी जगह, तो वहाँ पे ऑडियंस का किस तरीके से रुख रहता है, थोड़ा सा वो हमें बताइए। क्योंकि इंडिया में तो काफ़ी लोग अपने इंडियन गानों के लिए, बॉलीवुड सॉन्ग्स के लिए रहते हैं, इवन पंजाबी के लिए भी, तो बाहर आपको ऑडियंस का कैसा यू नो इम्पैक्ट वहाँ पे नज़र आता है, क्या उनका रहता है फीडबैक?
1: वहाँ पे भी सब सुनते हैं।
0: अच्छा,
1: ऐसी
0: सुनते
1: बात
0: हैं।
1: नहीं है कि वहाँ, अगर यहाँ पे पंजाबी सुनते तो वहाँ नहीं सुनेंगे, यहाँ बॉलीवुड सुनते तो वहाँ नहीं सुनेंगे।
0: जी जी जी,
1: सब चीजें सुनी जाती हैं बाहर भी। अब जैसे आप फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे सोचिए, अब उनके लिए जो बाहर रहते हैं, उनके लिए हम फॉरनर्स हैं
0: जी।
1: अब हम भी कहीं ना कहीं वेस्टर्न म्यूजिक सुनते हैं, अफ्रीकन म्यूजिक सुनते हैं, अब वो किसी दूसरे नजरिए से आता है हमारे पास। लिरिक्स बस इंडिया के होते हैं और म्यूजिक जो होता है वो बाहर का होता है।
0: ओके,
1: तो मेन अगर आप देखा जाए, अगर हम सुन रहे हैं किसी म्यूजिक को, स्पैनिश म्यूजिक सुन रहे हैं, अगर एफ्रो म्यूजिक सुन रहे हैं, हम किसी और पर्टिकुलर जॉनर को सुन रहे हैं, वेस्टर्न म्यूजिक सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पैर थड़कने शुरू हो जाएंगे
0: जी,
1: आपका सर झूमना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने पैर थड़कवा दिए, अगर आपने सर झुमवा दिया किसी का, तो मुझे लगता है कि आप चाहे वो फॉरनर हो, चाहे वो मतलब कोई जिसको क्या भी टर्म बोलना चाहेंगे, विदेशी या फिर स्वदेशी, कोई भी बंदा हो, वो कनेक्ट जरूर करेगा
0: जी जी जी,
1: मैं ये मानता हूँ।
0: मतलब वहाँ पे भी आपको काफी अच्छा रिस्पांस मिला?
1: 100% मैम, 100%।
0: बिल्कुल,
1: मतलब उनके, मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि जब सारे जब नाच रहे होते हैं, उनके पैर अपने आप, मतलब फॉरनर्स को क्या पता कि कैसे भांगड़ा
0: जी,
1: होता
0: जी,
1: है
0: जी जी जी जी,
1: तो अपने आप ही उनके पैर थिड़कने शुरू होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार हमारा म्यूजिक भी ये लोग सुनते हैं, तो कितनी प्राउड फील वाली बात है हमारे लिए।
0: तो जॉली, जो आप अपने बैंड के साथ, कोई एक आपका होगा ना, एक जो सबसे बेस्ट आपका नंबर सॉन्ग है, वो हमें गा के सुनाइए, जिस पे एक्चुअल में लोगों के पैर थिड़कते हैं।
1: अच्छा, तो पंजाबी गाना ही?
0: हाँ हाँ, पंजाबी।
1: हो गोड़ नाल ओए शिक मिठा, हो गोड़ नाल ओए शिक मिठा, आए हाए ओ रब्बा लग ना किसे नू जावे, गोड़ नाल इश्क मिठा, ओ मेरी भावें जिंद कड लै, हो मेरी भावें जिंद कड लै, आए हाए हो मेरे यार नू मंदा ना बोलनी, मेरी भावें जिंद कड लै, ओ लड्डू खा लै बाणी एहदे, हो लड्डू खा लै बाणी एहदे, आए हाए ओ गन्ने चूप लै जट्टां दे पोले, लड्डू खा लै बाणी एहदे।
0: वाओ, अमेजिंग, हमें भी पूरा डांस का माहौल बन गया यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। बहुत ही मजा आ रहा है आज आपके साथ, आपकी सिंगिंग जर्नी के बारे में बात करते हुए, और बहुत ही इंस्पायर भी हो रहे हैं हम भी, इवन हमारे लिसनर्स जो सुन रहे हैं आज आपको। तो जॉली जी, हमें ये बताइए कि आपने जैसे अपनी जो बचपन में अपनी मम्मी के साथ गाया, उनको देखा अपने गाते हुए, उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी, तो अब जैसे आप इतने बड़े हो गए हैं, अपने शोज करते हैं, अपना आपका एक बैंड है बहुत अच्छा, तो क्या अभी भी मम्मी आपको कहीं ना कहीं करेक्ट करती हैं, कुछ सलाह देती हैं, या फिर आप मतलब इग्नोर करते हो उन चीज़ों को, या मानते हो उनकी बात?
2: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी भी मम्मी करेक्ट करते हैं बहुत सारी चीजों में
0: जी।
2: मैं तो मतलब मम्मी का मुरीद हूँ सच्ची बताऊँ तो, क्योंकि मम्मी लता जी को गाते हैं।
0: वाओ।
2: उनसे तो ऊपर कोई है था ही नहीं और ना है और ना होगा मेरे को लगता
0: जी, है जी, जी।
2: तो उनके उनके गाने गाने ही बहुत बड़ी बात है। तो जब भी कुछ बॉलीवुड वाली चीज मतलब मैं गाता हूँ हल्की फुल्की तो मम्मी मुझे करेक्ट भी करते हैं, हाँ नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है बेटा, ऐसे नहीं ऐसे होता है।
0: जी जी। सो मतलब आप अपनी मम्मी की एडवाइस को मानते हैं
2: 100%
0: जो वो आपको समझाते हैं उसको डेफिनेटली आप फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल मैं करता हूँ और करनी भी चाहिए, क्योंकि देखो चाहे मम्मी हो मैम, चाहे पापा हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी इंसान हो, हर किसी इंसान से आपको सीखने को मिलता है।
0: जी बिल्कुल, बिल्कुल।
2: म्यूजिक ना हो तो नहीं तो कहीं ना कहीं लाइफ लेसन भी सीखने को मिलते हैं। जैसे मैंने बात करी जो मेरे सर हैं जगतिंदर सिंह सिद्धू जी, तो उनसे सिर्फ म्यूजिक लेसन ही नहीं मिले मुझे, मुझे लाइफ लेसन भी बहुत सारे मिले हैं
0: जी,
2: जिनकी वजह से एक माइंड सेट क्रिएट हुआ है कि हाँ इस तरीके से मैं आगे बढ़ सकता हूँ।
0: जी जी जी।
2: क्योंकि जब आप मार्केट में होते हैं तो बहुत सारी चीजें फेस करने को मिलती हैं, तो आपको कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रांग भी होना पड़ता है।
0: बिल्कुल।
2: सर का बहुत बड़ा योगदान है उसमें और मम्मी पापा का तो है ही है।
0: जी नहीं होना भी चाहिए और हम तो
2: बाकी खुद के एक्सपीरियंसेस भी हैं बहुत सारे।
0: जी जी जी। नहीं जरूर होना चाहिए। और जॉली जैसे आपने बचपन से म्यूजिक चलिए आप गाते थे अपनी मम्मी के साथ और बाद में आप इस लाइन में, तो कुछ लोगों का तो देखिए सपोर्ट रहता है, पेरेंट्स का तो डेफिनेटली रहता ही है, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको मतलब हर जगह बोलते हैं, मतलब मना करते हैं कि अरे म्यूजिक में क्या करियर रखा है, पढ़ो और ये सब करो, मतलब वो ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ जहां आपको स्ट्रगल करना पड़ा?
2: मैम स्ट्रगल जो वर्ड है मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में ना जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे में लेकर बाउंस बैक करना
0: जी
2: ये बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है।
0: बिल्कुल।
2: क्योंकि जब आप उस फेज में होते हो कि आपको कुछ वैसा सुनने को मिल रहा है कि आप ऐसा कर रहे हो वैसा कर, तो माइंड में बहुत सारी चीजें आती हैं कि यार मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मतलब बंदा हो सकता है डिप्रेशन में भी चला जाए। और मेरा एक हाँ हालांकि फेज आया था कि तकिए में घुस घुस के मैं रोता होता था। तो पर मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं यार मुझे करना है
0: जी।
2: क्योंकि मैंने चूज करा तो मुझे करना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: मुझे लगता है कि मैं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर ये चीज मैंने फील्ड चूज करी है तो मुझे ही कुछ ना कुछ करके आगे खुद ही बढ़ना है, कोई मेरे को आगे हाथ नहीं दे देगा
0: जी।
2: बाकी जो पीछे खींचने वाले होते हैं, जैसे जो आप बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं वो बहुत होते हैं मैम, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
0: बिल्कुल।
2: तो वो तो जिंदगी भर चलता
0: और वो तो हाँ अभी भी वो चीज कंटिन्यू
2: हो बिल्कुल चलता रहेगा। बट हाँ मेरे को ये भी चीज लगती है क्रिटिसिज्म जो है बहुत जरूरी है लाइफ में
0: जी,
2: हर इंसान के लिए एक असली चेहरा दिखाना बड़ा जरूरी।
0: बहुत अच्छी यहाँ पे आपने बात बोली है कि ये चीज तो लाइफ में चलती रहेगी और कभी कभी क्रिटिसिज्म भी जरूरी रहता है आगे बढ़ने के लिए। और ये मुझे लगता है सिर्फ सिंगिंग में ही नहीं, हर लाइन में ये चीज अप्लाई होती है। बिल्कुल। सो जॉली

0: चीज़ और बताइए, जैसे एक जगह मतलब आप क्लासिकल सिंगर हैं अगर कोई, और साथ में वो अपना शोज वगैरह, आप किसको ज़्यादा तवज्जो देंगे, मतलब क्या चाहेंगे कि किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा करियर बन सकता है, क्लासिकल या स्टेज परफॉर्मर, किस चीज़ में?
1: मैम सिंपल अगर आंसर दूँ तो, अगर आप अपनी जेब के लिए करना चाहते हैं
0: जी,
1: तो वो लाइव परफॉर्मेंसेज हैं,
0: क्योंकि
1: प्लेबैक करके और अपने गाने भी करके आपको वापस से रिटर्न नहीं मिलेगा।
0: ओके,
1: लाइव परफॉर्मेंसेस करके आप अपने घर का खर्चा चला सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्लासिकल सिंगिंग में भी है, मेरे को, मैं सच्ची बताऊं तो मेरे को उसके बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है।
0: ओके,
1: मैंने कॉन्सर्ट्स इतने ज़्यादा अटेंड नहीं करे हैं, मैंने एक ही बारी राजन साजन मिश्रा जी, मैं कानू वाद लगाऊंगा
0: जी, तो जी जी,
1: उनका मैंने करा था अटेंड, और वो बहुत बड़े दिग्गज हैं
0: जी,
1: उनमें से एक भाई तो नहीं रहे पर हमारे दिलों में जरूर बसे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो क्लासिकल सिंगिंग एक अलग जॉनर है। बाकी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आमदन के लिए करना है, अपने रूह के मनोरंजन के लिए करना है
0: जी,
1: तो वो चीज करनी चाहिए आपको, लाइव शोज।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: रूहानियत हर चीज में, मैम आपके अंदर रूहानियत है, मेरे अंदर रूहानियत है, जो बंदे, जो पशु पक्षी हैं, जो पेड़ पौधे, हर किसी के अंदर रूहानियत तो है
0: जी।
1: जो अब जैसे मेरी जो जर्नी गुरुद्वारे से शुरू हुई है, रूह की शांति के लिए जो गाना है वो एक अलग गाना होता है। मैं मस्कीन जी की एक बात बोल रहा हूँ, कानों हाथ लगा के उन्होंने ये चीज बताई थी कि रूह की शांति के लिए जो गाना है वो एक अलग पर्सपेक्टिव है, और रूह के मनोरंजन के लिए गाना है वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। दोनों में रूहानियत है, ऐसी बात नहीं है, बट दोनों अलग चीजें हैं
0: जी।
1: अब ये बहुत बारीक बात है, जो समझने वाले वो शायद समझ जाएंगे।
0: बिल्कुल जरूर समझेंगे। ओके, सो जॉली जी, आपने जैसे अपने बहुत से सॉन्ग्स भी किए हैं और आप कवर्स भी गाते हैं, बैंड्स में भी परफॉर्म करते हैं अपने, तो अपने गाने करके कोई इंसान कितना आगे फेमस हो सकता है, कितना लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है, इसके बारे में बताइए।
1: मैम इसकी तो बहुत बड़ी जर्नी है
0: जी,
1: अपने गाने करके भी मतलब 100 गाने कर लीजिए आप, ऐसा भी हो सकता है कि 100 के 100 ना चले
0: जी,
1: और ऐसा भी हो सकता है कि आपके 100 में से 50 चल जाएं, 10 चल जाएं या 1 चले, ऐसा भी हो सकता है। बट वो अगर आपको एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको एक टीम ज़रूर चाहिए। अपने गाने तो प्लीज़ आप करते ही रहें, वो बहुत ज़रूरी है अपनी एक मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू बनाने के लिए, पर साथ में आपको ये भी जानना पड़ेगा कहीं ना कहीं आपको एक टीम ज़रूर चाहिए। अब वो बहुत बड़ी टीम हो सकती है, देखिए अब गाना जब बन जाता है तो आप एक लेबल के पास जाते हैं, बट लेबल से अगर आपका डायरेक्ट कांटेक्ट है तो ठीक है, वरना आपको एक आर्टिस्ट मैनेजर चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: उसके लिए कि जो कांटेक्ट करेगा। उसके बाद जर्नी शुरू होती है प्रमोशंस वगैरह की
0: जी,
1: और ये बहुत बड़ी गेम है, मतलब जो आप गाना सुनते हैं इंस्टाग्राम पे बार बार, वो आपको जो सुनाया जाता है इसके पीछे बहुत बड़ी गेम है
0: जी।
1: मतलब ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे बताता होगा, और मेरे तो चलो अभी गाने निकल रहे हैं तो मेरे को तो, मैं ये चीज़ मुझे पता है कि किस तरीके से हो रही है, और लोगों को भी पता होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कोई आज तक किसी ने अपने इंटरव्यू में पॉडकास्ट में ये चीज़ बताई है
0: जी,
1: हालांकि पता सबको होता है कि रीलें बननी है, कैसे कैसे चलना है, पर कोई बताएगा नहीं खुल के कि ये जो आप गाना अगर कोई चढ़ जाता है
0: जी,
1: उसको पहली बात तो आर्टिफिशियली पहले आपको वो पुश करेंगे गाना इंस्टाग्राम पे, उसके पीछे बहुत करोड़ों रुपए लगा होगा, लाखों रुपए लगा होगा। जो आप रील्स देखते हैं, जो लड़कियां रील्स बनाती हैं डांस करके, लड़के रील्स बना रहे होते हैं, तो पहले उस गाने को आर्टिफिशियली पुश करा जाता है।
0: ओके,
1: जब वो लोगों तक पहुंच जाता है, बार बार वो लोग सुन लेते हैं
0: जी,
1: क्योंकि आप खुद देखिए ना कि अगर कोई गाना बज रहा है, आपने एक बार सुना, दो बार सुना, जरूरी नहीं है आप उस टाइम पे रील बना दोगे
0: जी।
1: अब जब तक आप ना, आपका कोई दोस्त नहीं बोलेगा या कोई आपका रिलेटिव, यार वो गाना बड़ा अच्छा है यार
0: जी।
1: अब वो भी रिलेटिव भी रील बनाने शुरू कर दी, वो आपके इर्द गिर्द के लोग रील बना रहे, तब जाके आप सोचो कि हाँ यार
0: कि हमें गाना भी तो बड़ा अच्छा है।
1: बट उस गाने की जर्नी जो चल रही है वो बहुत पहले से चल रही है
0: जी।
1: वो आर्टिफिशियली पहली बात तो पुश करा गया, उस पर प्रमोशन बहुत ढेर सारा करोड़ों रुपया लगा हुआ है। गाना बिल्कुल अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, गाना बिल्कुल अच्छा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है वो, पर इसके पीछे गेम है
0: जी,
1: ये पूरी, जो लोग बताते नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि बतानी,
0: नहीं,
1: एक
0: बतानी,
1: सच बताना बड़ा जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मैं मानता हूँ
0: जी जी जी। नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, और बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कि पीछे का क्या है स्टोरी, क्या रहता है प्रोसीजर पूरा, तो बहुत ही अच्छी चीज आपने आज हमें बताई है। तो जॉली जी, अब हमने आपके सफर के बारे में तो बहुत सी बात कर ली, लेकिन अब वक्त हो चला है एक रैपिड फायर राउंड का जो हम आपके साथ
1: ये
0: करेंगे।
1: तो बड़ा मुश्किल है।
0: सो आर यू रेडी? ओके, सो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अर्ली मॉर्निंग रियाज या लेट नाइट जैमिंग?
1: देखिए, ज्यादातर तो मैंने जैम लेट नाइट करा है और मजा बहुत ज्यादा आता है। सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा लेजी सा फील होता है।
0: ओके,
1: करते हैं, बिल्कुल वो भी करते हैं, बट लेट नाइट जैम्स बड़े अच्छे रहते हैं, मजा आता है उसमें।
0: नाउ शबद गुरबानी या सूफी सोल?
1: मैम शबद गुरबानी
0: जी, वो मुझे लगी रहा था।
1: इसलिए करेंगे क्योंकि वो शांति
0: जी सूफी काफी सुकून।
1: सूफी बेसिकली एक स्टेट है, लोग समझते हैं आजकल जो चल रहा है ट्रेंड, चल रहा है सूफी का गाना ट्रेंड चल रहा है, ये म्यूजिक कवाली है, ये जॉनर इसको कवाली बोलेंगे, बट ये सूफी बोलना शुरू कर दिया लोगों ने कि सूफी बैंड है या सूफी गाने हैं, ऐसा है नहीं असल में वैसे।
0: ओके, नाउ लाइव स्टेज या स्टूडियो माइक?
1: लाइव स्टेज या स्टूडियो माइक? मैम दोनों
0: ही। ओके, इंडिया टूर या इंटरनेशनल टूर?
1: इंटरनेशनल टूर में बहुत मजा आता है।
0: ओके,
1: अपना देश प्यारा है।
0: जी बहुत स्मार्टली आप आंसर कर रहे हैं। Now, इबादत या ओरिजिनल कॉम्पोजिशन?
1: मैम ओरिजिनल कॉम्पोजिशन, क्योंकि एक सिंगर की जो पहचान है मुझे ऐसा लगता है, या सिंगर या म्यूजिशियन जो भी, उसकी पहचान सिर्फ अपने गाने से ही होती है। वो उस तक ही जोर लगा रहा होता है जब तक मेरा गाना हिट ना हो जाए, उस एक गाने की ही वेट हो रही होती है बहुत टाइम से।
0: जी,
1: तो ओरिजिनल कॉम्पोजिशन में ही बोलूंगा।
0: ओके, सोलो परफॉर्मेंसेस या बैंड जिक्र के साथ?
1: जिक्र बैंड मैम ऑलवेज।
0: ओके, नाउ हाई नोट्स या डीप सोलफुल आलाप्स?
1: मेरा जो रुझान ज्यादा है वो पंजाब के कल्चर से बहुत जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे हाई नोट्स ज्यादा लिए जाते हैं, तो मैं वो उस पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ।
0: नाउ हेडफोन्स ऑन या स्पीकर लाउड?
1: स्पीकर
0: जी, लाउड स्पीकर।
1: लाउड वैसे लाउड इतना ज्यादा नहीं, ठीक, मतलब ठीक ठाक।
0: ओके ओके, नाउ वन वर्ड दैट डिफाइंस योर म्यूजिक?
1: एक वर्ड में पूरा सीमित कर देना म्यूजिक को, मेरे को नहीं लगता कि ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए सही रहेगा, तो मैं इसका जवाब तो नहीं बोलूंगा। Okay. सच बता रहा हूं मैं।
0: ठीक है, थोड़ा सा
1: खुद एक सागर है, तो उसको एक वर्ड में डिफाइन
0: शब्द में नहीं डिफाइन कर सकते। ये भी बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है। नाइस। सो जॉली जी, एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का यहाँ पे समय हो गया है। लिसनर्स जल्दी से म्यूजिकल ब्रेक से वापस आते हैं, फिर जॉली जी के साथ उनके एक अमेजिंग से सॉन्ग और उनके एक मैसेज के साथ अपने इस वार्तालाप को हम यहाँ पे खत्म करेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील।

0: वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुपर टैलेंटेड सौरभ जॉली जी। सो सौरभ जी, अब लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप आज के यूथ को, आज की जनरेशन को जो म्यूजिक में अपना करियर देखते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: मेरा तो यही हिदायत रहेगी कि अपने गाने जरूर बनाओ, अपनी मार्केट वैल्यू, अपनी फेस वैल्यू बहुत जरूरी है
0: जी।
1: अपने गाने बनाएंगे तो आप जाने जाएंगे लोगों में, तभी जाके वो कहते हैं ना कि अब स्टेज परफॉर्मेंसेस तक कैसे पहुंचना है, तो वो यही जरिया है। आप अपने गाने निकालेंगे, अगर आपका कोई भी गाना क्लिक हो गया ऑडियंस को, तो तभी आपको ओकेजन्स पर बुलाया जाएगा, इवेंट्स पर बुलाया जाएगा, चाहे वो वेडिंग हो, चाहे वो फेस्टिवल्स हो, चाहे वो कोई बर्थडे पार्टी हो, चाहे वो किसी भी तरीके का इवेंट हो। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर गाना हिट करने की देर है
0: जी।
1: अगर आपके दिमाग में, अगर आप गाड़ी में सुनते सुनते जा रहे हैं कि यार ये यार सिंगर बड़ा अच्छा है, यार ये क्या गाना गाया यार, आप सोचिए कि 2 घंटे की परफॉर्मेंस और वो सिर्फ एक गाना सुनने के लिए बुला रहे हैं आपको, सोचो।
0: बिल्कुल।
1: और सिर्फ आप उस एक गाने से हिट हो गए हो, बाकी गाने आप चाहे कुछ और भी गाओ
0: जी,
1: बट सिर्फ एक गाना आपको सुनने के लिए बुला रहे हो तो उसके आपको कितने, मतलब लोगों को पता भी है नहीं भी पता, लाखों रुपए मिल जाता है, करोड़ों रुपया भी मिल जाता है उस चीज के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। बस यही हिदायत है कि अपना म्यूजिक जरूर करें
0: जी,
1: वो बहुत जरूरी है।
0: मतलब अपनी पहचान, कवर्स वगैरह के साथ अपना भी,
1: अपना अपनी पहचान बनानी बहुत जरूरी है मैम
0: जी।
1: मेरे को तो कोई, जैसे कॉलेज में ये बोलते होते थे कि तू ना इसके तरीके का गाता है, तू ऐसा गाता है
0: जी
1: यार, मतलब मेरे को डिफाइन करते थे किसी सिंगर से,
0: कि किसी से मैच कर।
1: अब लोगों को तो इतने बड़े बड़े नाम सुन के किसी सिंगर को तो लगेगा यार क्या बात है, मुझे कंपेयर कर रहा है वैसे
0: जी।
1: बट मेरे को पर्सनली बहुत बुरा फील होता था,
0: बिल्कुल
1: मेरी उल्टी अप्रोच थी, क्योंकि मैं किसी और के नाम से नहीं जानना मतलब पसंद करूंगा अपने आप को। मैं चाहूंगा कि मेरा खुद का नाम बने, मेरी खुद की पहचान बने, जो मैं हूं मैं वो बाहर से भी वैसे दिखूं जैसा मैं अंदर से हूं।
0: बिल्कुल।
1: That's all.
0: नहीं, बहुत अच्छी सीख है आपने हमें दी और बहुत अच्छी बात कही कि अपनी पहचान बनानी बहुत जरूरी है, और इवन हर फील्ड में ये चीज लाजमी है। सो जॉली जी, अब लास्ट में आप कौन सा गाना हमें सुनाएंगे, हमारे लिसनर्स को सुनाएंगे?
1: आजकल मैं लाइव में मैं करता हूँ तो बड़ा पसंद करते हैं लोग, मैं वो गाना चाहूंगा, बांध साहब का गाना है वो
0: जी। जरूर।
1: ਘੱਗਰੇ ਵੀ ਗਏ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਕਰੂ ਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਘੱਗਰੇ ਵੀ ਗਏ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਕਰੂ ਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਦੁਪੱਟੇ ਡੋਰੇ ਜਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕੁੰਡ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਕੁੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਪੈ ਵੱਲੇ ਤੀ ਬਾਣੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣੂ।

0: अल्लाह बिस्मिल्ला तेरी जुगनी, हाय तारे आवे तेरी जुगनी, साईं बोला वाले आवे जुगनी, अल्लाह बिस्मिल्ला तेरी जुगनी हो।
1: वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग सौरभ, मजा आ गया आपका ये गाना सुन के, बिल्कुल मतलब मन खुश हो गया।
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू।
1: सो थैंक यू सो मच सौरभ जौली जी, आपने हमारे लिए अपना इतना कीमती समय निकाला और आप आज हमारे रेडियो शो में आए, क्रिएटिव मंच में आके आपने
2: करने के लिए पहली बात
1: जी जी जी क्रिएटिव मंच में आपने आके जो ये चार चांद लगाए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो लिसनर्स, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी हमारे इसी शो क्रिएटिव मंच में। मुझे यानी गौरी मल्होत्रा को दीजिए इजाजत और तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइट।

0: सकें कि डोमेन को क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उस डोमेन की स्किल्स आप कैसे अर्न कर सकते हैं, चीजें आप कैसे सीख सकते हैं, पैसे आप कैसे कमा सकते हैं, क्या करियर है। तो इसलिए इशू अपने आप में बहुत खास हो जाता है। इट्स लाइक अ काउंसलिंग सेशन फॉर यू। टुडे वी हैव मिस्टर कशिश धमीजा। कशिश इज अ फिटनेस कोच। कशिश की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने अपनी पीएचडी छोड़ी थी और पीएचडी छोड़ के इन्हें लगा कि फिटनेस परस्यू करनी चाहिए। उस एक कॉन्ट्रास्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी हाई प्रोफाइल लाइफ से, इतनी हाई प्रोफाइल जहां पर एकेडमिक्स इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है, वहां से लेकर के एक बिल्कुल ही अलग कन्वेंशनल मेथड की तरफ ये आए हैं। विल टॉक अबाउट इट। सो देयर इज सो मच टू इट जो आज हम जान रहे होंगे कशिश से। आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा, बट ये सारी बातें होंगी इस शो में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस। नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम कशिश। हाय कशिश, वेलकम टू आवर शो।
1: हाय, वेलकम सागर।
0: कशिश, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा हमेशा होता है, अपने बारे में, अपने शब्दों में बताइए, आप कौन हैं, क्या करते हैं, क्या डोमेन है आपका?
1: ओके, सो बेसिकली राइट फ्रॉम स्टार्ट आई स्टार्टेड माय करियर लाइक विद द डिड माय मास्टर्स आल्सो फ्रॉम आईआईटी एंड देयर आई वाज अ स्कॉलर एंड अ गोल्ड मेडलिस्ट एज वेल। देन आई स्टार्टेड माय पीएचडी। But during this course, my inclination towards the fitness was there. So at that time, the interest got so high that I wanted to shift my main profession from an engineering background to a fitness field. So then I started learning about the fitness things and I started doing a lot of courses. And then after like 2 years of doing the PhD, I made a decide and I decided to do and shift into the full time into the fitness game. And from past 6 years, I am working as a fitness coach, online fitness coach in 50 plus countries, where I have taught and trained more than like 2000 people. So this is a rough background of me.
0: It's so amazing. But if I may ask you, what triggered your curiosity? Like, kya hua aisa ki fitness mein aapko ye laga ki this is something I need to do full time?
1: So see, I was always into sports and something when I did lot of sports activity, I feel very good and energetic. And then I got introduced to the gym and the bodybuilding. So I started looking at the physique of the good people around and I got inspired that one day I should also look like this. From there, my journey in going to the gym started. But then I started liking going to the gym and when I saw the changes happening in my body, so there the inclination increases. But then during the course, I realized one thing, I might be through the engineering background, I might be earning a lot of money, but technically that money does not hold a lot of respect, as in my work is only valued till the point I am there. But compared to this fitness field, just like when a person is, जैसे कोई person अगर कोई बीमार है, तो वो जब अगर मान लो एक डॉक्टर के पास जाता है एंड डॉक्टर उसको उस चीज से क्योर करके वहां से निकाल के ले आता है उस वाली क्रिटिकल सिचुएशन से, देन वी आर ऑलवेज थैंकफुल टू अ डॉक्टर। एंड जस्ट लाइक दैट डॉक्टर्स एंड पॉइंट पे क्योर करते हैं, अ फिटनेस कोच इज समवन हु प्रिवेंट्स the injuries or the issues or health related concern to build up to that extent ke doctor ke paas tak ki need pade. So wahan se mera thoda inclination aaya. Then ek aur cheez jo mere ko realize hui ki if I become a fitness coach and I help people become independent and become strong and fit in their life, then the money will also come, but with a lot of hidden blessings. So that was the core objective to shifting to this field, where the objective was not just to earn money, but rather create an impact in people's life and add some values in their life. That was the core objective.
0: All right. So amazing. Okay. When you say that I thought of starting my career as a fitness coach, I thought of shifting my entire thing to fitness. Okay, there are so many things, so many layers to this part. Like already market itni zyada cluttered hai, bahut sare fitness coaches aap dekhte hain. Aapko ye nahi laga ki main agar jaunga to kahin bheed mein rul ke na reh jaun? First thing. Second thing, what you

0: ज्वाला, समंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
1: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
0: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
1: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
0: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
1: तो फिर एक वादा करो।
0: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
1: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
0: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: वेलकम बैक मैं आरजे सागर शो चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो वन नंबर 7.8 एफएम के साथ। हमारे साथ हैं मिस्टर कशिश डमी जो है। कशिश से हमने अभी जाना है कि कैसे इनकी फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई एंड व्हाट ट्रिगर्ड, क्या होता है एक इंसान के अंदर जो उसका पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज करता है। कशिश जब मैं बात करना चाहूंगा दूसरे वर्टिकल की, विच इज की अगर बहुत सारे लोग आपको इस टाइम सुन रहे हैं, अगर उनमें से कुछ लोग फिटनेस कोच बनना चाहते हैं टू गेट स्टार्टेड, मैन जस्ट बिल्कुल बेसिक से बताओ कि क्या स्किल्स चाहिए होते हैं, कैसे गेम करने होते हैं, किसको बनना चाहिए फिटनेस कोच, क्या माइंडसेट होता है।
1: सी फर्स्ट थिंग, पहले बात करते किसको बनना चाहिए। अगर इफ यू आर जस्ट कमिंग इन दिस फील्ड फॉर द मनी, देन आई थिंक यू नीड टू टेक अ पॉज एंड रीथिंक, बिकॉज दिस फील्ड इज समथिंग, जैसे एक डॉक्टर की बहुत बड़ी वैल्यू है कि वो एक पेशेंट को मौत के मुंह से बाहर निकाल के लेके आ सकता है। इन अ सिमिलर वे द फिटनेस कोच होल्ड्स अ वेरी बिगर वैल्यू कि वो एक पर्सन को जब वो रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा थोड़ा उनकी लाइफ में हेल्थ कंसर्न बिल्डअप हो रहे होते हैं तो उस चीज के लिए उनको गाइड करना कि वो वहां पे उस लेवल तक कभी पहुंचे ही नहीं कि जहां पे हमें डॉक्टर के लिए बोलना पड़े प्लीज बचा लीजिए। तो वो वाली एक वी होल्ड अ वेरी बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फिटनेस कोच एंड फॉर दैट इट्स मोर देन द मनी, इट्स अबाउट द केयर एंड अंडरस्टैंडिंग द पेन एंड द सफरिंग ऑफ योर मेंबर्स टू हूम यू आर गिविंग द ट्रेनिंग। दैट इज अ वेरी, you have to basically what I am saying, trying to say is you have to be empathetic and will eagerness, you should have a eagerness to help your members become their best version in terms of their fitness journey. So that is one thing. जिसको इस चीज से प्यार है उसके लिए ये वाली जर्नी बहुत अच्छी है। I hope I have answered your first question. Shall I answer the next?
0: Yes, yes.
1: So the next step what you asked is what are the core skill set? तो कोर स्किल सेट विद, जैसे कि मैंने पहले समझाया, सबसे पहला है अगर आपको किसी को कुछ चीज सिखानी है तो मतलब पहले आपको खुद भी सीखना है, तो पहले जिम के रिलेटेड जितनी भी नॉलेज हमें गेन करनी है इन टर्म्स ऑफ हाउ टू डू द एक्सरसाइज, उसकी राइट टेक्निक्स फॉर्म्स, उसकी बायोमैकेनिक्स क्या है, किसके लिए कौन सी एक्सरसाइज रिकमेंडेड होती है कौन सी नहीं होगी, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग ऑल अबाउट एक्सरसाइजेस, दैट इज फर्स्ट। उसके लिए you can do a proper certification. Then next thing is after the exercise what important step is the nutrition. So aap ek proper ek nutrition related sub course kare jisse ki aapko ek knowledge mile about what are calories, what are protein, carbs, fats, kiske liye kitne gram carbs of hame chahiye day to day life mein। अगर एक बंदा बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव है उसको कितना प्रोटीन देना है, अगर एक बहुत बंदा सेडेंटरी है उसको कितना प्रोटीन देना है। देन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंडियन डाइट कल्चर कि इंडियन डाइट में व्हाट ऑल आर शॉर्टकमिंग्स, कि लोगों की डाइट में क्या चीज की कमी है। एंड देन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द माइक्रो डिफिशियंसीज, जैसे कि जो हमने पहले भी बात करी कि रिपोर्ट्स को पढ़ना आना चाहिए, तो ये भी एक प्रॉपर एक स्किल है कि रिपोर्ट्स, आप मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ के बेसिक लेवल पे आप उनकी डिफिशियंसीज को डिटेक्ट कर सकें कि उनका फैटी लीवर ट्रिगर हो रहा है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है या उनका ग्लूकोज लेवल है, तो ये सारी रिपोर्ट्स रीडिंग करके ही आप उनके साथ उनकी चीजों को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग इज लास्ट एंड द फाइनल थिंग जो आप इस, ये दिस आर द स्टार्टिंग स्किल्स है, लास्ट इज बी एम्पैथेटिक एंड यू शुड बी अ गुड काउंसलर एंड अ मोटिवेशन, बिकॉज इन टूडेज वर्ल्ड एवरी वन अराउंड अस नोज वॉट इज गुड एंड वॉट इज बैड फॉर आर हेल्थ, बट येट पीपल आर नॉट एबल टू बी कंसिस्टेंट। वाई? बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ लाइफ में जो उनकी स्ट्रेस चल रहा है आज के टाइम में, जो स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट है, so people all they need is someone who can keep them accountable and someone who can listen to their problem and then find a solution around that. So be empathetic and a good counselor. So these are, I think, these are the four skill set from which you can start your fitness journey, and then obviously further you can upgrade your knowledge in depth of these further topics.
0: There is a big misconception in the market, someone who has just made a good physique, just made a good body, okay, somehow he made it, he thinks I can be a fitness coach. Please also debunk this thing.
1: Yes, this is the one of the worst thing we आर एक्सपीरियंसिंग नॉट जस्ट इन इंडिया अराउंड द वर्ल्ड. बिकॉज इन एनी अदर फील्ड यू विल सी यू कैनॉट क्लेम योर सेल्फ अ डॉक्टर अ लॉयर और अ इंजीनियर विदाउट प्रॉपर नॉलेज. बिकॉज इफ यू ट्राई टू डू इट यू माइट बी एंड अप हैविंग अ लीगल एक्शन. बट वेन इट कम्स टू फिटनेस जर्नी एवरीवन हु हैज अ गुड फिजीक ही कैन क्लेम himself as a fitness coach without any authority because no one is checking on them. So it's very important. Isko sahi karne ka ikalauta tarika hai that the general public has to become educated by themselves. Jaise ki mera kehne ka matlab kya hai, like we have all done a certain level of schooling. Ke matlab humne ek similar schooling level kara hai ki agar hum maths mein bol rahe hain 2 plus 2 4 hi hoga. And everyone jisne ye schooling understand kari hai to wo 2 plus 2 4 hi bolega irrespective wo kisi bhi region se aaye, kisi bhi culture se aaye, kisi bhi geographical condition se aaye. That means education was same. And everyone who did education was being taught this way. Just like in that way, jab tak fitness mein general public will not become aware of the basic fundamentals of the fitness, ke fitness ki basic fundamentals kya hain, tab tak ye cheez kabhi khatam nahi ho sakti ki jo log self-proclaimed coaches hain, wo aapko fool, general public ko fool karte rahenge. So that means, not just the fitness coach, सबसे पहले द कोर अथॉरिटी लाइज विद द जनरल पब्लिक टू बिकम बेसिक लेवल पे अपनी फिटनेस एजुकेशन को क्लियर करना. एंड फॉर दैट यू हैव अ लॉट ऑफ एंट्री लेवल फिटनेस कोर्सेज जहां पे कि जिनको ऑब्जेक्टिव आपको फिटनेस कोच में की तरह एस्टैब्लिश नहीं करना है बट राइट जैसे आप स्कूल में ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल ये सब मतलब फंडामेंटल सीखने गए थे ऐसे ही फंडामेंटल्स ऑफ फिटनेस को आप वहां पे सीख सकते हैं जनरल पब्लिक सो दैट कोई भी उन्हें फूल करना जाए देन दे माइट नो कि ये गलत बता रहे हैं. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस कल्चर विल शिफ्ट एंड ओनली द राइट एजुकेटेड कोचेस विल हैव अ वैल्यू इन द मार्केट एंड देन दिस फिटनेस इंडस्ट्री विल बिकम अ लिटिल बेटर.
0: अरे दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक जितनी हमने बात करी है जितनी चीजें हमने समझने की कोशिश करी आप लोग समझ पाएंगे क्योंकि पैसे यहाँ पर बहुत सिंपल शब्दों के साथ हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं एग्जैक्टली कैसे ये इंडस्ट्री ड्राइव होती है कैसे चीजें काम करती है. ओके एंड एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये भी अभी क्लियर हुआ है कि आपकी अगर बॉडी अच्छी बन गई तो डजंट मीन आपके पास वो स्किल्स आ गए. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ गुड प्लेयर एंड अ गुड कैप्टन गुड कोच. सो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड ऑलवेज कि अगर आपको फिटनेस कोच बनना है देयर इज नो हार्म टू दैट पार्ट बट यू हैव टू गेट few skills जो चाहिए होंगे so that कि आप आगे जाकर किसी अपने member को या अपने mentee को नुकसान ना पहुंचाए उसकी life में कुछ value add करें. Now on this note लेंगे एक musical break उसके बाद शाम में आगे बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे सबके favorite topic की which is पैसा. क्या होता है पैसा कैसे आता है यहाँ पर बात करेंगे लेकिन कहीं जाइएगा मैं जुड़े रहिए हमारे साथ. मैं हूँ आरजे सागर शो चल रहा है आप लोगों के साथ 107.8 FM के साथ.

0: वेल आई एम होपिंग आपको मजा तो आ रहा होगा। फिलहाल इसी के साथ अपने शो को हम एक और बार आगे लेकर के चलेंगे। ये लास्ट वर्टिकल है हमारे शो का, यहाँ पर हम लोग करियर में जो पैसा होता है उसकी बात करेंगे। कशिश, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द मॉनेटरी थिंग्स ऑफ दिस प्रोफेशन, कि यहाँ पर पैसा कैसे होता है, कितना होता है। आई मीन इट्स लाइक अ बबल फॉर अस, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, थोड़ा सा बताइए।
1: सी, अगर इफ यू एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज अ गुड कोच ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, देन आई थिंक ये वाली फील्ड ऐसी है कि यू कैन रीच स्काई एज वेल। बिकॉज इफ यू सी सेलिब्रिटी ट्रेनर्स, अगर आप उनको ही देखते हो, सेलिब्रिटी ट्रेनर्स, सेलिब्रिटी कोचेस को, फॉर इवन अ वन सिंगल सेशन दे आर चार्जिंग इवन अ लाख। ठीक है, सो बट वो एक एक्सट्रीम एंड लेवल हो गया। एंड लेवल को शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत होगी आपकी लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन करने से, जो कि आपके जैसे आपने फिटनेस एजुकेशन ले ली, देन यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग योर सोशल मीडिया इम्पैक्ट। सोशल मीडिया आपने अपनी प्रेजेंस बनाना शुरू करा एंड अपने नियर बाय फ्रेंड्स कम्युनिटीज में आपने स्टार्टिंग में जैसे उनको उनके साथ ट्रेन उनको ट्रेन करना शुरू करा थ्रू देयर ट्रांसफॉर्मेशन। व्हेन यू विल फ्लोट दैट ऑनलाइन एंड ऑल, अपनी आप मार्केटिंग करेंगे विद दैट एंड उन जो वो लोगों को रिकमेंड करेंगे, आपका धीरे धीरे बेस बन जाएगा टूवर्ड्स द के लोगों को आप एस्टैब्लिश कर रहे हैं एंड यू आर केपेबल इनफ कि आप उनको ट्रांसफॉर्म करने के काबिल हैं। तो वहां से आपका जो ट्रस्ट फैक्टर बनेगा, देन यू कैन स्टार्ट चार्जिंग देट। देन उसके बाद धीरे धीरे यू कैन कंटिन्यू वर्किंग विद लॉट ऑफ डिफरेंट क्लाइंट्स एंड एज यू बिल्ड अप द एक्सपीरियंस यू कैन ऑब्वियसली इंक्रीज एंड एड अप मोर सर्विसेज इन टू योर गेम। लाइक अगर आप एक अच्छे एजुकेटर भी हैं, मतलब यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड यू आर अ गुड टीचर लेवल स्किल है आप में, देन वॉट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट योर ओन फिटनेस कोर्स। के जैसे आपको अपनी फिटनेस जर्नी में ये एक्सपीरियंस हुआ कि बहुत सारे कोर्सेज के बीच में कौन सा अच्छा कोर्स को फाइंड करने की एक जो हसल है, अगर आपकी अथॉरिटी एज अ कोच बिल्डअप हो जाती है, सो यू कैन एस्टैब्लिश योर ओन कोर्स जहां पे की जो आपको प्रॉब्लम फेस हुई थी आप उनको बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में जनरल पब्लिक को अवेयरनेस के लिए या जिन लोगों को एज अ कोच बनना है उनके लिए आप एक कोच कोर्सेज को रन कर सकते हैं। देन यू कैन दूसरी जो एक फील्ड है इस वाली फील्ड में फिटनेस वाली में एक सप्लीमेंटेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो जो वो सप्लीमेंटेशन का गेम है, अब बहुत सारे मार्केट में सप्लीमेंटेशन है बट हर सप्लीमेंट की हर बंदे को नीड नहीं है। सो आप एक दूसरा जो डोमेन हो सकता है कि यू कैन ओपन अप अ सप्लीमेंट स्टोर, ठीक है, जहां पे यू आर सेलिंग ओनली द राइट सप्लीमेंटेशन जो कि एक्चुअल में रिक्वायर्ड है। देन नेक्स्ट कैन बी ओपनिंग अ जिम, जहां पे आप अपने जिम का कल्चर आप डिसाइड कर सकते हो कि किस टाइप से आप लोगों को वहां पे एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हो या एनवायरमेंट देना चाहते हो, सो वो एक दूसरा पाथवे हो सकता है। तो देर आर एन नंबर ऑफ डोमेन्स और ब्रांचेस विच कैन ओपन अप इन योर फिटनेस फील्ड। नाउ एवरीवन, जिसका जिसका जैसे जैसे इंटरेस्ट इंक्लिनेशन बढ़ता जाएगा कि जिसको कोई मैनेजमेंट साइड में जाना है देन ही कैन ओपन अप अ जिम एंड ही कैन रन द मैनेजमेंट डोमेन, या जिसको कोर टीचिंग के स्किल में रहना है सो वो टीचिंग के लिए कोर्सेज के डोमेन में घुस सकता है। अगर किसी को जस्ट ट्रेनिंग कराने से मजा आता है देन ही कैन टेक इंडिविजुअल पर्सनल वन ऑन वन ट्रेनिंग और जूम ग्रुप क्लासेस ट्रेनिंग और another he can find another creative ways of giving training online, offline, personal. So there are many branches which can open up.
0: So basically it's up to you how you want to expand it and how you can encash it. So totally aapke haath mein cheeze aa jati hai. Okay, how important is it to upgrade yourself? How often a fitness coach has to upgrade himself or herself?
1: See, every down the line in next every 1 or 2 years, lot of new researches comes up related to supplementation or some drug. As aaj ke time mein jo aap buzzword dekh rahe ho, Ozempic, Mounjaro. So that is something jo weight loss drug ke liye promote ho raha hai. But uska core objective weight loss karna nahi hai. That is for a different purpose. But log usko uske ek benefit ke jo unka side effect hai, उसके लिए वेट लॉस के लिए बहुत मासेस को प्रमोट कर रहे हैं। सो ये अपने आप को, अगर आप एक एज अ फिटनेस कोच अपने आप को डे टू डे जो भी मार्केट में शिफ्ट हो रहा है या कोई नई ट्रेंड आ रहा है या आप कोई भी आपकी नई रिसर्च आ रही है, अगर आप उस चीज से अपडेटेड नहीं रहते हैं, सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल गो अवे फ्रॉम दिस गेम एंड यू माइट लूज द गेम बिकॉज यू आर नॉट कीपिंग योर सेल्फ अपडेटेड। एंड इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ऐसी बेनिफिशियल चीज भी आती हैं कि जैसे कि इक्विपमेंट इंडस्ट्री को ही आप देखेंगे, तो पहले के जो इक्विपमेंट से आज से 20 साल पहले के जिम की इंडस्ट्री के इक्विपमेंट्स एंड आज के इक्विपमेंट्स जो है, सो द इक्विपमेंट्स हैव इवॉल्व ड्रास्टिकली। पहले एक जनरल इक्विपमेंट बनाते थे एक जनरल आसपास के स्टोर्स, बट आज के टाइम में बायोमैकेनिक्स बैग इक्विपमेंट की पूरी प्रॉपर साइंस, मशीनरी, मैकेनिक्स सब कुछ को डील करते हुए यू आर फाइंडिंग अ वेरी लॉट ऑफ गुड इक्विपमेंट्स ब्रांड कमिंग अप। सो उनके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होना, फिर साथ में सिंस जैसा हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है आज के में, हम बहुत ओवर द हर 2-3 साल में एक नई बीमारी को देख रहे हैं, तो उस चीज के बारे में कैसे एज अ फिटनेस कोच हमको अपने मेंबर्स को इसी को ही यूज करके आप अपने मेंबर्स को बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस देने दे सकते हो। एंड दैट्स द ओनली रोल एज अ फिटनेस कोच, सो एज टू टेक केयर ऑफ वट एवर चैलेंजेस दे माइट फेस, बी अवेयर एंड देन यू शुड बी गाइडिंग देम फॉर फिटनेस कोच।
0: अभी कहीं से आई एम डन विद माय क्वेश्चंस, कोई भी चीज जो मैं ना पूछ पाया हूं और आप कहना चाहते हो प्लीज फील फ्री।
1: सो ओनली मैसेज आई वांट टू से इज के इन द फिटनेस फील्ड लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस एंड लॉट ऑफ सेल्फ डाउट्स आर देयर। बहुत सारे लोग, अगर आप 10 लोगों से बात करोगे तो किसी को लगता है एक्सरसाइज क्या ही करनी है, हम तो जी योगा जाते हैं, पैदल चलते हैं, बट टेक्निकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द कोर फंडामेंटल विच एवरी पर्सन शुड अंडरस्टैंड इज एज यू आर गेटिंग ओल्डर यू आर लूजिंग द प्रेशियस थिंग ऑफ योर बॉडी दैट इज द मसल एंड द ओनली

0: वे टू ट्रेन एंड कीप योर सेल्फ मोहताजी ना आए आने वाले, जैसे जैसे आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो, सो एज टू बी इंडिपेंडेंट, कि आप अपना रोजमर्रा का काम खुद से कर सको, आप किसी पे डिपेंड ना हो, अपने लव्ड वंस पे आप बोझ ना बनो। उस चीज को रोकने के लिए द ओनली वे इज टू मेक श्योर कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक प्रॉपर अपने मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं, सो दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मसल लॉस होना चाहती है उसको बचा के रख सके, सो दैट यू कैन स्टे फिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड फॉर दैट अगर आपको एक्सरसाइज का स्किल आता है बहुत अच्छा है, आप कंटिन्यू करें, एक अच्छा न्यूट्रिशन लें, अच्छी डाइट लें, एक अच्छा टाइमली सोएं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। अगर नहीं आता है देन यू शुड नॉट स्टार्ट रैंडमली, गेट योर सेल्फ अ गुड कोच, पहले उनसे एक बेसिक स्किल को सीख लीजिए। वंस यू फील लाइक कि यू आर इंडिपेंडेंट इन दैट स्किल, देन यू कैन कंटिन्यू ऑन योर ओन इन दैट फिटनेस जर्नी, एंड उसको बस मेंटेन करें, सो दैट जो आज हम इंडिया में जो कंडीशन देख रहे हैं या अक्रॉस द ग्लोब देख रहे हैं, ओबेसिटी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, डायबिटीज, हेल्थ कंसर्न, इवन छोटे छोटे 15 15 20 20 साल के बच्चों को आप हार्ट अटैक की सिचुएशन जो समझ रहे हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आने वाले 10 साल में या 15 साल में बेटर होने का इकलौता तरीका है वेन पीपल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ देयर हेल्थ ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो दैट इज द कोर मैसेज आई वॉन्ट टू से, अपना ध्यान रखो सो दैट आपके लव्ड वन के साथ आप एक कुछ ज्यादा समय बिता सको एंड यू कैन इंजॉय वॉट एवर, आप जो मेहनत करके यू आर अर्निंग द मनी, आप उस मनी को यूज कर सको, उसके बेनिफिट ले सको, ना कि जस्ट वो एक बैंक बैलेंस में पैसा ऐड हो गया बट वो एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ नहीं आना चाहिए। हेल्थ इक्वल टू वेल्थ, ना कि हेल्थ इज मोर बेटर देन हेल्थ या वेल्थ इज बेटर देन हेल्थ, ये नहीं होना चाहिए। दोनों एस्पेक्ट पे काम करना हमने, हेल्थ पे भी वेल्थ पे भी। सो दैट इज द कोर मैसेज।
1: सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुली यू हैव पोर्ट्रेट दिस एवरीथिंग। थैंक यू सो मच कशिश फॉर जॉइनिंग अस, इट मींस अ लॉट टू अस, थैंक यू सो मच मैन। ऑलराइट दोस्तों, वक्त है अपने शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का। कशिश से आज हमने बात करी, ढेर सारी चीजें हमने जानी, हमने जाना कि फिटनेस कोच होता क्या है, कैसे बना जाता है, पैसा कैसे कमाया जाता है, और फंडामेंटल्स की हमने यहाँ पर बात करी। आई होप आपके बेसिक्स आज क्लियर हो गए होंगे शो से। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू थिंक ऑफ बिकमिंग अ फिटनेस कोच, थिंक इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ योर बॉडी। ओके, दैट्स अ बोनस पॉइंट, बट अगेन इट हैपेंस इवेंचुअली विद द स्किल्स। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा। फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजी सागर साइनिंग आउट।

मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ। किसान भाइयों, आज आपसे मैं पालक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले बात आती है मिट्टी की तैयारी की। देखिए, पालक को मिट्टी की कई किस्मों जो अच्छे जल निकास वाली होती हैं उनमें उगाया जा सकता है, पर यह रेतली चिकनी और जलोढ़ मिट्टी में बढ़िया परिणाम देती हैं। तेजाबी और जल जमाव वाली मिट्टी में पालक की खेती करने से बचाव करें, क्योंकि ये इसके लिए अच्छा नहीं होता। इसके लिए मिट्टी का पीएच 6 से 7 होना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात आती है किस्मों की, तो किस्मों के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। पंजाब ग्रीन के नाम से एक किस्म है। इसके पत्ते अर्ध सीधे और गहरे चमकीले रंग के होते हैं। बिजाई के बाद ये 30 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 125 क्विंटल प्रति एकड़ होती है और इसमें ऑक्सेलिक एसिड की मात्रा कम होती है। दूसरी किस्म की बात करें तो उसको जाना जाता है पंजाब सेलेक्शन के नाम से। इसके जो पत्ते होते हैं वो हल्के हरे रंग के होते हैं, पतले भी होते हैं और लंबे भी होते हैं, साथ ही साथ संकीर्ण होते हैं। इसके पत्ते स्वाद में हल्के खट्टे होते हैं, पर इस किस्म का तना जामुनी रंग का होता है। इसकी औसतन पैदावार 125 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। तो ये रही बात किस्मों की, अब बात आती है जमीन की तैयारी की। तो जमीन की तैयारी कैसे की जाए और इसकी बिजाई को कैसे किया जाए, इन दोनों बातों के बारे में भी आपसे बात करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते।
1: किसान भाइयों, पालक की खेती करने के लिए ये जो जमीन की तैयारी है ना, जमीन को पहले भुरभुरा कर लेना चाहिए। जमीन को भुरभुरा करने के लिए 3 से 5 बार जुताई करें। जुताई के बाद सुहागे से मिट्टी को समतल कर देना चाहिए। बेड तैयार करें और सिंचाई करें। बिजाई की जब बात आती है तो बिजाई का एक समय है। पालक की बिजाई लगभग 1 साल में की जा सकती है, पर अगस्त से दिसंबर का समय बिजाई के लिए उचित माना जाता है। बिजाई के लिए पंक्ति से पंक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हो और पौधे से पौधे का फासला 5 सेंटीमीटर रखें। बीज की गहराई की अगर बात करें तो बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में ही बोएं। अब बात आती है कि भाई बिजाई का ढंग कैसा होना चाहिए, तो किसान भाइयों, बिजाई पंक्ति या बुरकाव द्वारा की जा सकती है। अब एक और प्रश्न आता है कि बीज की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए, या फिर बीज में कोई रोग लग गया है तो उसका उपचार कैसे करें। इन सारे प्रश्नों के उत्तर देगा आपका दोस्त फहीम। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। किसान भाइयों, आज बात हो रही है पालक के बारे में, लेकिन जब बात आती है बीज की, यानी कि बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एकड़ खेत के लिए लगभग 4 से 6 किलो बीजों की आवश्यकता होती है। बीज के उपचार की अगर बात करें तो अंकुरण की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को 12 से 24 घंटे तक पानी में भिगो कर रखें। अब बात आती है खाद की, ये मैं आपको किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यूरिया है तो यूरिया 75, SSP 75। इसके बाद आती है बात नाइट्रोजन कितना होना चाहिए, नाइट्रोजन 35 और फॉस्फोरस 12। इसके अलावा फसल के बढ़िया विकास और बढ़िया पैदावार के लिए अच्छी तरह से गला हुआ गाय का गोबर 200 क्विंटल और नाइट्रोजन 32 किलो यानी 70 किलो यूरिया, फास्फोरस 16 किलो यानी सुपर फास्फेट 100 किलो प्रति एकड़ में डालें। गले हुए गाय के गोबर और फास्फोरस की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बिजाई से पहले डालें। बाकी की नाइट्रोजन को 2 बराबर भागों में प्रत्येक कटाई के समय डालें। खाद डालने के बाद हल्की हल्की सिंचाई जरूर कर दें। अब बात आती है खरपतवार की, इससे कैसे नियंत्रण किया जाए। तो किसान भाइयों, नदियों को 2 से 3 गुणाई की जरूरत होती है। गुणाई से मिट्टी को हवा मिलती है। रासायनिक तरीके से नदियों की रोकथाम के लिए पायराजोन 1 से 1.12 किलो प्रति एकड़ में प्रयोग करें। बाद में नदी नाशक के उपयोग से बचें। तो ये बात हो गई खरपतवार के बारे में, लेकिन दोस्तों आगे आपसे बात करूंगा सिंचाई की। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की।
1: आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं सिंचाई के बारे में। देखिए, बीजों के बढ़िया अंकुरण और विकास के लिए मिट्टी में नमी का होना बहुत आवश्यक है। अगर मिट्टी में नमी अच्छी तरह से ना हो तो बिजाई से पहले सिंचाई करें या फिर बिजाई के बाद पहली सिंचाई जरूर करें। गर्मी के महीने में 4 से 6 दिनों के फासले पर सिंचाई करें, जबकि सर्दियों में 10 से 12 दिनों के फासले पर सिंचाई करनी चाहिए। लेकिन याद रखें, ज़्यादा सिंचाई करने से परहेज करें। ध्यान रखें कि पत्तों के ऊपर पानी ना रहे, क्योंकि इससे बीमारी का खतरा और गुणवत्ता में कमी आ जाती है। ड्रिप सिंचाई पालक की खेती के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। अब फिर एक सवाल आता है कि पौधे की देखभाल कैसे की जाए। हाँ, बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हानिकारक कीट होते हैं जो फसलों को बर्बाद कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक ऐसे कीट के बारे में जिसका नाम है चेपा। इसका हमला दिखाई दे तो मेलाथियोन 50 EC 350 ml को 80 से 100 लीटर पानी में मिलाकर क्या करना चाहिए? स्प्रे करना चाहिए। मेलाथियोन की स्प्रे के बाद तुरंत कटाई बिल्कुल ना करें, बल्कि स्प्रे के 7 दिनों के बाद कटाई करनी चाहिए। लेकिन ये हानिकारक जो कीट है ना, इनके अलावा कुछ बीमारियां भी होती हैं, कुछ रोग भी होते हैं। उन रोगों को कैसे रोका जाए, उनकी रोकथाम कैसे की जाए, इसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की।
1: किसान भाइयों, मैंने आपसे बात की थी कीटों के बारे में कि वो कीट आपकी फसल को किस तरह से बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन उसकी रोकथाम कैसे की जाती है वो भी मैंने आपको बताया। तो आइए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बीमारी के बारे में जो कि हमारे पालक के पत्तों पर लग जाती है। इसकी रोकथाम कैसे की जाए वो भी मैं आपको बताऊँगा। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि जो हमारे पालक के पत्ते हैं, पत्तों पर छोटे गोलाकार धब्बे दिखाई देते हैं। बीच से स्लेटी और लाल रंग के धब्बे पत्तों के किनारों पर दिखाई देते हैं। आपकी फसल में अगर इसका हमला दिखाई दे तो कार्बेंडाजिम 400 ग्राम या इंडोफिल M45 400 ग्राम को 150 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे कर देना चाहिए। अगर जरूरत हो तो दूसरा स्प्रे 15 दिनों के अंतराल पर करें। अब बात आती है फसल की कटाई की। देखिए साथियों, फसल बिजाई के 25 से 30 दिनों के बाद पहली कटाई के लिए तैयार हो जाती है। कटाई 20 से 25 दिनों के फासले पर लगातार की जानी चाहिए, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, कटाई के लिए तीखे चाकू या फिर दराती का इस्तेमाल करें। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं अन्नदाता।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है। किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: किसान भाइयों, बहुत सारी बातें मैंने आपसे कर ली हैं पालक की फसल के बारे में। एक बात आपके साथ और साझा करना चाहता हूं और वो है बीज उत्पादन। बीज के उत्पादन के लिए 50 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर फासले का प्रयोग करें। पालक की खेती के लिए लगभग 1000 मीटर का फासला होना चाहिए। प्रत्येक 5 पंक्तियों के बाद एक पंक्ति छोड़नी चाहिए जो कि खेत के परीक्षण के लिए जरूरी है। बीमार पौधों को हटा दें, पत्तों में विभिन्नता दिखाने वाले पौधों को भी हटा दें। जब बीज भूरे रंग के हो जाएं तब फसल की कटाई करें। कटाई के बाद पौधों को सूखने के लिए 1 सप्ताह के लिए खेत में ही रहने दें और अच्छी तरह से सूखने के बाद बीज लेने के लिए फसल की छटाई करें। अब इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे आज्ञा चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। और चलते चलते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, इन दिनों बात हो रही है रचनाकार मधु कांकरिया के बारे में। उनके बारे में पिछले एपिसोड में मैंने आपसे बहुत सारी बातें की थी। उनका कहना है कि हर एक देश का, समाज का अपना स्वतंत्र बोध होता है और युग बदलने के साथ साथ उसका बोध भी बदलता रहता है, जिसका रूप साहित्य में देखने को मिलता है। जिस तरह व्यक्ति और समाज एक दूसरे के परिपूरक हैं, ठीक उसी तरह साहित्य और युग बोध भी अनुपूरक हैं। एक के बिना अन्य की कल्पना असंभव है, ऐसा कहना है मधु कांकरिया का। लेकिन इनके बारे में आज के एपिसोड में और बहुत सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा। फिलहाल आवाज की दुनिया के दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, मधु कांकरिया का युगबोध सजग, सतर्क और स्पष्ट है। अपनी कहानियों में उन्होंने तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को भली भांति भांप कर यथार्थ वर्णन किया है। जो प्रवृत्तियां, परिस्थितियां, समस्याएं उन्हें एक बेहतर समाज के निर्माण में बाधक प्रतीत हुई हैं, उनका हल प्रस्तुत करने का यत्न भी एक शुद्ध साहित्यकार की भांति किया है। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण मधु कांकरिया की कहानियों में समाज का वास्तविक यथार्थ अंकित हुआ है, जहां कल्पना के अटने की ज्यादा गुंजाइश देखने को नहीं मिलती है। सूरज पालीवाल के मुताबिक मार्क्सवाद जीवन और जगत को देखने की स्वस्थ दृष्टि देता है, जिसका प्रभाव मधु कांकरिया के जीवन और रचना जगत में देखा जा सकता है। वो मार्क्सवादी नहीं है, लेकिन उसकी विरोधी भी नहीं है, इसलिए उनकी रचनाओं का आकाश विस्तृत है। घर परिवार की सीमाओं का जो बार बार अतिक्रमण होता है, उसके सूत्र इसी मार्क्सवाद के प्रभाव में देखे जा सकते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, मधु कांकरिया का रचना संसार बहुत विस्तृत है, जिसके कारण वो अपने समकालीन रचनाकारों जैसे मालती जोशी, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, राजी सेठ, अनामिका, उषा प्रियंवदा, सुधा अरोड़ा, नासिरा शर्मा और सूर्य बाला से अलग और विशिष्ट हैं। दोस्तों, मधु कांकरिया के व्यक्तित्व का खुला दर्शन उनके साहित्य में परिलक्षित होता है। वो ड्राइंग रूम में बैठकर लिखने वालों में से नहीं हैं। वो उन गलियों में जरूर भटकती हैं जहां उनके पात्र हैं। वो फॉर्मूला टाइप कहानी में विश्वास बिल्कुल नहीं करती। जीवन जैसा है उसको वैसा ही साहित्य में उतारने की कोशिश उनकी हमेशा रहती है। जीवन में जो स्त्री हार रही है उसे वीर बाला या झांसी की रानी बनाकर बहुत नहीं दिखाती हैं। यही उनकी लेखन की खासियत है जो और लेखकों से उनको अलग करती है। इनके बारे में बातों का सिलसिला जारी रहेगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है मधु कांकरिया के बारे में, उनके लेखन के बारे में। मधु कांकरिया की हर एक कहानी समकालीन दौर से इस प्रकार संबंधित है कि प्रत्येक पाठक खुद को उसमें जरूर पाता है। अगर स्त्री की बात करें तो 20वीं सदी के अंतिम दशक की लेखिकाओं ने स्त्री मुक्ति की समस्याओं को अपने अनुभवों, भोगी हुई जिंदगी की यातनाओं, मुक्ति की छटपटाहट और बेचैनी को वाणी प्रदान की है। आज की स्त्री अपने सामने उपस्थित चुनौतियों को स्वीकार करती है, सामंती परिवेश की जकड़न और रूढ़ मर्यादाओं को तोड़ती है, साथ में सकारात्मक रूप से अपने दृढ़ व्यक्तित्व को भी वाणी प्रदान करती है। मधु कांकरिया की कहानी, जिसका नाम है दाखिल, कहानी दाखिल में पति द्वारा प्रताड़ित स्त्री यानी सुकीर्ति के जीवन का जिक्र हुआ है। अब सुकीर्ति के बारे में किस तरह से जिक्र किया है मधु ने, आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, मैं आपसे जिक्र कर रहा था मधु कांकरिया की उस कहानी का जिसका शीर्षक है दाखिल। दाखिल में पति द्वारा प्रताड़ित स्त्री यानी सुकीर्ति के जीवन संघर्ष का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। सुकीर्ति के प्रति पति का व्यवहार कैसा था, ये छोटे से विक्रम यानी जो बेटा है उसके कहने से पता चलता है कि मैंने फेंके हैं ये चाकू यहाँ, मुझे डर था कहीं पापा गुस्से में ये चाकू ही तुम पर ना फेंक दें। उस दिन जो गरम गरम चाय किस तरह फेंकी थी पापा ने आपके ऊपर। दोस्तों, सुकीर्ति अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में दाखिला कराना चाहती है, लेकिन पति के ना होने से ये काम सहज नहीं था। वो अपने भाई को पति बनाकर बच्चे के एडमिशन का प्रयास करती है और आखिरकार अनेक संघर्ष के बाद वो इसमें सफलता पाती है। पितृसत्तात्मक समाज में एक अकेली स्त्री का जीवन बहुत ही कठिन और संघर्षशील होता है। पुरुष के बिना नारी के अस्तित्व को आज भी लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं, ये हकीकत है और यही सत्य है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सुनते रहिए फहीम के साथ यादों का सफर।

आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, भारतीय नारी के विषय में पहले से ही पवित्र संकल्पना रही है कि वो किसी भी प्रतिकूल या नकारात्मक स्थिति में अपने सतीत्व का विसर्जन नहीं करेगी, क्योंकि ये नारी का आभूषण है। उसकी पवित्रता पितृ सत्ता की वैचारिकी और उससे तराशी स्त्री सोच से आबद्ध रही है। लेकिन आज के युग तक आते आते इस दृष्टिकोण में काफी कुछ बदलाव आए हैं। जीवन मूल्य के प्रति बदले हुए चिंतन के कारण वर्तमान में स्त्री स्वतंत्रता के साथ जीवन बिताना चाहती है। अगर उसकी स्वतंत्रता पर जबरदस्ती लगाम लगा दी जाए तो उसका मन आजादी के लिए तड़पने लगता है। वो किसी न किसी तरह स्वतंत्र होने की सोच में डूब जाती है। फिर रास्ता कोई भी हो, सही हो या गलत हो, उसे परवाह नहीं रहती। दोस्तों, मधु कांकरिया की एक कहानी है जिसका नाम है चूहे को चूहा ही रहने दो। इस कहानी के बारे में आपसे जिक्र करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है मधु कांकरिया के बारे में और उनकी लेखन के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था, उनकी एक कहानी है जो कि बड़ी मशहूर है, नाम है चूहे को चूहा ही रहने दो। ये कहानी एक प्रतिशोध परायण स्त्री का बयान बनती है। एक बार नायिका हिम्मत करके अपने छोटे भाई के मित्र से हाथ मिला लेती है तो उसका पति उसके हाथों को दीवार पर रगड़ देता है ताकि स्पर्श के चिन्ह मिट जाएं। नायिका कहती है, मेरे पति ने मेरी देह की जमीन पर ऐसी हदबंदी कर दी थी, ऐसे कटीले बाड़े डाल रखे थे कि मैं किसी हम उम्र इंसान से बात करने तक तरस जाया करती थी। पति से बदला लेने के लिए एक अजनबी से शारीरिक संबंध बनाकर घोषित करती है, हाँ, आज की ये रात अकस्मात नहीं थी, इसके मेघ खंड मेरे अवचेतन में जाने कितने वर्षों से खंड खंड इकट्ठे हो रहे थे, आज की रात मेरे प्रतिशोध की रात है। तो इस तरह से दोस्तों, मधु कांकरिया ने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज में फैली जो कुरूतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको खत्म करने का प्रयास किया और जो स्त्रियां हैं उनको जागरूक करने की कोशिश की। इनके बारे में अगले एपिसोड में आपसे और भी बहुत सारी बातें करूंगा। फिलहाल इजाजत चाहता हूं। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। नमस्ते, खुदा हाफिज़।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना। टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।

हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। जी हाँ, एक ऐसा एपिसोड जो लेकर आता है आपके लिए ट्रेंड की बहुत सारी बातें। और आज भी कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ आ गई हूँ मैं आपके पास। हर संडे शाम 4 से 5 मिलते हैं हम इसी टाइम पर, और करते हैं बहुत सारी ट्रेंड की बातें, साथ ही लेकर आ जाती हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत से गाने भी। और आज का सफर ना थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सफर की जिसका हिस्सा हम सब है, यानी कि आप, मैं और आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं, मेरे जितने जानने वाले लोग हैं, वो सब एक ऐसा सफ़र जो 15th of August 1947 से शुरू हुआ और आज यानी 2026 तक पहुंच चुका है। दोस्तों, कल ही हमने सेलिब्रेट किया था 15th अगस्त, इंडिया का इंडिपेंडेंस डे। हर साल की तरह इस बार भी तिरंगा शान से लहराया, देशभक्ति का गीत सुनाई दिया, स्कूल्स और कॉलेजेस में सेलिब्रेशंस हुए और हर तरफ आज़ादी का जश्न देखने को मिला। लेकिन आज 16 अगस्त को जब सेलिब्रेशन का एक्साइटमेंट थोड़ा सा सेटल हो गया है, तो क्यों ना थोड़ी देर रुक कर ये सोचा जाए कि आखिर ये जो 79 साल का ये सफ़र रहा वो कैसा रहा। अब देखिए, मैं मिलने तो आपसे संडे को आती हूँ, अब कल सैटरडे था, अब कल तो मैं नहीं आ सकती थी आपके पास, तो क्यों ना आज के दिन हम इस

लड़की की 2026 में खड़े होकर पीछे देखे तो ये सफर सच में बहुत ही यादगार रहा है। कभी जिस देश को बेसिक रिसोर्सेज और डेवलपमेंट की बहुत सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, वो इंडिया आज स्पेस मिशंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, साइंस, स्पोर्ट्स और इनोवेशन जैसे फील्ड में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना रहा है। कभी इंफॉर्मेशन के लिए लेटर्स और न्यूज़पेपर का वेट होता था और आज के स्मार्टफोन से दुनिया भर के इंफॉर्मेशन सेकेंड्स में हमारे सामने होती है। एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है और इंडियन यूथ आज सिर्फ इंडिया में ही नहीं है बल्कि दुनिया भर में अपनी टैलेंट से और आइडियाज के साथ इम्पैक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों 79 साल की जो जर्नी है उसको सिर्फ अचीवमेंट की लिस्ट समझना भी सही नहीं होगा। इस सफर में चैलेंजेस आए, फेलियर्स हुए, चेंजेस हुए और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो आज का ये ट्रेंडिंग तड़का जिसमें हम इस जर्नी को थोड़ा सा डिफरेंट नज़रिए से देखने वाले हैं, बहुत कुछ समझेंगे आज हम इस एपिसोड में। 1947 का इंडिया कैसा था, 2026 का इंडिया कैसे बदल चुका है, आज़ादी का असली मीनिंग क्या है हमारे लिए, इन सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे यहाँ पर और बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे 80 साल एक सफर आज़ादी से जिम्मेदारी तक की। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं वापस से 1947 के इंडिया में। लेकिन उससे पहले सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजी स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और अभी हमने बात की इंडिया के उस सफर की जो कि 15th of August 1947 से शुरू हुआ। आजादी के बाद इंडिया के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, धीरे धीरे देश ने अपने लिए एक नई डायरेक्शन बनाई। अब जरा इमेजिन कीजिए कि अगर 1947 का कोई यंग पर्सन टाइम ट्रेवल करके सीधा 2026 के इंडिया में आ जाए तो उसके लिए सबसे सरप्राइजिंग चीज क्या होगी। शायद सबसे पहले तो उसे टेक्नोलॉजी देखकर शॉक लगेगा कि इतना बड़ा चेंज कैसे आ सकता है। और आज हम जब स्मार्टफोन से किसी भी पर्सन को दुनिया के किसी भी कॉर्नर में वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं और सेकंड्स में इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन 1947 में कम्युनिकेशन का वर्ल्ड बिल्कुल अलग था। लेटर, न्यूज़पेपर्स और लिमिटेड कम्युनिकेशन ही मेजर सोर्सेस थे। एजुकेशन की बात करें तो आज स्टूडेंट के पास स्कूल है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज के साथ साथ ऑनलाइन लर्निंग जो प्लेटफॉर्म्स है वो भी है और डिजिटल रिसोर्सेज भी है। आप घर बैठे दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स देख सकते हैं। नॉलेज तक पहुंचने के ऑप्शंस बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो चुके हैं। और दोस्तों, विमेन की जर्नी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज विमेन एजुकेशन, बिजनेस, साइंस, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, एविएशन और ऑलमोस्ट हर फील्ड में अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट कर सकती है। चैलेंजेस अब भी है लेकिन अपॉर्चुनिटीज और कॉन्वर्जेशंस दोनों पहले से काफी ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। टेक्नोलॉजी और साइंस की बात करें तो इंडिया ने स्पेस रिसर्च से लेकर डिजिटल इनोवेशन तक एक लंबी जर्नी को कवर किया है। जिस इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद डेवलपमेंट की बेसिक फाउंडेशन बिल्ड करनी शुरू की थी, वही इंडिया आज स्पेस मिशन और कटिंग एज टेक्नोलॉजी की बात करता है। और फिर आता है हमारा यूथ। जी हाँ, 1947 का यूथ एक नए आजाद देश को बिल्ड करने का सपना देख रहा था और आज का यूथ एक ग्लोबल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टार्टअप्स हो, कंटेंट क्रिएशन हो, टेक्नोलॉजी हो, स्पोर्ट्स, रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप, यंग यूथ जो है हमारे वो इंडियंस नए नए फील्ड में अपनी जगह बना रहे हैं। लाइफस्टाइल भी कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, वो हम सब देखते हैं। पहले इन्फॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटीज जियोजोग्राफिकली लिमिटेड थी, लेकिन आज इंटरनेट ने दुनिया को लिटरली हमारे फोन स्क्रीन से उस तक लाकर रख दिया है। लेकिन दोस्तों, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी और कन्वीनियंस ही नहीं होता है, बल्कि क्या प्रोग्रेस के साथ हमने अपनी वैल्यूज भी प्रिजर्व की है। क्या मॉडर्न इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज तो बड़ी है, लेकिन क्या सबके लिए अपॉर्चुनिटीज इक्वली एक्सेसिबल है, ये क्वेश्चन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जब हम कहते हैं कि तब का भारत और आज का भारत, तो कंपैरिजन सिर्फ पुराने और नए इंडिया की नहीं, बल्कि कंपैरिजन ये होना चाहिए कि हम कहां से चले थे, कहां तक आए हैं और हमें अब कहां तक जाना है। और इसी थॉट के साथ अब हम अपने प्रोग्राम को अगले सवाल की तरफ बढ़ाते हैं। 1947 में जो आजादी एक नेशनल ड्रीम थी, क्या 2026 में उस आजादी का मीनिंग हमारे लिए बदल चुका है या अभी भी वही है? जानेंगे इसके बारे में भी, लेकिन अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मान रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आरजे सिंह आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। जी हाँ दोस्तों, हर संडे शाम 4 से 5 लेकर आ जाती हूँ आपके लिए कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक। बहुत सारी ट्रेंड की बातें करते हैं हम, और साथ ही उसी के साथ लेकर आ जाती हूँ आपके लिए बहुत ही प्यार प्यार से गाने भी। तो दोस्तों, अभी तक हमने बात की कि इंडिया के 79 जो ईयर्स है इस सफर को देखा, और 1947 से लेकर 2026 तक हमारा देश कितना बदला है। लेकिन अब बात थोड़ी सी पर्सनल करते हैं कि जब हम सब हर साल कहते हैं कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तिरंगा देखते हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स सुनते हैं, गाते भी हैं, फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सीरियसली सोचा है कि हमारे लिए आज़ादी का एक्चुअल मीनिंग क्या है? 1947 में आज़ादी का मतलब था एक पूरे देश का फॉरेन रूल से फ्री हो जाना। लेकिन आज 2026 में एक इंडिविजुअल के लिए आज़ादी का मीनिंग क्या हो सकता है? शायद अपने करियर का डिसीजन खुद लेना, शायद अपनी बात को बिना डरे कह पाना, या फिर शायद अपने सपनों को परस्यू करना, या फिर सिंपली अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस को खुद लेने का कॉन्फिडेंस होना। और यही तो इंटरेस्टिंग बात है कि आज़ादी सबके लिए सेम नहीं होती, सबकी पर्सपेक्टिव अलग है। किसी यंग पर्सन के लिए आज़ादी का मतलब हो सकता है कि वो अपना करियर, अपनी चॉइस को सिलेक्ट करे। किसी स्टूडेंट के लिए आज़ादी का मतलब हो सकता है कि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके। किसी वुमेन के लिए आज़ादी का मतलब होता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अपनी चॉइस और अपनी आइडेंटिटी हो सकती है। किसी के लिए आज़ादी का मतलब हो सकता है कि वो अपनी ओपिनियन ओपनली एक्सप्रेस कर सके बिना किसी फियर के कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझना ज़रूरी है कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि हम जो चाहें बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के करते रहें। फ्रीडम के साथ अंडरस्टैंडिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। फॉर एग्जांपल, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को हर्ट करने के लिए या हेट स्प्रेड करने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन शेयर करें। हमें चॉइस की फ्रीडम है, लेकिन दूसरों की चॉइसेस और बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। और शायद इसी वजह से आज़ादी एक राइट भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग सवाल आपसे भी है, अगर आपको सिर्फ एक लाइन में डिफाइन करना हो कि मेरे लिए आज़ादी का मतलब क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि क्या आज़ादी है आपके लिए? अपनी लाइफ के डिसीजंस को खुद लेना, क्या आज़ादी है आपके लिए कि अपनी वॉइस को एक्सप्रेस करना, या फिर बिना डिस्क्रिमिनेशन के अपॉर्चुनिटीज पाना, या फिर आज़ादी है कि अपने सपनों को चेस करने का हक होना? सोचिए, क्योंकि 1947 में हमने एक नेशन के रूप में आज़ादी हासिल की थी, लेकिन 2026 में सवाल ये है कि क्या हम अपनी पर्सनल फ्रीडम की वैल्यू को समझ भी पा रहे हैं या नहीं? और अगर हम आज़ाद हैं, तो क्या सच में हर तरह के प्रेशर, फियर और स्टीरियोटाइप से भी आज़ाद हैं हम? इस सवाल को आपने सुना, इसके बारे में सोचिएगा जरूर और हमें भी बताइएगा। हमारा नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078 पर हमें मैसेज करिए, हमें कॉल करके बताइए कि आपके लिए आज़ादी का असली मतलब क्या है और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो चलिए, वक्त हो गया है इसी के साथ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारी आजादी की, हमारे इंडिपेंडेंस डे की। जी हाँ, कल हमने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया, 79 ईयर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं अब, और इस साल हमने अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मनाया है। तो दोस्तों, आज मेरे पास ना कुछ सवाल है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि क्या भारत जो पहले था वो अब भी है? क्या हम जो आज़ादी का मतलब पहले समझते थे, क्या आज भी वही आज़ादी का मतलब है? और आपके लिए आज़ादी सच में है क्या? हम क्या सोचते हैं इसके बारे में? अब तक हमने बात की कि आज़ादी का मीनिंग कैसे चेंज हुआ, लेकिन अब आता है कि हमारे आज के एपिसोड का शायद सबसे इम्पॉर्टेंट और थॉट प्रोवोकिंग सवाल, कि क्या हम सच में आज़ाद हैं या नहीं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ऑब्वियसली हम आज़ाद हैं, इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हमें अपने राइट्स मिले हुए हैं और हम अपनी बात रख सकते हैं, अपने एजुकेशन और करियर को चूज कर सकते हैं और अपनी लाइफ के डिसीजंस भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम सबको पता है, लेकिन यहाँ हम एक स्लाइटली डिफरेंट एंगल से बात कर रहे हैं कि क्या हम सिर्फ बाहरी रिस्ट्रिक्शन से आज़ाद हैं या फिर अपने माइंड और सोसाइटी के प्रेशर से भी। अगर हम आज के जो यंग पर्सन है उन्हें देखें, उनके पास अपॉर्चुनिटीज पहले से ज़्यादा है, लेकिन क्या प्रेशर भी उससे ज़्यादा है?

या वो कम है। करियर चूज करते वक्त लोग क्या कहेंगे, रिलेशनशिप में सोसाइटी क्या सोचेगी, अपीयरेंस को लेकर मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं दिखता, सोशल मीडिया पर क्या मेरी लाइफ दूसरों से कम एक्साइटिंग लगती है इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते। कभी कभी हम किसी के डायरेक्टली रोकने की वजह से नहीं बल्कि जजमेंट के फियर की वजह से अपनी चॉइसेस को

0: महावीर का जो जीवन है वो ऐतिहासिक नहीं है और बुद्ध का जो जीवन है वो भी ऐतिहासिक नहीं है। इतिहास दो कौड़ी का है क्योंकि हमारी पकड़ बहुत गहरी है। हम ये कहते हैं कि जब भी जितने बुद्ध हुए उन सबका जो सार निचोड़ है वो हमने फिर गौतम बुद्ध में पढ़ लिया, फिर हमने गौतम बुद्ध के नाम से लिख दिया। फिर आगे कोई बुद्ध होगा, गौतम बुद्ध तब तक भूल जा चुके होंगे, बिछड़ गए होंगे इतिहास की पुरानी रास्तों पर, भूल चुके होंगे। फिर नया बुद्ध सारे बुद्धों में जो होता है उसको फिर से पुनर्जीवित कर देगा। लेकिन कथा वही है, नाम बदल जाते, रंधन बदल जाते, लेकिन कथा वही है, गीत वही है, धुन वही है, टेक वही है। इसलिए सारी बातें बुद्ध के जीवन में जो लिखी है तुम ऐसा मत सोचना कि वो सच सच ऐतिहासिक अर्थों में नहीं है। कई बातें ऐसी हैं जो दूसरे बुद्धों के जीवन में घटी होंगी और कई बातें ऐसी हैं जो आने वाले बुद्धों के जीवन में घटेंगी। बुद्ध के जीवन में हमने सबका सार रख दिया है, निचोड़ है। गुलाब का एक फूल है ये इतिहास, और हमने बहुत से फूलों का इत्र निकाल लिया ये पुराण। उस इत्र में सभी गुलाबों की गंध आ गई, मगर तुम ये ना कह सकोगे किस गुलाब से बना ये इत्र। अब मुश्किल है, अब बताना बिल्कुल मुश्किल है। जो तुम्हारी बगिया में खिला था उस गुलाब से, या जो पड़ोसी की बगिया में खिला था उस गुलाब से, कि पीले गुलाब से, कि लाल गुलाब से, कि सफेद गुलाब से, अब ये बताना बहुत मुश्किल है। अब तो ये इत्र सबका सार निचोड़ है। हमने इत्र लिखा, पश्चिम गुलाबों की रूपरेखा लिखता है, एक एक गुलाब का हिसाब रखता है। हम कहते हैं एक एक गुलाब का हिसाब रखने से सार भी क्या है। सब गुलाब अपनी मूलभूत सत्ता में समान होते, इसलिए हमारे सत्य सार्वलौकिक, सार्वभौम है, शाश्वत है। पूछा है तुमने मनुष्यों में जो प्रथम बुद्ध हुए होंगे, नहीं कोई प्रथम नहीं हुआ, प्रथम के भी पहले बहुत हुए, तो प्रथम कहने का कोई अर्थ नहीं, और अंतिम भी कोई नहीं होगा, अंतिम के बाद भी होते रहेंगे। प्रश्न है कि किस मार्ग से गए होंगे वे, उनका गुरु कौन था। उनके पहले इतना ही समय हो चुका था जितना हमारे पहले हुआ है, क्योंकि समय अनंत है, इसमें हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मैंने सुना है एक म्यूजियम में, म्यूजियम का गाइड एक यात्रियों के दल को चीजें दिखा रहा था, फिर उसने एक अस्थि पंजर बताया और कहा कि ये 1,03,007 पुराना है। यात्री भी थोड़े चौंके, 1,03,007 पुराना, उनका 1 करोड़ तो ठीक, मगर ये 3 साल और 7 दिन इतना हिसाब रखा है। उसने कहा कैसे पता चला ये 3 दिन और 7 दिन का, ये 3 साल और 7 दिन का। तो उसने कहा ऐसे पता चला कि आज से 3 साल 7 दिन पहले इस म्यूजियम का जो डायरेक्टर है उसने मुझे कहा था कि ये 1 करोड़ वर्ष पुराना। तब मैं उसमें जोड़ता जाता हूँ क्योंकि 3 साल 7 दिन बीत चुके, अतीत अनंत है। तुम क्या सोचते हो कि हम बुद्ध के 2500 साल बाद हुए, 2500 साल बाद, तो क्या तुम सोचते हो अतीत की अनंतता में धन 2500 साल जुड़ गए। अतीत की अनंतता में क्या जोड़ोगे, क्या कटाओगे। अनंत अतीत की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं बीता है, 2500 साल कुछ भी नहीं बीते, बीता ही नहीं कुछ। अनंत में कुछ जोड़ो तो बढ़ता नहीं और घटाओ तो घटता नहीं। उपनिषद का वचन तुम्हें याद है ना, पूर्ण में पूर्ण को जोड़ दो तो पूर्ण बड़ा नहीं होता, और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दो तो पूर्ण छोटा नहीं होता। पूर्ण का अर्थ ही ये होता है, उसमें जोड़ा नहीं जा सकता और घटाया नहीं जा सकता, कितना ही जोड़ते चले जाओ। अनंत का ख्याल करो, हमसे पहले अनंत काल बीत चुका है। अनंत का अर्थ ही होता है कि जिसका कभी कोई प्रारंभ नहीं था, अब उसमें 2500 साल जुड़ने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जितना काल हमसे पहले बीता है उतना ही काल बुद्ध के समय में भी बीत चुका था, उतना ही, और हमारे बाद भी 2500 साल बाद जब कोई आएगा और चर्चा करेगा तब भी उतना ही काल बीता है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए किस मार्ग से गए होंगे उनके पहले जो बुद्ध गए थे, अनंत अनंत बुद्ध स्वभावतः उसी मार्ग में से उन्होंने अपना मार्ग चुना होगा। उनके पहले जो अनंत दीप स्तंभ हुए थे उन्हीं की रोशनी में उन्होंने अपनी खोज की होगी। यहाँ कोई पहला नहीं और यहाँ कोई अंतिम नहीं, हम सब संयुक्त। तुम ऐसा सोचो, तुम अपने पिता से पैदा हुए, तुम्हारे पिता अपने पिता से पैदा हुए होंगे, पिता के पिता और किसी से पैदा हुए होंगे। तुमने कभी ऐसा सोचा कि पहला आदमी किससे पैदा हुआ? वैसे ये भी प्रश्न है, पहला आदमी किससे पैदा हुआ? पहला आदमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई आदमी पैदा होगा पिता की जरूरत पड़ेगी, माँ की जरूरत पड़ेगी, किसी से पैदा होगा। पहला आदमी हो ही नहीं सकता और न अंतिम आदमी हो सकता है, क्योंकि जो है वो रहेगा, मिटता नहीं, जो है था और रहेगा। इसका तुम्हें बोध आ जाए, ये विस्तार का तुम्हें थोड़ा स्मरण आ जाए। ये कठिन है स्मरण करना, क्योंकि हमारी बुद्धि की बड़ी सीमा है। कितने खींचो तानो हम कहते कोई तो हुआ होगा पहले, हमारा मन पूछ ही चला जाता है, कोई तो हुआ होगा पहले, कभी तो अंत होगा। इसे और तरह से देखो, हम कहते हैं जगत असीम है। सोचो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, प्रकाश की गति से चलो। प्रकाश बड़ी तीव्र से तीव्र गति है, 186,000 मील प्रति सेकंड प्रकाश की गति से तुम्हारा हवाई जहाज चला जा रहा है। या और भी बड़ी गति खोज लो, क्या तुम कभी ऐसी घड़ी में आओगे जहां तुम जगत की सीमा पर पहुंच जाओ? समझना, इस पर दार्शनिक बहुत चिंतन करते रहे कि ऐसी कोई जगह आएगी जहां तख्ती लगी हो कि यहां समाप्त हो गया संसार, अब आगे मत जाना नहीं तो गिर पड़ोगे। मगर अगर आगे गिर पड़ने को भी जगह है तो अभी संसार बाकी। अगर सीमा भी खींची जा सकती है कि यहां संसार समाप्त हो गया, तो सीमा तो बनती ही दो से, तो यहां से कोई और चीज शुरू हो गई। हर अंत शुरुआत, हर द्वार कहीं खुलता है कहीं बंद होता है। अगर तुम एक ऐसी जगह पहुंच गए, ठीक है यहाँ होता है ऐसा कि तुम पहुंच गए महाराष्ट्र खत्म गुजरात शुरू, ये यहाँ हो जाता है, लेकिन गुजरात तो होना चाहिए ना, तो महाराष्ट्र खत्म कैसे होगा? महाराष्ट्र खत्म हो जाता है गुजरात शुरू हो जाता है, हिंदुस्तान खत्म हो जाता है पाकिस्तान शुरू हो जाता है। जहाँ कुछ खत्म होता है वहाँ तत्क्षण कुछ शुरू हो जाता है। अगर ये विश्व कहीं खत्म होता हो और एक रेखा आ जाती है जहाँ तख्ती लगी चुंडी चौकी बनी, बस आगे मत बढ़ना यहाँ संसार खत्म, तो उसका मतलब है आगे कुछ तो होगा। नहीं, ऐसी चुंगी चौकी पर तुम कभी ना पहुंचोगे, ऐसी कोई चुंगी चौकी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, होना ही असंभव है। क्योंकि जहां भी रेखा खींचनी हो, रेखा दो के बीच खींचती, और अगर दूसरा मौजूद है तो अभी अंत नहीं आया, तो रेखा खींची नहीं सकती, रेखा असंभव है। जब हम कहते हैं जगत असीम है तो हम कहते हैं आकाश असीम, और जब हम कहते हैं जगत अनंत है तो हम कहते हैं समय काल की धारा अनंत। समय और आकाश दोनों अनंत है, यहाँ न कभी कोई प्रथम हुआ और न कोई अंतिम होगा। चौथा प्रश्न, आपके चरणों में सिर रखकर अपना प्रेम प्रकट करना मेरा ध्येय था, जिसके कारण मुझे संन्यास लेने में अड़चन नहीं हुई, कृपया बताएं कि गुरु की क्या जिम्मेदारी है, मुझे कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया, मैं आपसे चकित हूँ। पहली तो बात, क्या मुझ पर कोई मुकदमा चलाने का इरादा है? गुरु की जिम्मेदारी, गुरु जाने, तुम जान के क्या करोगे? अगर जिम्मेदारी पूरी न की गई तो कोई झंझट बखेड़ा खड़ा करोगे? गुरु की जिम्मेदारी गुरु जाने, तुम अगर पूछना ही हो तो शिष्य की जिम्मेदारी पूछो, क्योंकि वो तुम्हें करनी है। अपनी बात पूछो, अपनी बात तो तुमने नहीं पूछी, तुम फिक्र कर रहे हो कि गुरु की क्या जिम्मेदारी। जैसे तुम्हारा काम तो अब पूरा हो गया, क्योंकि चरणों में सिर रख दिया, बात खत्म हो गई। हालांकि चरणों में सिर अभी रखा नहीं, नहीं तो जिम्मेदारी पूछते नहीं। जब चरणों में सिर रख ही दिया तो बचा क्या? अब बात खत्म हो गई, अब जो मर्जी उसको करो, अब जैसा लगे करो, ये गर्दन काटनी हो तो काट दो, अब कोई बात न रही पूछने की। लेकिन तुमने चरणों में सिर रख के जैसे गुरु पे अनुकंपा की कि अब बोलो, हम तो कर दिए जो करना था, अब आपकी तरफ से क्या होगा, जो कि हमने तो सिर रख दिया, सिर में है क्या, सिर काट के बेचने जाओगे कितने में बिकेगा? ऐसा हुआ, कि अकबर के पास फरीद कभी कभी आता था, अकबर फरीद के पास भी कभी कभी जाता था। फरीद अनूठा फकीर था। जब अकबर फरीद के पास जाता या फरीद अकबर के पास आता तो अकबर सिर झुका के उसके चरणों में प्रणाम करता था। अकबर के वजीरों को बात न जचती थी, उनको बड़ा आखरता था कि बादशाह और किसी फकीर के चरणों में सिर झुका है। आखिर उनसे न रहा गया और उन्होंने कहा, यह शोभा नहीं देता, आप अपना सिर झुकाएं फकीर के कदमों, इसकी कोई जरूरत नहीं। साधारण आदमी जैसा आदमी आपने समझा क्या है? आप क्यों इतना अपने को विनम्र कर लेते? तो अकबर ने कहा, तुम एक काम करो, इसका उत्तर तुम्हें शीघ्र दूंगा, अभी रुको। कोई महीने 15 दिन बाद एक आदमी को फांसी हुई, अकबर ने उसका गर्दन कटवा ली और अपने वजीरों को कहा कि इसको बाजार में जाके बेचो। सुंदर आदमी था, सुंदर चेहरा था, आंखें बड़ी प्यारी थी, साफ सुथरा करके सोने की थाली में रख के वजीर उसको बाजार में बेचने गया। जिसकी दुकान पे गया उसी ने कहा, हटोड़ बाहर निकलो, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, इसको करेंगे क्या लेके? आदमी का सिर किस काम आता है? अगर हाथी का सिर होता तो कुछ काम भी आ जाए, हरिन का सिर हो तो कुछ सजावट के काम आ जाए, इसको हम रखेंगे क्या? ये बदबू आएगी और गंदगी होगी, हटो। कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं हुआ। वजीर बड़े हैरान हुए, लौट के आया अकबर से कहा कि दुखी है हम, लेकिन कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं। उल्टे लोग नाराज होते, जिसके पास हम गए उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसको करेंगे क्या? तो अकबर ने कहा, ये तुम्हारे लिए मेरा उत्तर था, आदमी के सिर की कीमत क्या है? दो पैसे में भी कोई लेने को तैयार नहीं। तुम सोचते हो मेरा सिर काट के किसी दिन तुम बेचने जाओगे तो कोई खरीदे? तो जिसकी दो कौड़ी कीमत नहीं है उसको अगर मैंने किसी फकीर के चरण में झुका दिया, तुम्हें अड़चन क्या है? जिसका कोई मूल्य नहीं, इसका नाम झुकाना है। सिर में मूल्य नहीं है, इसको जानना ही सिर का झुकाना है। तुमने झुकाया होगा सिर, लेकिन यही सोच के कि बड़ा गजब कर रहे, बड़ी अनूठी घटना तुम कर रहे हो। देखो सिर झुका रहे हो, तुम्हारे मन में इच्छा है कि सिर का कोई बड़ा मूल्य है। मैं जानता हूँ कि तुमने बड़ी अड़चन से झुकाया होगा, बहुत दिन सोचा होगा, विचारा होगा, लेकिन तुम्हारे सोच विचार से कुछ सिर में मूल्य नहीं आ जाता। सिर झुकाने का अर्थ यह है कि तुमने ये कहा कि सिर में तो कुछ भी नहीं है, अब सिर के आगे कुछ यात्रा हो जाए। सिर में तो कुछ नहीं पाया, अब सिर के पार जाने की अभी प्रगट की, इसलिए पूरब में हम सिर झुकाते हैं, गुरु के चरणों में जाते हैं। हम ये कहते हैं कि सिर से तो कुछ मिला नहीं, सिर की तो दौड़ धूप खूब कर लिए, सिर को तो मारा धापी खूब कर ली, इससे कुछ मिला नहीं। पीड़ा पाई, असंतोष पाया, अतृप्ति पाई, ज्वर ग्रस्त रहे, दुख स्वप्न देखे, सिर से तो कुछ मिला नहीं। ये तो हम आपके सिर में रख, ये तो आपके पैरों में रख देते हैं ये सिर। अब कुछ ऐसा बताएं कि सिर के ऊपर कैसे जाएं? सिर का कोई मूल्य नहीं है, यही घोषणा सिर झुकाने में। तुम पूछते हो कि मैंने तो अपना सिर आपके चरणों में रख दिया, अब बताएं कि गुरु की जिम्मेवारी क्या है? तुम सोचते हो तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम शुरू हुआ, सिर में तो कुछ था नहीं, कचरा तुमने चढ़ा दिया पैरों में, अब भूल जाओ सिर को। अगर नहीं भूले और याद रखा तो चढ़ाया ही नहीं, और अब पूछो कि शिष्य की जिम्मेवारी क्या है, अब मैं क्या करूं? ये तो कोई करने जैसी बात न थी, ये तो सिर्फ शुरुआत है करने की, क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं हो गया, इससे कुछ क्रांति नहीं हो जाएगी। अब क्या करूं? व्यर्थ तो छोड़ दिया, अब सार्थक को कैसे तलाशूं? ये पूछो। लेकिन तुम पूछते हो गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम्हारा मतलब ये है कि हमारे तरफ का काम तो हमने कर दिया, अब आप बताएं आपकी जिम्मेवारी क्या है। ये बात ही शिष्य न होने का लक्षण। मेरी जिम्मेवारी मैं समझता हूँ, तुम उसे समझ भी ना सकोगे अभी। अभी तुम शिष्य भी नहीं हुए तो तुम गुरु की जिम्मेवारी तो कैसे समझ सकोगे? गुरु की जिम्मेवारी तो तभी समझ में आएगी जब तुम शिष्यत्व की गहराई में इतने उतर जाओगे कि तुम्हारे भीतर ही गुरु का जन्म होने लगेगा, तब तुम गुरु की जिम्मेवारी समझ सको। अभी तो तुम्हें आंख चाहिए, अभी तो तुम्हें विनम्रता चाहिए, सरलता चाहिए, ध्यान चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। ये तो सिर्फ घोषणा हुई तुम्हारी, तुमने शपथ ली कि हम झुक गए, अब हम करने को तैयार, अब जो कहेंगे हम करेंगे। लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिक लोगों का यही भाव होता है कि हम तो कर दिए जो करने योग्य था, अब जो करना हो आप करें। मैं करूंगा लेकिन मेरे अकेले किए कुछ भी ना होगा, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता परम, तुम अगर सांस दोगे तो ही होगा। मैं तो करूंगा लेकिन अगर तुमने विरोध किया तो कुछ भी ना हो सकेगा। तुमने अगर द्वार दरवाजे बंद रखे तो ये सूरज की किरण बाहर ही खड़ी रहेगी और भीतर ना आ सकेगी। सूरज की किरण जोर जबरदस्ती से भीतर आ भी नहीं सकती, तुम्हें सहयोग देना होगा, द्वार दरवाजे खोलना होगा। अब तुम पूछते हो मुझे कैसे भरोसा है कि मुझे गुरु प्राप्त हो गए, ये तुम्हें भरोसे का सवाल ही नहीं। तुम्हें तो इतना ही भरोसा लाना है कि तुम शिष्य हो गए, बस इतना ही भरोसा आ जाए तो बात समाप्त हो गई। तुम्हारा काम तुम पूरा कर दो, इतनी बात तुम्हारी तुम पूरी कर दो कि तुम शिष्य हो गए, तुम्हारे शिष्य होने में ही भरोसा आ जाएगा कि गुरु मिल गए। और कोई उपाय नहीं, मैं और कोई प्रमाण नहीं जुटा सकता। जो भी प्रमाण जुटाऊंगा वो व्यर्थ होंगे, उनसे कैसे भरोसा आएगा। मैं लाख कहूं कि तुम्हें मिल गया, इससे कैसे भरोसा आएगा। तुम शिष्य बनोगे, उसी शिष्य बनने में कुछ रस धार बहेगी, कुछ प्राणों में गुनगुनाहट उठेगी, कुछ मस्ती जगेगी। उसी मस्ती में प्रमाण मिलेगा कि गुरु मिल गए, अब अकेला नहीं। तुम अपने अकेलेपन में भी एकांत में जब मौन बैठोगे तब तुम पाओगे कि कोई मौजूद है। तुम अपने भीतर भी झांकोगे तो पाओगे कोई मौजूद है। तुम्हारा हाथ किसी के हाथ में, चलते उठते बैठते जैसे जैसे तुम शिष्य बनते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें लगता जाएगा कि गुरु साथ। एक घड़ी ऐसी आती है कि तुम तो विसर्जित ही हो जाते हो, तुम्हारे भीतर गुरु ही विराजमान हो जाते। अभी तो सिर झुकाया है, अभी हृदय में विराजमान करना होगा और उसी के साथ प्रमाण मिलेगा। शिष्य का ऐसा भाव होता है। स्वामी योग प्रीतम ने एक गीत लिखा है, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते, तेरी स्वर लहरी का आलिंगन पाते ही हृदय वीणा हौले से झंकृत हो जाती है, तेरी मस्ती की धुन बजने लगती मुझ में, मेरे तन मन की पंखुड़ियां खुल जाती हैं, छिड़ जाता कैसा राग तुम्हारे कंठों से, अंतस आंगन में कोटि दीप जल जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। जाने कैसा जादू है तेरी चितवन में, मन के सब खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं, मन का सारा काठिन्य पिघल जाता पल में, जन्मों जन्मों के पाप साफ धुल जाते हैं, जब तुम निज करुणा जल बरसाते हो मुझ पर, मेरे भीतर सत झरने बह जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। तेरे भीतर से बरस रहा है प्रेमामृत, जो प्यासे चातक की जाते हैं महाभाग, तू एक छबीला फूल जगत की बगिया का, वे धन्य भ्रमर जो लूट रहे तेरा पराग, जब तुम अपना आशीष लुटाते हो मुझ पर, मेरे नभ में सौ सौ सूरज उगाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। शिष्य का भाव ऐसा है, वो तो आंखें खोल कर जैसे चातक चंद्रमा को निहारे, ऐसा गुरु को निहारता है। प्रमाण नहीं पूछता, तुम्हारी आंख ही धीरे धीरे प्रमाण देने लगेगी। जैसे जैसे तुम्हारी आंख खुलेगी और रोशनी तुम्हारे भीतर उतरेगी, वैसे वैसे प्रमाण मिलेगा। वो तो अपने हृदय को खोल के बैठ जाता, वो तो अपनी सब साज सुरक्षा छोड़ देता, वो तो अपने हृदय पर से सब द्वारपाल हटा देता, वो तो कहता आओ जब भी आओ, दिन रात सोते जागते मेरा हृदय खुला पाओ। धीरे धीरे गुरु की पग ध्वनि हृदय के पास सुनाई पड़ने लगती। पूछा है मैं आपसे, चकित हूँ, सुंदर है, चकित हो ये शुभ है, लेकिन इतने से ही काम नहीं होगा। चकित होना अच्छी शुरुआत है, तुम आश्चर्य से भर गए हो, लेकिन ये आश्चर्य भाव जल्दी ही खो जाएगा अगर आगे न बढ़े। आश्चर्य भाव तो ऐसा ही है जैसे हम कार को चलाना शुरू करते तो बैटरी से कार शुरू होती, मगर बैटरी से चलती नहीं, शुरू हो गई फिर तो इंजन से चलती, फिर तो पेट्रोल से चलती। चकित भाव तो कार में बैटरी की भांति है। यात्रा शुरू हो जाती है लेकिन तुम इसी के सहारे रहे तो ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। आश्चर्य से जो भर गया ये शुभ लक्षण है, इस घड़ी में वो झुक जाता है, लेकिन बस इस पर ही मत रुक जाना, बहुत आगे जाना है। ये तो पहला कदम हुआ। बहुत अभागे हैं जिनको आश्चर्य भी नहीं होता, जो चकित भी नहीं होता। तुम सौभाग्यशाली हो कि चकित तो हुए, चौंके तो, विस्मय तो आया, रहस्य की थाप तो पड़ी, थोड़ा धक्का तो लगा, मगर इस धक्के को ही लेके मत बैठना, नहीं तो धीरे धीरे ये धक्का भी खो जाए और तुम वैसे के वैसे रह जाओ। ये जो थोड़ा सा धक्का लगा है इस धक्के का उपयोग कर लो और चल पड़ो। यात्रा बड़ी और बहुत करने को पड़ा है, शायद उसी चकित भाव ने तुमने आके सिर भी झुका दिया है। तुम्हारे सिर झुकाने में समर्पण मालूम नहीं होता, चकित भाव मालूम होता है। कभी कभी आदमी भौचक्केपन में कुछ कर जाता है लेकिन वो कुछ बहुत दूरगामी पाठे नहीं बन सकता, कुछ और गहराई में झुकना पड़ेगा। नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में, न पाया कहीं तृप्ति का एक कण भी, यहाँ जल कहाँ आपका हर कुआं है, तने इंद्रधनुष है मगर वायु भी सब, यहाँ आद्र बादल कहाँ सब धुआं है, चखे फल यहाँ के सभी तिक्त कटु है, मिला शांति मधुरस तुम्हारे स्मरण में, जहाँ से चखो छार में जग समंदर, यहाँ खूब निर्झर मगर सब जहर के, किरण जाल मोहक मगर सब छलावा, यहाँ विष बुझे दंश है हर लहर के, नहीं छाओ शीतल जगत यह मरुस्थल, गिरा हार थक कर तुम्हारे चरण में, नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में। चलो झुका कहीं झुका, इतने पर ही मत रुके, रुके रह जाना। झुकना तो शुरुआत है, मिटने मिटे बिना ना चलेगा, और तुमने झुकते से ही मिटने के खिलाफ आयोजन शुरू कर दिए। तुम पूछते हो कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया है, तुम पूछते हो कि गुरु के कर्तव्य क्या है, गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम गुरु का हिसाब रखने लगे। तुमने गलत बात पहले से ही उठा ली, फिर मेरे साथ ज्यादा देर न चल सकोगे, ये मैं तुम्हें कह दूं। मेरा हिसाब जिसने रखा वो ज्यादा देर मेरे साथ चला नहीं, वो ज्यादा देर चल ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत होशियार है, चालाक है, वो रत्ती रत्ती हिसाब लगा के चलता है। मेरे साथ जुआरियों की दोस्ती, जो हिसाब किताब रखते नहीं, जिन्होंने एक दफा दांव पर लगा दिया तो फिर लौट कर देखा नहीं, फिर उन्होंने कहा कि अब ठीक, अब तुम जो करो सो ठीक, अब तुम जो कहो सो ठीक। तुमने अगर अपनी बुद्धि बचाई तो सिर उठ उठ जाएगा, बार बार चरण चूक चूक जाएंगे, तो ये तो बात ही भूल जाओ। मेरे कर्तव्य का मुझे पता है, मेरी जिम्मेवारी मुझे मालूम, तुम्हें मालूम होने से कुछ लाभ भी ना होगा। तुम अपना कर्तव्य पूछो, तुम अपनी जिम्मेवारी पूछो। तुम्हारी जिम्मेवारी अब यह है कि जो सिर झुका है उसे काट ही डालना है। तुम्हारी जिम्मेवारी यह है कि अभी झुके हो, अब बिल्कुल मिट जाना, मिट कर ही तुम हो सकोगे, खोकर ही तुम पा सकोगे, तुम जाओ तो ही परमात्मा। आखिरी प्रश्न, यद्यपि मैं सिख परिवार से आया हूँ तो भी 25 वर्षों तक मेरा विश्वास ईसाइयत में रहा, लेकिन आपकी पुस्तकें पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यह तो बड़ी जीवंत बात है और मेरे लिए ईसाइयत का प्रभाव समाप्त हो गया। आप पर पूरा ईमान आ गया है लेकिन मन अभी भी अशांत, देर रात तक आपका साहित्य पढ़ता हूँ तो ही कहीं नींद आती, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कर। देखो 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो श्रद्धा न रही होगी, फिर 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो मुझको जो श्रद्धा आ गई उसको टूटने में कितनी देर लगेगी। श्रद्धा तो तुम्हारी 25 साल वाली भी न टिकी, और ये श्रद्धा भी तुम्हारी ये कितनी देर टिकेगी। तुम्हारा तर्क में समझा, तुम्हारा तर्क शायद ये है कि वो श्रद्धा ईसाइयत पर थी, ये श्रद्धा आप पर, ये तो फर्क हुआ।
1: लेकिन तुम तो वही के वही हो। ईसा पर श्रद्धा हो कि बुद्ध पर कि महावीर पर, इससे अंतर नहीं पड़ता। असली अंतर तो श्रद्धा किसकी है उसमें रूपांतरण हो तो ही पड़ता है। अब तुम सिख परिवार में पैदा हुए तो नानक पे श्रद्धा रही होगी बचपन, ईसा पे आ गई, मुझे पढ़ा वो भी चली गई, कल कुछ और पढ़ लोगे, कल किसी और को सुन लोगे, ये भी तुम्हारी श्रद्धा को परखो। तुम्हारी श्रद्धा श्रद्धा नहीं, अक्सर समझना जिसने सच में ही नानक पे श्रद्धा की है वो मुझे सुन के नानक पे श्रद्धा नहीं छोड़ता है, मुझ पे श्रद्धा आ जाती और नानक पे श्रद्धा बढ़ जाती। जिसको सच में ही ईसा पर श्रद्धा रही वो मुझे सुन के ईसा पर श्रद्धा नहीं छोड़ता है, मुझ पे श्रद्धा आ जाती, ईसा पर श्रद्धा और गहरी हो जाती। क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ कुछ ईसा और नानक के विपरीत तो नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो वही है जो उन्होंने कहा है। और निश्चित ही जीसस ने जो कहा वो 2000 साल पुरानी भाषा में कहा, उससे तुम्हारा तालमेल उतना नहीं बैठ सकता जितना मेरा बैठ सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ। नानक ने कहा वो 500 साल पुरानी भाषा, 500 साल लंबा फासला है, नानक में और मुझ में ठीक 500 साल का फासला है, 500 साल छोटा फासला नहीं। सब भाषा बदल गई, सत्य को कहने का ढंग बदल गया, सत्य को समझने की प्रक्रिया बदल गई, लोग बदले, लोगों का मन बदला, वातावरण बदला। इस सारी बदलाहट में मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे मन के ज्यादा अनुकूल पड़ेगा, ये स्वाभाविक है, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा बोल रहा हूँ। नानक उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे, जीसस उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं 20वीं सदी से बोल रहा हूँ, मैं अत्याधुनिक मन से बोल रहा हूँ। स्वभावतः तुम्हें मेरी बात ज्यादा ठीक से पकड़ में आ जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात पकड़ में आ गई तो तुम्हें नानक की बात भी पकड़, तुम अहोभाव से भर जाओगे कि नानक पर श्रद्धा तो थी लेकिन अभी तक ठीक ठीक साफ साफ नहीं हुआ, साफ साफ हो गई बात। महावीर की बात तुम्हें ठीक से पकड़ में आ जाएगी, बुद्ध की बात ठीक से पकड़, इसलिए तो बुद्ध नानक महावीर कृष्ण क्राइस्ट पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा खंडित करने नहीं हूँ, तुम्हारी श्रद्धा को मजबूत करने को। अगर मैं कभी किसी के विपरीत बोलता हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि वे धार्मिक व्यक्ति नहीं है, लोगों ने भ्रांति से उन्हें धार्मिक समझा है। तो ही अगर मैं जानता हूँ कि कोई व्यक्ति धार्मिक है तो मैं एक शब्द भी उसके विपरीत नहीं बोलता। हाँ, अगर किसी अधार्मिक व्यक्ति को किन्हीं भूल भ्रांतियों के कारण धार्मिक समझ लिया गया तो मैं जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, क्योंकि वो खतरनाक बात है। जैसे कभी पीछे किसी ने पूछा महर्षि दयानंद के संबंध में, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं महर्षि दयानंद के पक्ष में एक शब्द नहीं बोल सकता, मेरे लिए वे वैसे ही महात्मा है जैसे महात्मा गांधी। दोनों सामाजिक राजनीतिक आंदोलनकारी धर्म बहाना, लेकिन नानक या कबीर या कृष्ण या जरथुस या मोहम्मद या ईसा, उन्होंने जो कहा है वही मैं कह रहा हूँ, उससे अन्यथा कहने को कुछ है नहीं। सत्य एक है, जिन्होंने जाना है उसी एक सत्य को कहा है, भिन्न भिन्न ढंग से कहा होगा लेकिन एक ही सत्य को कहा है। वेद कहते हैं उस एक सत्य को ही ज्ञानियों ने अलग अलग ढंग से कहा। तो पहली तो बात यह है कि तुम अपनी श्रद्धा परखो, तुम्हारी श्रद्धा में कहीं भूल चूक है। नानक तो उठ गई, ईसा पे जम गई, मुझ पे जम गई, मैं तुम्हारी श्रद्धा से खुश नहीं। साधारणता तुम यही सोच रहे होगे कि तुम्हारा प्रश्न सुनकर मैं प्रसन्न होऊंगा कि चलो कितना अच्छा हुआ कि एक आदमी जीसस से टूटा और मेरा हुआ। इतने जल्दी कोई मेरा नहीं हो सकता, जो जीसस का न हुआ वो मेरा कैसे हो सकेगा। और अगर तुम मेरे हो गए हो तो तुम्हारे पास आंख आएगी जिससे तुम जीसस को पहचान पाओगे और पहली दफा जीसस को हो पाओगे, और वही आंख तुम्हें नानक का भी बना देगी। लेकिन तुमने श्रद्धा का अर्थ मालूम होता है कुछ तार्किक निष्पत्तियां मान रखा है, जो बात तुम्हारे तर्क को जच जाती फिर तुम चूकोगे, क्योंकि धर्म तर्क की बात ही नहीं। मैं जरूर तर्क का उपयोग करता हूँ, मैं तर्क पे सवारी करता हूँ, इसलिए कभी कभी तार्किकों को मेरी बात बहुत जच जाती, लेकिन वो भ्रांति में न रहे, जल्दी ही उनको चौंका दूंगा। देर अबेर नहीं लगेगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी कि मैं कोई ऐसी बात कहूंगा जो कि तर्क के बिल्कुल बाहर होगी, विपरीत होगी। तो तुम्हें मेरी बातें ठीक लग गई होंगी क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो तर्कयुक्त है, लेकिन तर्क का मैं उपयोग कर रहा हूँ साधन की तरह, ले जाना है तर्क के पास। जीसस ने तर्क का उपयोग नहीं किया, जीसस तो कह दिए जो कहना है। मैं तर्क का भी उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये सभी बिना तर्क की भाषा से और कोई भाषा समझ नहीं सकती, लेकिन ले जाना तो तर्क के पास। तो जल्दी ही तुम अड़चन में पड़ जाओगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपनी श्रद्धा पर फिर पुनर्विचार करो। तुम्हारी श्रद्धा भ्रांत रही, गड़बड़ रही, तुम्हारी श्रद्धा तर्क पर आधारित रही, इसलिए ईसाइयत तुम प्रभावित हो गए हो, क्योंकि ईसाइयत काफी तर्क जुटाती। ईसा ने तो कुछ तर्क नहीं दिए, लेकिन ईसाइयत काफी तर्क जुटाती, क्योंकि ईसाइयत तो पश्चिम से आती, पश्चिम तो तर्क की दुनिया है। तो ईसाइयत को अगर अपने पैर पर खड़े रहना है तो उसे तर्क जुटाने पड़ते, तो ईसाइयत जचती होगी। लेकिन मेरे बस में पश्चिम का तर्क ही नहीं है, पूरब का तर्क भी है, और मेरे बस में तर्कातीत भी है, इसलिए फिर मेरा तर्क तुम्हें जच गया होगा, क्योंकि मेरे तर्क में पश्चिम के सारे तर्क में जो कुशलता है वो तो है ही, पूरब के तर्क जो मधुरिमा है वो भी, और तर्कातीत जो अनुभव है उसका रंग भी है, इसलिए तुम्हें जच गई होगी बात। लेकिन अब मौका आ गया है कि तुम अपनी श्रद्धा को ठीक पहचान लो, और ये अब तक की खड़ी वाली श्रद्धा

पर ईमान रहा होगा, उससे मन शांत न हुआ। फिर ईसाइयत 25 साल लंबा वक्त है, उससे मन शांत न हुआ। मेरे साथ तो शायद 2-4 महीने की दोस्ती होगी, इससे कैसे मन शांत हो जाएगा। एक बात तो समझो कि भरोसा कर लेने से मन शांत नहीं हो जाता, मन शांत करने के लिए मन की अशांति के कारण तोड़ डालने पड़ेंगे। तुम्हें एक डॉक्टर पर भरोसा आ गया, इससे थोड़ी इलाज हो जाए। डॉक्टर पर भरोसा आ गया, ये सहयोगी बात है। अब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके भी तो काम शुरू करोगे ना। तो तुमने इतना कह दिया कि आ गया डॉक्टर पर भरोसा, लेकिन अभी भी बीमारी दूर नहीं हो रही, बात क्या है। और ईमान पूरा आ गया, ईमान आ गया, इसको लाभ होगा, लेकिन इतना काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। दवा भी लेनी होगी, औषधि भी लेनी होगी, और पथ्य भी स्वीकार करना होगा। कुछ बातें छोड़नी होंगी, कुछ बातें पकड़नी होंगी, रूपांतर करने होंगे। इसके पहले कि ये श्रद्धा भी खो जाए, कुछ करो, इस श्रद्धा का उपयोग कर लो। जो हुआ अतीत में हुआ, जितने दिन बेकार गए गए, अब बेकार मत जाने दो। अब इस श्रद्धा के प्रभाव में कुछ कर गुजरो, ताकि मन की व्यवस्था बदल जाए। तुम अशांत हो, उसका अर्थ है मन में अशांति के कारण होंगे। तुमने कभी ध्यान किया? बिना ध्यान के शांति ना आएगी। तुमने कभी पूजा की, भक्ति की? बिना पूजा भक्ति के शांति ना आएगी। तुमने कभी प्रेम किया? बिना प्रेम के शांति ना आएगी। और तुमने कभी विश्लेषण किया कि तुम्हारे मन की अशांति का मूल कारण क्या है? क्यों रात तुम सो नहीं पाते? तुम्हारा मन दौड़ता होगा, और धन कमा लूं, और बड़े पद पर पहुंच जाऊं, ये कर गुजरूं, वो कर गुजरूं। तुम्हारा मन दौड़ता रहता होगा, इसलिए तुम सो नहीं पाते। तो मन की दौड़ के जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको विदा करो। धन पाके क्या होगा, पद पाके क्या होगा, मौत आती, मौत की पगध्वनि सुनो, वो धन भी छीन लेगी, पद भी छीन लेगी। जागो और मन की व्यवस्था बदलो। अब अगर तुम मेरे प्रभाव में आ गए हो तो मेरी सुनो भी, उसके अनुसार थोड़ा करो भी, ध्यान करो, नाचो, गाओ, गुनगुनाओ, थोड़ा मस्ती में डूबो, अचानक तुम पाओगे अशांति गई। और जब अशांति जा चुकी होगी, तब तुम्हें जो श्रद्धा आएगी वो असली श्रद्धा होगी। क्योंकि जिसके द्वारा अशांति चली गई हो, फिर उसको छोड़ना असंभव हो जाएगा। और जिसके द्वारा सुख का थोड़ा सा स्वाद आ जाएगा, उसको फिर कैसे छोड़ सकोगे। तुम्हें ईसा से कुछ भी सुख का स्वाद नहीं आ पाया, क्योंकि तुमने ईसा की मान के कभी कुछ किया नहीं। बाइबल पढ़ते रहे होगे, तो बाइबल पढ़ने से क्या होगा? ये तो ऐसे ही जैसे कोई पाकशास्त्र की किताब बैठे पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, भूख लगी है और मरा जा रहा है, और चिल्लाता है कि क्या करूं, पाकशास्त्र की किताब पढ़ रहा हूं, फिर भी भूख नहीं मिटती। तो बाइबल तुम पढ़ते रहे हो, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। अब तुम मेरी किताबें मत वैसा ही उपयोग करने लगना जैसा बाइबल का किया था। बिल्कुल तुम कह रहे हो कि जब रात नींद नहीं आती तो आप का साहित्य पढ़ता हूं, तो कहीं नींद आती। तो तुम साहित्य का उपयोग इस तरह कर रहे हो, नींद लाने की दवा की तरह। साहित्य का उपयोग करो जीवन को बदलने के लिए, जीवन को क्रांति देने के लिए। अच्छा हुआ, क्योंकि नानक तो है नहीं, तुम अगर उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। ईसा तो अब है नहीं, तुम उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम किसी जीवित आदमी के करीब आ गए, संयोग है। इस सौभाग्य के क्षण का ठीक उपयोग कर लो, तो फिर शायद श्रद्धा को और कहीं जाने की जरूरत न रहे। यही श्रद्धा तुम्हारा अंतिम पड़ाव बन जाए। जीवन अपने में न तो सुख है न दुख, देखने देखने की बात है, दृष्टि की बात है, कैसे देखते हैं इस पर सब निर्भर है। सुख और दुख हमारी व्याख्याएं, सुख और दुख तथ्य नहीं है, सुख और दुख हमसे बाहर नहीं है, सुख और दुख हमारे देखने के ढंग के परिणाम है, निष्पत्तियां हैं। वही बात एक व्यक्ति को सुख हो सकती, वही बात दूसरे को दुख हो सकती, और उसी बात में कोई निरपेक्ष भी रह सकता, न सुख हो न दुख हो। और कभी ऐसा भी होगा कि जो बात तुम्हें आज सुख थी कल दुख हो गई, और जो आज दुख थी कल सुख हो गई। और कभी ऐसा भी होगा

ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम भी सुख और दुख के बाहर हो जाते हो, तटस्थ हो जाते हो। अगर कोई अपने जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण करे, सम्यक निरीक्षण करे, तो इस सत्य को खोजने के लिए शास्त्रों में जाने की जरूरत नहीं। सुकरात का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं। ठीक ठीक सम्यक निरीक्षण करके ही कोई जीवन योग्य जीने को पाता है। सुकरात से किसी ने पूछा कि तुम एक संतुष्ट सुअर होना पसंद करोगे या एक असंतुष्ट सुकरात? तो सुकरात ने कहा, मैं असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करूंगा, संतुष्ट सुअर होना नहीं। क्यों? पूछा पूछने वाले ने। क्योंकि आदमी संतोष के लिए ही तो सब करता है। सुकरात ने कहा कि असंतुष्ट सुकरात एक दिन संतोष पा लेगा, और ऐसा संतोष फिर जिसे छीना नहीं जा सकता। संतुष्ट सुअर तो नाम मात्र को ही संतुष्ट है, अभी उसने असंतोष ही नहीं जाना। असंतोष के पार होना भी कैसे जानेगा? जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण हो तो हम सुख और दुख दोनों के पार हो जाते। क्योंकि एक सत्य रोज रोज साफ होने लगता है, हमारी व्याख्या है। अगर हमारी ही व्याख्या है तो हम मुक्त हो गए। सारे धर्मों का अगर सार सूत्र पकड़ना हो तो इस बात में पकड़ लेना कि जीवन में जो भी हम अनुभव करते हैं वो हमारी व्याख्या है। इसलिए हम जब चाहें तब स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि अपनी व्याख्या बदलना अपने हाथ में है। अगर जीवन में सुख दुख हमसे बाहर होते तो बंधन हमसे बाहर होता। समझो, ऐसा नहीं है कि किसी ने तुम्हें कारागृह में डाल दिया है। अगर किसी ने कारागृह में डाला हो और जंजीरें पहनाई हो तो फिर तो तुम उसके हाथ में हो। मुक्त करेगा तो मुक्त होगे, मुक्त ना करेगा तो ना हो सकोगे। और किसी तरह मुक्त हो भी गए तो फिर भी पकड़े जा सकते हो, फिर दोबारा पकड़े जा सकते हो। तो तुम्हारी मुक्ति कोई बहुत गहरी मुक्ति नहीं हो सकती। जब अमुक्ति दूसरे पर निर्भर है तो मुक्ति भी दूसरे पर निर्भर रहेगी, और ये तो भारी परतंत्रता हो गई। मुक्ति में भी बंधे हैं तो ये तो भारी परतंत्रता हो गई। स्थिति ऐसी है कि तुमने मान रखा है कि तुम कारागृह में हो, ये तुम्हारी मान्यता है। जंजीरें असली नहीं है, सिर्फ मान्यता की है, सिर्फ धारणा की है। इसलिए जिस दिन तुम आंख खोलकर देखोगे जंजीरें पिघल जाएंगी, जंजीरें विसर्जित हो जाएंगी। ऐसा ही समझो कि जैसे रात सपने में तुमने पाया कि तुम कारागृह में पड़े हो और सुबह जाग के देखा कि अपने घर में हो। कारागृह तुम्हारी कल्पना का जाल था। बुद्ध के आज के सूत्र महत्वपूर्ण है। पहले सूत्र, पहले तीन सूत्र, सुसुखम वत् जीवाम वैरिनेसु अवेरिनो वैरिनेसु मनुष्येसु विहराम अवेरिनो। वैरियों के बीच अवेरी होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, वैरी मनुष्यों के बीच अवैरी होकर हम विहार करते। सुसुखम वत् जीवाम आतुरेसु अनातुरा आतुरेसु मनुष्येसु विहराम अनातुरा। आतुरों के बीच अनातुर होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आतुर मनुष्यों के बीच अनातुर होकर हम विहार करते। तीसरा सूत्र, सुसुखम वत् जीवाम उत्सुकेसु अनसुका उत्सुकेसु मनुष्येसु विहराम अनसुका। आसक्तों के बीच अनासक्त होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आसक्त मनुष्यों के बीच अनासक्त होकर हम विहार करते। इन सूत्रों के जन्म की कथा समझे। सांख्य और कोली राज्यों के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी शाक्य और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए रोहिणी नदी पर आए। दोनों ही पहले अपने
बातों को सींचना चाहते थे, अतः दोनों में झगड़ा हो चला। यह समाचार उनके मालिक सात्य और कोलियों को मिला। छत्री तो छत्री, तलवारें निकल गई। वे सेना को साथ लेकर तैयार होकर युद्ध करने के लिए निकल पड़े। भगवान बुद्ध रोहिणी तट पर ही ध्यान करते थे। उन्हें यह खबर मिली, वे आकर युद्ध को तत्पर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हो गए। सात्य और कोलियों ने भगवान को देखकर हथियार फेंक वंदना की। भगवान ने कहा, महाराज यह कैसा झगड़ा है, किस बात के लिए झगड़ा है? दोनों राज्यों के राजाओं ने कहा, बनते कारण हम नहीं जानते। भगवान ने पूछा, फिर कारण कौन जानता है? अकारण तलवारें निकाल ली है, कारण भी न पूछा, कारण तो खोज लेते। उन्होंने कहा, शायद सेनापतियों को पता हो। सेनापतियों ने उप सेनापतियों की ओर इशारा किया, उप सेनापतियों ने सैनिकों की ओर, और अंततः बात नौकरों पर पहुंची। तब कहीं कारण का पता चला। नौकरों ने कहा, बनते पानी के कारण। बुद्ध ने कहा, पानी के कारण? पानी तो सदा से बहता है, लड़े तुम आज, झगड़ा पानी के कारण नहीं हो सकता। नौकरों ने कहा, समझे बनते, पहले कौन उपयोग करे? तो बुद्ध ने कहा, पहले के कारण, पानी के कारण नहीं। प्रथम कौन हो, पानी को दोष मत दो। बुद्ध हंसे और उन्होंने साखियों और कोलियों के प्रधानों से पूछा, महाराज पानी का क्या मूल्य है? राजा बहुत लज्जित हुए, शर्माते बोले, अल्प मात्र बनते, ना कुछ। पानी का क्या मूल्य? और मनुष्यों का? बुद्ध ने पूछा। राजा और भी सक्षम है और बोले, अमूल्य बनते, मनुष्य से ज्यादा मूल्यवान और क्या है? बुद्ध ने कहा, तो फिर सोचो, अल्प मात्र मूल्य के लिए अमूल्य को मिटाने चले हो, पानी के लिए खून बहाने चले हो, और नदी ऐसी ही बहती रहेगी, तुम गिरोगे कटोगे मरोगे, और नदी ऐसी बहती रहे ऐसी ही बहती रहेगी, और नदी को पता भी ना चलेगा। असार के लिए सार को गमाते हो, कंकड़ पत्थरों के लिए हृदय जवाहरात फेंकने चले हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख है, चिंता है, अंधकार है। मुझे देखो, मेरे महासुख को देखो, क्या है इसका राज? यही कि मैं वैर रहित विहरता हूँ, यही कि सार को मैं सार और असार को असार देखता हूँ। और तब उन्होंने ये तीन गाथाएं कही। पहले तो इस कहानी के एक एक शब्द को समझिए। शास्त्रों में जो बोध कथाएं हैं, वो ऐसे ही पढ़ लेने के लिए नहीं, उनके शब्द शब्द में अर्थ और परत परत अर्थ है। एक परत उघाड़ोगे तो दूसरा परत अर्थ मिलेगा, और जितने गहरे जाओगे कथा में उतने ही चौंकोगे कि तू सीढ़ी दर सीढ़ी उतरते जा सकते हो। पहली बात, झगड़ा हुआ नदी के तट पर नौकरों में, झगड़ा हुआ नौकरों में, और मालिक खींचे चले आए। तो नौकर मालिक मालूम होते हैं और मालिक नौकर मालूम होते हैं, ये पहली बात ख्याल में लेने जैसी है। और ये मनुष्य के संबंध में बड़ी गहरी बात है। कहानी में शायद तुम्हें सीधी साफ हो भी ना सके, क्योंकि ये कहानियां ध्यान के विषय हैं। इन कहानियों पर खूब ध्यान कोई करे तो इनकी परतें उघड़ती हैं। पहली परत, आंखें हाथ नाक कान नौकर है, और मालिक इनके पीछे खींचा हुआ चला आता है। आंख ने कह दिया सौंदर्य है और तुम चले दीवाने हुए, और तुम्हें पता भी नहीं है कि सौंदर्य है या नहीं। आंख ने कह दिया, आंख पे भरोसा कर लिया। कान ने कह दिया और कान पे भरोसा कर लिया। स्वाद ने कह दिया और स्वाद पे भरोसा कर लिया। ऐसे नौकर चाकरों के बस में मालिक घिसटता है। और जिस दिन तुमसे कोई पूछेगा गहरे में कि ऐसा तुमने क्यों किया, तुम कहोगे कारण पता नहीं, तुमने देखा नहीं। कोई आदमी किसी के प्रेम में पड़ जाए, पूछो उससे क्यों, वो कंधे पिचकाता है, वो कहता क्यों का तो कुछ पता नहीं। एक आदमी धन के पीछे पागल होकर दौड़ रहा है, पूछो क्यों,
शायद वो कह चुकी, सब लोग दौड़ रहे, सारी दुनिया दौड़ रही, इसलिए और भी दौड़ रहे हैं। इसलिए एक आदमी पद के लिए पागल है, पूछो क्यों, शायद सास उसे हो ही ना। इंद्रियों ने कुछ खबरें दी, इंद्रियों की खबरों को मान के भीतर का मालिक चल पड़ा है। तो साक्य और कोलियों के राज के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। दूसरी बात, यहां हम सब एक ही जीवन को भोग रहे हैं, इसलिए झगड़ा तो प्रतिपल हो सकता है, क्योंकि हर एक के बीच वही नदी बह रही है, उसी से जल मुझे लेना, उसी से जल तुम्हें लेना, जीवन एक है। तो हम सब पड़ोसी हैं। जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है, अपने पड़ोसी को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को। और एक दूसरा वचन है कि अपने दुश्मन को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को। संत अगस्तीन से किसी ने पूछा कि दोनों वचन एक से लगते फिर भी बड़े भिन्न हैं। एक तरफ जीसस कहते हैं अपने पड़ोसी को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को, और एक तरफ जैसा कहते हैं दुश्मन को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को। तो अगस्तीन ने कहा, जहां तक मैं समझता हूँ, दुश्मन और पड़ोसी दोनों एक ही के नाम है। जो पड़ोसी है वही तो दुश्मन है। तुमने ख्याल किया, तुम्हारा दुश्मन है कौन? तुम्हारा पड़ोसी। जो दूर है उससे तो दुश्मनी नहीं होती, जो पड़ोस में उससे दुश्मनी होती, क्योंकि एक ही जीवन की नदी, उस पर दोनों दावेदार। छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है। बातें ही क्या है, झगड़े के लिए कारण भी कहां है, झगड़े योग्य कारण कहां है? तुम लड़े किन छोटी छोटी बातों पर हो? कभी किसी ने आधा फुट जमीन दबा ली, झगड़ा हो गया। तुमने कभी सोचा भी नहीं है कि झगड़ के तुम क्या गमा रहे हो। और एक बात तो स्वीकार करने की ही है कि ये जीवन हमारा साझी का जीवन है, हम सब एक ही जीवन जी रहे हैं। तो नदी तो एक है, जल सबको पीना है, प्यासे सब हैं, और स्वभावतः छीना झपटी हो सकती है, लेकिन छीना झपटी करने में मूढ़ता है, मूर्छा है। दोनों जनपदवासी एक ही नदी के जल से अपने खेतों को सींचते। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साखियों और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई के लिए नदी पर गए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे। अब पहले से कुछ लेना देना नहीं है, खेत सींचना असली बात होगी। असली बात है कि खेत सूख रहा है, धूप घनी है, जेठ की दोपहरी है, पानी देना जरूरी है। असली बात पानी देना है। पहले और पीछे का कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन जीवन के सारे झगड़े पहले और पीछे के झगड़े। इतना हम भूल जाते हैं पहले पीछे में कि खेत में तो एक तरफ पड़े रह गए, जब झगड़े शुरू हो गया तो नदी से किसी ने भी पानी नहीं दिया। खेत प्यासे के प्यासे खड़े, खेत रोते के रोते खड़े। यहां दूसरी ही बात चल पड़ी। कई बार ऐसा होता है कि मूल कारण तो एक तरफ पड़ा रह जाता है, व्यर्थ की बातें बीच में आ जाती, फिर हम मूल को तो भूल ही जाते, फिर हम उन व्यर्थ पर ही जूझते रहते। पहले और पीछे का सारा झगड़ा है, सारी प्रतियोगिता इस बात की है कि कौन पहले। जीसस का दूसरा प्रसिद्ध वचन है कि जो अंतिम है, जो अंतिम होने में समर्थ है, वे ही मेरे प्रभु के राज्य के मालिक होंगे। जो अंतिम होने में समर्थ है, इस जगत में सबसे बड़ी सामर्थ है अंतिम होने की सामर्थ। प्रथम तो कोई भी पागल होना चाहता है, प्रथम होने में कुछ विशिष्टता नहीं है, सभी प्रथम होना चाहते। प्रथम होना तो बड़ी सार्वजनिक बीमारी है, प्रथम होने का पागलपन तो सभी पर चढ़ा है। और ये प्रथम होने के पागलपन को ही मैं राजनीति कहता हूं, इसलिए राजनीति सारे झगड़ों का मूल आधार है। जब तक दुनिया से प्रथम होने का रोग नहीं जाता, तब तक दुनिया से राजनीति नहीं जाएगी, और जब तक राजनीति नहीं जाती, तब तक युद्ध नहीं जाएंगे।
तब तक हिंसा नहीं जाएगी। लाख समझाओ अहिंसा, इससे कुछ भी ना होगा। तुम हिंसा का सूत्र पकड़ो, हिंसा का सूत्र है मैं पहले, अहिंसा का सूत्र है मैं अंतिम होने को राजी, क्योंकि असली सवाल होने का है। आखिर में खड़ा हो जाऊंगा, सबसे पीछे खड़ा हो जाऊंगा, वहां खड़ा हो जाऊंगा जिस जगह से कोई धक्का देने को आए ही नहीं। पहले का झगड़ा था, और जब पहले का झगड़ा हो तो पानी भी गौण हो गया, खेत भी गौण हो गए। खेत और पानी तो छोड़ो, जिनके लिए खेत की सिंचाई की जा रही थी वे मनुष्य भी गौण हो गए, जिनके लिए भोजन जुटाने के लिए खेत खड़े थे वे मनुष्य भी गौण हो गए। झगड़ा हो चला। क्या है झगड़ा सारी दुनिया में? रूस का अमेरिका का झगड़ा क्या होगा? भारत पाकिस्तान का झगड़ा क्या होगा? चीन तिब्बत का झगड़ा क्या होगा? इसराइल इजिप्त का झगड़ा क्या है? वही झगड़ा है, उसी झगड़े की ये कहानी। और जब इक्का दुक्का आदमी पागल होता है तब तो हम पहचान लेते हैं, जब भीड़ पागल होती तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब समूह के समूह पागल हो जाते हैं तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: क्योंकि तुम हो हटके।
4: ओम शांति एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी।
5: आप एक्शन जो जुडिशरी एक्शन है वो तो लेंगे, लेकिन एक बार वो आपके पास आ गए फिर आपको उनके साथ क्या करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाए। रिफॉर्म करने के लिए एक्चुअली क्या चाहिए होता है? जैसे आपने कहा, एक तो मोटिवेशन कि हम अपने आप को ही नहीं आज रिफॉर्म कर पा रहे या हम अपने आप को ही नहीं हील कर पा रहे, तो हम औरों के लिए कहाँ से करेंगे? और दूसरा टाइम, टाइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
4: देन अगेन माइंडसेट्स हैं कि क्रिमिनल्स कभी नहीं होते, आप कुछ भी कर लीजिए। इनफैक्ट एक और बहुत बड़ा माइंडसेट हमारे साथ चलता है कि जो सपोजिटली लोअर वर्कर्स हैं, दे नेवर चेंज, यू नो, दे विल ऑलवेज बी लाइक दिस।
5: लेबलिंग, हां, अगेन लेबलिंग। तो वो जितना लेबल हम करते जाएंगे तो वो जो स्टैम्पिंग है वो और ज्यादा होती जाती है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, वही जो हमने कहा, उनको अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर फिट कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ भी ऐसा किया कर्म थोड़ा सा, हम कहेंगे लेबर, वो तो सारे ही ऐसे होते हैं, यू नो, बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम में उनको फिट कर लेते हैं। तो रिफॉर्मेशन करने के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस, पेशेंस बहुत चाहिए, कंटिन्यूस दोनों तरफ से, जो जिसे रिफॉर्म होना है और जिसे वो करना है, दोनों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए।
4: आई थिंक और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक बात है जो रिफॉर्म नहीं होने देती, वो समवेयर ये भी है जो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है उसको कंटिन्यूस अवेयरनेस है कि मैं रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा
5: हूं। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। और वो पहली बात जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो ये है, अगर जो रिफॉर्म करने के निमित्त है, अगर उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस होगी कि ये क्रिमिनल है तो वो उसे रिफॉर्म नहीं कर सकता। उसका हर एक शब्द और हर एक एक्शन एक पनिशमेंट ही है, क्योंकि वो क्रिमिनल को कर रहा है। तो वो, और फिर एक रिफॉर्मर के अंदर एक नेचुरल संस्कार ये क्या बन जाता है, गलतियां निकालने का, कमजोरियां देखने का और जजमेंटल बनने का। दैट इज नॉट रिफॉर्मेशन, क्योंकि फिर तो आप एक सटल तरह से पनिशमेंट ही दे रहे हैं। नॉर्मली अगर आप एक सीन ऑफ क्राइम को देखते हैं या एक गलती होते हुए देखते हैं, किसी ने किसी के साथ गलती की, एंड आई एम थर्ड पर्सन, लेकिन जब इन्होंने इनको दर्द दिया, सो कॉल्ड जैसे हम सोचते, और मुझे भी वो दर्द महसूस होना शुरू हो गया, तो आई एम ऑल्सो अ विक्टिम, एंड अब आई एम इन द रोल ऑफ रिफॉर्मिंग। लेकिन बिकॉज आई एम अ विक्टिम तो मुझे लगता है इन्होंने अत्याचार किया,
4: बिकॉज आई एम्पथाइज्ड विद दैट विक्टिम,
5: या बट आई कुड फील द पेन ना, मैंने पेन अपने साथ ले लिया, तो मुझे लगता है ये अपराधी है, ये क्रिमिनल है, इन्होंने गलत किया, तो मैं कभी उनकी हेल्प नहीं कर सकती। जैसे ही मुझे ये रियलाइजेशन आएगा कि ये जो पेन मैंने अभी अभी क्रिएट किया इस सीन को देखकर, ये मेरा अपना क्रिएशन था, उन्होंने जो करना था वो किया, लेकिन जो पेन मैंने क्रिएट किया ये मैंने अभी अभी अपना क्रिएट किया, लेट इट गो, लेट द पेन गो। जैसे ही पेन चला जाएगा, आई विल बी एबल टू सी दैट पर्सन एज द पर्सन इज, विदाउट जजमेंट, विदाउट दैट गुड बैड राइट रॉन्ग, वो जजमेंटल नहीं होना है। हम उसके साथ जिसने अटैक किया है या जिसने गलती की है उसके साथ एम्पथाइज करना अब शुरू कर सकते हैं, उनको समझना शुरू कर सकते हैं कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। व्हेन आई अंडरस्टैंड कि मेरे अंदर क्लैरिटी आई है, कोई मुझे जो चीजें जैसी हैं वैसे समझ में आने लग गई है, नाउ आई ओनली हैव टू एम्पावर। रिफॉर्म नहीं करना है मुझे, मुझे उनको सशक्त करना है। वो भी मेरी तरह ही आत्मा है लेकिन वो कुछ बातों को भूल चुकी है, तो मुझे सिर्फ उन बातों की स्मृति को लाना है, लेकिन मैं वो तब ला पाऊंगी जब मैं उनको वो रिस्पेक्ट से देख सकती हूँ। क्योंकि जैसे क्रिमिनल देखा, देयर यू गो,
4: जैसे हमने वो आत्मा देखा, आत्मस्वरूप अपना वाला, जैसे मैं हूँ वैसी देखा, बट आई थिंक
5: तब हम वो वाइब्रेशन भेज पाएंगे जो एम्पावरमेंट क्रिएट करेगी, और वो एम्पावरमेंट के लिए तभी हम कर पाएंगे जब हम उनको जज नहीं करेंगे कि ये क्रिमिनल है, वो भी मेरी तरह एक आत्मा है। जैसे वो थॉट क्रिएट कर लिया, यू सी व्हाट यू विल डू मैजिक विद देम। वो आप उनको रिफॉर्म नहीं करते हैं बिकॉज द वर्क इज ऑल डन बाय मी माई सेल्फ, लेकिन वो खुद जो करने की उनको शक्ति चाहिए बस वो हमें देनी है, वो स्मृति वापस लानी है, और उसके लिए हम ये टैग हटा दें कि क्रिमिनल है, और गुड बैड ये जो जजमेंटल हम बनने की कोशिश करते हैं ये हटा दें, और उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी, क्योंकि उस समय क्या हो गया, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. तो वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो हम सबको देते हैं, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी अगर हम उनको दें, अपने आप को वो एम्पावर कर देंगे. हमें नहीं करना. सोल कॉन्शियसनेस विल वर्क एवरीवेयर. ये हम जो ऑलरेडी थॉट क्रिएट कर देते हैं, वो ऐसा कहेंगे, वो ऐसा करेंगे, तो हम वो ऑलरेडी एनर्जी ट्रांसमिट कर देते हैं एंड देन वो ऐसा ही करेंगे.
4: तो हर नेगोशिएशन पे एक एम्पावर होके हम खुद जा सकते हैं.
5: अभी क्या होता है, या तो हम सुपीरियर फील करते हैं या इंफीरियर फील करते हैं, और सोल कॉन्शियसनेस में वी आर इक्वल. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम तो सोल कॉन्शियस हैं, सामने वाला तो नहीं है, वो अपने अहंकार में है. लेकिन जब हम उसे वो दृष्टि से देखेंगे, तो है तो आत्मा, वो सिर्फ भूली हुई है. तो जब हम उसको उस दृष्टि से देखेंगे, उसके अंदर भी वो स्मृति जागृत होगी, और आत्मा के जो गुण है वो ऑटोमेटिकली जागृत हो जाते हैं. ये सारे गुण कुछ बोलने से जागृत नहीं होंगे. आप कितना भी बोल दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, इट वोंट वर्क. इट हैज टू कम फ्रॉम डीप विदिन, बट इट्स वेरी डीप रूटेड. ये लगता है कि नहीं, तो बहुत इजी है, हम जाकर वहां सोचेंगे कि ये तो आत्मा है.
4: हम भूल जाते हैं ना उस वक्त तो, क्योंकि बाकी सारी चीजों ने फॉग किया होता है.
5: थॉट भी नहीं आना चाहिए कि सामने वाले ने गलती की है, सामने वाला एक अपराधी है, सामने वाला. ये थॉट ट्रेस में भी नहीं होगा, तब वो प्योरिटी ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम कहेंगे प्योरिटी ऑफ थॉट, जहाँ एक इम्प्योरिटी का ट्रेस भी नहीं है, दैट विल रीच टू द अदर सोल. And that will bring about empowerment.
4: That's wonderful, actually. अगर हम पूरे aspect को देखें तो सारे crime जो scenes हैं और इस वक्त जिस हालात में पूरा समाज है, मुझे लगता है कि आज हम में से हर कोई criminal है. You know, thought में नहीं, मतलब action में नहीं तो कहीं ना कहीं thought में तो है ही, लेकिन action में भी हम में से हर तीसरा बंदा जो है, तीसरा व्यक्ति criminal नजर आ रहा है. यहाँ अगर हम crime के scene से हटके अपने घर पे भी आ जाते हैं, तो यही फिलॉसफी शायद हम अपने रिफॉर्मिंग ऑफ किड्स, यू नो, रिफॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन, हमारे कि हमारा बच्चा बात नहीं मान रहा है, यही सही रास्ता है, ये ऐसे करना चाहिए उसे, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, रिबेल हो रहा है, तो यहाँ शायद वो पनिशमेंट की वजह.
5: जितना हम पनिशमेंट को यूज करते हैं, तो मेजोरिटी केसेस में ये देखा जाता कि जो रिबेल होने की नेचर है, वो संस्कार और भी ज्यादा कड़क होता जाता है. जो हम कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं या बहुत ढीठ हो गए हैं, कि अब कितना भी बोलो वो नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा देने का तरीका था वो कहीं ना कहीं, वी यूज अ शॉर्टकट मेथड बिकॉज अगेन लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ पेशेंस, एंड मोर देन दैट आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस माई सेल्फ.
4: I don't know. See, that's the biggest thing. क्योंकि कभी भी कोई पेरेंट जानते बूझते नहीं करना चाह रहा होगा, लेकिन शायद वो जान ही नहीं पाते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है इस पूरे एटीट्यूड.
5: तो अपनी अवेकनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे तो हम औरों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे. और अभी भी आपने देखा होगा कि अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान जितना हम अपने आप को समझ लेते हैं और हमें अंदर का पूरा मैकेनिज्म समझ में आता है कि ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम औरों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं. जब कोई सामने से गुस्सा करता है ना, फॉर एग्जांपल, हमें पता चलता है कि ये गुस्सा गुस्सा नहीं है, एक्चुअली ये अंदर कोई दर्द है, ये अंदर हर्ट है कोई, और ये दर्द एक गुस्से के रूप में बाहर आ रहा है. तो पहले हम कैसे रिएक्ट करते थे, गुस्सा कर दिया मुझे कैसे गुस्सा कर दिया, अब समझ में आता है ये गुस्सा थोड़ी है, ये तो अंदर कितना दर्द है. So now you cannot have hatred, you will have compassion. वो खुद इतने दर्द में है तो वो आपको भी सही पर्सपेक्टिव में नहीं देख पा रहे, तो उन्होंने वो कर्म किया, लेकिन उनको किस चीज की आवश्यकता है. अब वही बात होगी, एक दर्द में है, अब मैं उसकी बात को लेके मैं भी दर्द में चले जाऊं, तो हम दोनों को हेल्प कौन करेगा, और फिर मैं उनको और दर्द दूं. बच्चे ने गलती की पेरेंट के साथ, तो पेरेंट भी दर्द में चला गया, बच्चे को और दर्द दिया. It's become a cycle. And then it is, how do we come out of this cycle? And then we say we're all in pain. Who will heal who? Everyone is a patient now. So that's why let me take up the responsibility. And isliye jo hum kehte hain meditation ke liye time nahi hai, ya I don't have time for myself, what we don't realize is it's not just for myself, it's for my family also.
4: For my all loved ones, jinke liye main zindagi dene ko taiyar hu, sab kuch karne ko taiyar hu, unawareness mein main kahan tak kitna nuksan. रिश्तों की बात करें, मतलब हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको मैं जरूर थोड़ा सा छूना चाहूंगी कि आज जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट, इतनी दूरियां, इतना कम्युनिकेशन गैप इधर इधर होते हुए नजर आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बात करें या किसी भी तरह का रिश्ता, तो वहां पे भी शायद एक भी अगर जागरूक अवस्था में,
5: ओनली वन, यू नीड ओनली वन. कई बार घरों में लोग कहते हैं ओ जी मैंने अगर अपने ऊपर मेहनत की लेकिन बाकी सब लोग तो वैसे ही हैं. लेकिन कोई बात नहीं, बाकी सब वैसे ही रहेंगे. वन पर्सन हैज टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो एक करे उससे औरों को तो बेनिफिट होगा, औरों को प्रेरणा भी मिलेगी करने की.
4: और उस एक को ये नहीं समझना पड़ेगा कि मैं एहसान कर रहा हूँ. यू नो समवेयर ये इसके साथ भी कि मैं ही करता जा रहा हूँ, मैं ही कब तक करूंगा, मैं ही कर रहा हूँ.
5: जब अभी जब हम कुछ करते हैं इस तरह से तो हमें लगता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ. लेकिन जब अवेयरनेस से करेंगे तो हमें समझ में आएगा दिस इज द वे टू बी. इसके अलावा तो और कोई रास्ता ही
4: और मतलब ये मेरे लिए जरूरी
5: है. वे दिस इज द नेचुरल वे ऑफ लिविंग. अभी तक जो हमारा वे ऑफ लिविंग था बिटरनेस को पकड़ के, हर्ट को पकड़ के, दैट वॉज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग. और सफरिंग किसके लिए? बहुत प्राउडली हम कहते हैं उन्होंने ये कहा, मैंने अभी तक वो बात नहीं भूली, इतने साल से मैंने वो बात पकड़ के रखी हुई है. नुकसान किसका है? उनका. वो भूल चुके अपना. सारा दिन अपनी सफरिंग सेल्फ क्रिएटेड है. इवन ये अगर हमें समझ में आ जाए बॉटम लाइन, आई क्रिएट माई ओन सफरिंग. टिल व्हेन?
4: टिल आई अंडरस्टैंड, टिल आई अवेक.
5: लेट मी स्टॉप नाउ. नोबडी क्रिएट सफरिंग फॉर मी. नोबडी कैन कॉज मी पेन. ओनली एंड ओनली मी. How much more do I want to cause pain for myself? When will I stop? That's it. And then मेरे को लगता है 10 minutes अपने लिए निकालना
4: मुश्किल नहीं होगा. बिल्कुल नहीं. In fact, that's it. ये तो हम understand कर ही चुके हैं और अब हर बार और clarity से आता जा रहा है कि meditation is empowering my own self. You know, healing की हम बात कर रहे थे. ना सिर्फ healing अपने लिए, पूरे परिवार के लिए और gradually पूरे समाज के लिए. जो अब बात ये करते हैं कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं तो ये दिस इज द वे एक्चुअली टू गो आउट एंड यू नो लाइक फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ. सिस्टर शिवानी आज की इस बातचीत ने कई परिपेक्ष तोड़े हैं, एक नया अंदाज दिया है जिंदगी को देखने का और किस तरह से क्राइम या क्रिमिनल्स को देखना है बड़े परिपेक्ष में देखें तो वो भी बदल रहा है. जिंदगी कितनी खूबसूरत है, हम में से हर कोई ऐसा ही चाहता है. लेकिन जिंदगी जीते जीते कई बार जब ऐसे मोड़ आते हैं, जब लगता है कि हम हर्ट हो गए या मुश्किलें बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं, ऐसे में हमने इन दिनों की बातचीत में ये जाना कि जब हम हर्ट होते हैं तो या तो हम रिवेंज लेते हैं, वी वॉन्ट टू लैश आउट, या फिर हम पनिश करना चाहते हैं उसे जिसने हमें हर्ट किया है, या फिर हम ये सोचते हैं कि रिफॉर्म किया जाए. और इस पर हमने बहुत ही नए नज़रिए से बातचीत की कि इस ज्ञान को जानते हुए, खुद को पहचानते हुए और अध्यात्म या ध्यान का साथ देते हुए, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, इस एस्पेक्ट को अपने साथ रखते हुए जब अब इन मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो एक नया अंदाज था. आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्षमा की बात करते हैं कि किस तरह से क्षमा हमारे जीवन में लाई जा सकती है, क्षमा का सही परिपेक्ष क्या है. और इसे बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
5: ओम शांति.
4: सिस्टर शिवानी, अब बहुत डिफरेंट हो गया है सब कुछ, देखने का तरीका बदला है और जिस तरह से हम एक सशक्त होके सुबह के ध्यान से जो एक शक्ति लेकर हम दिन भर उस बात को याद रखते हैं कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई कैन चेंज, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, ये हर्ट भी मैं खुद ही अपने आप को दे रही हूँ, तो बाकी चीज़ें दिखने लगती हैं. इसी से जुड़ा एक और एस्पेक्ट होता है क्षमा का. उसको भी हम सही परिपेक्ष में अगर देखना चाहें, कहीं ना कहीं जब हम क्षमा करते हैं, हम कहते हैं कि वी फॉरगिव यू, समवेयर हम ऊपर उठ जाते हैं. वो ऊपर उठना आज मुझे थोड़ा डाउटफुल लगने लग गया है, हमारे बहुत से दर्शकों को भी, ये कहीं सही नहीं है. तो सही परिपेक्ष क्या हो?
5: जैसे हमने देखा कि आज दिन तक हम समझते हैं कि दूसरा हमें हर्ट कर रहा है, तो तब हमने जो रिस्पॉन्सेस क्रिएट किए वो थे बदला लेने का, पनिश करने का. उससे अच्छा हमने समझा कि दूसरों को परिवर्तन करने का प्रयास करें. और एक जो ऑप्शन हमारे पास है, यू नो बिकॉज दीज आर ऑल चॉइसेस दैट वी हैव, कि जब एक इमोशन हमारे अंदर क्रिएट होता है, व्हाट इज़ द चॉइस दैट आई हैव दैट टाइम? फॉरगिवनेस. फॉरगिव करना या क्षमा करना, जो आज दिन तक हम सुनते आए कि क्षमा बहुत, यू नो, क्षमा अगर हम कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. इट्स द हाईएस्ट थिंग दैट समबडी कैन गिव इफ यू कैन टोटली फॉरगिव.
4: इनफैक्ट ये कहा भी जाता है कि आप बड़े बन जाओ ना, क्षमा कर दो.
5: क्षमा कर दो कि उसने तो गलती की, आप क्षमा कर दो. तो क्षमा करना, ये आज दिन तक हमने रियलाइज भी किया कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि यस इफ आई फॉरगिव देन एवरीथिंग इज ओके, लेकिन जब उसको करने पर आते तो कहीं ना कहीं मुश्किल लगता, क्योंकि फिर वही बात पकड़ लेते, लेकिन उसने हमारे साथ ये किया तो अब मैं कैसे क्षमा करूँ, उसने तो मुझे इतना तकलीफ दिया, अब मैं इसको कैसे क्षमा करूँ। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि क्षमा क्या है, और अगर मुझे फगिव करना है किसी को तो मुझे क्या याद रखना पड़ेगा जिससे मेरे लिए फगिव करना, और वो भी फॉरगिवनेस की राइट परसेप्शन से, और उसको जब राइट पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे कि एक्चुअली भी हम फॉरगिव किसको कर रहे हैं, लेकिन हमें फॉरगिव करना वो और इजी हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे आज भी हमारे पास बहुत फोन्स आते हैं, बहुत ईमेल्स आती हैं, या हम जब एक दूसरे से भी बात करते हैं, वी रियलाइज के ईच वन, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक विक्टिम बन के बात करते हैं। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ इतना धोखा हुआ, मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ, मेरे इन लॉज मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, यू नो देयर इज अ होल लिस्ट। सो वी आर ऑलवेज अ विक्टिम, एंड तब हम उस विक्टिम की फीलिंग में हम अपनी पूरी लाइफ काट देते हैं। तो अगर हमें रियली फॉरगिव करना है, आई विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस विक्टिम, यू नो आई एम द विक्टिम, यू नो मेरे पर अत्याचार किया जा रहा है, हमें इससे निकलना होगा। और इससे फिर हम तभी निकल सकेंगे जब हम ये रियलाइज करेंगे कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ कर रहा है मैं कर रही हूँ। अभी तक समझते थे आई एम विक्टिम क्योंकि आप कर रहे हैं, लेकिन जब मैं खुद कर रही हूँ तो कौन विक्टिम और कौन विक्टिमाइजर। सबसे पहले क्योंकि फॉरगिवनेस के लिए एक बहुत एलिवेटेड स्टेज चाहिए, फॉरगिवनेस के लिए हमें प्यार चाहिए। I can only forgive if I'm filled with love, if I know the truth, if I'm at peace, then I can forgive. अगर मैं disturbed हूँ, मुझे मेरे अंदर नफरत है और प्यार का बिल्कुल कोई ट्रेस ही नहीं, तो forgiveness कहाँ, वो पॉसिबल नहीं। तो वो विक्टिम की फीलिंग से बाहर निकल आइए कि जो है वो मैंने क्रिएट किया है, फिनिश भी
4: मैं ही करूँ,
5: मुझे करना। अगर किसी ने मुझे फिजिकली हार्म कर दिया, यू नो कोई एक्सीडेंट है, कोई फिजिकल अब्यूज है, या कुछ भी इस तरह से है, कोई मारपीट हो जाती है, चोट लग जाती है एक दूसरे की वजह से, तो आई हैव टू रिमेम्बर कि मैं शरीर नहीं हूँ जिसको चोट लगी। क्योंकि जब मुझे ये लगता है मुझे चोट लगी, यू नो जब मुझे चोट लगी, आई हेट यू फॉर इट, आपकी वजह से मुझे ये चोट लगी या मेरे शरीर के अंग को ये हो गया, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, तो चोट किसको लगी? तो शायद उनकी गलती की वजह से मेरे शरीर को तो चोट लगी, लेकिन मुझे चोट किसकी वजह से लग रही है? मुझे चोट तो अपनी वजह से लग रही है। तो देन व्हाट हैपेंस, दैट नेगेटिविटी जो हम दूसरे के प्रति फील कर रहे हैं, बिकॉज इसमें प्रोसेस क्या है अंदर, कि जो हम दूसरे के प्रति वो नेगेटिविटी फील कर रहे हैं उसको आई हैव टू, और ऑप्शन क्या है? और माफ हम किसके लिए कर रहे हैं? से एक तो या तो फिजिकल पेन है, अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है वो फिजिकल पेन हो गया, लेकिन साथ साथ मैंने अपने को क्या हार्बर कर दिया, इमोशनल पेन भी कैरी किया। अब जो वो इंसिडेंट होता है वो तो एक बार होता है, बट मैं उसको अंदर ही अंदर अगेन रिलिव करते जाती हूँ, तो ज्यादा पेन कौन दे रहा? तो उस समय इफ मतलब इसमें बड़ा बनना या क्या कहे इसको, लेकिन ये अपने लिए ही और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे साथ। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, एंड इफ आई होल्ड इट विद मी, द लॉस इज ओनली माइन, आई हैव नो अदर चॉइस एक्चुअली। मे बी इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटनिंग, लेकिन आई हैव नो अदर चॉइस देन टू फॉरगिव इफ आई वॉन्ट टू लीड अ हेल्दी लाइफ आगे। नहीं तो मेरी जो बाकी जीवन है वो सिर्फ दर्द में बीतेगी, और ऐसी जीवन की फिर क्वालिटी का क्या?
4: बिल्कुल। और यहाँ पीयर प्रेशर, यहाँ सोसाइटी, समाज एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हम क्यों नहीं समझ पाते, और पूरा समाज जो है वो जिसके साथ ये घटा है उसे बार बार बार बार वो याद दिलाता जाता है कि आपके साथ क्या घटा है।
5: एब्सोल्युटली। और वो एक रबिन हो जाता है कि आपके साथ अत्याचार हुआ, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। तो क्या होता है, वो नेगेटिव, सी एवरी टाइम हम किसी के साथ इस तरह से कहते हैं, वो ऑलरेडी दर्द में है, वी गिव मोर के और नेगेटिव। सारा खेल तो एनर्जी का है ना, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई उस विक्टिम फीलिंग में भी है तो वो नेगेटिव एनर्जी में है, हमें क्या देना है। और तभी हमने देखा कि इफ़ आई एम इन दैट पीसफुल स्टेट, तो मैं उस आत्मा को भी वो शांति की वाइब्रेशन, वो पावरफुल वाइब्रेशन देकर उसको उस दर्द से बाहर निकलने में मदद करूँ।
4: पेन में हूँ,
5: अगेन अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं जो एक अगेन मैं विक्टिम हूँ, इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना पड़ेगा। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, या मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया है, वो एक बार हो गया है, ठीक है, अब मुझे विक्टिम बनकर कितना समय चलना है? This I will have to ask, because otherwise मैं पूरी जीवन चल सकती हूँ with this thought कि मैं victim, you know, और वो जीवन फिर quality बहुत दर्द वाली होगी. तो उससे बाहर निकलना होगा कि मैं victim हूँ, एक incident था, over, I have to move ahead. Victim वाली feeling से बाहर निकलना होगा. और बहुत important बात है कि जीवन है, जीवन की यात्रा में चीजें आएंगी, ये होता है, ऐसी चीजें होंगी, अगर कोई ऊपर नीचे बात हो जाती है, आई हैव टू मूव ऑन टेकिंग इट, कि इट्स अ लेसन विच हैज कम फॉर मी, आई हैव टू लर्न फ्रॉम इट, मूव ऑन, आई हैव अ चॉइस. जैसे कई लोगों की आदत सी हो जाती है कि जो उनको मिलता, जहां वो बैठते, जिसके साथ बात करते, वो वापस वही बात दोहराना शुरू कर देते हैं. आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? You know, even not, we're not talking of really, you know, victims on some big...
4: I can talk about myself, yeah. At times we start sharing, actually, itna zyada.
5: Aapko pata hai mere saath kya hua. And wo ek record ki tarah play hota jata hai. Ke jahan baithe logon ke saath, apna, jaise bolte na, apna rona shuru kar dete hai. Ke mere saath kya hua, mere saath kya hua. We are not able to move ahead. To mere saath jo hua... वो हुआ, लेकिन मैं जितनी बार उसको रिपीट करती हूँ और जितनी बार वो एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करती हूँ, तो वो कितनी बार हो जाता है. सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इवन पहली बार जो किसी ने मेरे साथ कुछ किया गलत, लेकिन उसकी जो फीलिंग थी वो तो मैंने ही क्रिएट की, लेकिन ये जो बार बार मैं क्रिएट करती हूँ, ये किसने क्रिएट की? मैंने की. तो आई हैव टू अंडरस्टैंड, थिंग्स हैपन, I have to move on. वो एक रिकॉर्ड प्लेयर जैसे अटक जाता है ना नीडल, वहां पे उसी लाइफ के उस सीन पर आकर हम अटक जाते हैं और उसी सीन को बार बार दोहराते रहते हैं.
4: लेकिन बहुत मुश्किल होता है उसे बाहर निकला, because it's kind of a vicious circle. Again, शायद एक बार हमने पेन की बात की थी, तो एडिक्शन हो जाता है या वट एवर इट इज. It is, you know, at times I have seen people actually getting into it और वो निकलते ही नहीं, निकलना ही नहीं चाहते. और वो उस victimized, जो खासकर जो ज्यादा ट्रामा से गुजरे होते हैं, वो तो वो कौन सी विल पार है, कौन सी ऐसी बात है जो हमें कोशिश कर सकते?
5: मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और जो हुआ दैट इज नाउ ओवर. अब मुझे फोकस सिर्फ किस पर करना है कि आगे क्या, क्योंकि पास्ट ठीक है वॉज नॉट वेरी नाइस, लेकिन मुझे फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए अंदर की स्थिति को ठीक करना ही पड़ेगा. क्योंकि अगर मेरी स्थिति ठीक नहीं होगी तो आगे की परिस्थिति भी ठीक नहीं होगी, एंड आई विल कंटिन्यू टू लिव इन दैट पेन. जैसे कई बार हमारे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं या फैमिलीज आती जिनके घर में कुछ बात चल रही है, लाइक लेट्स से बच्चा डिप्रेशन में है या किसी बच्चे का डिवोर्स का कुछ चल रहा है, कुछ भी इस तरह का एक बहुत बड़ी बात होती है उस परिवार के लिए. तो सबसे पहली चीज जो हम उनके साथ शेयर करते हैं, स्टॉप डिस्कसिंग दिस इन द हाउस. स्टॉप इट, टोटली स्टॉप इट. क्योंकि जब तक आप उसको डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि एंडलेस है वो जो डिस्कशन होती है. लेट्स से कई पेरेंट्स हैं जिनकी बेटी घर आई है, यू नो, अपने हस्बैंड से अलग होकर आ गई है या वो प्रोसेस में चल रहे हैं. अब उस बेटी को उससे बाहर निकलना है, लेकिन सारा दिन घर में डिस्कशन क्या होती है?
4: वही हो रही होती है,
5: वही डिस्कशन हो रही है. तो हम उससे बाहर निकल रहे हैं या उसके अंदर और भी घुस रहे हैं? तो हमें इतना स्टॉप करना है कि हमारे थॉट में भी ना वो बात आए. लेकिन हम तो पूरा टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं, या वो ऐसा है, वो ऐसी है, यू नो, दैट होल डिस्कशन. और जब भी फैमिली आती है, रिलेटिव्स आते हैं, क्लोज फ्रेंड्स आते हैं, अगेन दैट्स द ओनली टॉपिक.
4: और बार बार उससे क्या है, वो रिजेंटमेंट, कहीं वो मेरे ख्याल से थॉट खत्म भी होने वाला हो, क्योंकि वायुमंडल में इतना ज्यादा वो फैला हुआ हो. नाउ आई कैन क्लियरली सी इट, यू नो, कि हम विजुलाइज कर सकते हैं कि व्हाट रियली हैपेंड.
5: एब्सोल्युटली. तो वो पूरे घर का और उस फैमिली का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? तो वो बेटी या वो बच्चा अगर निकलना भी चाहे उससे, हम ही निकलने नहीं दे रहे, यू नो, हम भी बार बार. और बहुत हम उनको यही कहते हैं कि सिंपथी नहीं चाहिए, नॉर्मल, जस्ट ट्रीट द पर्सन एज नॉर्मल. क्योंकि जितनी बार आप सिंपथी देंगे, आप फिर उनको वही याद दिला रहे हैं कि आप विक्टिम हैं. You know? तो एक तो मैं खुद फील कर रही हूँ कि मैं विक्टिम हूँ, और दूसरा सब मुझे फील करा रहे हैं कि मैं विक्टिम हूँ बाय बार बार सेइंग बेचारे आप.
4: आई थिंक समवेयर, यू नो, व्हाई बाकी सब लोग भी हम क्यों फील करवाते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो लाइक द सेंस ऑफ पावर दैट, यू नो, वी आर एबल टू हेल्प समबडी, बिकॉज वी डोंट, वी वुड लाइक टू हेल्प समबडी,
5: राइट, बट वी नॉट रियली हेल्पिंग.
4: यस,
5: यू नो हेल्प एट दैट टाइम वुड मीन एम्पावरमेंट. लेकिन बार बार कह कर के हाय आपके साथ ऐसा हुआ, बेचारे आप, अब आपका क्या होगा, या इवन ये कहना कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, मतलब इट्स नॉट टू हर्ट एनीवन, लेकिन कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा वो ठीक है, बट बाय सेइंग दैट वे सेइंग कि अभी सब गलत है, यू नो. तो जितना हम नॉर्मलसी को क्रिएट कर सके, सब ठीक हो जाएगा ये बोलने की बात नहीं है, सब ठीक क्रिएट करना है घर के वायुमंडल में. और बिल्कुल वायुमंडल ऐसा हो जाना चाहिए, बातचीत करने का तरीका ऐसा हो जाना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, देन वी आर एबल टू फिनिश इट.
4: बहुत बहुत धन्यवाद.
5: ओम शक्ति.
4: ओम शक्ति.